आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, खुले रहो खिले रहो पर दिमाग से खाली रहो। खुले रहो खिले रहो दिमाग से खाली रहो, और मेरे पागलो व्यस्त रहो पर मस्त रहो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप व्यस्त कितने हैं, व्यस्त तो चींटियां भी होती, उन्हें भी दिन भर काम होता, 6-7 बजे भी उनके काम बंद नहीं होते, लेन में चली जा रही, आपस में बात करती, चलो री भाई हरो 2 किलोमीटर और रहेगा। तो व्यस्त तो चींटियां भी हैं, व्यस्त रहो पर मस्त रहो, जो मस्त रहता है उसके पास समस्त रहता है। इसलिए हमें व्यस्त तो रहना है पर मस्त रहना है, हनुमान जी से यही सीखना। आज जब हम मेरठ आ गए तो हम सोचने लगे हनुमान जी की कथा तो सुनाए पर चौपाई कौन सी ले। तब तक हम बैठे थे, कलाकार हमारे गंधर्व ये सब लोग आ गए, तब हमें एक चौपाई बहुत याद आई, उसी चौपाई के आधार पर हम 5 दिन हनुमान जी को केंद्रित करके कथा सुनाएंगे, और चौपाई बड़ी प्यारी है।

श्री हनुमान जी महाराज। आहा, हनुमान जी के लिए लिखा मंगल मूर्ति मारुति नंदन, लेकिन बोले सुनो सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी मंगल तो करते हैं पर अमंगल हरते हैं। गिलास में खारा पानी भरा हो और मीठा पानी भरना हो तो क्या करना चाहिए? पहले खारे पानी को खाली करना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी बोलो, अरे जोर से बोलो। खारे पानी को खाली करेंगे तो मीठा पानी भरा जाएगा। उसी प्रकार मेरे पागलों दिमाग में कुविचार भरे हैं तो पहले कुविचारों को निकालना पड़ेगा तब सुविचार भरेंगे। कुविचार कैसे निकलेंगे? कथा है डिटर्जेंट, कथा में बैठोगे तो कुविचार निकलेंगे। सुविचार भरेंगे, सुविचार भरेंगे तो अमंगल हटेगा और मंगल हो जाएगा। यही काम हनुमान जी का है। हम नहीं कहते हनुमान जी

मंगल करने वाले हैं। क्या हनुमान जी मंगल करते? हाँ, स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगल के दिन को हुआ है। भैया बुरा ना मानना, मेरठ के पागलों, मंगल ग्रह पे जीवन हो या ना हो ये तो हमें पता नहीं है, पर जिंदगी में मंगल जरूर होना चाहिए। मंगल पे जीवन है क्या नहीं ये जरूरी नहीं है, पर तुम्हारी जिंदगी में अगर मंगल नहीं है तो मंगल ग्रह का जीवन किसी काम का नहीं है। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में मंगल चाहिए तो मंगल मूर्ति की सेवा करनी पड़ेगी। मंगल मूर्ति की भक्ति करोगे तो जिंदगी का अमंगल हट जाएगा और मंगल ही मंगल हो जाएगा। अच्छा एक बात और, हनुमान जी मंगल मूर्ति है, मूर्ति का मतलब स्वरूप। अच्छा, लेकिन मूर्ति खाली हो पर मंदिर ना हो तो फीकी लगती। तो हनुमान जी है मूर्ति पर मंदिर कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया,

ऐसे समझो कितनी अच्छी बात, नदी हो पर पानी ना हो, नदी हो पानी ना हो, क्या किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, सूर्य हो पर उजाला ना हो, तो क्या किसी काम का है? वायर डली हो पर करंट ना हो, तो क्या किसी काम का है? बोलो, जोर से बोलो। घोड़ी हो मंडप हो पर लुगाई ना हो, तो क्या किसी काम का है? बोलो बोलो बोलो, है? नहीं है ना। समुद्र हो पर उसमें ठहराव ना हो, भराव ना हो, लहरें ना हो, जल ना हो, तो क्या किसी काम का है? अच्छा, आदमी सुंदर हो पर नाक कटी हो, तो क्या वो चेहरा किसी काम का है? अच्छा, शरीर हष्ट पुष्ट हो, बॉडी बिल्डर एकदम देव बिल्डर, जे डोले सोले बने, लेकिन हार्ट बंद हो गया, तो क्या वो शरीर किसी काम का है? जिस प्रकार पानी के बिना नदी काम की नहीं है, पति के बिना पत्नी काम की नहीं है, गुरु के बिना शिष्य काम का नहीं है, ताप के बिना उजाले के बिना सूर्य काम का नहीं है, उसी प्रकार मेरे पागलो भक्ति के बिना जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। तो हनुमान जी कौन है?

0: हनुमान जी मूर्ति तो हो गए मेरे पागलों, पर मंदिर की जरूरत है। बोले मंदिर कौन है? बोले राम जी। जासु हृदय आगा, राम हनुमान जी के हृदय में अगर राम जी बैठते हैं तो राम जी के हृदय में हनुमान जी बैठते हैं। अब हनुमान जी मूर्ति हो गए, राम जी भवन हो गए, मंदिर हो गए, लेकिन एक जगह हनुमान जी कहते अतुलित बल धामम, हनुमान जी कहते हम मकान हैं, राम जी मकान के मालिक हैं, मेरे पागलो जोड़ा कितना अच्छा है। हनुमान जी का जन्म स्कंद पुराण के अनुसार मंगल को हुआ, इनका रूप भी मंगल करने वाला है, लेकिन ये जिनके दास हैं वो स्वामी भी मंगल भवन अमंगलहारी है। राम जी भी मंगल करने वाले, वो भी मंगल करने वाले अमंगल हरने वाले। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। संगत का बड़ा प्रभाव है, तुम गुटखा खाने वालों के साथ में रहने लगना गुटखा सीख जाओ, तुम कुछ दिन बॉडी बिल्डर वालों के साथ में रहना अपने आप जिम जाने लगो, जिम नहीं भी जाओगे तो सुबह सुबह टहलने जाने लगोगे, तुम कुछ दिन जुआरियों के साथ में रहना अपने आप सट्टा लगाने लगोगे, तुम कुछ दिन ऐसी बहन जी के साथ रहना माता जो दूसरों की चुगली करती हो तुम्हें अपने आप आने लगेगी, और वही दिमाग में चलेगा, लगातार वही चलेगा। भैया गांव में एक जुआरी होता है पूरे गांव को जुआरी बना देता है, एक बीड़ी पीने वाला पूरे मित्रों को बीड़ी पिलाना कई बार सिखा देता। कुछ मित्र गंभीर भी होते हैं पर सब नहीं होते। ऐसे ही एक जगह घटना घटी, एक आदमी लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते बेचारे की नाक कट गई। अब नाक तो नाक भाई, कान कट जाए तो टोपा लगा लो, कपड़ा बांध लो। कोई पूछे क्या बात है, ठंडी लग रही है गर्मियों में, हाँ हमें लगती, पर नाक कट गई अब क्या लगाओगे। अच्छा अब आज का जमाना होता तो मास्क लगा लेते, पुराना जमाना, नाक कट गई, नाक कटी बुरी लगे। अच्छा अच्छा अब ऐसा आदमी जहां भी जाए तो लोग भी बड़े बेचत, नक कटे चाचा आ गए, नक कटे चाचा इधर आ, नक कटे इधर आ, नक कटे बब्बा इधर आ, नक कटे भैया इधर आ। बड़ा हैरान। एक दिन लोगों ने, एक आदमी ने पूछा क्या बात है, एक बात बता तुम्हारी नाक कैसे कट गई। बोले अब ना पूछो। अब बोले नहीं नहीं बताओ बताओ, हमें तो बता ही दो, किसी को मत बताओ, हमें बताओ। बोले तुम किसी को बताओगे तो नहीं। अरे हम किसको बताएं। अच्छा किसी को कोई भी बात अपनी वायरल करवानी हो वो ये कह के जरूर कहना, तुम किसी को बताना नहीं भैया। हाँ तुम किसी को, हमने तुम्हें बता दी, किसी को ना बताना। पर देखो तुम वो वाली बात जरूर नहीं रुकी, बाकी सब रुक जाएंगी पर वो ही वाली बात वायरल। बोले हमें तो बताओ हमें नाक कैसे कट गई। बोले इधर आ। बोले दरअसल गांव के बाहर जो मंदिर है हाँ, वहां शंकर जी ने हमें सपना दिया कि तुम्हें हमारे दर्शन करने हो तो रावण ने शीश काट के चढ़ाया था, तुम नाक काट के चढ़ाओ। तो वो बोला क्या तुम्हें शंकर जी मिले। अरे बोले मिले, ये देखो ये खड़े, ये है भोलेनाथ, है कुछ नहीं झूठ मूठ, ये देखो सांप लटका। अरे महाराज, तो उसे लगा बड़ी गजब बात, हे बगल में है भोले बाबा। तो आदमी को लगा, वो भी शंकर जी का थोड़ा मोड़ा भक्त था, बोले यार दर्शन तो हमें भी करने। बोले ऐसे तो होंगे नहीं। इसने मन में सोचा अपनी तो कटी है, एक से भले दो सही। बोले ऐसे तो नहीं होंगे। बोले फिर, बोले चलो तुम भी काटो। वो गया मंदिर, उसने ली चाकू और ली काट के चढ़ा दी, और जैसे ही चढ़ाई खून बहने लगा। बोले हमें तो शंकर जी कहीं नहीं दिख रहे। बोले तुम किसी को मत बताना, हमें भी नहीं दिख रहे। आओ, आओ, आओ। बोले ना तुम बता लेना, हमें भी नहीं दिख रहे। बोले तो बड़े बेकार आदमी हो। बोले वाह, हम अकेले थे, अब दो तो हो गए, तो दूसरा भी कम नहीं था, मेरठ का ही था। बोला पर दो क्यों, तीन कर लो। बोले कैसे, पड़ोस में रहते थे रम्मू चच्चा। बोले रम्मू इधर आ। हाँ तो उसने पूछा भैया पहले तो एक, अब दो दो लोगों की नाक कैसे कट गई। अरे बोले ऐसे, अरे बताना, अरे बताओ तो, अरे बोले
1: ए भोलेनाथ, ए जी खड़े जी आगे जी आगे, ए महाराज महाराज।
0: अरे भाई कौन है यहाँ, तो कोई नहीं है। नाक काट के जो चढ़ाता है उसे शंकर जी दिखते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव ने नाक कटवा ली, पुरुषों की तो छोड़ो महिलाओं ने कटवा ली, महिलाओं की तो छोड़ो बच्चों ने कटवा ली। बोले क्या? बोले शंकर जी दिखेंगे और किसी को नहीं दे। पूरा गांव नक कटा हो गया, एक सिंगल आदमी नहीं बचा। जवान तो छोड़ो, बूढ़े बोले मर तो रही है, शंकर जी के दर्शन करके मरो। तो जो दो थे उनने बूढ़े पहले टारगेट करे, सब बूढ़ों की नाक कटवा दी। लोग बोले नाक, अगल बगल के गांव वाले आवे, भैया इस गांव में क्या है? तो जिसकी पहले नंबर पे कटी थी, बोले सबकी एक जैसी है, हमारी भर थोड़ी है, यहां सबकी एक जैसी ही है। ये संगत का बड़ा विचित्र प्रभाव होता है, तो संगत का बड़ा असर होता है। संगत के प्रभाव से सब बदल जाता। हनुमान जी की अगर हम संगत करेंगे तो भैया हमारी भी जिंदगी में राम जी की भक्ति आ जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर एक बात और,

0: क्या ग्रहों और राशियों से कोई संबंध है? क्या कभी अच्छे दोस्त जीवन में नहीं मिल पाते? क्या कुछ लोगों को ग्रहों की वजह से अच्छे दोस्त आसानी से मिल जाते हैं? दोस्ती और ज्योतिष का क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, कहीं सज रहे हैं पंडाल तो कहीं प्रतिमाओं की सजावट, बंगाल में बनी प्रतिमा की इंग्लैंड तक डिमांड। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख।

0: बॉक्स ऑफिस पर थम नहीं रहा दृश्यम 3 का तूफान, तीसरे दिन कमाई 61 करोड़ के पार, नेट कारोबार में अब दूर नहीं 200 करोड़ के क्लब में एंट्री। जापान से लौटे एशियन गेम्स के पदक वीरों का ग्रैंड वेलकम, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ एयरपोर्ट से घर तक शानदार स्वागत।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: खटीमा में 3 दिवसीय रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया उद्घाटन। 18 राज्यों से पहुंचे जनजातीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा, हर ओर पारंपरिक कला के दिखे रंग। खटीमा मुख्य चौक से आयोजन स्थल तक निकाला गया भव्य रोड शो, हनुमान अंश की टीम ने भी सीएम धामी के साथ आदि रंगोत्सव में शिरकत की। सीएम धामी हनुमान अंश के कलाकारों के साथ जॉनसर भावर की साथ ढोल दमाऊ टीम के साथ झूमते हुए नजर आए। अलग अलग स्टॉल्स के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को भी दिया गया मंच, सैकड़ों की संख्या में स्थानीय धारू जनजाति सहित अन्य समाज के लोगों ने लगाए स्टॉल। पहाड़ों के सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में हिल स्टेशंस पहुंच रहे हैं सैलानी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक चरम पर है टूरिज्म। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़, बदलते मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध त्रिउंड ट्रैक पर दिखी सैलानियों की भीड़, बड़ी संख्या में मैक्लोडगंज भी पहुंचे सैलानी, खूबसूरत वादियों का दीदार किया। सैलानियों की रिकॉर्ड भीड़ देखकर खिले कारोबारियों के चेहरे, भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन सतर्क, पुलिस बल तैनात। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सैलानियों का सैलाब उमड़ा, दिल्ली शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 80% से ज्यादा होटल्स बुक रहे। सुहाने मौसम का सैलानी आनंद ले रहे हैं, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़, पर्यटकों के आने से मॉल रोड, कुलरी बाजार और लाइब्रेरी बाजार में भीड़ तो वहीं रौनक बढ़ गई, व्यापारियों के चेहरे पर खुशी दिखी। बागेश्वर धाम आने वाली महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, महिलाएं अकेली ना आए धाम। बाबा ने कहा महिलाएं स्वयं सतर्क सजग और सावधान रहें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर वतन लौटे पदकवीर, एयरपोर्ट पर एथलीट्स का हुआ भव्य स्वागत। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह, शानदार स्वागत किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे, तो वहीं परिवार ने वेलकम किया, घर रवाना हुए। एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले क्रिकेटर तिलक वर्मा की भी वतन वापसी हुई, हैदराबाद पहुंचने पर शानदार स्वागत। चंबा में एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीमा कुमारी का जोरदार स्वागत, फूल माला पहनाकर अभिवादन किया गया। रेसलर दीपक पुनिया का दिल्ली में शानदार स्वागत किया गया, फैंस ने नोटों की माला पहनाकर वेलकम किया। गोल्फ टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली झज्जर की बेटी दीक्षा डागर का शानदार स्वागत, देश के लिए पदक हासिल करने को बताया ऐतिहासिक पहल। सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान अंतिम पंघाल का भी वतन वापसी पर जोरदार स्वागत किया गया। बोले भविष्य में सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने की कोशिश करेंगे। ढोल नगाड़ों के बीच रेसलर सुनील मलिक का भव्य वेलकम। सुनील ने पुरुषों की 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स में 2 मेडल जीतकर अपने होम टाउन जोलारपेट पहुंचे विशाल परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। एशियन गेम्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशिका सबरवाल का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ईशिका को खुली जीप में बिठाकर परिवार ने निकाला भव्य रोड शो। पहनाई गई फूल मालाएं और करेंसी नोट की मालाएं। स्थानीय लोगों ने नाच गाकर और ढोल नगाड़ों के साथ इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत का जश्न मनाया। हॉकी की गोल्ड मेडलिस्ट ईशिका चौधरी का भी ग्वालियर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पहनाई फूल मालाएं और खिलाई मिठाई। एशियन गेम्स के महिला हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी बेटियों का भव्य स्वागत। झारखंड एयरपोर्ट पर पहुंचे फैंस। बेटियों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों ने खिलाड़ियों को पहनाई फूलों की माला। एयरपोर्ट पर हाथों में हॉकी लेकर पहुंचे फैंस। ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक डांस की प्रस्तुति दी। बॉक्सिंग के पदक वीर भी लौटे स्वदेश। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिनंदन हुआ। जापान से जीत कर लौटे अंकुश पंघाल और दूसरे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। एशियन गेम्स में बढ़ाया देश का मान। रविवार को जापान में 20वें एशियन गेम्स का भव्य समापन हुआ। खेल के मैदान पर दिखी युवा प्रतिभा की चमक। 2023 में दोहा करेगा एशियन गेम्स की मेजबानी। समापन समारोह में मेजबान देश को सौंपा गया ध्वज। आईची नागोया में आयोजित इस भव्य आयोजन में लगभग 17,000 एथलीट्स और अधिकारी शामिल हुए। क्लोजिंग सेरेमनी में देखने को मिले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक। कई प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। एथलेटिक्स में युवा प्रतिभाओं का जलवा देखने को मिला। व्यवस्थाओं की भी तारीफ हुई। दिल्ली में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग के समापन समारोह में शामिल हुए आशीष सूद। दिल्ली में 5 स्टेडियम को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने का ऐलान किया। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग का 8वां सीजन संपन्न हुआ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था समारोह। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत हुई। राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए पेश। सीएम मोहन चरण मांझी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल हुए। युवाओं को मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना लक्ष्य। युवाओं को खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों की तरफ मोड़ने का प्रयास। कैप्टन स्मिथ बछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना में आसनसोल में महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैप्टन स्मिथ के लिए डूब के बाप्स मंदिर में दुआओं का दौर चला। तो वहीं यूएई के दुबई में बीएपीएस मंदिर में संपर्क में है भारत की एम्बेसी। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो का उद्घाटन। उद्यमों से संवाद किया। कारीगरों ने सीएम योगी को भेंट की पेंटिंग, तो वहीं सीएम बोले मिर्जापुर और संत रविदास नगर भदोही को बनाया जाएगा सिल्क क्लस्टर। फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा यूपी का भदोही जिला, सीएम योगी का ऐलान जल्द ही, अधिसूचना जारी होगी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या दोस्ती का ग्रहों और राशियों से कोई संबंध है? क्या कभी अच्छे दोस्त जीवन में नहीं मिल पाते? क्या कुछ लोगों को ग्रहों की वजह से अच्छे दोस्त आसानी से मिल जाते हैं? दोस्ती और ज्योतिष का क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम भगवान सूर्य की बड़ी चमत्कारी स्तुति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। क्या है इस स्तुति की महिमा और इसको करने के नियम क्या हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की। आदित्य हृदय स्तोत्र को सूर्य देव की बहुत प्रभावशाली स्तुति माना जाता है। क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र? आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन किया था। सूर्य के समान तेज पाने के लिए, सूर्य के समान तेजस्विता के लिए और युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज्यादा किया जाता है। इसके पाठ के कुछ नियम हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य की विशेष कृपा मिले, जीवन की मुश्किलों में विजय मिले, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनको इसका फायदा ज्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर राज्य पक्ष से गवर्नमेंट से कोई पीड़ा है या अगर कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, तो आपको रोज सुबह
आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर लगातार आपको रोग परेशान कर रहे हों, लगातार बीमारियां हो रही हों, खास तौर से हड्डियों की या आंखों की समस्या हो रही हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो, पिता के साथ रिश्तों में दिक्कत हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आंखों की समस्या आपको गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से लाभ होता है। जीवन में कोई बड़ा काम है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस बड़े काम में सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रोज प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। परीक्षा में सफलता के लिए और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अच्छा रहेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं, कैसे इसका पाठ करना चाहिए। वैसे तो आप रोज प्रातः इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन रविवार को उषा काल में जब सूर्य एकदम लाल हो, जिस समय एकदम निकल रहा हो, उस समय इसका पाठ करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। आप चाहें तो रोज सूर्योदय के समय भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पहले सुबह उठकर के स्नान करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, इसके बाद सूर्य देव के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ के बाद सूर्य देव का ध्यान करिए और जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी स्तुति है भगवान से, वो कहिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ साथ अगर आप रविवार को नमक का सेवन ना करें, तो इसके फायदे, इसके प्रभाव आपको जीवन में ज्यादा होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, सूर्य आपके स्वास्थ्य का स्वामी है। ओवरऑल कुल मिला जुला के सूर्य आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला ग्रह है, आपको स्वस्थ बनाने वाला ग्रह है। अगर जीवन में स्वास्थ्य की समस्या हर समय लगी रहती हो, कोई ना कोई सेहत की दिक्कत आपके साथ बनी रहती हो, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, और प्रयास करने पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तब आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। जिस दिन आपकी कोई परीक्षा है, आपका कोई इंटरव्यू है जिसमें आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी विजय चाहिए, उस दिन प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जहां भी आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, अपने काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काम करने में सरलता होगी और सुविधा के साथ अच्छी तरह से आप काम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबर।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, कहीं सज रहे हैं पंडाल तो कहीं प्रतिमाओं की सजावट हो रही है। पश्चिम बंगाल में बनी प्रतिमा की इंग्लैंड तक डिमांड। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे की, तो वहीं सैलानियों की मुराद पूरी कर रहा है कुदरत की मेहरबानी से। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक पर्यटन को लगे पंख। बॉक्स ऑफिस पर थम नहीं रहा दृश्यम 3 का तूफान, तीसरे दिन कमाई 61 करोड़ के पार, नेट कारोबार में अब दूर नहीं 200 करोड़ के क्लब में एंट्री। जापान से लौटे एशियन गेम्स के मेडलिस्ट का ग्रैंड वेलकम किया गया, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ एयरपोर्ट से घर तक शानदार स्वागत। भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में अब 11 और जीव जंतुओं का दीदार, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। अमेरिका में इंटरनेशनल बलून फिएस्टा के दूसरे दिन आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारों की उड़ान, अजीबोगरीब गुब्बारे देखकर लोग दंग रह गए। पर्यावरण और जानवरों के रक्षक माने जाने वाले सेंट फ्रांसिस की याद में न्यूयॉर्क के चर्च में सेलिब्रेशन, अपने पेट्स को लेकर प्रार्थना के लिए पहुंचे लोग।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय आज रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और चर्चा का विषय है दोस्ती यानी फ्रेंडशिप। दोस्ती का ज्योतिष नजरिए से किस तरह से कनेक्शन होता है ये समझेंगे। दोस्ती किन ग्रहों की वजह से अच्छी हो सकती है, किन ग्रहों की वजह से बुरी हो सकती है, या फिर कई बार आप भी देखते होंगे कि आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, कौन से ऐसे संयोग बनते हैं, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से जीवन में अच्छे दोस्त नहीं बनते हैं, और अगर आप अच्छे दोस्त पाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। पंडित जी आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे, तमाम उपायों के बारे में बताएंगे, महाउपाय के बारे में बताएंगे, राशियों के बारे में भी जानकारी देंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ।
1: अपने काम की मेज को जहां आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए। अगर आपकी मेज बिखरी रहेगी, साफ तरीके से नहीं रहेगी, तो काम का बोझ बढ़ेगा और आपसे निरंतर गलतियां होंगी। इसीलिए अपने काम करने की मेज को, डेस्क को आपको हमेशा बेहतर रखना चाहिए।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 5 अक्टूबर सोमवार 2026 के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 11:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। हमने आपको बताया कि बातचीत होगी आज पंडित जी के साथ फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में। दोस्ती जो वर्ड है ज्योतिष नजरिए से अगर इसको समझना चाहें तो ये क्या परिभाषा होती है दोस्ती की?
1: जी, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जिन लोगों को रिश्तों में नहीं बांध पाता उनको दोस्ती के रिश्तों में बांध कर अपनी गलती सुधार लेता है। दोस्ती जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता है। ज्योतिष दोस्ती के बारे में क्या कहता है? देखिए, कुंडली में जो पांचवा खाना है, पंचम भाव है, और जो 11वां खाना है, एकादश भाव है, ये आपकी मित्रता से संबंध रखता है। इसके अलावा, मित्रों के अलावा जीवन में सहयोगी भी होते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, आपके कलीग होते हैं। तो सप्तम भाव आपके सहयोगियों का होता है। चंद्रमा और बुध आपकी मित्रता के निर्णायक ग्रह हैं। किसी व्यक्ति की मित्रता कैसी है और कितनी है ये बात चंद्रमा और बुध से जानी जा सकती है। आपकी राशि और आपका लग्न ये आकर्षण पैदा करते हैं, इसीलिए आप लग्न और राशि से दूसरों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, जुड़ना चाहते हैं ना, आपकी राशि उसकी राशि से कनेक्ट हो रही है, आपको पता हो या ना पता हो। चंद्रमा भावनात्मक मित्रता करवाता है, इमोशनल मित्रता चंद्रमा की वजह से होती है, और बुध बुद्धि से मित्रता करवाता है। बुध वाले सोच विचार कर अपना फायदा नुकसान देख करके तब मित्रता करते हैं, ऐसा देखा गया है।
0: चलिए, इसे दोस्ती के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो आगे जाकर हम पंडित जी से पूछने वाले हैं। आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हालचाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, मेष और मिथुन वालों की। इनके भाग्य में आज क्या लिखा है पंडित जी से एक बार जान लेते हैं।
1: मेष राशि, खान पान का अपने ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि आपको हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: देखिए, शुरुआत में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने आपको दो बातें कही कि एक तो अच्छे दोस्त कब मिलते हैं, अच्छे दोस्त कब नहीं मिलते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो पंडित जी, सवाल उसी के साथ जोड़ देती हूँ कि जीवन में ऐसे कौन से हालात होते हैं कि आपको अच्छे मित्र मिल ही नहीं पाते हैं।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में अच्छे मित्र मिलते ही नहीं, या जीवन में मित्र नहीं होते। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा खराब होगा या दूषित होगा तो लोगों का जुड़ाव आपके साथ नहीं होगा, या खराब लोगों का जुड़ाव होगा, अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे। अगर कुंडली के 11वें खाने में एकादश भाव में बहुत सारे ग्रह हों तो भी आपको अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, या हो सकता है जीवन में मित्र ही ना मिलें। अगर कुंडली में लग्न खराब होगा तो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, लोगों के साथ आपकी मित्रता नहीं होगी, और अगर होगी तो किसी निगेटिव व्यक्ति से होगी। अगर कुंडली में राहु केंद्र स्थानों में बैठा हो तो मित्रता आम तौर पर अच्छी नहीं होती, ऐसे लोगों को मित्रता में धोखा मिलता है और ऐसे लोगों के जीवन में मित्र आम तौर पर नहीं होते। अगर किसी कुंडली में बुध काफी मजबूत हो तो व्यक्ति अपना फायदा नुकसान देखकर मित्रता करता है कि मित्रता करने से पैसे कितने मिलेंगे, मित्रता करने से सपोर्ट कितना मिलेगा, समाज में क्या स्टेटस हो जाएगी। तो अगर कुंडली में बुध काफी ज्यादा मजबूत हो तो लोग कैलकुलेशन में लगे रहते हैं और इस चक्कर में सच्चे और अच्छे मित्र उनको नहीं मिल पाते हैं।
0: चलिए और भी प्रश्न पूछेंगे पंडित जी से आगे जाकर, लेकिन अब वापस आ जाते हैं राशिफल पर। अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं, कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क सिंह और कन्या वालों की, इनके भाग्यफल में क्या है विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे।
1: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें हम शामिल करते हैं आप सबके सवालों को और पंडित जी आपको जवाब देते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, जीवन की कोई परेशानी है उसका निवारण आप चाहते हैं, कोई दिक्कत है उसको दूर करना चाहते हैं, अपने तमाम सवालों को भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अभी नोट कर लीजिए, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल भेजने हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी आपको बताएंगे पहला सवाल कौन सा है।
1: जी, आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें देहरादून से लिखा है। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म तारीख है 27 मई 2002, शाम के 7:45, जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती है, किस क्षेत्र में उसे कोशिश करनी चाहिए और उसे सफलता कब तक मिलेगी। मीनाक्षी जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनको पोस्ट ग्रेजुएशन करवा करके टीचिंग जॉब में ले जाइए, अगर ये शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने का प्रयास करें तो उसमें इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2028-29 का समय इनके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इनकी एकाग्रता बेहतर हो, इनका जीवन बेहतर हो, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइएगा, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आज के इस शो में कौन से दर्शक ने हमें भेजा है, पंडित जी से विस्तार से जानते हैं।
1: जी अगला प्रश्न हमें समीर जी ने बेंगलोर से लिखा है, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 5 जुलाई 2022, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है बेंगलोर। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है 4 साल हो गया है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या उसको लगातार लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। समीर जी, जब तक आपका बेटा 8 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको सर में चोट लगने से बचाइए और कोल्ड कफ की, सर्दी जुखाम की समस्या से उसकी रक्षा करने का प्रयास करिए। 8 वर्ष की उम्र तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता है, इसके बाद से चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं। आप अपनी पत्नी से कहें कि आपके बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार वो ओम नमः शिवाय का जप करें और आपके बच्चे के नाम से हर सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल, चीनी, दूध, अगर इसका निरंतर दान करते रहें उम्र के 8 वर्ष तक, ये उपाय करती रहें, तो बच्चा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा।
0: चले पंडित जी ने आपको ये तो बताया कि अच्छे मित्र कब नहीं मिलते हैं, कब मिलते हैं जीवन में अच्छे मित्र, अब ये भी पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी,
1: बहुत सारे लोगों को जीवन में अच्छे मित्र मिलते हैं जो शुरू से अंत तक उनका साथ निभाते हैं। तो जीवन में अच्छे मित्र कब मिलते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा थोड़ा भी बेहतर है, थोड़ा भी बेहतर स्थिति में है, तो आपको जीवन में अच्छे मित्र अवश्य मिलेंगे जो आपका साथ निभाएंगे। अगर कुंडली का 11वां भाव अच्छा है, 11वां भाव अच्छा है, तो भी आपको जीवन में अच्छे मित्र मिलेंगे। अगर कुंडली का 7वां भाव अच्छा है, 7वां भाव अच्छा है, तो आपको कलीग, आपके साथ काम करने वाले, आपके सहयोगी अच्छे मिलेंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो एक ही सही, लेकिन जीवन में अच्छा मित्र जरूर मिलता है। अगर कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा हो तो हो सकता है आपके बहुत सारे मित्र ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के बहुत सारे जानने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के जानने वाले काफी होते हैं, ऐसे लोगों की प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी काफी होती है।
0: चलिए आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है राशिफल पर वापस आने की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
1: तुला राशि, आर्थिक मजबूती आती दिख रही है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि।

0: कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: पंडित जी, अच्छे मित्र ना मिलना, अच्छे मित्र मिलना, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कई बार लोग बैठ के सोचते हैं कि अच्छे मित्र मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे मित्र जीवन में चाहते हैं तो कैसे और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: अगर आप अपने जीवन में अच्छे मित्र पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, शुद्ध और शुभ रखिए। दोस्ती करने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मत करिए, कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना लाभ, ये सब देख करके, जोड़ घटा करके दोस्ती नहीं होती है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपको जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर मिले। भगवान कृष्ण की निरंतर पूजा करने से और निरंतर प्रार्थना करने से आपको जीवन में अच्छे मित्र की प्राप्ति होगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, विवाह तय हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक रहेंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वाहन

0: सावधानी से चलाएं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है आपके सवालों के ऊपर आने की, और दर्शकों के सवालों को एक बार फिर से शामिल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक ने भेजा है, पंडित जी आपसे जानेंगे।
0: जी अगला प्रश्न नंदिनी शुक्ला ने हमें लिखा है, और नंदिनी हमें लखनऊ से मेल लिख रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1979, जन्म का समय दोपहर के 12:55, जन्म स्थान है कानपुर। नंदिनी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई है और तमाम प्रयास के बावजूद इस उम्र तक आकर के भी समस्या में सुधार नहीं हो रहा है, तो क्या मेरा वैवाहिक जीवन ऐसा ही चलेगा या कुछ बेटरमेंट होगा? नंदिनी सबसे पहले आप अपने क्रोध और वाणी पर काबू करिए, केवल आपके पति की गलती ही नहीं है, आपको भी अपने क्रोध और स्वभाव का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, देखिए वो एवरेज ही रहेगा, एक्सीलेंट होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जितना निगेटिव अभी है आने वाले समय में उतना निगेटिव नहीं रहेगा। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पुखराज पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल कौन से दर्शक का आज है, कौन सा है वो लकी दर्शक, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अजय प्रताप जी ने हमें लिखा है। अजय प्रताप जी देवरिया से हमें मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1982, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 2:05, जन्म स्थान है देवरिया। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेके एक मुकदमा परिवार में चल रहा है, उसका समाधान कब तक होगा, क्या वो हमारे पक्ष में आ सकेगा? अजय जी, जो मुकदमा है आपका वो परिवार के लोगों के बीच में ही है, उसमें जीत हार का प्रश्न मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2027 के शुरुआती समय में आपसी तालमेल से, आपसी सुलह समझौते से इस मुकदमे का निपटारा होगा और आपका जो अधिकार है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को निर्धनों को गुड़ या हलवा पूड़ी का दान करिए, काफी अच्छा होगा। एक प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ले लेते हैं। रेणु जी ने हमें ये प्रश्न लिखा है, और रेणु जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से, अपनी माता के बारे में जानना चाहती हैं। इनके माता की जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1955, दोपहर में 3:05, जन्म स्थान है भभुआ बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी माता जी का स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी माता जी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? रेणु जी, आपकी माता जी की कुंडली के हिसाब से अभी मई 2027 तक उनका समय बहुत ही नकारात्मक है, इसलिए मई 2027 तक उनका बहुत ध्यान देना है, सेहत में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। मई 2027 के बाद चीजें बेहतर होने की संभावना बन सकती है। आप अपनी माता जी के लिए रोज सुबह शाम एक एक बार नारायण कवच का पाठ करिए और हर शनिवार को निर्धनों में खाने पीने की चीज का दान करिए। ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि आपकी माता जी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, वरना उससे स्वास्थ्य उनका और ज्यादा बिगड़ सकता है।
1: चलिए एक और प्रश्न आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ पंडित जी आपसे पूछना चाहूंगी। पंडित जी, दोस्तियां तो चलो हम सबके जीवन में होती हैं, लेकिन ये बताइए राशि अनुसार कौन सी राशियां सबसे मजबूत राशियां मानी जाएं जिनकी दोस्तियां भी बहुत मजबूत और गहरी होती हैं?
0: जी देखिए, हर राशि की दोस्ती कैसी है कैसी नहीं है वो कुंडली के बहुत सारे ग्रहों पे निर्भर करता है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये राशि बहुत अच्छा है ये बहुत बुरा है। आम तौर पर सबके अलग अलग ग्रहों का प्रभाव उनकी मित्रता पर पड़ता है, लेकिन दो राशियां ऐसी हैं जो जब दोस्ती करती हैं तो अपनी तरफ से अंतिम समय तक निभाने का पूरा प्रयास करती हैं और बहुत अच्छे मित्र इन राशियों के लोग सिद्ध होते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि टॉरस और दूसरी राशि है सिंह राशि यानी लियो। जब इन राशि के लोग मित्रता करते हैं जीवन में तो जब तक दूसरा इनको ना छोड़ दे अपनी तरफ से अंतिम समय तक मित्रता निभाते रहते हैं।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 5 अक्टूबर को उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 5 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, विवाह के मामलों में हालांकि विलंब होगा और साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या सोमवार के दिन नौकरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? देखिए, सोमवार के दिन वो काम करिए जिसमें स्पीड चाहिए और जो जल्दी खत्म हो जाए, निरंतर चलता रहे। गाड़ी खरीदना यात्रा करना सोमवार को अच्छा है, तुरंत तुरंत होगा तुरंत खत्म होगा। लेकिन सोमवार को अगर नौकरी की शुरुआत करेंगे तो नौकरी जल्दी जल्दी बदलेगी जो अच्छा नहीं होगा।
1: चलिए जैसे कि हर शो में पंडित जी आपको बताते हैं शुभ पहर के बारे में, तो 5 अक्टूबर 2026 सोमवार का शुभ पहर क्या है वो पंडित जी से जान लेते हैं।
0: दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। विवाह होने में अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 5 अक्टूबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में।
1: चलिए जैसा कि आपको ज्ञात है कि पंडित जी शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो गुडलक राशि कौन सी है वो भी पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा के बारे में। आज की गुडलक राशि है वृषभ। इनकी शिक्षा धीरे धीरे स्थिरता से चलती रहती है। अच्छी शिक्षा के लिए इनको श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए।
1: चलिए तमाम उपाय, तमाम सवालों के जवाब पंडित जी ने इस शो से जुड़े हुए आप तक पहुंचा दिए हैं। बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की, जिसके बारे में हम बताते हैं आपको हर रोज इस शो में। तो आज का महा उपाय पंडित जी क्या है वो आपसे जानेंगे।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर याददाश्त को अच्छा करना है तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह तुलसी के दो पत्तों का सेवन करिए और भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखिए, आपकी मेमोरी में, आपके याददाश्त में सुधार होगा।
1: तो चलिए इस महा उपाय के लिए पंडित जी और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक की। जब भी दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली के चांदनी चौक का जिक्र जरूर होता है। फिल्मों में भी आपने चांदनी चौक देखा होगा और एक फिल्म का नाम भी चांदनी चौक पर ही रखा गया है। चांदनी चौक की बात ही निराली है, यहाँ पर किस्म किस्म की चीजें मिलती हैं, कपड़े, गहने, जरूरत का हर सामान और छोटी से छोटी चीज किफायती रेट पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड और सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में भी विरासत और दोनों के लिए चर्चा गर्म है कि चांदनी चौक की ऐतिहासिक विरासत के साथ पुनर्निर्माण भी जरूरी है।

0: दिल्ली का सबसे पुराना ऐतिहासिक और जीवंत बाजार है चांदनी चौक, जिसकी विरासत 17वीं शताब्दी के मुगल काल से जुड़ी है। ये इलाका मुगलों के शाही जुलूसों, पारंपरिक खान पान और पुरानी दिल्ली की तहजीब की गवाही देता है। जहां चांदी और इत्र के लिए दरीबा कला, तो वहीं किताबों के शौकीनों के लिए नई सड़क, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भागीरथ पैलेस और विवाह सामग्री के लिए किनारी बाजार इसके प्रमुख ऐतिहासिक हिस्से हैं। लटकते बिजली के तारों, ताजी बनी कचौड़ियों की खुशबू और गलियों में फैली कई हवेलियों के बीच ये जगह अपने आकर्षण से मंत्रमुग्ध कर देती है। वहीं यहाँ की तंग और संकड़ी गलियों के बीच बसी दुकानों में रोजाना करोड़ों का वारा न्यारा होता है, जहाँ से गुजरने के लिए बचते बचाते पहुँचना होता है।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग और सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद दिल्ली में और पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है कि पुराने इलाकों का क्या उपाय किया जाए। ऐसे इलाके जो तंग हैं, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा है, जहां पर रिहायशी इलाकों में बहुत तंग इलाके हैं, वहां कैसे मजबूती दी जाए, वहां आगे के लिए क्या प्लान बनाया जाए। हम यहां चांदनी चौक पहुंचे हैं और चांदनी चौक के एशिया के सबसे बड़े बुलियन मार्केट कूचा महाजनी में। कूचा महाजनी यहाँ के तंग इलाकों में से एक है। सैकड़ों साल पुरानी इमारतें हैं जिनमें छोटे छोटे खोखों में करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन अब समय की जरूरत यह है कि इसे रिडेवलप कैसे किया जाए, इसे मजबूत कैसे किया जाए और साथ ही जो विरासत है उसको सहेज कर कैसे रखा जाए। तो ऐसे में आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं, आप भी चलकर एक बार देखें कि इलाके की हालत क्या है। कंधे से कंधा छिल रहा है, आदमी से आदमी टकरा रहा है। आइए आप भी चलिए हमारे साथ।
0: यह है चांदनी चौक का कूचा महाजनी इलाका। तारों का मकर जाल ऐसा कि कोई भी चकरा जाए और शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी इसे बारूद के ढेर में बदल सकती है। हालांकि इसी के चलते यहां की कई दुकानों को सील किया जा चुका है, लेकिन ये इलाका अभी भी विकास से दूर है।
1: हम यहां पर पहुंचे हैं कूचा महाजनी के उस इलाके में जिसे आप बारूद का ढेर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर तारों का ऐसा जाल है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी इन सारे लोगों की के कारोबार पर, जान पर कितनी आफत कर सकती है। सूरज की रोशनी यहाँ आती नहीं और हम उस जगह खड़े हैं जहाँ बहुत सारी दुकानें सील हुई हैं। वो किस लिए हुई हैं आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पर सारे बिजली के मीटर लगे हैं और इनमें तारों का ऐसा जाल बिछा है कि क्या तो इंटरनेट का जाल भी इसके आगे फेल है। अब इसमें कहाँ किस समय कौन सी चिंगारी आ जाए। और यहाँ सबसे ज्यादा बहुत सारी दुकानें सील हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 20 दुकानें यहाँ पर सील हुई हैं। तो हम बात करें यहाँ के दुकानदारों से कि यहाँ मुश्किलें क्या हैं और किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। रिडेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है इसको भी एक बार हम देखते हैं कि इनसे दुकानदारों से बात करें कि वो आखिर क्या सोल्यूशन उनके जहन में क्या है। जो स्थिति है यहाँ की वो तो बहुत ही खतरनाक है,
2: आप देख ही रहे हैं,
1: तो वो तो दिखाई पड़ रहा है
2: जी।
1: तो ऐसे में दुकानदारों का क्या मानना है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए?
2: सॉल्यूशन तो अल्टरनेट डेवलपमेंट, कोई मार्केट ऐसी हो जिसमें साधन संसाधन पूरे हों। अब ये तो चारों तरफ से आप देख ही रहे हैं, ऊपर हाल ये सील इसी वजह से हुई है। तो डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का जो इनको शिफ्ट कर सके।
1: ये तो चूंकि पुरानी पुराना एरिया है, एक तरह की विरासत भी है, सैकड़ों साल के मुगलों के जमाने से यहाँ पर, तो इसको कैसे संरक्षित रखा जाए और नया इंतजाम क्या किया जाए? तो दुकानदारों को क्या लगता है?
2: दुकानदारों को ये लगता है हमको सेफ साइड कोई जगह मिले जहाँ एनवायरमेंट, अब यहाँ तो हवा भी आने के दम वो नहीं है, हर तरह से दिक्कत है। एक रास्ता है ये,
1: ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बहुमंजिला इमारत बन जाए? और
2: पास तो बहुत है ना, यहाँ लैंड तो है ही।
1: अच्छा।
2: अब जैसे ओमैक्स बनाए, लैंड तो है, अब पीपीपी मॉडल के जरिए से उनको डेवलप कराया जाए, वो तो गवर्नमेंट का काम है, लैंड की कमी नहीं है भाई। टाउन हॉल भी है और भी जगह है, उनको डेवलप कराएं।
1: अब ये तो इमारतें बन सकती हैं,
2: क्यों नहीं, क्यों नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं। अब ओमैक्स तो बनाई है ना, 4.5 एकड़ में ओमैक्स तो बनाई है।
1: यानी दुकानदारों का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किया जा सकता है इलाके को, क्योंकि जमीन की कमी नहीं है, कमी है तो इच्छा शक्ति की। वो इच्छा शक्ति अगर हो तो इन सारे लोगों को निश्चिंतता से काम करने का मौका भी मिले और लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, यानी चांदनी चौक में ही उन्हें बिजनेस के अवसर मिल जाए, ग्राहकों को भी एक ही जगह सारी चीजें मिले। अब हम देखते हैं कि कहाँ कौन सी जगह किस तरह से लोगों ने विकसित की है और आगे उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। आइए हमारे साथ।
0: हालांकि चांदनी चौक में कभी कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, दिल्ली मेट्रो की तो बात ही छोड़िए, जिसने दुकानदारों और खरीदारों के लिए यहां आना जाना सुविधाजनक और आसान बना दिया है। दशकों से विकास की राह देख रहा चांदनी चौक के इस इलाके को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है, जिसके लिए यहाँ के व्यापारियों को अदालत में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।
1: दिल्ली का पिन कोड नंबर 6 यानी दिल्ली 6 ऐसा इलाका जहां विरासत आधुनिकता के साथ कदम ताल करती है, तो हमने विरासत का हिस्सा देखा, अब हम आधुनिकता की तरफ आए हैं और यहां उस इलाके में जहां चांदनी चौक नए सिरे से डेवलप हो रहा है और इसे पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और कंजेस्टेड इलाके जो तंग इलाके हैं वहाँ से लोगों को इधर इस तरह के माहौल में बसाया जा रहा है ताकि जो दिल्ली के पास पुरानी ज़मीन है उस ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जा सके, विरासत को आधुनिकता का जामा पहनाया जा सके। संजय भार्गव जी हमारे साथ हैं जो यहाँ के पूरे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। किस तरह का डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ विरासत भी है, सदियों पुरानी विरासत है जिसको सहेज के रखना आवश्यक है, और दूसरी तरफ समय की ज़रूरत है कि फिर से उसे मजबूत और रीडेवलप किया।
3: सर, ये दिल्ली 6 शाहजहाँ ने बनाया था, उसके नाम पे जब भी शाहजहाँ रखा बाद रखा है। 1911 में ब्रिटिशर्स ने इसकी सड़क बनाई थी और ये इतना पुराना ऐतिहासिक शहर है क्योंकि जो इट हैज़ ये अपना एक लाइफ से ओवरलिव कर गया है और यहाँ पे इस टाइम इतनी हालत ख़राब है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से, पुरानी बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी आपने देखा वहाँ पे साउथ दिल्ली में जो कांड हुआ, तो ये तो दिल्ली, तो कितने जजेस ने बोलते थे हमेशा कोर्ट्स में कि ये तो दिल्ली जो है ये चांदनी चौक जो एटम बॉम्ब पे खड़ा हुआ है, ये किसी दिन भी कोई बड़ा जलजला आएगा तो सब नीचे आ जाएगा। तो नाउ द नीड इज़ एक तो रीडेवलपमेंट होना चाहिए था इसका, मास्टर प्लान 2021 में इन्होंने इसके लिए 3 साल के विद इन दी मास्टर प्लान इन्होंने रीडेवलपमेंट प्लान आना चाहिए था, MCD आज तक नहीं लाई है। उस चक्रों में यहाँ पे बिल्डिंग प्लान पास नहीं हो सकते, फिर भी नजायज सब हो रहा है। आप देखोगे 4-4, 5-5 मंजिले बिल्डिंग खूब बन रही हैं, तो ये तो एकदम एटम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है।
0: हाल ही में टाउन हॉल और आसपास के क्षेत्रों को ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है ताकि इसकी मूल विरासत सुरक्षित रहे और विकास कार्य भी चलता रहे,
1: इतिहास को भी प्रिजर्व रखा जाए और विकास भी हो। तो कैसे इतिहास और विकास साथ साथ?
3: सर, यहाँ पे ग्रेड 1, A, B, C की काफ़ी सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देके बाकी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग हैं उनको रीडेवलपमेंट करना चाहिए कमर्शियल के हिसाब से, क्योंकि अब रेजिडेंशियल तो यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो इट कैन बी अ बिगेस्ट, इट इज़ वर्ल्ड दुनिया भर का सबसे बड़ा सेंटर है, कमर्शियल सेंटर। यहाँ पे आप एक सुई से लेके और हवाई जहाज तो नहीं मिलता, बट बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो पूरा शादी के लिए एक तो बहुत फेमस है। अब आप पीछे देखें ओमेक्स मॉल है, ये हमारी एक रिट में हम लोग ने बनवाया इसको, जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस रविंदर भट्ट की मेहरबानी है। यहाँ पे एक डिप्लेटेड बिल्कुल टूटी फूटी पार्किंग होती थी जिसको मैंने सन 1980 में तेजेंद्र खन्ना LG से उनसे अप्रूवल लिया था, उसके बाद तक नहीं बनी। फिर वो जस्टिस मुरलीधर वगैरह उन्होंने कहा कि जी PPP में इसको बनाओ, तब ये PPP में ये ओमेक्स तैयार।
1: ये तो दुकानदार बता रहे हैं, यहाँ पर आने वाले लोग क्या सोचते हैं? तो
4: सर,
1: उस इलाके में ज़्यादा बढ़िया लगता है या इधर, चूँकि उधर थोड़ा इतिहास तो है लेकिन ख़तरा भी बहुत है, ऊपर से तारों का जंजाल ऐसा है, इंटरनेट का जाल भी फैले वहाँ पर।
4: सर, सत्य निकेतन में मेरी बहन रहती है और मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन जिस दिन बिल्डिंग गिरी वहाँ पे हम लोग बहुत डर गए, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी सब पैनिक कर गए। मैं चाहता हूँ कि पूरे इलाके का रीडेवलपमेंट हो, इवन चांदनी चौक हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ी मार्केट है सर, यहाँ का भी रीडेवलपमेंट होना चाहिए।
0: ऐसे में बड़ा सवाल है कि चांदनी चौक में विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाए और यहाँ की तंग गलियों से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ली जाए। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अमेरिका के न्यू मेक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून उत्सव अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा 2026 धूमधाम से जारी है। आज इस उत्सव का दूसरा दिन है और इस दौरान आकाश में तैरते सैकड़ों गुब्बारों के इस मनमोहक दृश्य को लाइव देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग न्यू मेक्सिको पहुंच रहे हैं। आप भी देखिए।
6: रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा है आसमान। नील गगन पर अलग अलग रंगों और डिजाइनों वाले होटल गुब्बारों की उड़ान का ये नजारा बेहद शानदार है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू मेक्सिको में चल रहे अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टा की है। यहाँ सिर्फ पारंपरिक गुब्बारे ही नहीं बल्कि अलग अलग आकार वाले विशेष बैलून भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें गाय जैसा दिखने वाला और मशहूर स्मोकी बेयर की झलक दिखाने वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। न्यू मेक्सिको में गुब्बारों के उत्सव की शुरुआत तड़के खास ड्रोन लाइट शो के साथ हुई। इस शो में हॉट एयर बलून, न्यू मेक्सिको के स्टेट बर्ड ग्रेट रॉडनर, चिली पेपर और मैक्सिकन थीम वाली अनोखी आकृतियां नजर आईं। इसके बाद शुरू हुई गुब्बारों में हवा भरने की तैयारी। जब एक एक कर विशाल बैलून जमीन पर आकार लेने लगे तो देखते ही देखते पूरा फिएस्टा पार्क रंगों से भर गया। सूरज उगने के साथ ही सुबह करीब 7 बजे शुरू हुए इस महोत्सव का सबसे मनमोहक वह पल था जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून एक साथ आसमान की ओर उठने लगे और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से ढक गया हो। इस नजारे को देखने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा पार्क पहुंचे। इस बैलून महोत्सव की शुरुआत सन 1962 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी और अब ये दुनिया के सबसे बड़े बैलूनिंग फेस्टिवल में शुमार हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक इस बार 500 से ज्यादा बलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार 9 दिनों का ये इंटरनेशनल बलून फिएस्टा 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और बलूनिंग के शौकीनों को एक बार फिर से अनूठी यादें संजोने का मौका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है
14: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
5: देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ी, कहीं सज रहे हैं पंडाल तो कहीं प्रतिमाओं की सजावट, बंगाल में बनी प्रतिमा की इंग्लैंड तक डिमांड। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण, भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन।

0: भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन परिवार के साथ की तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। वृंदावन की तर्ज पर बिहार के बेगूसराय में राधा कृष्ण नौका विहार महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, फूलों की पंखुड़ियों से सजा सरोवर। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे के सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख। एशिया के लिए $5 प्रति बैरल सस्ता हुआ कच्चा तेल, सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती की, भारत के लिए भी तेल खरीदना सस्ता।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: तो चलिए शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं शक्ति उत्सव की तैयारी के साथ। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व अब बेहद करीब है और इसी हफ्ते से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, यानी माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ऐसे में कहीं माँ की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं दुर्गा पूजा पंडालों को सजाने और संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है, तो ये रंग भी आपके सामने आगे रखेंगे। तो वहीं देश के कई हिस्सों में मौसम खुशगवार है और माहौल भी शानदार है, मॉनसून की वापसी हुई है तो पहाड़ों में पर्यटन को भी पंख लग गए हैं। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आवाजाही काफी तेज हो गई है, तो वहां भी आपको आगे लिए चलेंगे। इसी बीच एशियन गेम्स के चैंपियंस का स्वागत भी हो रहा है, कामयाबी के रंग बिखेर कर घर लौट रहे खिलाड़ियों का फैंस दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं, जोरदार स्वागत से ये चैंपियंस भी बेहद उत्साहित हैं। तो किस खिलाड़ी का कैसे हुआ स्वागत ये भी आपको आगे दिखाएंगे। वहीं फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, अजय देवगन की ये फिल्म 200 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है और तीसरे दिन भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी। इसके अलावा आपको चाइना के चेंगडू लिए चलेंगे, जहां पर इन दिनों रातों में अब रंगीन रोशनी और परंपराओं के नाम है, कहीं जगमगाते लैंटर्न लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं आसमान में सजे विशाल किरदार और पारंपरिक प्रस्तुतियां माहौल को खास बना रही हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 9 बड़ी खबरें। क्रिकेट की दुनिया में गब्बर के नाम से जाने जाने वाले शिखर धवन अपनी पत्नी के साथ तिरुमाला मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से पहले वे सुप्रभातम सेवा में शामिल हुए। दर्शन के बाद वैदिक विद्वानों से रंगना युकूल मंडपम में धवन को वेद आशीर्वाद दिया, तो वही मंदिर के अधिकारियों ने पारंपरिक श्रीवारी रेशमी वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया और उन्हें तीर्थ प्रसाद दिया। देश भर में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इस बार माँ दुर्गा की पूजा का अलग ही रंग नजर आएगा। यहाँ के मूर्तिकार माता की आराधना के अवसर पर मोबाइल के गैर जरूरी इस्तेमाल पर सामाजिक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने मोबाइल सुर नाम की राक्षस की आकृति बनाई है। मोबाइल सुर का मॉडल वाराणसी में कचहरी इलाके के पूजा पंडाल में स्थापित होगा। रामनगरी अयोध्या में भी माँ दुर्गा की मूर्तियों को तैयार करने का काम अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उत्सव शुरू होने से पहले मूर्तिकार दिन रात काम कर रहे हैं ताकि पंडालों में स्थापना के लिए मूर्तियों को समय पर तैयार किया जा सके। यहाँ कोलकाता से आए कारीगरों की टीम प्रतिमाएं बनाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल में बनी माता की मूर्तियों को डिमांड अब विदेशों तक पहुंच गई है। यहां पूर्वी बर्धमान में कालना के हटगछा गांव के कलाकार की बनाई गई मूर्ति इस साल इंग्लैंड भेजी जा रही है। 5 किलो वजन वाली 28 इंच ऊंची ये मूर्ति खास पैकेजिंग से इंग्लैंड भेजी जाएगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में नंदन कानन चिड़ियाघर में 11 नई जानवरों की प्रजातियों के लाए जाने के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चिड़ियाघर में लाए गए नए प्रजातियों में जेब्रा, कंगारू, मकाऊ बर्ड शामिल हैं और इन नए जानवरों और पक्षियों को देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। रोजगार के मोर्चे पर गुड न्यूज है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। भर्ती रैली आज से लेकर 23 अक्टूबर तक BIG एंड सेंटर रुड़की में आयोजित हो रही है। अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिलों के उम्मीदवार पात्र होंगे। 7 जिलों में चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी शामिल हैं। अजय देवगन की दृश्यम 3 का फिल्म प्रेमियों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई और फिर पहले वीकेंड पर शानदार कलेक्शन और अब रिलीज के बाद पहले रविवार को भी इस फिल्म धमाकेदार आमदनी हासिल करके नेट कलेक्शन में 200 करोड़ के क्लब की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 61 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और इसके साथ ही भारत में ये फिल्म अब तक 176 करोड़ के पार नेट कारोबार कर चुकी है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अमेरिका में चल रहे सतरंगी बलून मेले की। अमेरिका के न्यू मेक्सिको का आसमान सतरंगी रंगों से सराबोर हो उठा, तो वहीं एल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा के दूसरे दिन दर्जनों हॉट एयर बलून्स ने एक साथ उड़ान भरी। इस दौरान आसमान में एक से बढ़कर एक अनूठे और आकर्षक गुब्बारे तैरते हुए नजर आए। और अब देखिए पेरिस में आयोजित एक खास फैशन परेड का नजारा। यहाँ मॉडल्स की जगह अलग अलग अट्रैक्टिव अटायर में डॉग सजे हुए नजर आए। दुनिया भर में मशहूर सॉसेज वॉक इवेंट पर तरह तरह के कॉस्ट्यूम से सजे डॉग्स ने सबका ध्यान खींचा। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सॉसेज वॉक का आयोजन हुआ और इसका उद्देश्य छोड़े गए या बुरे बर्ताव का शिकार हुए डॉग्स को बचाने और उनकी देखभाल के लिए फंड इकट्ठा करना है।

शक्ति स्वरूपा महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की उपासना का पर्व अब बेहद करीब है। बस चंद दिनों बाद 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, यानी माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नवरात्र के साथ ही देश भर में आस्था और भक्ति का रंग भी चढ़ने लगा है। कहीं माँ की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं दुर्गा पूजा पंडालों को सजाने और संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में माता के स्वागत की तैयारियां भव्य तौर पर जारी है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है तो वहीं कोलकाता, पूर्वी बर्धमान समेत कई जगहों पर मूर्तिकार माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। त्योहार के करीब आते ही मिट्टी और रंगों को जीवंत आकृतियों में ढालने का काम तेज हो चुका है और खास बात यह है कि इस साल माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं पर ज्यादा जोर है। अयोध्या से लेकर अकोला तक माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही है। काशी में भी नवरात्र को लेकर खासा तैयारियां की जा रही हैं। देश भर में कुछ इस तरह से शक्ति उत्सव की तैयारी की जा रही है। जगह जगह पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। खासतौर से पश्चिम बंगाल में भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है।

0: देश भर में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। कहीं माता के प्रतिमा के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं भव्य पंडाल सजने लगे हैं। हर तरफ भक्तों के मन में उमंग और उत्साह है, माहौल आस्था और श्रद्धा से लबरेज है। इसी के साथ देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जैसे जैसे पूजा के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तैयारियों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इस बार माँ दुर्गा की पूजा का अलग ही रंग नजर आएगा। यहाँ के मूर्तिकार माता की आराधना के अवसर पर मोबाइल के गैर जरूरी इस्तेमाल पर सामाजिक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने मोबाइलासुर नाम के राक्षस की आकृति बनाई है।
1: तो इस बार का ये जो थीम है, जो बच्चे आजकल के बच्चे आपके घर में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो खाना खाने के लिए पढ़ने के लिए हमेशा जो कि मोबाइल के संबंध जी के हैबिचुअल हो गए हैं उनसे उनको बच्चों को दूर करने के लिए ये समझ लीजिए विजुअलाइज दिखाने के लिए ये विजुअल कि देखिए बच्चों ये गलत चीज है, ये समाज में एक समझ लीजिए दर्शन देने के लिए बच्चों के लिए ऐसा बनाया जा रहा है।
0: मोबाइलासुर का मॉडल वाराणसी के कचहरी इलाके के पूजा पंडाल में स्थापित होगा। माँ दुर्गा उसका संहार करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक शो के माध्यम से इसे दर्शाया जाएगा।
2: जो मोबाइलासुर आप लोग देखे हैं, जैसे ही मतलब दुर्गा माता उनका वध करेंगी उसी समय फिर ये बच्चा को दर्शाया जाएगा रोते हुए। और उनके अकॉर्डिंग जो बालक आप लोग देखे हैं उनका ये जैसे वो है जैसे माँ बोल सकते हैं उनको भी दर्शाया गया, मतलब ये मना करेंगी कि मत चलाओ।
0: अब देखिए तस्वीरें अजमेर की, जहां मूर्तिकार माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। त्योहार के करीब आते ही मिट्टी और रंगों को जीवंत आकृति में ढालने का काम तेज हो गया है। यहां माँ दुर्गा की खास किस्म की इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई जा रही है।
3: मूर्ति में क्या है, पानी में डाल दोगे तो एक आधा घंटा का अंदर पूरा हो जाएगा। और इसका अंदर घास है, पटिया, लकड़ी, बांस, टुकड़ी मिट्टी में बना था।
0: देश के तमाम इलाकों में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं पश्चिम बंगाल की पारंपरिक डिजाइन की तर्ज पर बनाई जाती है। वहीं बंगाल में बनी माँ की मूर्तियों की डिमांड अब विदेशों तक पहुंच गई है। यहाँ पूर्वी वर्धमान में कालना के हटगाछा गांव के कलाकार तापस पाल की बनाई हुई मूर्ति इस साल इंग्लैंड भेजी जा रही है। 5 किलो वजन वाली 28 इंच ऊंची ये मूर्ति खास पैकेजिंग में इंग्लैंड भेजी जाएगी। तापस पाल पारंपरिक शैली से लेकर नए और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली मूर्तियां बनाते हैं। इस साल इन्हें 20 मूर्तियों के ऑर्डर मिले हैं।
4: এটা যেরাম বড় দুর্গা প্রতিমা হয় মাছের মুজি আছে আপনার খড় আছে দড়ি আছে মাটি আছে যেরাম বড় প্রতিমা হয় সেভাবেই ছোট প্রতিমাটা করা আছে। ছোট প্রতিমাটা এটা 8 দিন লেগে যাচ্ছে প্রায়।
0: पारंपरिक शैली में बनी दुर्गा की ये मूर्ति मुख्य रूप से पुआल और मिट्टी से तैयार की गई है। अन्य कामों के साथ साथ इस मूर्ति को बनाने में 7 से 8 दिन लगे और अभी भी कुछ काम बाकी है। काम 24 घंटे चल रहा है। एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर कलाकार की बनाई एक मूर्ति पसंद आई, इसीलिए उन्होंने सीधे इनसे संपर्क करके प्रतिमा भिजवाने का अनुरोध किया। इनका परिवार इससे बेहद खुश है।
5: खूब विदेश जाते खुशी खुबी भालो लागजे। अमर नाम बिलनाथ पाल।
6: शहर शहर भक्तों को इंतजार है आदिशक्ति माँ दुर्गा, जगदम्बा, रेणुका, सप्तशृंगी और शारदा देवी की घट स्थापना का। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ महाराष्ट्र के अकोला में भी नवरात्रि का ये उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। सार्वजनिक मंडलों में माँ की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। अकोला के कुंभरवाड़ा में कलाकार दिन रात माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर 1 फीट से लेकर 25 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार की जा रही।
7: शारदीय नवरात्र उत्सव को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर पंडाल में देवी माँ की मूर्ति विराजमान करनी है, उसकी घट स्थापना करनी है। उससे पहले कलाकार जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सुंदर 3.5 शक्तिपीठों में एक रही नांदेड़ जिले की रेणुका माँ, जो जिसकी आप देख रहे हो कि ये है माँ तुर्जा भवानी की प्रतिमा, जिसको अभी कलाकार जो है वो रंगोपन कर रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले हर कलाकार जो है हर प्रतिमा को आखिरी रूप देने में लगा हुआ है। और सबसे अहम बात ये है कि देखिए ये माता रेणुका की ये सुंदर ये प्रतिमा है और इसको अभी कुछ देर पहले ही रंगोपन किया है। तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हो कि कलाकार लगभग जो है आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं। ये कलाकार जो है माता रानी के हाथ में मेहंदी निकाल रहे हैं, उन्हें डिजाइनिंग कर रहे हैं। किस तरह से देखिए माता रानी की ये सुंदर सुबक मूर्ति जो है वो पहला कलरिंग का हाथ इस पर चढ़ चुका है। अब इस पर जो है बारीकी नक्शी काम करने का काम ये दोनों कलाकार लड़कियां करते नजर आ रहे हैं। माँ का ये सुंदर रूप जो है वो आप देख सकते हो कि माँ आदिशक्ति का ये सुंदर रूप और इस रूप को और श्रृंगार करने के लिए उस पर नक्शी काम करने के लिए ये कलाकार हर संभव कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
8: मेहंदी लगा रहे हैं और हम उनको श्रृंगार करते हैं, हम उनका छोटे छोटे काम करते हैं।
7: और क्या क्या करते
8: हैं? पेंटिंग करते, श्रृंगार करते, उनको उनका तैयार करते रहते हैं।
7: अभी भक्तों में भी जो है घोड़ लगी है कि अब माता रानी का जो विराजमान होने का समय है वो जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे कलाकारों में अपनी कलाकारी और भक्तों में जो है एक उत्साह और एक शक्ति जरूर यहाँ पर निर्माण होती नजर आ रही है। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला।
6: तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियों के साथ ही उत्सव की रौनक भी बढ़ने लगी है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, पूजा पंडालों को खास थीम पर सजाया जा रहा है और कारीगर दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा के आगमन से पहले कैसी है तैयारियों की रौनक।
0: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का उल्लास अलग ही होता है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के केशवपुर की है। यहाँ के गढ़ सोनापोता में 18 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की आराधना की परंपरा है। बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 500 साल से दुर्गा पूजा में 18 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा भी पूजी जाती है। वैसे तो मंदिर में प्रतिमा स्थापित है, लेकिन पंडाल में भी स्थापना के लिए माता की 18 भुजाओं वाली मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
9: গীতা অষ্টমী থেকে তারপর দিন থেকে কল্পারম্ভ, তারপর দিন থেকে মানে কল্পারম্ভ যে শুরু হয় ওই দিন থেকে আপনার যত মায়ের আমাদের মায়ের যে আঁকা থাকে ওই পুজো এক একদিন হয়, আরতি হয়, চণ্ডীপাঠ হয়।
0: वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस बार अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है। कलाकारों की मेहनत से विशाल पंडाल अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। आयोजकों के मुताबिक पंडाल के निर्माण में 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। पंडाल की भव्यता को देखते हुए इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस के सामने सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की चुनौती भी रहेगी।
10: না আমরা মেনলি সেফটি সিকিউরিটির আসপেক্ট যেটা আছে ওটাই দেখছি, আর সঙ্গে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের কি রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো কমপ্লাই করা হয়েছে কিনা আমরা দেখছি।
0: पंडालों से लेकर वर्कशॉप तक कलाकारों और मूर्तिकारों की अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। इसके कारण देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। दुर्गापुर से अनिल गिरी, पूर्वी वर्धमान से सुजाता मेहरा और वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए आपको दिखाते हैं लोक संस्कृति और लोक कलाओं के रंग। उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव धूमधाम से शुरू हो चुका है। इसमें 15 राज्यों के कलाकार और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। इनके लिए ये उत्सव अपनी कला की नुमाइश के साथ साथ दूसरे इलाकों के लोगों से मेलजोल का भी खास अवसर है।
11: ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच बांसुरी और बीन की धुनों पर थिरक रहे ये लोग, लोक संस्कृति और नृत्य का मजा ले रहे लोगों की झलक दिख रही है हर ओर। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की है, बल्कि देश के और भी इलाकों की लोक संस्कृति का शानदार संगम दिख रहा है। असल में यह मौका उत्तराखंड आदि रंगोत्सव के आगाज का है। जहां देश की संस्कृति

0: लेकिन तभी भी हम संस्कृति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम संस्कृति के साथ हैं, वरना तो इन लोगों को गर्मी लग रही है।
1: इस महोत्सव में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक के 15 राज्यों की लोक संस्कृति की झलक पेश की जा रही है। तमाम राज्यों से आए कलाकार यहां अपनी कला के रंग बिखेर रहे हैं। मौसम और माहौल भले ही अलग है, लेकिन इन्हें यहां आकर खुशी बहुत हो रही है।
0: हम सिक्किम से आए हैं, मेरा नाम भूमिका है, और उत्तराखंड पहली बार आने से मुझे बहुत खुशी लग रहा है। लाइक बहुत सारी कम्युनिटी हम देख रहे हैं, और हमने जो ड्रेस पहना है वो मगर कम्युनिटी का है। उत्तराखंड पहले बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे सिक्किम में उतना ज्यादा गर्मी नहीं, पर यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: इस मेले में उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों के पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट को भी पेश किया जा रहा है, जिसमें कपड़े हैं, हाथ से बने सजावटी सामान, मसाले और खाने पीने की सामग्रियां भी हैं। सुदूर इलाकों में गांव के छोटे कारोबारियों को यहां अपने प्रोडक्ट पेश करने का मौका मिला है।
0: हमारे यहाँ लहसुन का मिर्च का प्लस बल्ला पेड़े का और बड़र का, ये सब तरह का चाह हम बिना केमिकल के बनाते हैं, जो कि शुद्ध सरसों का तेल वगैरह घर के मसाले, ना कि मार्केट का कोई मसाला यूज करते हैं, ना कोई केमिकल यूज करते।
1: संस्कृति का ये मेल एक ही जगह पर कई राज्यों के कलाकारों और दस्तकारों के मिलने का मंच बन गया है, जहाँ संस्कृतियों के मेल के साथ सबको अपने कारोबार को भी बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है।
0: उत्तराखंड देखने के लिए आया तो अच्छा कैसा लगता है, यहाँ का लोग कैसा है, हम लोग को क्या लगेगा, ऐसा हम लोग को मैंने कोई सोल्यूशन लेने के लिए आया है, और थोड़ा बिजनेस भी ले गया है साथ में।
2: मैं कलकत्ता से हूँ, कांथा वार हैंड एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मेरा काम है, तो मेरे साथ बहुत सारे लेडीज जुड़ा हुआ है, जो लेडीज गांव में रहते हैं, जो शहर में नहीं आ सकते वो गांव में बैठ के हमारे लिए काम करते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराती हूँ उनको, ट्रेनिंग कराने के बाद उनको मैं प्रोडक्ट देता हूँ, वो खुद बनाते हैं हाथ की कढ़ाई, और उसी को प्रमोट करने के लिए हम आगे आते हैं एग्जीबिशन में।
1: आदि रंग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के भव्य रोड शो से हुआ। ये महोत्सव पहले देहरादून में होता रहा है, अब पहली बार खटीमा में 3 दिन के लिए इसका आयोजन किया गया है, तो स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजेश छाबड़ा, खटीमा, गुड न्यूज टुडे।
3: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अपनी पत्नी के साथ तिरुमला मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से पहले वे सुप्रभातम सेवा में शामिल हुए। दर्शन के बाद वैदिक विद्वानों ने रंगनायकुल मंडपम में धवन को वेद आशीर्वाद दिया, और वहीं मंदिर के अधिकारियों ने पारंपरिक श्रीवारी रेशमी वस्त्र और तीर्थ प्रसाद दिया। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं चैंपियंस का स्वागत कैसे किया गया।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।

0: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, कहीं सज रहे हैं पंडाल तो कहीं प्रतिमाओं की सजावट, बंगाल में बनी प्रतिमा की इंग्लैंड तक डिमांड। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण, भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन। भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, परिवार के साथ की तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। वृंदावन की तर्ज पर बिहार के बेगूसराय में राधा कृष्ण नौका विहार महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, फूलों की पंखुड़ियों से सजा सरोवर। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे के सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख। एशिया के लिए $5 प्रति बैरल सस्ता हुआ कच्चा तेल, सऊदी अरेबिया ने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती की, भारत के लिए भी तेल खरीदना सस्ता हुआ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जापान के आईची नागोया में हुए एशियन गेम्स 2026 का कल भव्य समापन हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक नीरू ढांडा रही और नीरू ने 20वें एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और 1 टीम सिल्वर मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में धूम मचाकर वतन लौट रहे मेडलिस्ट का शानदार स्वागत किस तरह से किया गया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा पहुंची एशियन गेम्स की मेडलिस्ट सीमा कुमारी का भव्य स्वागत की तस्वीरें आपको बता दें, उनके स्वागत के लिए जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। अपने घर पहुंची सीमा कुमारी के स्वागत में परिवार के लोग बेहद खुश नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस शानदार पल को यादगार बनाया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई जहां रेसलर दीपक पुनिया का शानदार स्वागत किया गया। वहीं पुणे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुरलीधर मोहोल ने एयरपोर्ट पर पदक वीरों का स्वागत किया। आर्चरी में पहली बार मेडल दिलाने वाले सूबेदार धीरज का शानदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं मेडलिस्ट की जिन्होंने गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स जीते हैं। भारत की झोली में ये मेडल्स लाए हैं उनकी ये तस्वीरें किस तरह से स्वागत किया गया है, कैसे जीत का जश्न मनाया गया है, फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है और लगभग पूरा शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ा हुआ दिखाई दिया।
1: पहली तो ये खुशी थी कि अपने देश के लिए हम लोग मेडल ला पाए और जिस हिसाब से आर्चरी टीम ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया वो मतलब बहुत बढ़िया ही काम था और ऊपर से यहाँ पे जो सेलिब्रेशन हुआ है वो उस आनंद को द्विगुणित कर देता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एविएशन मिनिस्टर भी आए थे तो और ज़्यादा खुशी है। मेरे घर वाले आए, सारे कोचेस आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रही है मेरे को।
2: बहुत अच्छा लगा, जिस चीज़ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे वो हम कर पाए तो हम सबको बहुत अच्छा लगा।
3: कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रही थी?
2: मैं आर्चरी तो मैं 8 साल से करती हूँ। बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी उनको जितना उन्होंने हमें सपोर्ट किया।
4: बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे रिसीव होते आने के बाद एंड ऐसे मन करता है कि और मेहनत करे और देश का तिरंगा लहराते रहे। और मैं इस मौके का ये बोलना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी के वजह से ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाया एंड इंडियन आर्मी के वजह से ही हमारा तिरंगा लहरा पा रहे हम लोग। इस चीज़ के लिए मैं ASI इंडियन आर्मी MOW सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और आगे भी इंडियन आर्मी का सारे एथलेट्स का जॉब ही ये होता है कि अपना देश का तिरंगा तो को ऊँचा लहराते रहे एंड आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो LA के लिए भी वही काम रहेगा एंड जय हिंद।
0: जापान के आईची नागोया में हुए एशियन गेम्स में कई मायनों में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। कुल 85 मेडल्स के साथ भारत चाइना जापान और दक्षिण कोरिया के बाद मेडल टैली में चौथे स्थान पर है। देखिए 21 गोल्ड के साथ इंडियन एथलीट्स ने एशियन गेम्स में कैसे कामयाबी की सुनहरी चमक बिखेरी।

0: एशियन गेम्स के 20वें पड़ाव पर भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। आइची नागोया 2026 एशियन गेम्स में 21 गोल्ड के साथ इंडियन एथलीट्स ने एशियन गेम्स में एक बार फिर अपनी धाक जमाई। सुनहरी कामयाबी की इस फहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 17 साल की कुमकुम मुहोड ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ येजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मोहोड, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की जोड़ी ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला और भारतीय तीरंदाजों ने एक दो नहीं पूरे 3 गोल्ड जीते। क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश बंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के मुताबिक प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिलाया। शूटिंग में नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वहीं कमानजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात यह है कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया, तो वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच दिया। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और आइची नागोया 2026 एशियन गेम्स भारतीय खेलों के लिए अहम पड़ाव साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एशियन गेम्स में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह। दिल्ली एयरपोर्ट पर इनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई नजर आई। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का भी परिवार ने वेलकम किया। हैदराबाद पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा की भी वतन वापसी की शानदार तस्वीरें सामने आईं और शानदार स्वागत किस तरह से किया गया। अब ये खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिसका पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाने के बाद ये खिलाड़ी वापस आ चुके हैं। वतन वापसी के वक्त कैसे शानदार तरीके से स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें आपके साथ। और अब बात करते हैं फिल्म दृश्यम 3 की। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। अजय देवगन की इस फिल्म ने तीसरे दिन भी फिल्म में मजबूत पकड़ बनाए रखी है। उम्मीद है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना लेगी।
2: जिस कहानी ने पिछले 11 सालों से दर्शकों को अपनी सीट पर बांध कर रखा, अब उसका फाइनल चैप्टर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। अजय देवगन की दृश्यम 3 का फिल्म प्रेमियों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई, फिर पहले वीकेंड पर शानदार कलेक्शन और अब रिलीज के बाद पहले रविवार को भी इस फिल्म ने धमाकेदार आमदनी हासिल करके नेट कलेक्शन में 200 करोड़ के क्लब की ओर कदम बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 61 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इससे पहले शनिवार को यानी दूसरे दिन फिल्म ने 53.5 करोड़ की कमाई की थी, जबकि ओपनिंग डे पर भारत में इसका कलेक्शन था 62 करोड़ रुपए। इसके साथ ही भारत में ये फिल्म अब तक 176 करोड़ के पार नेट कारोबार कर चुकी है। इस तरह फिल्म दृश्यम 3 अब नेट कलेक्शन के मामले में 200 करोड़ के क्लब से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये पहले ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सैग्निल की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन में भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 212 करोड़ के करीब रहा। वहीं इस अवधि में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 273 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इस फिल्म में एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक को चकमा दे देता है। और अब विजय सालगांवकर की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, जिसे पहले दिन गांधी जयंती की छुट्टी होने का पूरा फायदा मिला, लेकिन फिल्म की कमाई की असली तस्वीर दूसरे दिन सामने आई। 2 दिनों की कमाई के मामले में फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रिलीज होते ही कमाई के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। खास बात यह है कि दृश्यम 3 ने सिर्फ 2 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 95 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। यह अजय देवगन के 35 साल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है। ये उनके करियर में सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई। कुल मिलाकर दृश्यम 3 साल 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म बन चुकी है। इससे पहले धुरंधर 2 ने 4 दिन में 466 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि एक बात थोड़ी हैरान करने वाली रही, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कुछ कमी आई, लेकिन तीसरे दिन इसने फिर रफ्तार पकड़ी और बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना रखी है। फिल्म का तूफान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि विजय सालगांवकर की ये आखिरी कहानी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं सैर सपाटे की। मौसम में बदलाव हुआ है और मॉनसून की वापसी हुई है, तो पहाड़ों में पर्यटन को जैसे पंख लग गए हैं। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आवाजाही काफी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में टूरिज्म में तेजी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
2: इन दिनों खुशनुमा मौसम पहाड़ों में सैलानियों के मन की मुरादें पूरी कर रहा है। ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी की है। मौसम सुहावना है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ ठंडी हवाओं और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई परिवार के साथ वादियों का आनंद ले रहा है तो कोई दोस्तों के साथ यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो बना रहा है। खास तौर से माल रोड के इलाके में चहल पहल बढ़ गई है।
3: जयपुर में तो आप जानते हैं भयंकर गर्मी पड़ती है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बेहतरीन मौसम है यहाँ का। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कश्मीर घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें। और मसूरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, इसीलिए इसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है।
4: बात करें अगर वेदर की तो बहुत खूबसूरत वेदर है और ठंडा मौसम है, जैसे हमें वहाँ पे उस टाइप का वेदर नहीं मिल पाता है जैसा यहाँ पर है। और खूबसूरती तो है ही पहाड़ों की, इसको क्या ही बोला जाए।
2: लंबे वीकेंड की वजह से पिछले दिनों मसूरी में सैलानियों की तादाद काफी बढ़ गई है और पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार हो गया है। टूरिज्म सेक्टर को इससे काफी फायदा है क्योंकि शहर के होटल और गेस्ट हाउस करीब 80 से 90 फीसदी तक फुल बताए जा रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती चहल पहल से माल रोड, कुलड़ी बाजार और लाइब्रेरी बाजार में रौनक बढ़ गई है।
5: 70-75% ऑक्यूपेंसी हमारी एक हफ्ते पहले से ही बुक्ड थी, तो ऐसा नहीं था कि हमारे को बहुत ज्यादा लास्ट मिनट के लिए होल्ड ऑफ करना पड़ा। बट हमने लास्ट मिनट के अंदर भी काफी अच्छी मूवमेंट देखी मसूरी में और काफी अच्छा क्राउड, अच्छा सिस्टम एक बना रहा, एक ट्रैफिक अच्छे से मैनेज होता रहा और गेस्ट जितने भी आए दे ऑल वेंट वेरी हैप्पी।
2: बारिश थमी और मौसम खुला तो उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन ने भी जोर पकड़ लिया। बाबा केदार धाम पर भी इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति और रुद्रप्रयाग प्रशासन के सामने भीड़ को काबू करने और श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन की सुविधा देना बड़ी चुनौती है। हालांकि सुगमता से दर्शन करने के दावे किए जा रहे हैं।
6: मंदिर समिति द्वारा स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, केदार सभा के साथ आपसी संबंध के साथ साथ साथी पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाए जा रहे हैं। आंशिक रूप से कुछ परेशानियां हो रही हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में लगातार श्रद्धालुओं को किस प्रकार से एक बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी सुविधाएं दे सके, इस पर भी विशेष रूप से मंदिर समिति के साथ साथ समस्त जितने भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी यहाँ पर विद्वजन तीर्थपुरी समाज है, सभी के द्वारा विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है।
2: बाबा केदार के दर्शन में सहूलियत हो और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए श्रद्धालुओं से प्रशासन की गाइडलाइंस के पालन का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां के पहाड़ों में भी इन दिनों सैलानियों की तादाद काफी बढ़ गई है। खास तौर से पिछले 3 दिन लंबे वीकेंड के कारण बड़ी संख्या में सैलानी धर्मशाला और मैक्लोडगंज पहुंचे। खास तौर से यहां के त्रिउंड ट्रैक पर खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए ट्रैकिंग रूट पर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं।
7: जाम की स्थिति से निपटने के लिए पर्यटकों को असुविधा न हो, वाहनों को ज्यादा देर स्ट्रगल न करना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और लगातार हमारे अधिकारी सड़कों पर हैं। मैक्लोडगंज में भी एकाएक टूरिस्ट की आमद बढ़ गई है, काफ़ी संख्या में लोग त्रिउंड ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज़रूरी सुरक्षा व्यवस्था मानकों के तहत जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उन्हें अपनाएं, और मैक्लोडगंज शहर में भी व्यवस्था बनाई जा रही है ट्रैफिक, और ज़रूरत के अनुसार हम ट्रैफिक डाइवर्ट भी कर रहे हैं।
2: सैर सपाटे का सीजन शुरू होते ही कांगड़ा के तमाम इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है, लिहाजा पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ये इलाके सैलानियों से गुलजार रहने वाले हैं। मॉनसून और कुदरत की मेहरबानी है तो हिमाचल के मनाली में भी सैलानियों की अच्छी तादाद देखी जा रही है। खिली हुई धूप के बीच पहाड़ों की हरियाली का दीदार करने और मौसम का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसका असर टूरिज्म के लिए अच्छा माना जा रहा है।
8: ड्यूरिंग मॉनसून इस बार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग का इस बार इतना कैलमिटीज और उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टिल हमारी फिर भी HPTDC का या टूरिज्म की जहाँ तक मैं बोलूँ हमारी 30-40% ऑक्यूपेंसी रही, जो कि वैसे भी ड्यूरिंग मॉनसून कम रहती है अदरवाइज। तो बाकी धीरे धीरे जो हमारा सेप्टेम्बर में जो है बिजनेस 50-60 के आसपास पहुंच गया, तो अभी मतलब लास्ट आपका जो लास्ट सितंबर भी काफ़ी अच्छा हम लोग का गया, 70-80% उसमें ऑक्यूपेंसी रही, और अभी जो है फर्स्ट से जो है ऑलमोस्ट मतलब 80-100% ऑक्यूपेंसी टूरिज्म में चल रही है।
2: हिमाचल की वादियों में गाड़ियों की लंबी कतारें ये साफ बता रही हैं कि राज्य में पर्यटन कारोबार एक बार फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। सैलानियों की भारी आमद से घाटी में टूरिज्म को पंख लग गए हैं। भीड़ की वजह से लोगों को कुछ परेशानी होती है, लेकिन अगर ट्रैफिक के इंतजाम चुस्त और दुरुस्त हो तो दूर दूर से आने वाले लोगों को इन पहाड़ी वादियों में सुकून से वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। सोलन से राजेश शर्मा, धर्मशाला से पूजा शर्मा, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जंगल का राजा भी किसी जानवर से डर सकता है, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जो आपको दंग कर देगी। ये तस्वीर है सरिस्का की, जहां पर एक भैंस का सामना बाघ से हुआ तो बाघ रुका नहीं, आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पलट कर भाग निकला। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बाघ ने भैंस को देखा तो भैंस ने भी उसे देख कर वो डरी नहीं, बल्कि उसको और घूरने लगी। ये देख कर जंगल का राजा डर गया और वापस उल्टा घूमते हुए जंगल में भाग गया। बताया जा रहा है कि आसपास मौजूद गांव वालों ने ये वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। सरिस्का का जंगल पर्यटकों के लिए ये खुल चुका है और देसी विदेशी पर्यटक भी यहां पर सफारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में रोजाना बाघों के नए वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा वीडियो है जो हैरान कर देने वाला है। यूं तो दुनिया भर में कई तरह की फैशन परेड्स देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक बेहद क्यूट फैशन परेड का नजारा, जहां पर पेरिस की सड़कों की रैंप में तब्दील नजर आईं, लेकिन मॉडल्स की जगह अलग अलग अट्रैक्टिव अटायर से सजे हुए नजर आए डॉग्स।

0: फैशन की राजधानी कहलाने वाले पेरिस की सड़कें इस बार डैक्शन डॉग्स की फैशन परेड से गुलजार हुई। दुनिया भर में मशहूर सॉसेज वॉक इवेंट पर तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में सजे डॉग्स ने सभी का ध्यान खींचा। धारियों वाली शर्ट और बेरेट टोपी पहनने से लेकर छोटे छोटे काउबॉय तक के रूप में सजे ये डॉग्स सबके आकर्षण का केंद्र रहे। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहने और पूंछ हिलाते इन डॉग्स ने देखने वालों का दिल जीत लिया। जहां हर आकार साइज और रंग के डैक्शन डॉग्स अपने मालिकों के साथ नजर आए। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत लंदन से हुई थी, जो धीरे धीरे पेरिस समेत दुनिया के अन्य शहरों में फैल गई। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सॉसेज वॉक का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य छोड़े गए बुरे बर्ताव का शिकार हुए डैक्शन डॉग्स को बचाने और उनकी देखभाल के लिए फंड इकट्ठा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको वक्त हो चला है इंस्टा स्टोरीज दिखाने का। उन कलाकारों की इंस्टा रील आपको दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए आप अल्पना बुच की फनी इंस्टा स्टोरी।
2: तुम कितना मेकअप लगाती हो?
3: क्यों, क्या हुआ?
2: अगर तुम इतने मेकअप के पैसे बचा लो तो तुम फरारी ले सकती हो।
3: तुम मेकअप लगाते हो?
2: नहीं।
3: फिर तुम्हारी फरारी कहाँ है?
4: पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया।
5: अरे फिर?
4: फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई, पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने।
5: कॉफी बना लो।
4: हाँ, अच्छा आदमी है यार।
1: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, कहीं सज रहे हैं पंडाल तो कहीं प्रतिमाओं की सजावट। पश्चिम बंगाल में बनी प्रतिमा की इंग्लैंड तक डिमांड। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण, भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन। भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, परिवार के साथ की तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। वृंदावन की तर्ज पर बिहार के बेगूसराय में राधा कृष्ण नौका विहार महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, फूलों की पंखुड़ियों से सजा सरोवर। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
15: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम भगवान सूर्य की बड़ी चमत्कारी स्तुति के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। क्या है इस स्तुति की महिमा और इसको करने के नियम क्या हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अक्टूबर 2026, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 11:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की। आदित्य हृदय स्तोत्र को सूर्य देव की बहुत प्रभावशाली स्तुति माना जाता है। क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र? आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन किया था। सूर्य के समान तेज पाने के लिए, सूर्य के समान तेजस्विता के लिए और युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज्यादा किया जाता है। इसके पाठ के कुछ नियम हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य की विशेष कृपा मिले, जीवन की मुश्किलों में विजय मिले, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि आपको हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनको इसका फायदा ज्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर राज्य पक्ष से गवर्नमेंट से कोई पीड़ा है, या अगर कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, तो आपको रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर लगातार आपको रोग परेशान कर रहे हों, लगातार बीमारियां हो रही हों, खास तौर से हड्डियों की या आंखों की समस्या हो रही हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो, पिता के साथ रिश्तों में दिक्कत हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आंखों की समस्या आपको गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से लाभ होता है। जीवन में कोई बड़ा काम है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस बड़े काम में सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रोज प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, परीक्षा में सफलता के लिए और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अच्छा रहेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं, कैसे इसका पाठ करना चाहिए। वैसे तो आप रोज प्रातः इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन रविवार को उषा काल में जब सूर्य एकदम लाल हो, जिस समय एकदम निकल रहा हो, उस समय इसका पाठ करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। आप चाहें तो रोज सूर्योदय के समय भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पहले सुबह उठकर के स्नान करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, इसके बाद सूर्य देव के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ के बाद सूर्य देव का ध्यान करिए और जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी स्तुति है भगवान से, वो कहिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ साथ अगर आप रविवार को नमक का सेवन ना करें तो इसके फायदे, इसके प्रभाव आपको जीवन में ज्यादा होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें, दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, विवाह तय हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य आपके स्वास्थ्य का स्वामी है, ओवरऑल कुल मिला जुला के सूर्य आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला ग्रह है, आपको स्वस्थ बनाने वाला ग्रह है। अगर जीवन में स्वास्थ्य की समस्या हर समय लगी रहती हो, कोई ना कोई सेहत की दिक्कत आपके साथ बनी रहती हो, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और प्रयास करने पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तब आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। जिस दिन आपकी कोई परीक्षा है, आपका कोई इंटरव्यू है जिसमें आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी विजय चाहिए, उस दिन प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जहां भी आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, अपने काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काम करने में सरलता होगी और सुविधा के साथ अच्छी तरह से आप काम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अक्टूबर 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, कहीं पर सज रहे हैं पंडाल तो कहीं प्रतिमाओं की सजावट, पश्चिम बंगाल में बनी प्रतिमा की इंग्लैंड तक डिमांड। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण, भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन। भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, परिवार के साथ तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की।

सुहावना मौसम पूरी कर रहा सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख। एशिया के लिए $5 प्रति बैरल सस्ता हुआ कच्चा तेल, सऊदी अरेबिया ने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती की, भारत के लिए भी तेल खरीदना सस्ता हुआ।

आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, खुले रहो खिले रहो पर दिमाग से खाली रहो। खुले रहो खिले रहो दिमाग से खाली रहो, और मेरे पागलो व्यस्त रहो पर मस्त रहो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप व्यस्त कितने हैं, व्यस्त तो चींटियां भी होती, उन्हें भी दिन भर काम होता, 6-7 बजे भी उनके काम बंद नहीं होते, लेन में चली जा रही, आपस में बात करती, चलो री भाई हरो 2 किलोमीटर और रहेगा। तो व्यस्त तो चींटियां भी हैं, व्यस्त रहो पर मस्त रहो, जो मस्त रहता है उसके पास समस्त रहता है। इसलिए हमें व्यस्त तो रहना है पर मस्त रहना है, हनुमान जी से यही सीखना। आज जब हम मेरा टाग है तो हम सोचने लगे हनुमान जी की कथा तो सुनाए पर चौपाई कौन सी ले। तब तक हम बैठे थे, कलाकार हमारे गंधर्व ये सब लोग आ गए, तब हमें एक चौपाई बहुत याद आई, उसी चौपाई के आधार पर हम 5 दिन हनुमान जी को केंद्रित करके कथा सुनाएंगे। और चौपाई बड़ी प्यारी है, सबको कंठस्थ है। आहा, मंगल मूर्ति मारुति, कौन कौन इस चौपाई को गाता है?

को खाली करना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी, बोलो। अरे जोर से बोलो। खारे पानी को खाली करेंगे तो मीठा पानी भरा जाएगा। उसी प्रकार मेरे पागलों, दिमाग में कुविचार भरे हैं तो पहले कुविचारों को निकालना पड़ेगा, तब सुविचार भरेंगे। कुविचार कैसे निकलेंगे? कथा है डिटर्जेंट। कथा में बैठोगे तो कुविचार निकलेंगे, सुविचार भरेंगे। सुविचार भरेंगे तो अमंगल हटेगा और मंगल हो जाएगा। यही काम हनुमान जी का है। हम नहीं कहते हनुमान जी के

हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के लिए लिखा मंगल मूर्ति मारुति नंदन, लेकिन बोले सुनो सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी मंगल तो करते हैं पर अमंगल हरते हैं। गिलास में खारा पानी भरा हो और मीठा पानी भरना हो तो क्या करना चाहिए? पहले खारे पानी

मंगल करने वाले हैं। क्या हनुमान जी मंगल करते? हाँ, स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगल के दिन को हुआ है। भैया बुरा ना मानना, मेरठ के पागलों, मंगल ग्रह पे जीवन हो या ना हो ये तो हमें पता नहीं है, पर जिंदगी में मंगल जरूर होना चाहिए। मंगल पे जीवन है क्या नहीं ये जरूरी नहीं है, पर तुम्हारी जिंदगी में अगर मंगल नहीं है तो मंगल ग्रह का जीवन किसी काम का नहीं है। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में मंगल चाहिए तो मंगल मूर्ति की सेवा करनी पड़ेगी। मंगल मूर्ति की भक्ति करोगे तो जिंदगी का अमंगल हट जाएगा और मंगल ही मंगल हो जाएगा। अच्छा एक बात और, हनुमान जी मंगल मूर्ति है, मूर्ति का मतलब स्वरूप। अच्छा, लेकिन मूर्ति खाली हो पर मंदिर ना हो तो फीकी लगती। तो हनुमान जी है मूर्ति पर मंदिर कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया,

ऐसे समझो कितनी अच्छी बात, नदी हो पर पानी ना हो, नदी हो पानी ना हो, क्या किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, सूर्य हो पर उजाला ना हो, तो क्या किसी काम का है? वायर डली हो पर करंट ना हो, तो क्या किसी काम का है? बोलो जोर से बोलो। घोड़ी हो मंडप हो पर लुगाई ना हो, तो क्या किसी काम का है? बोलो बोलो बोलो, है नहीं है ना। समुद्र हो पर उसमें ठहराव ना हो, भराव ना हो, लहरें ना हो, जल ना हो, तो क्या किसी काम का है? अच्छा, आदमी सुंदर हो पर नाक कटी हो, तो क्या वो चेहरा किसी काम का है? अच्छा, शरीर हष्ट पुष्ट हो, बॉडी बिल्डर एकदम देव बिल्डर, जे डोले सोले बने, लेकिन हार्ट बंद हो गया, तो क्या वो शरीर किसी काम का है? जिस प्रकार पानी के बिना नदी काम की नहीं है, पति के बिना पत्नी काम की नहीं है, गुरु के बिना शिष्य काम का नहीं है, ताप के बिना उजाले के बिना सूर्य काम का नहीं है, उसी प्रकार मेरे पागलो भक्ति के बिना जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। तो हनुमान जी कौन है?

हनुमान जी मूर्ति तो हो गए मेरे पागलों, पर मंदिर की जरूरत है। बोले मंदिर कौन है? बोले राम जी। जासु हृदय आगा, राम हनुमान जी के हृदय में अगर राम जी बैठते हैं तो राम जी के हृदय में हनुमान जी बैठते हैं। अब हनुमान जी मूर्ति हो गए, राम जी भवन हो गए, मंदिर हो गए, लेकिन एक जगह हनुमान जी कहते अतुलित बल धामम, हनुमान जी कहते हम मकान हैं, राम जी मकान के मालिक हैं, मेरे पागलो जोड़ा कितना अच्छा है। हनुमान जी का जन्म स्कंद पुराण के अनुसार मंगल को हुआ, इनका रूप भी मंगल करने वाला है, लेकिन ये जिनके दास हैं वो स्वामी भी मंगल भवन अमंगलहारी है। राम जी भी मंगल करने वाले हैं, वो भी मंगल करने वाले अमंगल हरने वाले। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। संगत का बड़ा प्रभाव है, तुम गुटखा खाने वालों के साथ में रहने लगना गुटखा सीख जाओ, तुम कुछ दिन बॉडी बिल्डर वालों के साथ में रहना अपने आप जिम जाने लगो, जिम नहीं भी जाओगे तो सुबह सुबह टहलने जाने लगोगे, तुम कुछ दिन जुआरियों के साथ में रहना अपने आप सट्टा लगाने लगोगे, तुम कुछ दिन ऐसी बहन जी के साथ रहना माता जो दूसरों की चुगली करती हो तुम्हें अपने आप आने लगेगी, और वही दिमाग में चलेगा, लगातार वही चलेगा। भैया गांव में एक जुआरी होता है पूरे गांव को जुआरी बना देता है, एक बीड़ी पीने वाला पूरे मित्रों को बीड़ी पिलाना कई बार सिखा देता। कुछ मित्र गंभीर भी होते हैं पर सब नहीं होते। ऐसे ही एक जगह घटना घटी, एक आदमी लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते बेचारे की नाक कट गई। अब नाक तो नाक, भाई कान कट जाए तो टोपा लगा लो, कपड़ा बांध लो। कोई पूछे क्या बात है, ठंडी लग रही है गर्मियों में, हाँ हमें लगती है, पर नाक कट गई अब क्या लगाओगे। अच्छा अब आज का जमाना होता तो मास्क लगा लेते, पुराना जमाना, नाक कट गई, नाक कटी बुरी लगे। अच्छा अच्छा अब ऐसा आदमी जहां भी जाए लोग भी बड़े बेचत, नक कटे चाचा आ गए, नक कटे चाचा इधर आ, नक कटे इधर आ, नक कटे बब्बा इधर आ, नक कटे भैया इधर आ। बड़ा हैरान। एक दिन लोगों ने, एक आदमी ने पूछा क्या बात है, एक बात बताओ तुम्हारी नाक कैसे कट गई। बोले अब ना पूछो। अब बोले नहीं नहीं बताओ बताओ, हमें तो बता ही दो, किसी को मत बताओ, हमें बताओ। बोले तुम किसी को बताओगे तो नहीं। अरे हम किसको बताएं। अच्छा किसी को कोई भी बात अपनी वायरल करवानी हो वो ये कह के जरूर कहना कि तुम किसी को बताना नहीं भाई क्या। हाँ तुम किसी को, हमने तुम्हें बता दी, किसी को ना बताना, फिर देखो तुम वो वाली बात जरूर नहीं रुकेगी, बाकी सब रुक जाएंगे पर वो ही वाली बात वायरल। बोले हमें तो बताओ हमें नाक कैसे कट गई। बोले इधर आ। बोले दरअसल गांव के बाहर जो मंदिर है हाँ, वहां शंकर जी ने हमें सपना दिया कि तुम्हें हमारे दर्शन करने हो तो रावण ने शीश काट के चढ़ाया था, तुम नाक काट के चढ़ाओ। तो वो बोला क्या तुम्हें शंकर जी मिले। अरे बोले मिले, ये देखो ये खड़े, ये है भोलेनाथ, है कुछ नहीं झूठ मूठ, ये देखो सांप लटका। अरे महाराज, तो उसे लगा बड़ी गजब बात, ए बगल में है भोले बाबा। तो आदमी को लगा, वो भी शंकर जी का थोड़ा मोड़ा भक्त था, बोले यार दर्शन तो हमें भी करने। बोले ऐसे तो होंगे नहीं, इसने मन में सोचा अपनी तो कटी है एक से भले दो सही। बोले ऐसे तो नहीं होंगे। बोले फिर, बोले चलो तुम भी काटो। वो गया मंदिर, उसने ली चाकू और ली काट के चढ़ा दी, और जैसे ही चढ़ाई खून बहने लगा। बोले हमें तो शंकर जी कहीं नहीं दिख रहे। बोले तुम किसी को मत बताना, हमें भी नहीं दिख रहे। आओ, आओ, आओ। बोले ना तुम बता लेना, हम हमें भी नहीं दिख रहे। बोले तो बड़े बेकार आदमी हो। बोले वाह हम अकेले थे, अब दो तो हो गए, तो दूसरा भी कम नहीं था, मेरठ का ही था। बोला पर दो क्यों, तीन कर लो। बोले कैसे, पड़ोस में रहते थे रम्मू चच्चा। बोले रम्मू इधर आ। हाँ तो उसने पूछा भैया पहले तो एक, अब दो दो लोगों की नाक कैसे कट गई। अरे बोले ऐसे, अरे बताना, अरे बता दो तो।
अरे बोले ए भोलेनाथ, ए जी खड़े जी आगे जी आगे, ए महाराज महाराज। अरे भाई कौन है, यहाँ तो कोई नहीं है। नाक काट के जो चढ़ाता है उसे शंकर जी दिखते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव ने नाक कटवा ली, पुरुषों की तो छोड़ो महिलाओं ने कटवा ली, महिलाओं की तो छोड़ो बच्चों ने कटवा ली। बोले क्या? बोले शंकर जी दिखेंगे और किसी को नहीं दे। पूरा गांव नक कटा हो गया, एक सिंगल आदमी नहीं बचा। जवान तो छोड़ा, बूढ़े बोले मर तो रही है, शंकर जी के दर्शन करके मरो। तो जो दो थे उनने बूढ़े पहले टारगेट करे, सब बूढ़ों की नाक कटवा दी। लोग बोले नाक, अगल बगल के गांव वाले आवे, भैया इस गांव में क्या है? तो जिसकी पहले नंबर पे कटी थी, बोले सबकी एक जैसी है, हमारी भर थोड़ी है, यहां सबकी एक जैसी ही है। ये संगत का बड़ा विचित्र प्रभाव होता है, तो संगत का बड़ा असर होता है, संगत के प्रभाव से सब बदल जाता। हनुमान जी की अगर हम संगत करेंगे तो भैया हमारी भी जिंदगी में राम जी की भक्ति आ जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर एक बात और,

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए रामबाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
9: देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। यूपी के झांसी में गरबा और डांडिया की प्रैक्टिस। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बढ़ी गरबा ड्रेस की डिमांड। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण। भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन। भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन परिवार के साथ की तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना। भगवान का मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ भी की। पहाड़ों में सुहाना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद। कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख। एशिया के लिए $5 प्रति बैरल सस्ता हुआ कच्चा तेल। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में की कटौती। भारत के लिए भी तेल खरीदना सस्ता।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: बिहार के बेगूसराय में श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत रंग। वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण नौका महोत्सव का आयोजन। नौका विहार उत्सव का आयोजन रत्नपुर के ऐतिहासिक महंत सियाराम दास सरोवर में किया गया। पूरे इलाके को वृंदावन जैसा रूप दिया गया। बंगलौर कोलकाता वृंदावन से 25 क्विंटल फूल की पंखुड़ियों से सजाया गया था पोखर। हजारों श्रद्धालु राधे कृष्ण के बोल पर झूमते दिखे। राधे राधे हरे कृष्ण के जय घोष से गूंजा इलाका। भजन पर हजारों श्रद्धालु हुए भाव विभोर। नवरात्र में माता रानी के भजनों पर थिरकने को तैयार है झांसी। ऐतिहासिक किले की तलहटी में महिलाओं ने शुरू की गरबा डांडिया की प्रैक्टिस। बड़ी संख्या में महिलाएं डांडिया की अलग अलग स्टेप सीख रही हैं। इस बार इंडो वेस्टर्न थीम पर जोर। 12 अक्टूबर को डांडिया नाइट का किया गया आयोजन। नवरात्र से पहले देश में बढ़ रही चनिया चोली की मांग। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चनिया चोली बनाने में जुटे कारीगर। थोक में आ रहे ऑर्डर। गुजरात में नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा आयोजन पर पुलिस की नजर। आयोजन स्थलों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष में फिर से उमड़ा लोगों का सैलाब। ब्रह्म कपाल में पिंडदान तर्पण करने के लिए देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित समाज के अनुसार पिछले 8 दिनों में 60,000 से अधिक श्रद्धालु ब्रह्म कपाल पहुंच चुके हैं। इस बार भीड़ पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन। सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम के तहत आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में सिंगापुर के उद्योगपति तथा कई क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। हरियाणा और सिंगापुर के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी कला प्रदर्शनी। यहां पर रंगों को कैनवास पर उतारने के लिए ब्रश नहीं बल्कि उंगलियों का किया गया इस्तेमाल। रंगों के अलग अलग लेयर्स टेक्सचर्स और उंगलियों से बनाए गए पैटर्न्स के जरिए कलाकारों ने बनाई सुंदर तस्वीरें। कहीं पर प्रकृति की झलक है तो कहीं पर रंगों के बीच बचपन की धुंधली तस्वीरें। गुजरात सरकार के आधुनिक कृषि उपकरण योजना से बदले दाहोद में किसानों के दिन। किसानों को उपकरण खरीदने के लिए मिल रही है सब्सिडी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ ने बीएसएफ वुलर अल्ट्रा रन के तीसरे एडिशन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। फिटनेस खेल की भावना युवाओं की भागीदारी और वुलर झील के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना वुलर अल्ट्रा रन का मकसद। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी। बांदीपुरा में बीएसएफ हेडक्वार्टर से शुरू हुई दौड़ वुलर वेंटेज पार्क में जाकर हुई खत्म। आयोजकों और अधिकारियों ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। इवेंट में 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर 10 और 5 किलोमीटर की कैटेगरी भी शामिल। जम्मू कश्मीर और दूसरी जगहों से आए धावक फिटनेस के शौकीन युवा और प्रतिभागी शामिल। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के नानकमता में चलाया गया स्वच्छता अभियान, सीएम धामी शाम। खटीमा में 3 दिवसीय रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया उद्घाटन। 18 राज्यों से पहुंचे जनजातीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा, हर ओर पारंपरिक कला के दिखेरा। खटीमा मुख्य चौक से आयोजन स्थल तक निकाला गया भव्य रोड शो, हनुमानंज की टीम ने भी सीएम धामी के साथ आदि रंगोत्सव में की शिरकत। सीएम धामी हनुमानंज के कलाकारों के साथ जौनसार भावर की ढोल दमाऊ टीम के साथ झूमते नजर आए। कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों को भी दिया गया मंच, सैकड़ों की संख्या में स्थानीय थारू जनजाति सहित अन्य समाज के लोगों ने लगाए स्टॉल। पहाड़ों के सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में हिल स्टेशन पहुंचे सैलानी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक चरम पर टूरिज्म। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़, बदले मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। विश्व प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़, बड़ी संख्या में मैक्लोडगंज भी पहुंचे सैलानी, खूबसूरत वादियों का दिखा दीदार। सैलानियों की रिकॉर्ड भीड़ देखकर खिले कारोबारियों के चेहरे, भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन सतर्क, पुलिस बल तैनात। हिमाचल के सोलन में सैलानियों का सैलाब, दिल्ली शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 80% से ज्यादा होटल बुक रहे। सुहाने मौसम का सैलानी आनंद ले रहे हैं, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़। पर्यटकों के आने से मॉल रोड, कुलड़ी बाजार और लाइब्रेरी बाजार में बढ़ी रौनक, व्यापारियों के चेहरे पर दिखी खुशी। बागेश्वर धाम आने वाली महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील, महिलाएं अकेली ना आए धाम। बाबा ने कहा महिलाएं स्वयं सतर्क सजग और सावधान रहें, अनजान लोगों पर ना करें भरोसा। एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर वतन लौटे पदक वीर, साथ ही एयरपोर्ट पर एथलीट्स का भव्य तरीके से हुआ स्वागत। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह हुआ शानदार स्वागत। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे, परिवार ने किया वेलकम। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले क्रिकेटर तिलक वर्मा क्रिकेटर भी वतन वापस लौटे और हैदराबाद पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। चंबा में एशियाई खेलों की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीमा कुमारी का जोरदार स्वागत, फूल माला पहनाकर किया गया अभिवादन। रेसलर दीपक पुनिया का दिल्ली में शानदार स्वागत, फैंस ने नोटों की माला पहनाकर किया वेलकम। गोल्फ टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली जर्जर की बेटी दीक्षा डागर का शानदार स्वागत, देश के लिए पदक हासिल करने को बताया ऐतिहासिक पहल। सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान अंतिम पंघाल का भी वतन वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत, बोले भविष्य में सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने की करेंगे कोशिश। ढोल नगाड़ों के बीच रेसलर सुनील मलिक का भव्य वेलकम, सुनील ने पुरुषों की 87 किलोग्राम किग्रो रोमन कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम रोशन किया। एशियन गेम्स में 2 मेडल जीतकर अपने होम टाउन जोलारपेट पहुंचे एथलीट विशाल, परिवार में खुशी की लहर। एशियाई खेलों में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली इशिका सबरवाल का भिवानी पहुंचने पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ, परिवार में खुशी की लहर। इशिका को खुली जीप में बैठाकर परिवार ने निकाला भव्य रोड शो, पहनाई गई फूल मालाएं और करेंसी नोट की मालाएं। स्थानीय लोगों ने नाचकर और ढोल नगाड़ों के साथ इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत का जश्न मनाया। हॉकी की गोल्ड मेडलिस्ट शिखा चौधरी का भी ग्वालियर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, पहनाई फूल मालाएं और खिलाई मिठाई। रविवार को जापान में 20वें एशियाई खेलों का हुआ भव्य समापन, खेल के मैदान पर दिखी युवा प्रतिभागी की चमक। 2030 में दोहा करेगा एशियाई खेलों का मेजबानी, समापन समारोह में मेजबान देश को सौंपा गया ध्वज। आईची नागोया में आयोजित भव्य समापन आयोजन में करीब 17,000 एथलीट और अधिकारी शामिल हुए। क्लोजिंग सेरेमनी में देखने को मिले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक, कई तरह की प्रस्तुतियां दी गई। एथलेटिक्स में युवा प्रतिभागियों का जलवा देखने को मिला, व्यवस्थाओं की भी हुई तारीफ। दिल्ली में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग में समापन समारोह में शामिल हुए खेल मंत्री आशीष सूद, दिल्ली में 5 स्टेडियम को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का किया ऐलान। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग का 8वां सीजन हुआ संपन्न, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था समारोह। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत, राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए पेश, सीएम मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में शामिल हुए। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना लक्ष्य, युवाओं को खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। यूपी के झांसी में गरबा और डांडिया की प्रैक्टिस। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बढ़ी गरबा ड्रेस की डिमांड। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण। भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन। भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन परिवार के साथ की तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना। मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। पहाड़ों में सुहाना मौसम पूरी कर रहा सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद। कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पग। एशिया के लिए $5 प्रति बैरल सस्ता हुआ कच्चा तेल। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में की कटौती। भारत के लिए भी तेल खरीदना सस्ता।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शुरुआत करेंगे जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। दरअसल एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाकर देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का एयरपोर्ट पर ऐसा भव्य स्वागत हो रहा है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाए। ढोल नगाड़ों की थाप, फूलों की बारिश, लहराते तिरंगे के साथ भारत माता की जय की गूंज। अपने पसीने और मेहनत से देश को स्वर्णिम सफलता दिलाने वाले इन एथलीट्स का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा। परिजन गले लगकर भावुक हो रहे हैं तो पूरा देश इन नायकों पर गर्व महसूस कर रहा है। अपने घर चंबा पहुंची एशियन गेम्स की मेडलिस्ट सीमा कुमारी का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए जैसे पूरा शहर उमड़ गया, परिवार के लोग बेहद ही खुश दिखे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई जहां पर रेसलर दीपक पुनिया का शानदार स्वागत हुआ। पुणे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुरलीधर मोहोल ने एयरपोर्ट पर पदकवीरों का स्वागत किया और एशिया कप में लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतकर देश को गर्व का एहसास कराने वाले क्रिकेटर्स का भी भव्य स्वागत किया गया है। दिल्ली पहुंचे संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन का भी शानदार स्वागत हुआ। तो मुंबई एयरपोर्ट में कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे को परिवार ने रिसीव किया। जैसे जैसे खिलाड़ी अपने घर वापस लौट रहे हैं उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ रहा है।

0: ये महज जश्न नहीं, कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजो कर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे, साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान, दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। इन लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देख कर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोल कर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए एक गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028, बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही है उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो वहीं जापान के आइची नागोया में हुए एशियन गेम्स में कई मायनों में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। कुल 85 मेडल्स के साथ भारत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद मेडल टैली में चौथे स्थान पर है। देखिए 21 गोल्ड के साथ इंडियन एथलीट्स ने एशियन गेम्स में कैसे कामयाबी की सुनहरी चमक बिखेरी है।

0: एशियन गेम्स के 20वें पड़ाव पर भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। आइची नागोया 2026 एशियन गेम्स में 21 गोल्ड के साथ इंडियन एथलीट्स ने एशियन गेम्स में एक बार फिर अपनी धाक जमाई। सुनहरी कामयाबी की इस फहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। 17 साल की कुमकुम मुहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ येजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मोहोड़, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की जोड़ी ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला और भारतीय तीरंदाजों ने एक दो नहीं पूरे 3 गोल्ड जीते। क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वही पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश बंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के मुताबिक प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिलाया। शूटिंग में नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वहीं कमानजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात यह है कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया, तो वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच दिया। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और आइची नागोया 2026 एशियन गेम्स भारतीय खेलों के लिए अहम पड़ाव साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो एशियन गेम्स में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया और एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन, अर्षदीप सिंह, दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका स्वागत हुआ। स्वागत के लिए लोगों की भीड़ जुटी। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का परिवार भी वेलकम पे पहुंचा। क्रिकेटर तिलक वर्मा भी वतन वापस कर चुके हैं और वतन वापसी में शानदार स्वागत उनका भी किया गया। अब ये खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे, जिसका पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। हरियाणा के शॉटगन क्वीन ने शूटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। न सिर्फ एक बल्कि नीरू ने 2 गोल्ड अपने नाम किए और एक सिल्वर पदक भी हासिल किया है। जिंदगी के तमाम संघर्ष और उतार चढ़ाव के बावजूद इस मुकाम को हासिल कर नीरू ने देश की बेटियों के सामने एक मिसाल रखी है। इसी तरह का कारनामा सोनीपत की किरण पहल का है, जिन्होंने देश के लिए एक गोल्ड और एक सिल्वर पदक जीता। इन बेटियों की जीत से खुशी तो है ही, गर्व भी है।

0: एक और जीत की खुशी और दूसरी और खुशी के आंसू। जापान और चीन के बीच का फासला इस एक लम्हे में जैसे सिमट गया। परदेश में एक बेटी ने जो कीर्तिमान रचा है उस पर पूरा देश झूम रहा है, पर जो गर्व इस माँ को है उसे बयान नहीं किया जा सकता।
1: बहुत बहुत खुशी हुई मेरा जी। मेरी बेटी इतनी उच्च पुजारी मैं लेकिन बहुत खुशी हुई। ना तू खुश रहो बेटी।
2: ना बेटी किस्मत तो तेरी थी, तू एक मेरा घर में सोना जामी थी, लक्ष्मी जामी थी। मेरे तो चाहे तेरे जैसी चार बेटी और दे देता परमात्मा। मेरे बहुत खुशी थी, मैं बेटी चाहे चार और दे दी उनकी बहुत खुश हो जाती। मैं बेटी चार बेटी और हो जाती तो मेरा ऐसी ऐसी मैं तो मैं लड़की लड़कियों से चार गुना आगे है। मेरी बेटी जैसी बेटी सबका जामो। एक बेटी नहीं जामी थी, एक हीरा जामी थी। बेटी नहीं जामी थी, हीरा जामी थी। तुम्हारी बुआ जादो भी इस घर में हीरा जामी थी और तू भी हीरा जामी है।
0: एशियन गेम्स में भारत की निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। नीरू एशियन गेम्स की इंडिविजुअल ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फाइनल में 30 में से 28 सटीक निशाने लगाकर उन्होंने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही नीरू आशी और मनीषा की तिकड़ी ने टीम मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। नीरू ढांडा और कायनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम का गोल्ड मेडल जीतकर भारत का झंडा बुलंद कर दिया।
3: मैं समझती हूँ सर, अपने आप को कम एज में स्ट्रगल दे दिया भगवान ने और अपने आप को इम्प्रूव कर पाए आगे और लंबी लाइफ है अपना अच्छे करने के लिए सर। अच्छा लगा मतलब शुरू में ही मेरे को स्ट्रगल मिल गया और मैं अपने ऊपर काम कर पाई, इससे अच्छी चीज क्या होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गेम्स का मेडल मैटर करता है और इसके लिए खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है। एशियन गेम्स से ओलंपिक गेम्स से ये गोल रहते हैं हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो भी धीरे धीरे अपने गोल अचीव कर रहे हैं सर और अच्छा लग रहा है, खुद पे प्राउड फील कर पा रही हूँ यहाँ पे।
0: मौजूदा एशियन गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड जीतकर नीरू ने देश का जो मान बढ़ाया है उसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने नीरू की सटीकता और संयम की सराहना करते हुए लिखा कि देश गौरवान्वित है। जीन की ये बेटी नीरू भारतीय सेना में नायब सूबेदार है, लेकिन निशानेबाजी में ये मकाम एक लंबे संघर्ष की कहानी है। नीरू की शुरुआत किसी महंगी शूटिंग रेंज या फिर लाखों रुपए की विदेशी बंदूक से नहीं हुई। किसान पिता के पास एक साधारण दुनाली बंदूक थी जिससे टिन के डिब्बे पर नीरू बचपन से ही निशाना लगाया करती थी। हालांकि ट्रैप शूटिंग के लिए महंगे उपकरण, कारतूस, प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज और अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन नीरू ढांडा ने शुरुआत में उधार की बंदूक से शूटिंग की प्रैक्टिस की। बाद में नीरू सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई। एक निशानेबाज के रूप में उनके आगे बढ़ने में भारतीय सेना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बरसों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है। देश विदेश हर जगह नीरू की ही चर्चा है।
4: सुपर हाई लेवल पे फीलिंग है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ। अपने देश के लिए गोल्ड जीता है और नेशनल एंथम अपने देश का बजना मतलब मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। मेडल मेरी माँ को डेडिकेट करती हूँ सर और मेरे कोच को डेडिकेट करती हूँ और पूरे इंडिया को डेडिकेट करती हूँ। प्रिपरेशन हम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो प्रिपरेशन वैसे ही हम करते हैं, थोड़ा बैड वेदर में भी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल था। पर रहता है थोड़ा कंडीशन हर एक कंट्री का अलग रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी थी लेकिन मैंने अपने आप को काम रखा और अपने आप पे फोकस किया एंड देन गोल्ड आया सर।
0: सिर्फ नीरू का संघर्ष रंग नहीं लाया बल्कि इस माँ की तपस्या भी सफल हुई जो बेटी के फाइनल मुकाबले को टीवी पर नहीं देख सकी बल्कि उसी समय परिवार के लिए राशन की दुकान से गेहूं लेने गई थी और उनके हाथों में बीपीएल राशन कार्ड था।
2: कैसा रहा? बहुत अच्छी बात, बधाई हो दिल से। आज देख ले कह रही थी मेरी बेटी, बोला माँ छिकले की मीडिया पर बात कर कर खूब मीडिया आएगी अपने घर, चिंता मत कर।
0: दिलचस्प बात यह है कि मुकाबले के 10 दिन पहले नीरू फ्लू की वजह से भारत में अस्पताल में भर्ती थी और जब जापान पहुंची तो तैयारी के लिए वक्त ही नहीं मिला, लेकिन मुकाबले में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में कमाल ही कर दिया। एशियन गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, नीरू की ये उपलब्धि ये कीर्तिमान बेमिसाल है। लेकिन नीरू के साथ ही और भी बेटियां हैं जिन्होंने जापान में देश का मान बढ़ाया है। सोनीपत के इस घर में खुशियों की कोई सीमा नहीं। बेटी ने वो कर दिखाया कि पूरा परिवार गदगद है। ये घर है एथलीट किरण पहल का, जिन्होंने एशियन गेम्स के रिले इवेंट में गोल्ड और टीम इवेंट में सिल्वर जीत कर इतिहास रचा। बेटी से फोन पर बात करते हुए माँ की आंखें खुशी से डबडबा गई। एक साथ संघर्ष की न जाने कितनी कहानियां याद आ गई। एक गांव से शुरू हुआ किरण का सफर आसान नहीं था। पहले तो लड़कों के साथ खेलने और बात करने पर ही मनाही थी, लेकिन अपनी जिद के साथ किरण मैदान में लौटी। न कोई सपोर्ट न संसाधन, था तो सिर्फ जुनून।
5: बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, को खुशी का ओर नहीं है। इतना गोल्ड मेडल जीत का मैं बहुत खुश हुई हूँ। बहुत वो होया है, गांव का हम रोशन कर, बहुत संघर्ष करा है। संघर्ष तो उसके पास पता है जूते भी नहीं थे, उसके पास कोई भी साधन नहीं था। हमारे पास पैदल चल चल कर वो कर उसने इतना संघर्ष कर आज इतनी दूर तक पहुंच गई है। उसकी आपकी लगन थी खुद की, एक मैं तो खेल में वो करना चाहूँ, खेल करूँगी, तो खेल करना चाहूँ तो भाई कर लो। वो उसका सपना था पूरा कि मैं दूर तक पहुँचूँ, बढ़िया का नाम रोशन करूँ। बहुत जोरदार से स्वागत करेंगे उसका हम उसके इंतजार में।
0: ऐसे भी हालात बने कि पिता की बीमारी के दौरान प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी, लेकिन उसी दौरान वायदा किया कि ओलंपिक में मेडल जीत कर दिखाएंगी। पिता के निधन के बाद ये वायदा ही किरण के लिए प्रेरणा बना और नतीजा एशियन गेम्स में सामने आया।
6: बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ही प्यारा खुशी हो रही है। पूरे भारत हरियाणा का नाम रोशन किया उसने और आने के उसका इंतजार हो रहा है कब वो आएगी। अभी उसकी वीडियो कॉल पे उससे बात हुई थी तो उसकी टिकट आने के बाद पता चल जाएगी आज आएगी या कल आएगी, तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। रविवार को सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि टीवी पे देखें, हालांकि काम उनको पता ही था, पहले टाइम का थोड़ा इशू था कि 6 बजे का था पर 5:35 बज रही थी। मैंने अकेले ने देखी और जब जैसे गोल्ड जीता मैंने बम फोड़े तो सबको पता चला कि हाँ भाई टीम का गोल्ड मेडल लगाया है और उसने जीत की है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए परिवार ने बहुत संघर्ष किया है। उस टाइम पे कभी उसके पास जूते भी नहीं होते थे खेल के जाने के लिए खेल में, तो आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि उसने गोल्ड जीत के हमारा गांव का नाम और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है।
0: हरियाणा की इस गोल्डन गर्ल ने वो मुकाम हासिल किया है जिस पर किसी भी माँ बाप को गर्व होगा। दादी माँ और बहन के साथ पूरा परिवार आज किरण की कामयाबी पर नाज कर रहा है। गर्व इसलिए भी है क्योंकि इस बेटी ने अपनी मंजिल पाने के लिए जर्नल स्टोर पर 4,000 रुपए महीने की नौकरी तक की है।
7: तो उसका यही था कि भाई गोल्ड लेके आना है, हालांकि उसको इंडिविजुअल में लेके आना था पर किसी वजह से नहीं हो पाया। भाई हर बार नई बॉडी साथ देती है, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया था कि कुछ ना लेके आने से तो कुछ लेके आना ही बेटर होता है और कोई बात नहीं, नाम तो इंडिया का ही होना है, हमारे गांव का होना है, हमारा खुद का होना है, मेडल तो मेडल होता है हर सूरत में। तो उसने फिर रिले में अपनी जी जान लगा के और रिले में उसने गोल्ड मेडल जीता है।
0: किरण को निराशा भी मिली जब पेरिस 2024 ओलंपिक में वो पदक हासिल नहीं कर पाई, लेकिन किरण ने हौसला नहीं छोड़ा और अगली स्पर्धा पर ध्यान दिया और आज एशियन गेम्स में गोल्ड के साथ उन्होंने एक सपना पूरा कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज रिटर्न।
8: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
7: देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी, यूपी के झांसी में गरबा और डांडिया की प्रैक्टिस, गुजरात के सुरेंद्र नगर में बढ़ी गरबा ड्रेसेस की डिमांड। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण, भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन। दिल्ली एम्स के मरीजों के लिए राहत की खबर, अब 4 दिनों में हो सकेगा सीटी स्कैन और एमआरआई टेस्ट, वेटिंग लिस्ट से मिलेगी राहत। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख।
8: भदोही में सजा कालीन का महाकुंभ, पहले दिन कारपेट एक्सपो में पहुंचे 32 देशों के विदेशी खरीदार, 7 अक्टूबर तक चलेगा ये आयोजन।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर
8: बिहार के बेगूसराय में श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत रंग। वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण नौका महोत्सव का आयोजन किया गया। बेंगलोर कलकत्ता वृंदावन से 25 क्विंटल फूल की पंखड़ियों से सजाया गया पोखर। हजारों श्रद्धालु राधे कृष्ण के भजनों पर जमकर झूमे। नवरात्र में माता रानी के भजनों पर थिरकने की तैयारी। झांसी के ऐतिहासिक किले की तलहटी में महिलाओं ने शुरू की गरबा डांडिया की प्रैक्टिस। नवरात्र से पहले देश में बढ़ रही चनिया चोली की डिमांड। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चनिया चोली बनाने में जुटे कारीगर, थोक में आ रहे ऑर्डर्स। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष में फिर से उमड़ा लोगों का सैलाब। ब्रह्म कपाल में पिंडदान तर्पण करने के लिए देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु।
2: उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन। आज से लेकर 23 अक्टूबर तक BIG एंड सेंटर रुड़की में भर्ती रैली। अग्निवीर GT, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती रैली का आयोजन। गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिले चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के उम्मीदवार होंगे पात्र। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिए लोगों की समस्याओं से निपटने के आदेश। शिखर धवन ने अपनी पत्नी के साथ तिरुमला मंदिर पहुंचे, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में आए 11 नए जानवर। नई प्रजातियों में जेब्रा, कंगारू, मकाऊ बर्ड शामिल। देखने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक।
8: जम्मू कश्मीर के रियासी में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी, तस्वीरें सामने आई। गोमती का जलस्तर बढ़ने से लखनऊ में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने। बिगड़े हालात के चलते गोमती नगर रिवर फ्रंट को बंद किया गया। लखनऊ में सीएम के निर्देश पर भारी बारिश से प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने में जुटा है प्रशासन। राहत किट पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा। अजमेर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा मुसाफिर, GRP कांस्टेबल ने खींचकर निकाला उसको बाहर। CCTV में कैद हुई है पूरी घटना। यूपी के सहारनपुर में महिला किसान ने पेश की मिसाल। 2 बैग से शुरू किया मशरूम का कारोबार, आज 5,000 बैग्स और 20 लाख का टर्नओवर।
2: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर के दौरे का दूसरा दिन है सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सिंगापुर के उद्योगपति और कई क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। हरियाणा और सिंगापुर के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी कला प्रदर्शनी। यहां पर रंगों को कैनवस पर उतारने के लिए ब्रश नहीं बल्कि उंगलियों का किया गया है इस्तेमाल। रंगों के अलग अलग लेयर्स, टेक्सचर्स और उंगलियों से बनाए पैटर्न्स के जरिए कलाकारों ने बनाई सुंदर तस्वीरें। कहीं प्रकृति की झलक है तो कहीं रंगों के बीच बचपन की धुंधली तस्वीरें हैं। गुजरात सरकार की आधुनिक कृषि उपकरण योजना के बदले दाहोद के किसानों के दिन, तो वहीं किसानों को उपकरण खरीदने के लिए मिल रही है सब्सिडी।
8: दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंचे रणबीर कपूर। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ खिंचवाई तस्वीरें। फिल्म हनुमान अंशकर रिलीज के 59वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ रुपए के पार। अब नए अंदाज में दिखेगी अमर अकबर और एंथनी की कहानी। थ्री मंकी इस्लाम से अब्बास मस्तान की जोड़ी बनाएगी फिल्म को। कलापति विजय ने बेटे जेसन विजय की डेब्यू फिल्म सिग्मा को किया प्रमोट। फिल्म ने दो दिनों में ही बेहतरीन रिकवरी की। शाहिद कपूर की हिट सीरीज फर्जी 2 में युक्ति खरेजा की हुई एंट्री। मेकर्स ने उन्हें सीरीज में फीमेल लीड के तौर पर फाइनल किया।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
8: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: कैंची धाम में लगा श्रद्धालुओं का मेला। फिल्म हनुमान अंश के बाद लंबा वीकेंड पर बड़ी संख्या में बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंचे भक्त।
8: पहाड़ों में सुहाना मौसम पूरी कर रहा सैर सपाटे के सैलानियों की मुराद को कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख।
2: देशभर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। कोलकाता में कलाकार प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। बंगाल में बनी प्रतिमा की इंग्लैंड तक डिमांड है।
8: बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण किया जा रहा है।
2: भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन पत्नी के साथ दर्शन किए।

0: और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आस्था के सफर पर, जहां श्रद्धा और भक्ति के साथ पहाड़ों पर पर्यटन को खूब पंख लग गए हैं। नैनीताल में मौजूद बाबा नीम करौरी धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम कैंची धाम पहुंच रहे हैं। बीते दिनों तो 3 दिन के वीकेंड की वजह से कैंची धाम परिसर से लेकर सड़क तक लोगों से खचाखच भरा नजर आया, जिसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल भी हैं।
1: यूं तो कैंची धाम लंबे समय से शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता रहा है। नीम करौली बाबा के भक्त यहां ध्यान, जप और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खासकर हाल में आई फिल्म हनुमान अंश के बाद रिकॉर्ड दर्शन हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वीकेंड पर एक दिन में 27,000 से 30,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि वो फिल्म देखने के बाद यहां आए हैं। उधर हनुमान अंश का जलवा भी देश विदेश में कायम देखने को मिल रहा है। महज 2 करोड़ रुपए की बजट वाली ये फिल्म सिनेमाघरों में वर्ल्ड वाइड 420 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

0: नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच बसे बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सड़क से लेकर मंदिर तक श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है, जिसे देखो वही कैंची धाम की ओर खींचा चला आ रहा है। आस्था के इस महाकाफिला का रुख उस संत के धाम की ओर है, जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है, तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार, कोई उन्हें नीब करौली बाबा कहता है, तो कोई नीम करौली बाबा, कोई महाराज जी कहता है, तो कोई हांडी वाले बाबा। नीम करौली बाबा की कर्मभूमि कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले भी उमड़ती थी, लेकिन जब से बाबा नीम करौली महाराज के जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने पर्दे पर दस्तक दी है, तब से न सिर्फ इस धाम में श्रद्धालुओं की दिलचस्पी बढ़ी है, बल्कि रिकॉर्ड संख्या में इस धाम के दर्शन करने लोग भी उमड़ पड़े हैं।
1: जो प्रचार प्रसार तो नहीं बोल सकते, ये इनकी कृपा दृष्टि है जो सब लोगों पे बिखर रही है। अगर देखने जाए तो बाबा को किसी भी प्रचार और प्रसार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाबा अपने आप में ही एक प्रचार और प्रसार है। तो उनके लिए किसी के आवागमन मतलब उनको अपने आप में ही एक बोलते हैं कि हनुमान जी का अंश, ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, वो अपने आप में एक अनुभूति है। जो यहाँ पे आते हैं वही इस चीज को समझ पाते हैं।
0: आलम यह है कि कैंची धाम में भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में बड़ी तादाद युवाओं की भी है। कोई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहा है, तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार कैंची धाम पहुँच कर बाबा की भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना चाहते हैं।
2: अब कुछ भी बोलो मत, जो बाबा का चमत्कार है वही देखो और आगे आने वाली पीढ़ियों भी देखो कि जो अपना सनातन धर्म के अंदर जो चल रहा है उसी बात पे गौर करो।
3: काफी टाइम पहले से थी, बट अब जाके बाबा ने मौका दिया है अपने दर्शन करने का, देने का। और हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा रहते हैं। और आस्था तो जैसे अभी मूवी आई है उसके बाद मैंने सुनने को मिला है कि उसके बाद बहुत ज्यादा आस्था बढ़ गई है।
0: सड़क पर भारी संख्या में कतार में लगी इन गाड़ियों की मौजूदगी को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आस्था किस कदर उमड़ रही है। खासकर वीकेंड पर तो यहाँ मानो जन समुद्र ही उमड़ पड़ा। कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या पहले करीब 8 लाख थी, जो फिल्म के प्रभाव के बाद 3 गुना बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है। आम दिनों में रोजाना 4 से 5 हजार भक्त आते थे, अब 6 हजार के पार आने लगे हैं। वीकेंड यानी शनिवार रविवार को ये संख्या 15 हजार से 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुंच रही है। आलम यह है कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच जो सफर पहले 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाता था, भारी जाम की वजह से श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग रहा था। लोगों को जाम की तकलीफ से बचाने के लिए पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था।
4: नैनीताल और आसपास के स्थानों में वाहन अत्यधिक संख्या में पार्किंग नहीं है, तो आउटर एरियाज में जो पार्किंग स्थल हमारे डेजिग्नेटेड है वहाँ से सड़क के माध्यम से इन जगहों पे पर्यटकों को भेजा जा रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। गालीबाग और कालाढूंगी से भी अब वाहनों को आज ये निर्देशित किया गया है कि जिनकी बुकिंग है उनको अंदर ऊपर आने के साथ में ही आज और कल दुपहिया वाहन जो टैक्सी रेंटल बाइक्स है उनको भी आने के लिए मना किया गया है, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचे हैं दर्शन के लिए जैसी धाम में हो या नैनीताल आस पास के जगहों पर घूमने के लिए आ रहे हैं वो जाम में ना फंसे।
0: सोशल मीडिया की वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में कैंची धाम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों और जीवन दर्शन से जुड़ी कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई हनुमान अंश फिल्म ने इसमें और इजाफा कर दिया, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब देखिए, जाहिर सी बात है कि फिल्म हनुमान अंश की वजह से कैंची धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। तो वो भक्त तो कैंची धाम पहुंच ही रहे हैं जो बाबा नीम करौरी में पहले से आस्था रखते हैं। बड़ी बात यह है कि फिल्म की वजह से वो लोग भी बाबा के दर्शन को आ रहे हैं जिनके बारे में उनको कम पता था या फिर पता ही नहीं था पहले से। खैर, धाम में भीड़ नियंत्रित रहे इसके लिए हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने लोगों से अपील की है। क्या है वो अपील, आपको सुनाते हैं।
6: नमस्कार, जय सीताराम। मैं डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी और मैं हनुमान अंश फिल्म का डायरेक्टर हूँ। कैंची धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है इस वक्त और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे भीड़ जो है वो हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर यदि ऐसा है तो भी, और यदि ऐसा नहीं भी है तो भी, हमें सभी को जो भी हम कैंची धाम जाते हैं वहाँ पे हमें वहाँ की परिस्थिति का पता करके ही वहाँ पे जाना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे महाराज जी के और भी स्थान हैं, इसमें काकड़ी घाट है, उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर है। इसके अलावा अकबरपुर में जहाँ पे महाराज जी का जन्म स्थान है, वो स्थान वृंदावन जहाँ पे महाराज जी ने समाधि ली थी, और नीम करौली गाँव जहाँ पे महाराज जी ने अपनी उनकी तपस्या ली है, ये स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वहाँ पे कैंची धाम में जाने नहीं मिल रहा है तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे समय में यदि अगर कैंची धाम बहुत भीड़ है और घंटों की लाइन लगी है तो आप इन स्थानों पर भी जा सकते हैं और महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर महाराज जी व्याप्त हैं, इनफैक्ट महाराज जी आपके दिलों में भी व्याप्त हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी स्थिति ना हो पाए, आपके घर में बच्चे महिलाएं जो है वो वहाँ पे सफोकेट हो रही हैं, उनको जाम में फंसी हुई हैं लोगों के बीच।
5: वैसे देखा जाए तो नैनीताल में मौजूद बाबा नीम करौरी के धाम में ही सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं उमड़ रही, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पर्यटन को पंख लग गए हैं। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आवाजाही काफी तेज हुई है। आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में टूरिज्म में तेजी जारी रहने की उम्मीद है।
7: इन दिनों खुशनुमा मौसम पहाड़ों में सैलानियों के मन की मुरादें पूरी कर रहा है। ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी की है। मौसम सुहावना है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ ठंडी हवाओं और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। कोई परिवार के साथ वादियों का आनंद ले रहा है तो कोई दोस्तों के साथ यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो बना रहा है। खास तौर से माल रोड के इलाके में चहल पहल बढ़ गई है।
8: जयपुर में तो आप जानते हैं भयंकर गर्मी पड़ती है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बेहतरीन मौसम है यहाँ का। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कश्मीर घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें, और मसूरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, इसीलिए इसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है।
9: बात करें अगर वेदर की तो बहुत खूबसूरत वेदर है और ठंडा मौसम है, जैसे हमें वहाँ पे उस टाइप का वेदर नहीं मिल पाता है जैसा यहाँ पर है, और खूबसूरती तो है ही पहाड़ों की, इसको क्या ही बोला जाए।
7: लंबे वीकेंड की वजह से पिछले दिनों मसूरी में सैलानियों की तादाद काफी बढ़ गई है और पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार हो गया है। टूरिज्म सेक्टर को इससे काफी फायदा है क्योंकि शहर के होटल और गेस्ट हाउस करीब 80-90% तक फुल बताए जा रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती चहल पहल से माल रोड, कुलरी बाजार और लाइब्रेरी बाजार में रौनक बढ़ गई है।
10: 70-75% ऑक्यूपेंसी हमारी एक हफ्ते पहले से ही बुक्ड थी, तो ऐसा नहीं था कि हमारे को बहुत ज़्यादा लास्ट मिनट के लिए होल्ड ऑफ करना पड़ा। बट हमने लास्ट मिनट के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी मसूरी में, और काफ़ी अच्छा क्राउड, अच्छा सिस्टम एक बना रहा, एक ट्रैफिक अच्छे से मैनेज होता रहा, और गेस्ट जितने भी आए दे ऑल वेंट वेरी हैप्पी।
7: बारिश थमी और मौसम खुला तो उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन ने भी जोर पकड़ लिया। बाबा केदार धाम पर भी इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति और रुद्रप्रयाग प्रशासन के सामने भीड़ को काबू करने और श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन की सुविधा देना बड़ी चुनौती है। हालांकि सुगमता से दर्शन करने के दावे किए जा रहे हैं।
11: मंदिर समिति द्वारा स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, केदार सभा के साथ आपसी संबंध के साथ साथ साथी पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाए जा रहे हैं। आंशिक रूप से कुछ परेशानियां हो रही हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के निर्देशन में लगातार श्रद्धालु को किस प्रकार से एक बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी सुविधाएं दे सके, इस पर भी विशेष रूप से मंदिर समिति के साथ साथ समस्त जितने भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी यहाँ पर विद्वजन तीर्थभूमि समाज है, सभी की तरफ विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है।
7: बाबा केदार के दर्शन में सहूलियत हो और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए श्रद्धालुओं से प्रशासन की गाइडलाइंस के पालन का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां के पहाड़ों में भी इन दिनों सैलानियों की तादाद काफी बढ़ गई है। खास तौर से पिछले 3 दिन लंबे वीकेंड के कारण बड़ी संख्या में सैलानी धर्मशाला और मैक्लोडगंज पहुंचे। खास तौर से यहां के त्रियुंड ट्रैक पर खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए ट्रैकिंग रूट पर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं।
12: जाम की स्थिति से निपटने के लिए पर्यटकों को असुविधा न हो, वाहनों को ज्यादा देर स्ट्रगल न करना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और लगातार हमारे अधिकारी सड़कों पर हैं। मकलोडगंज में भी एकाएक टूरिस्ट की आमद बढ़ गई है, काफ़ी संख्या में लोग त्रियुंड ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज़रूरी सुरक्षा व्यवस्था मानकों के तहत जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उन्हें अपनाएं, और मकलोडगंज शहर में भी व्यवस्था बनाई जा रही है ट्रैफिक, और ज़रूरत के अनुसार हम ट्रैफिक डाइवर्ट भी कर रहे हैं।
7: सैर सपाटे का सीजन शुरू होते ही कांगड़ा के तमाम इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है, लिहाजा पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ये इलाके सैलानियों से गुलजार रहने वाले हैं। मॉनसून और कुदरत की मेहरबानी है तो हिमाचल के मनाली में भी सैलानियों की अच्छी तादाद देखी जा रही है। खिली हुई धूप के बीच पहाड़ों की हरियाली का दीदार करने और मौसम का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसका असर टूरिज्म के लिए अच्छा माना जा रहा है।
13: ड्यूरिंग मॉनसून इस बार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग का इस बार इतना कैलमिटीज और उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टिल हमारी फिर भी HPTDC का या टूरिज्म की जहाँ तक मैं बोलूँ हमारी 30-40% ऑक्यूपेंसी रही, जो कि वैसे भी ड्यूरिंग मॉनसून कम रहती है अदरवाइज। तो बाकी धीरे धीरे जो हमारा सेप्टेम्बर में जो है बिजनेस 50-60 के आसपास पहुंच गया, तो अभी मतलब लास्ट आपका जो लास्ट सितंबर भी काफ़ी अच्छा हम लोग का गया, 70-80% उसमें ऑक्यूपेंसी रही, और अभी जो है फर्स्ट से जो है ऑलमोस्ट मतलब 80-100% ऑक्यूपेंसी टूरिज्म में चल रही है।
7: हिमाचल की वादियों में गाड़ियों की लंबी कतारें ये साफ बता रही हैं कि राज्य में पर्यटन कारोबार एक बार फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। सैलानियों की भारी आमद से घाटी में टूरिज्म को पंख लग गए हैं। भीड़ की वजह से लोगों को कुछ परेशानी होती है, लेकिन अगर ट्रैफिक के इंतजाम चुस्त और दुरुस्त हो तो दूर दूर से आने वाले लोगों को इन पहाड़ी वादियों में सुकून से वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। सोलन से राजेश शर्मा, धर्मशाला से पूजा शर्मा, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने वूलर अल्ट्रा रन 3.0 मैराथन का भव्य आयोजन किया। 4 अक्टूबर को हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बांदीपोरा में BSF हेडक्वार्टर से शुरू होकर यह मैराथन खूबसूरत वादियों का दीदार करवाते हुए वूलर झील के किनारे खूबसूरत वूलर विंटेज पार्क पर समाप्त हुई। इस साल मैराथन की थीम सेव वूलर रन विद बॉर्डर मैन रखी गई थी, जिसका मुख्य मकसद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वूलर झील के संरक्षण का संदेश देना और युवाओं में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देना था।

0: फैशन की राजधानी कहलाने वाले पेरिस की सड़कें इस बार डैक्शन डॉग्स की फैशन परेड से गुलजार हुई। दुनिया भर में मशहूर सॉसेज वॉक इवेंट पर तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में सजे डॉग्स ने सभी का ध्यान खींचा। धारियों वाली शर्ट और बेरेट टोपी पहनने से लेकर छोटे छोटे काउबॉय तक के रूप में सजे ये डॉग्स सबके आकर्षण का केंद्र रहे। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहने और पूंछ हिलाते इन डॉग्स ने देखने वालों का दिल जीत लिया। जहां हर आकार साइज और रंग के डैक्शन डॉग्स अपने मालिकों के साथ नजर आए। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत लंदन से हुई थी जो धीरे धीरे पेरिस समेत दुनिया के अन्य शहरों में फैल गई। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सॉसेज वॉक का आयोजन हुआ जिसका उद्देश्य छोड़े गए बुरे बर्ताव का शिकार हुए डैक्शन डॉग्स को बचाने और उनकी देखभाल के लिए फंड इकट्ठा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चीन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन के चेंगदू में इन दिनों रातें रंगीन रोशनी और परंपराओं के नाम हैं। कहीं जगमगाते लैंटर्न लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं आसमान में सजे विशाल किरदार और पारंपरिक प्रस्तुतियां माहौल को खास बना रही हैं। नेशनल डे की छुट्टियों में ये नजारे लोगों के लिए यादगार बन गए हैं।
2: चीन के चेंगदू शहर में इन दिनों रोशनी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ चल रहे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लैंटर्न शो में रात का आसमान रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा रहा है। नेशनल डे की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग इस शो को देखने पहुँच रहे हैं। इस लैंटर्न शो में चीन की पुरानी कला और संस्कृति को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ शैंग शुंगदुई सभ्यता से जुड़े डिजाइन वाले लालटेन भी लगाए गए हैं। चू एम्ब्रॉयडरी यानी खास तरह की कढ़ाई से सजाया गया गलियारा भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। खूबसूरत लालटेन के बीच घूमते लोग तस्वीरें खींच रहे हैं और इस यादगार रात को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन इस शो का सबसे रोमांचक हिस्सा है पिघले हुए लोहे से होने वाली आतिशबाजी। कारीगर बेहद गर्म पिघले हुए लोहे को हवा में उछालते हैं और देखते ही देखते आसमान में सुनहरी चिंगारियों की बारिश होने लगती है। चिंगारियां कई परतों में फैलती हैं और ऐसा लगता है जैसे रात के आसमान में पेड़ों पर फूल खिल गए हों। इसीलिए इस प्रदर्शन को फायर ट्रीज एंड सिल्वर फ्लावर्स कहा जाता है। चेंगदू के एक और पुराने इलाके में भी नेशनल डे की छुट्टियों के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चेंगशियांग एंशियंट टाउन में आयोजित नाइट टूर गाला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रात के इस कार्यक्रम में पारंपरिक गीत और नृत्य ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम की सबसे खास चीज थी हवा में लटकती करीब 15 मीटर लंबी आयोयू मछली की आकृति। आयोयू चीन की एक पौराणिक जीव है जिसका सिर ड्रैगन जैसा और शरीर मछली जैसा बताया जाता है। रंग बिरंगी रोशनी में सजी ये विशाल आकृति रात के आसमान में बेहद शानदार दिखाई दी। चीन के चेंगदू में कहीं पारंपरिक नाच गाना हुआ तो कहीं पुरानी कला से जुड़ी चीजों के बाजार लगाए गए। कुल मिलाकर नेशनल डे की छुट्टियों में ऐसे कई कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमेरिका में चल रहे सतरंगी बलून मेले की। अमेरिका के न्यू मेक्सिको का आसमान सतरंगी रंगों से सराबोर हो उठा जब अल्बू कर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा के दूसरे दिन दर्जनों हॉट एयर बलून्स ने एक साथ उड़ान भरी। इस दौरान आसमान में एक से बढ़कर एक अनूठे और आकर्षक गुब्बारे तैरते हुए नजर आए। जहां पर कुछ गुब्बारे बीमा कंपनियों के एड से सजे हुए थे, वहीं कुछ का आकार एलियन के सिर जैसा था। यहां तक कि इंसानी दिमाग की शक्ल में बना एक विशालकाय गुब्बारा भी हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया जो नीचे मौजूद दर्शकों के लिए भारी आकर्षण का केंद्र रहा। इस ऐतिहासिक महोत्सव की शुरुआत साल 1972 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून इवेंट बन चुका है जिसमें लगभग 600 गुब्बारे हिस्सा लेते हैं। और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शक्ति उत्सव की तैयारी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी, दिल्ली के सीआर पार्क में तैयार हो रहा भव्य पूजा पंडाल, यूपी से गुजरात तक गरबा की प्रैक्टिस। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण, भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख। भदोही में सजा कालीन का महाकुंभ, पहले दिन कारपेट एक्सपो में पहुंचे 32 देशों के विदेशी खरीदार, 7 अक्टूबर तक चलेगा यह आयोजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: शक्ति स्वरूपा महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की उपासना का पर्व अब बेहद करीब है। बस चंद दिनों बाद 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, यानी माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नवरात्र के साथ ही देश भर में आस्था और भक्ति के रंग आप सबको दिखाई देंगे। कहीं माँ की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं दुर्गा पूजा पंडालों को सजाने और संवारने का काम भी चल रहा है।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में माता के स्वागत की तैयारियां भव्य तौर पर जारी हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोलकाता, पूर्वी बर्धमान समेत कई जगहों पर मूर्तिकार मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। त्योहार के करीब आते ही मिट्टी और रंगों को जीवंत आकृतियों में ढालने का काम तेज हो चुका है। और खास बात यह है कि इस साल मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं पर ज्यादा जोर है। अयोध्या से लेकर अकोला तक मां दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही है। काशी में भी नवरात्र को लेकर खास तैयारी हो रही है।

0: देश भर में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। कहीं माता के प्रतिमा के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं भव्य पंडाल सजने लगे हैं। हर तरफ भक्तों के मन में उमंग और उत्साह है, माहौल आस्था और श्रद्धा से लबरेज है। इसी के साथ देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जैसे जैसे पूजा के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तैयारियों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इस बार माँ दुर्गा की पूजा का अलग ही रंग नजर आएगा। यहाँ के मूर्तिकार माता की आराधना के अवसर पर मोबाइल के गैर जरूरी इस्तेमाल पर सामाजिक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने मोबाइलासुर नाम के राक्षस की आकृति बनाई है।
1: तो इस बार का ये जो थीम है, जो बच्चे आजकल के बच्चे आपके घर में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाना खाने के लिए पढ़ने के लिए हमेशा जो कि मोबाइल के संबंध जी के हैबिचुअल हो गए हैं उनसे उनको बच्चों को दूर करने के लिए ये समझ लीजिए विजुअलाइज दिखाने के लिए ये विजुअल कि देखिए बच्चों ये गलत चीज है, ये समाज में एक समझ लीजिए दर्शन देने के लिए बच्चों के लिए ऐसा बनाया जा रहा।
0: मोबाइलासुर का मॉडल वाराणसी के कचहरी इलाके के पूजा पंडाल में स्थापित होगा। माँ दुर्गा उसका संहार करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक शो के माध्यम से इसे दर्शाया जाएगा।
2: जो मोबाइलासुर आप लोग देखे हैं, जैसे ही मतलब दुर्गा माता उनका वध करेंगी उसी समय फिर ये बच्चा को दर्शाया जाएगा रोते हुए। और उनके अकॉर्डिंग जो बालक आप लोग देखे हैं उनका ये देखिए वो है, जैसे माँ बोल सकते हैं उनको भी दर्शाया गया। मतलब ये मना करेंगी कि मत चलाओ, फोन मत देखो।
0: अब देखिए तस्वीरें अजमेर की, जहां मूर्तिकार माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। त्योहार के करीब आते ही मिट्टी और रंगों को जीवंत आकृति में ढालने का काम तेज हो गया है। यहां माँ दुर्गा की खास किस्म की इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई जा रही है।
3: मूर्ति में क्या है, पानी में डाल दोगे तो एक आधा घंटा का अंदर पूरा हो जाएगा। और इसका अंदर घास है, पटिया लकड़ी बांस मिट्टी में बना था।
0: देश के तमाम इलाकों में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं पश्चिम बंगाल की पारंपरिक डिजाइन की तर्ज पर बनाई जाती है। वहीं बंगाल में बनी माँ की मूर्तियों की डिमांड अब विदेशों तक पहुंच गई है। यहाँ पूर्वी वर्धमान में कालना के हटगाछा गांव के कलाकार तापस पाल की बनाई हुई मूर्ति इस साल इंग्लैंड भेजी जा रही है। 5 किलो वजन वाली 28 इंच ऊंची ये मूर्ति खास पैकेजिंग में इंग्लैंड भेजी जाएगी। तापस पाल पारंपरिक शैली से लेकर नए और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली मूर्तियां बनाते हैं। इस साल इन्हें 20 मूर्तियों के ऑर्डर मिले हैं।
4: এটা যেরকম বড় দুর্গা প্রতিমা হয় মাছের মুজি আছে, আপনার খড় আছে, দড়ি আছে, মাটি আছে, যেরকম বড় প্রতিমা হয় সেভাবেই ছোট প্রতিমাটা করা আছে।
0: काम 24 घंटे चल रहा है। एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर कलाकार की बनाई एक मूर्ति पसंद आई, इसीलिए उन्होंने सीधे इनसे संपर्क करके प्रतिमा भिजवाने का अनुरोध किया। इनका परिवार इससे बेहद खुश है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का उल्लास अलग ही होता है। यह तस्वीरें पश्चिम बंगाल के केशवपुर की है। यहाँ के गढ़ सोनापोता में 18 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की आराधना की परंपरा है। बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 500 साल से दुर्गा पूजा में 18 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा भी पूजी जाती है। वैसे तो मंदिर में प्रतिमा स्थापित है, लेकिन पंडाल में भी स्थापना के लिए माता की 18 भुजाओं वाली मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
5: গীতাষ্টমী থেকে তারপর দিন থেকে কল্পারম্ভ, তারপর দিন থেকে মানে কল্পারম্ভ যে শুরু হয় ওই দিন থেকে আপনার যত মায়ের আমাদের মায়ের যে আঁকা থাকে ওই পুজো এক একদিন হয়, আরতি হয়, চণ্ডীপাঠ হয়।
0: वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस बार अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है। कलाकारों की मेहनत से विशाल पंडाल अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। आयोजकों के मुताबिक पंडाल के निर्माण में 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। पंडाल की भव्यता को देखते हुए इस बार यहाँ रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस के सामने सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की चुनौती भी रहेगी। पंडालों से लेकर वर्कशॉप तक कलाकारों और मूर्तिकारों की अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। इसके कारण देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। दुर्गापुर से अनिल गिरी, पूर्वी वर्धमान से सुजाता मेहरा और वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शहर शहर भक्तों को इंतजार है आदि शक्ति माँ दुर्गा जगदम्बा रेणुका सप्तशृंगी और शारदा देवी के घट स्थापना का। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ महाराष्ट्र के अकोला में भी नवरात्रि का ये उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। सार्वजनिक मंडलों में माँ की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
7: और देखिए अकोला के कुम्भारवाड़ा में कलाकार दिन रात माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ 1 फीट से लेकर 25 फीट तक की तमाम प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं।
8: शारदीय नवरात्र उत्सव को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर पंडाल में देवी माँ की मूर्ति विराजमान करनी है, उसकी घट स्थापना करनी है। उससे पहले कलाकार जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सुंदर 3.5 शक्तिपीठों में एक रही नांदेड़ जिले की रेणुका माँ, जो जिसकी आप देख रहे हो कि ये है माँ तुड़िया भवानी की प्रतिमा, जिसको अभी कलाकार जो है वो रंगोपन कर रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले हर कलाकार जो है हर प्रतिमा को आखिरी रूप देने में लगा हुआ है। और सबसे अहम बात ये है कि देखिए ये माता रेणुका की ये सुंदर ये प्रतिमा है और इसको अभी कुछ देर पहले ही रंगोपन किया है। तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हो कि कलाकार लगभग जो है आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं। ये कलाकार जो है माता रानी के हाथ में मेहंदी निकाल रहे हैं, उन्हें डिजाइनिंग कर रहे हैं। किस तरह से देखिए माता रानी की ये सुंदर सुबक मूर्ति जो है वो पहला कलरिंग का हाथ इस पर चढ़ चुका है। अब इस पर जो है बारीकी नक्शी काम करने का काम ये दोनों कलाकार लड़कियां करते नजर आ रहे हैं। माँ का ये सुंदर रूप जो है वो आप देख सकते हो कि माँ आदिशक्ति का ये सुंदर रूप, और इस रूप को और श्रृंगार करने के लिए उस पर नक्शी काम करने के लिए ये कलाकार हर संभव कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
9: हम मेहंदी लगा रहे हैं और हम उनको श्रृंगार करते हैं, हम उनका छोटे छोटे काम करते
8: हैं। और क्या-क्या करते
9: हो? पेंटिंग करते, श्रृंगार करते, उनको मेहंदी उनका तैयार करते रहते हैं।
8: अभी भक्तों में भी जो है होड़ लगी है कि अब माता रानी का जो विराजमान होने का समय है वो जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे कलाकारों में अपनी कलाकारी और भक्तों में जो है एक उत्साह और एक शक्ति जरूर यहाँ पर निर्माण होती नजर आ रही है। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला।
7: चलिए अब आपको दिखाते हैं लोक संस्कृति और लोक कलाओं के रंग। उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव धूमधाम से शुरू हो चुका है। इसमें 15 राज्यों के कलाकार और कारीगर भाग ले रहे हैं। इनके लिए ये उत्सव अपनी कला की नुमाइश के साथ साथ दूसरे इलाकों के लोगों से मेलजोल करने का भी एक खास मौका है।
10: गाड़ों की गूंज के बीच बांसुरी और बीन की धुनों पर थिरक रहे ये लोग, लोक संस्कृति और नृत्य का मजा ले रहे लोगों की झलक दिख रही है हर ओर। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की है, बल्कि देश के और भी इलाकों की लोक संस्कृति का शानदार संगम दिख रहा है। असल में यह मौका उत्तराखंड आदि रंगोत्सव के आगाज का है। जहाँ देश की संस्कृति विरासत की अनूठी झलक देखने को मिल रही है और इसे बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है।
11: श्रीमती राखी भरावत, संस्कृति विभाग, ग्रेड 1। वैसे मैं नीतिमाड़ा से हूँ, लेकिन प्रस्तुति मैं ग्रेड 1 देहरादून से देती हूँ। और अपनी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए हम वैसे माना बद्रीनाथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको भी बोलना चाहेंगे, इस वेशभूषा की कदर बहुत ज्यादा है। गर्मी है लेकिन तभी भी हम संस्कृति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम संस्कृति के साथ हैं, वरना तो इन लोगों को गर्मी लग रही है। जय।
10: इस महोत्सव में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक के 15 राज्यों की लोक संस्कृति की झलक पेश की जा रही है। तमाम राज्यों से आए कलाकार यहाँ अपनी कला के रंग बिखेर रहे हैं। मौसम और माहौल भले ही अलग है, लेकिन इन्हें यहाँ आकर खुशी बहुत हो रही है।
12: हम सिक्किम से आए हैं, मेरा नाम भूमिका है, और उत्तराखंड पहली बार आने से मुझे बहुत खुशी लग रहा है। लाइक बहुत सारी कम्युनिटी हम देख रहे हैं, और हमने जो ड्रेस पहना है वो मकर कम्युनिटी का है। उत्तराखंड पहले बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे सिक्किम में उतना ज्यादा गर्मी नहीं है, पर यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है।
10: इस मेले में उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों के पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट को भी पेश किया जा रहा है, जिसमें कपड़े हैं, हाथ से बने सजावटी सामान, मसाले और खाने पीने की सामग्रियां भी है। सुदूर इलाकों में गांव के छोटे कारोबारियों को यहां अपने प्रोडक्ट पेश करने का मौका मिला है।
12: हमारे यहां लहसुन का मिर्च का प्लस बल्ला पेड़े का और बड़र का, ये सब तरह का चाय हम बिना केमिकल के बनाते हैं, जो कि शुद्ध सरसों का तेल वगैरह घर के मसाले, ना कि मार्केट का कोई मसाला यूज करते हैं, ना कोई केमिकल यूज करते हैं।
10: संस्कृति का ये मेल एक ही जगह पर कई राज्यों के कलाकारों और दस्तकारों के मिलने का मंच बन गया है, जहां संस्कृतियों के मेल के साथ सबको अपने कारोबार को भी बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है।
11: उत्तराखंड देखने के लिए आया तो अच्छा कैसा लगता है, यहाँ का लोग कैसा है, हम लोग को क्या लगेगा, ऐसा हम लोग को मैंने कोई सोल्यूशन लेने के लिए आया है, और थोड़ा बिजनेस भी ले गया साथ में।
13: मैं कलकत्ता से हूँ, कांथा वार हैंड एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मेरा काम है, तो मेरे साथ बहुत सारे लेडीज जुड़ा हुआ है, जो लेडीज गांव में रहते हैं, जो शहर में नहीं आ सकते वो गांव में बैठ के हमारे लिए काम करते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराती हूँ उनको, ट्रेनिंग कराने के बाद उनको मैं प्रोडक्ट देता हूँ, वो खुद बनाते हैं हाथ की कढ़ाई, और उसी को प्रमोट करने के लिए हम आगे आते हैं एग्जीबिशन में।
10: आदि रंग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के भव्य रोड शो से हुआ। ये महोत्सव पहले देहरादून में होता रहा है, अब पहली बार खटीमा में 3 दिन के लिए इसका आयोजन किया गया है, तो स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजेश छावड़ा, खटीमा, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए इसके साथ लंच टाइम में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लेकर खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: और चलिए अब बात करते हैं मेडल वीरों की। जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत की चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। एशियन गेम्स में पदकों की छड़ी लगाकर देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का एयरपोर्ट पर ऐसा भव्य स्वागत हो रहा है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाए।
1: और देखिए ढोल नगाड़ों की थाप पर फूलों की बारिश के बीच में लहराते तिरंगे के साथ भारत माता की जयकार आपको सुनाई देगी। अपने पसीने और मेहनत से देश को स्वर्णिम सफलता दिलाने वाले इन एथलीट्स का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हुजूम दिखाई दिया। परिजन गले लगाकर अपने अपने परिवार वालों को भावुक होते हुए दिखाई दिए तो पूरा देश इन नायकों पर गर्व महसूस कर रहा है। अपने घर चंबा पहुंची एशियन गेम्स की मेडलिस्ट सीमा कुमारी का भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए जैसे पूरा शहर नजर आया, परिवार के लोग बेहद खुश दिखाई दिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी आई जहां रेसलर दीपक पुनिया का शानदार स्वागत हुआ। पुणे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुरलीधर ओहोल ने एयरपोर्ट पर पदक वीरों का स्वागत किया। एशिया कप में लगातार दूसरी बार गोल जीतकर देश को गर्व का एहसास कराने वाले क्रिकेटर्स का स्वागत भी किया गया। तो दिल्ली पहुंचे संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन का भी शानदार स्वागत यहां पर हुआ। चलिए अब बात फिल्म दृश्यम 3 की कर लेते हैं। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। अजय देवगन की इस फिल्म ने तीसरे दिन भी मजबूत पकड़ बनाए रखी है।
0: तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना लेगी।
2: जिस कहानी ने पिछले 11 सालों से दर्शकों को अपनी सीट पर बांध कर रखा, अब उसका फाइनल चैप्टर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। अजय देवगन की दृश्यम 3 का फिल्म प्रेमियों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई, फिर पहले वीकेंड पर शानदार कलेक्शन और अब रिलीज के बाद पहले रविवार को भी इस फिल्म ने धमाकेदार आमदनी हासिल करके नेट कलेक्शन में 200 करोड़ के क्लब की ओर कदम बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 61 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इससे पहले शनिवार को यानी दूसरे दिन फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की थी, जबकि ओपनिंग डे पर भारत में इसका कलेक्शन था 62 करोड़ रुपए। इसके साथ ही भारत में ये फिल्म अब तक 176 करोड़ के पार नेट कारोबार कर चुकी है। इस तरह फिल्म दृश्यम 3 अब नेट कलेक्शन के मामले में 200 करोड़ के क्लब से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये पहले ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सैगनिल की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन में भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 212 करोड़ के करीब रहा। वहीं इस अवधि में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 273 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इस फिल्म में एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक को चकमा दे देता है और अब विजय सालगांवकर की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, जिसे पहले दिन गांधी जयंती की छुट्टी होने का पूरा फायदा मिला। लेकिन फिल्म की कमाई की असली तस्वीर दूसरे दिन सामने आई। 2 दिनों की कमाई के मामले में फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रिलीज होते ही कमाई के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। खास बात यह है कि दृश्यम 3 ने सिर्फ 2 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 95 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। यह अजय देवगन के 35 साल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है। ये उनके करियर में सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई। कुल मिलाकर दृश्यम 3 साल 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म बन चुकी है। इससे पहले धुरंधर 2 ने 4 दिन में 466 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि एक बात थोड़ी हैरान करने वाली रही, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कुछ कमी आई, लेकिन तीसरे दिन इसने फिर रफ्तार पकड़ी और बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना रखी है। फिल्म का तूफान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि विजय सालगांवकर की ये आखिरी कहानी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और इन्हीं खबरों के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना ही।
1: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, आप देखते रहिए GNT।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी, दिल्ली के सीआर पार्क में तैयार हो रहा भव्य पूजा पंडाल, यूपी से गुजरात तक गरबा की तैयारी। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधि विधान के साथ किए रामलला के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लगी भीड़, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल में तर्पण, भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन पूजन। पहाड़ों में सुहावना मौसम पूरी कर रहा है सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख। भदोही में सजा कालीन का महाकुंभ, पहले दिन कारपेट एक्सपो में पहुंचे 32 देशों के खरीदार, 7 अक्टूबर तक चलेगा आज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: यूपी के भदोही में कारपेट एक्सपो की धूम, पहले दिन एक्सपो में 32 देशों के 147 विदेशी बायर्स शामिल हुए। चार दिवसीय कारपेट एक्सपो का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, हाथ से बने कालीन को बढ़ावा देने के लिए 223 भारतीय निर्यातकों ने स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद पेश किए। बायर्स ने कालीन की नई डिजाइन, नई वैरायटी देखी और भविष्य के लिए बिजनेस इंक्वायरी की। आयोजकों का मानना है इससे भविष्य में 1,000 करोड़ का कारोबार होगा। राजस्थान में कोटा के 10X स्पोर्ट शूटिंग क्लब ने तैयार किए 300 खिलाड़ी, इस साल भी 15 खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड। 10X स्पोर्ट शूटिंग क्लब से प्रशिक्षण ले चुके 50 से 60 खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर मेडल हासिल किए, इस साल करीब 15 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग ली। एम्स दिल्ली में ओपीडी मरीजों की एमआरआई और सीटी स्कैन की वेटिंग लिस्ट होगी खत्म, एम्स कर रहा खास योजना पर काम। निजी लैब से करार कर ओपीडी मरीजों की सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट जल्द कराने की योजना पर किया जा रहा काम, करीब 20 निजी लैब्स ने दिखाई दिलचस्पी। गुजरात में राजकोट के अमरनगर गांव में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 की मदद से एक बच्चे की बची जान, बच्चा खेलते खेलते खेत में बनी पानी की कुंडी में गिर गया था। सूरत में ब्रेन डेड महिला के अंगदान से 5 लोगों को मिलेगा नया जीवन, गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश पटेल की मामी मंजुला बेन पटेल ने किडनी लिवर आंखें दान करने की मिसाल कायम की। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के छतरपुर में हाथियों का आतंक, रात में गांव वालों को देखकर घुसने की कोशिश करता दिखा हाथी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, आज से लेकर 23 अक्टूबर तक BEGN सेंटर रुड़की में भर्ती रैली। अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती रैली, गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिले इसमें शामिल हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। शिखर धवन अपनी पत्नी के साथ तिरुमला मंदिर में पहुंचे, भगवान वेंकटेश्वर के पूजा अर्चना की। भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में 11 नए जानवर आए, नई प्रजातियों में बहुत सारे जानवर शामिल। बिहार के बेगूसराय में श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत रंग, वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण नौका महोत्सव का आयोजन। नौका विहार उत्सव का आयोजन रत्नपुर के ऐतिहासिक महंत सियाराम दास सरोवर में किया गया, पूरे इलाके को वृंदावन जैसा रूप दिया। बेंगलोर कलकत्ता वृंदावन से 25 क्विंटल फूल की पंखड़ियों से सजाया गया था पोखर, हजारों श्रद्धालु राधे कृष्ण के बोल पर झूमते दिखे। राधे राधे हरे कृष्ण के जय घोष के साथ गूंजा पूरा इलाका, भजनों पर हजारों श्रद्धालु भी भाव विभोर हुए। नवरात्र में माता रानी के भजनों पर थिरकने को तैयार झांसी, ऐतिहासिक किले की तलहटी में महिलाओं ने शुरू की गरबा डांडिया की प्रैक्टिस। बड़ी संख्या में महिलाएं डांडिया के अलग अलग स्टेप सीख रही हैं। इस बार इंडो वेस्टर्न थीम पर जोर, 12 अक्टूबर को डांडिया नाइट का आयोजन होगा। नवरात्र से पहले देश में बढ़ रही चनिया चोली की मांग, गुजरात के सुरेंद्र नगर में चनिया चोली बनाने में जुटे कारीगर। गुजरात में नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों पर पुलिस की नजर, आयोजन स्थलों की पुख्ता सुरक्षा पर जोर। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष में फिर से उमड़ा लोगों का सैलाब, ब्रह्म कपाल में पिंड दान तर्पण करने के लिए लोग आ रहे। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित समाज के मुताबिक पिछले 8 दिनों में 60,000 से श्रद्धालु आ चुके। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन, सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम में सिंगापुर के उद्योगपति और कई क्षेत्रों के हस्तियां हुई शामिल, हरियाणा सिंगापुर के बीच में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी कला प्रदर्शनी, रंगों को कैनवस पर उतारने की कोशिश। रंगों के अलग अलग लेयर्स, टेक्सचर्स और उंगलियों से बनाए पैटर्न लोगों को पसंद आए। गुजरात सरकार के आधुनिक कृषि उपकरण योजना से बदले दाहोद किसानों के दिन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ ने बीएसएफ बुलर अल्ट्रा रन के तीसरे एडिशन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। फिटनेस खेल की भावना, युवाओं की भागीदारी, बुलर झील के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना इसका मकसद रहा। बांदीपुरा में बीएसएफ हेडक्वार्टर से शुरू हुई दौड़ बुलर वेंटेज पार्क में जाकर खत्म हुई, आयोजकों अधिकारियों ने तारीफ की। इवेंट में 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 और 5 किलोमीटर की कैटेगरी शामिल की गई थी, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता में चलाया गया स्वच्छता अभियान, सीएम धामी भी शामिल हुए। खटीमा में 3 दिवसीय रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे। 18 राज्यों से पहुंचे जनजातीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा, हर तरफ पारंपरिक कला के रंग दिखे। खटीमा मुख्य चौक से आयोजन स्थल तक निकाला गया भव्य रोड शो, हनुमान अंश की टीम ने भी सीएम धामी के साथ मुलाकात की। सीएम धामी हनुमान अंश के कलाकारों के साथ जौनसार भावर की ढोल दमाऊ टीम के साथ झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों को मंच पर पेश किया गया, सैकड़ों की संख्या में स्थानीय थारू जनजाति समाज के अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। पहाड़ों के सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में हिल स्टेशन पहुंचे सैलानी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक चरम पर टूरिज्म। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़, बदले मौसम का आनंद लेते दिखे सैलानी। विश्व प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक पर दिखी सैलानियों की भीड़, बड़ी संख्या में मैक्लोडगंज भी पहुंचे सैलानी। सैलानियों की रिकॉर्ड भीड़ देख खिले कारोबारियों के चेहरे, भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन के इंतजाम। हिमाचल के सोलन में सैलानियों का सैलाब, दिल्ली शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम। लॉन्ग वीकेंड पर मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, 80% से ज्यादा होटल रहे बुक। सुहाने मौसम का सैलानी ले रहे आनंद, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़। पर्यटकों के आने से मॉल रोड, कुलड़ी बाजार और लाइब्रेरी बाजार में बढ़ी रौनक, व्यापारियों के खिले चेहरे। बागेश्वर धाम आने वाली महिला भक्तों से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अपील, महिलाएं अकेली न आए धाम। बाबा ने कहा महिलाएं स्वयं सतर्क सजग और सावधान रहें, अनजान लोगों पर विश्वास न करें। एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर वतन लौटे पदकवीर एयरपोर्ट पर एथलीट्स का भव्य स्वागत हुआ। एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और हर्षदीप सिंह। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे परिवार ने किया वेलकम। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले क्रिकेटर तिलक वर्मा की वतन वापसी, हैदराबाद पहुंचने पर ग्रैंड वेलकम हुआ। चंबा में एशियाई खेलों की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीमा कुमारी का जोरदार स्वागत, फूलमाला पहनाकर हुआ स्वागत। रेसलर दीपक पुनिया का दिल्ली में शानदार स्वागत हुआ, फैंस ने नोटों की माला पहनाकर इनका वेलकम किया। गोल्फ टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली झज्जर की बेटी दीक्षा डागर का शानदार स्वागत, देश के लिए पदक हासिल करने को बताया ऐतिहासिक। सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान पंघाल का भी वतन वापसी पर जोरदार स्वागत हुआ, बोले भविष्य में सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदलने की कोशिश करूंगा। ढोल नगाड़ों के बीच में रेसलर सुनील मलिक का ग्रैंड वेलकम, सुनील ने पुरुषों की 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीता। एशियन गेम्स में दो मेडल जीतकर अपने होम टाउन जोलारपेट पहुंचे एथलीट विशाल, परिवार में खुशी की लहर। दिल्ली में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग के समापन समारोह में शामिल हुए खेल मंत्री आशीष सूद, दिल्ली में 5 स्टेडियम को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान। आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग का 8वां सीजन संपन्न हुआ, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था। ओडिशा के भुवनेश्वर में जीवन जिंदाबाद 2.0 अभियान की शुरुआत, राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना इसका उद्देश्य रहा। कार्यक्रम में कई नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, सीएम मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में शामिल हुए। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य रहा, युवाओं को खेलकूद के प्रति जोड़ने की कोशिश। एशियन गेम्स में देश को सोना दिलाने वाली खिलाड़ी बलजीत कौर से फोन कॉल पर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने बातचीत की। गुजरात के बनासकांठा के कावा गांव में बदली लोगों की जिंदगी, ज्योति ग्राम योजना के तहत 24 घंटे मिल रही बिजली। गांव में पानी की समस्या भी कम हुई, ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर शुरू किया पशुपालन। सरिस्का में भैंस और टाइगर का हुआ आमना सामना। शंघाई के वाइल्ड एनिमल पार्क में धूमधाम से मनाया गया 3 विशाल पांडा का जन्मदिन। तीनों पांडा के लिए विशेष थीम पर तैयार करवाए गए केक, बड़ी संख्या में सैलानी पांडा को बर्थडे की बधाई देने पहुंचे। पार्क घूमने आए सैलानियों ने ब्लेसिंग वॉल पर पांडाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं लिखी। रेडबुल के मैक्स ने जीती बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस, सेपांग इंटरनेशनल सर्किट पर खराब मौसम के चलते रेस जीती। चैंपियनशिप लीडर किमी एंटोनेली मर्सिडीज के लिए दूसरे स्थान पर रहे। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए पहुंचे मुंबई, रणबीर कपूर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ खिंचाई तस्वीर। फिल्म हनुमानंज का रिलीज के 59वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन, फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ के पार। अब नए अंदाज में दिखेगी अमर अकबर एंथनी की कहानी, 3 मंकीज नाम से अब्बास मस्तान की जोड़ी बनाएगी फिल्म। थलपति विजय ने बेटे जेसन विजय की डेब्यू फिल्म सिग्मा को प्रमोट किया। शाहिद कपूर की हिट सीरीज फर्जी 2 में युक्ति थरेजा की एंट्री हुई, मेकर्स ने सीरीज में फीमेल लीड के तौर पर लिया। अभिनेता अविनाश मिश्रा के खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का उन्होंने खिताब जीता, शानदार प्रदर्शन करके चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की। अविनाश मिश्रा को खतरे के खिलाड़ी सीजन 15 की ट्रॉफी के अलावा 20 लाख रुपए की नकद राशि और एक शानदार कार भी इनाम में मिली। साजिद खान की अगली कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन पहली बार साथ में नजर आएंगे, फिल्म के स्टार कास्ट में दिशा पाटनी श्रिया सरन थी। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार ने एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब अपने नाम किया। रश्मिका मंदाना महान कर्नाटक संगीत गायिका MS सुबुलक्ष्मी की बायोपिक MS लेगेसी ऑन स्क्रीन में निभाएंगी मुख्य किरदार। दुनिया के सबसे बड़े बेयर महोत्सव म्यूनिक ऑटो बर्फेस्ट का धूमधाम से समापन हुआ। इस साल म्यूनिक ऑक्टो बर्फेस्ट में रिकॉर्ड संख्या में 70 लाख से ज्यादा दर्शक शामिल हुए। समापन सेरेमनी में पारंपरिक बैंड का आयोजन किया गया। लोगों ने अगले साल फिर खुशियों के साथ फेस्टिवल मनाने का प्रण लिया। 16 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। मेले में तरह तरह की राइड्स ली। लोगों ने अपने परिवारों के साथ इस फेस्टिवल में जमकर खरीदारी की। शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे को उपहार दिए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, यूं तो दुनिया भर में कई तरह के फैशन परेड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक बेहद क्यूट फैशन परेड का नजारा, जहां पेरिस की सड़कें रैंप में तब्दील हो गई, लेकिन मॉडल्स की जगह अलग अलग अट्रैक्टिव अटायर में नजर आए तमाम डॉग्स।

0: वर्ल्ड फैशन की राजधानी कहलाने वाले पेरिस की सड़कें इस बार डैक्शन डॉग्स की फैशन परेड से गुलजार हुई। दुनिया भर में मशहूर सॉसेज वॉक इवेंट पर तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में सजे डॉग्स ने सभी का ध्यान खींचा। धारियों वाली शर्ट और बेरेट टोपी पहनने से लेकर छोटे छोटे काउबॉय तक के रूप में सजे ये डॉग्स सबके आकर्षण का केंद्र रहे। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहने और पूंछ हिलाते इन डॉग्स ने देखने वालों का दिल जीत लिया। जहां हर आकार साइज और रंग के डैक्शन डॉग्स अपने मालिकों के साथ नजर आए। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत लंदन से हुई थी, जो धीरे धीरे पेरिस समेत दुनिया के अन्य शहरों में फैल गई। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सॉसेज वॉक का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य छोड़े गए बुरे बर्ताव का शिकार हुए डैक्शन डॉग्स को बचाने और उनकी देखभाल के लिए फंड इकट्ठा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: देश भर में शारदीय नवरात्रि की जोरदार तैयारी, दिल्ली के सीआर पार्क में तैयार हो रहा भव्य पूजा पंडाल, यूपी से गुजरात तक गरबा की प्रैक्टिस। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधि विधान के साथ किए रामलला

0: पहाड़ों में सुहाना मौसम पूरी कर रहा सैर सपाटे की सैलानियों की मुराद, कुदरत की मेहरबानी से उत्तराखंड से हिमाचल तक पर्यटन को लगे पंख। भदोही में सजा कालीन का महाकुंभ, पहले दिन कारपेट एक्सपो में पहुंचे 32 देशों के खरीदार, 7 अक्टूबर तक चलेगा इसका आयोजन।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
4: सास बहू और बेटियाँ की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, समर और फूल की सगाई में शुरू होगा थप्पड़ ड्रामा। भेस बदल कर आएगा रुद्र, महेश जड़ेगा रुद्र को थप्पड़। अपने मायके आएगी अपराजिता, संग होंगे रक्षित, होगा स्वागत।

0: पति ब्रह्मचारी में आएगी रिया और बंटी के प्यार की सच्चाई, शुरू होगा नया तमाशा।
1: मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है, मार मुझे, मार।
0: अंतरा पर भड़केगी दादी, राध्या के खिलाफ षड्यंत्र।
2: तुमसे हजारों बार मैंने कहा, तुम सिर्फ वो ही करो जो मैं कहती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अलग से अपने अकल के घोड़े दौड़ाने हैं।
0: खतरों के खिलाड़ी का विनर बना अविनाश, आया मौसम पार्टी का।

0: पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा के सामने आई बंटी और रिया के प्यार की सच्चाई। ऐसे में एक तरफ जहां सूरज और ईशा को पछतावा हो रहा है तो वहीं चल रहा है घर में फैमिली ड्रामा। चलते हैं सीरियल के सेट पर।
1: सूरज का पछतावा। मांगी गलती की सजा।
2: मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। बाप मुझे
1: क्या बिखर कर रह जाएगा काव्या का संसार। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा के सामने आ गई है बंटी और काव्या के प्रेम की सच्चाई। ऐसे में देखिए कैसे भाई ईशा बेहद परेशान हो रही है सूरज को ये सच्चाई बताने के लिए, लेकिन सूरज नवरात्रि की तैयारियों में इतना व्यस्त है कि वो ईशा की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में ईशा को लगता है कि वो इसी काम के बीच सूरज को सब सच बता देगी, लेकिन

0: उसे क्या पता था कि पर्दे के पीछे सूरज नहीं बल्कि काव्या है। और देखिए कैसे शुरू हुआ इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा।
1: अंटी और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। सूरज, अंटी ने कभी काव्या से प्यार किया ही नहीं है, वो हमेशा रिया से प्यार करता है। सूरज, जब बंटी ने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है, उसका मतलब रिया से था, काव्या से नहीं। और जब तक उसे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डर हमारे परिवार की इज्जत के लिए वो चुप रहा, और रिया भी इसी वजह से यहाँ से जा रही है मुंबई। सूरज, ये कहना था मुझे

0: बिल्कुल, देवी माता है, माता रानी का दिन आने वाला है नवरात्रि, एंड उसी की सब तैयारी चल रही है। और उसी के साथ साथ रिया जो है, रिया मुंबई जाने की ठान ली है क्योंकि कुछ कोर्स है जो उसे मुंबई से कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें सूरज को एंड पूरी फैमिली को अचानक से पता चली। एंड रिया ये सब क्यों कर रही है ये ईशा जी को भली भांति पता है, क्योंकि रिया बंटी से प्यार करती है, ये वाली बात जो है ईशा जी को पता चल चुके हैं। अब यहाँ पे सूरज यही है कि सूरज ये सारी चीज़ों से अनजान है, उसे कुछ आइडिया नहीं है, एंड ईशा जी बार बार उसे बताना चाह रही हैं कुछ, एंड उसका ध्यान यही है कि अभी फ़िलहाल तो मतलब कि ठीक है ईशा जी ये सब कर लेता हूँ, आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। एंड जब जब वो काम करने जा रहा है, थोड़ा काम में बिजी हो जा रहा है, अब एयरपोर्ट छोड़ने भी जाना है रिया को, तो बस उसी सब होश पोश में है। और ईशा जी पूरी कहानी बता तो देती हैं, लेकिन पर्दे के उस पार सूरज ना होते हुए काव्या रहती है। अब बात यह है कि काव्या ने सब सुन लिया है ईशा जी के मुंह से, जो सच जानना चाहती थी, नहीं भी जानना चाहती थी काव्या, तो भी उसे पता चल चुका है। एंड अब देखने में यही मजा आएगा कि अब आगे होने क्या वाला है, बिकॉज काव्या को सारी सच्चाई पता चल चुकी है।
1: जहाँ एक तरफ रिया ने ये फैसला कर लिया था कि वो मुंबई जाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगी, भाई देखिए कैसे काव्या ने आकर सभी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और बस फिर क्या, शुरू कर दिया सवालों का सिलसिला।
2: वे ताइमा और कितना सामान डालेंगी आप, वहाँ खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है, और अगर कम भी पड़ गया तो किसी यहाँ तो भिजवा देंगे। आपकी गाड़ी हर एक स्टेशन पर रुक रुक के क्यों चल रही है, बोलिए ना जो बोलना है बोलिए।
3: इतनी बड़ी छूटी और धोखेबाज है रिया।
2: क्या क्या बोल रही है तू, होश में तो है?
3: होश में तो मैं आज आई हूँ भैया, बंटी से मेरी शादी कभी हुई नहीं है, भीख में दिया इसने बंटी को मुझे। हाँ भैया, बंटी मुझसे नहीं इससे प्यार करता है, और शादी भी इसी से करना चाहता था।
2: क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा, कुछ भी बोले चली जा रही है।
3: सच्ची बात है ना, तो पूछिए ईशा भाभी से, मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, पूछिए इनसे कि बंटी और रिया के बारे में सब कुछ जानती है या नहीं।
1: नहीं जाने अनजाने ही सही, फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई ईशा, क्योंकि ईशा ने ये सच सूरज को नहीं बताया। और इन्हीं सब के बीच जब बंटी की एंट्री हुई, देखिए कैसे रिया के कबूलनामे के बाद बंटी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो काव्या से नहीं बल्कि रिया से मोहब्बत करता है, और देखिए कैसे सूरज को हुआ अपनी हरकत पर पछतावा। जिसके बाद काव्या ने उठाए ईशा पर सवाल, और ऐसे में सूरज ने भी शुरू कर दी शिकायतों की लिस्ट, जिसमें सूरज ने उसे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया।
3: क्यों किया भाभी आपने ऐसा? मुझे बोला था ना आपको
2: करने वाली थी। कब? मैंने क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मैं आपका पति हूँ ईशा जी, मुझे बताने से ज्यादा जरूरी है आपने कामे को बताना। समझा?
3: मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाली। बस कीजिए।
2: आज आपने फिर पति पत्नी के रिश्ते के मर्यादा को धक्का दिया। आज एक बार फिर आपने मुझसे वो सारी बात छुपाई जो मुझसे किसी भी हाल में आपको छुपाना नहीं चाहिए।
1: काव्या को पूरा पूरा ये भरोसा दिला रही है कि वो बंटी को भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगी, लेकिन देखिए कैसे। काव्या ये जानती है कि ये नामुमकिन है।
3: जो कुछ भी हुआ है ना, तू मुझे मेरे हाथ में छोड़ देगी। विश्वास करना, मेरे और बंटी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। वो तेरा पति है और मैं कभी तो दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। मैं इतनी इतनी दूर चली जाऊंगी ना कि मेरा साया भी तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और ये बहुत समझदार है कामरा। हो सकता है कुछ वक्त लग जाए और वो तुझे बहुत खुश रखेगा। सच में
4: मुझसे ये कहना चाहती है तुमने बंटी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है।
3: हाँ,
4: और उससे बात करना भी बंद कर दिया है।
3: हाँ, कर दिया है। और जो एक तो बार किया ना वो भी आज के बाद कभी नहीं करूंगी।
4: और प्यार, क्या प्यार करना बंद कर पाएगी उसे? मेरी आंखों में देख कर बोल, तो खुश रह पाएगी उसके लिए?
3: रहूंगी नहीं तो अपने आप ही सोचना कब हो ही जाएगा।
2: बस बहुत हुआ, कोई कहीं नहीं जाएगा, समझी?
1: इन सब ड्रामों में सूरज को पछतावा हो रहा है कि कैसे उसने अपनी बहनों की जिंदगी को बर्बाद किया। इसीलिए तो वो इन सब का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है।
2: मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। बार मुझे
1: ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सूरज अपनी बहन के लिए क्या फैसला करता है और क्या वाकई काव्या बंटी से अलग होकर रिया और बंटी को एक साथ शादी के बंधन में बंधने की इजाजत देगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल मन अति सुंदर में अंतरा पर भड़का दादी का गुस्सा, क्योंकि अंतरा ने प्रथम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ घर में हो रही पूजा में राध्या की जगह बहू बनकर बैठी अंतरा। ऐसे में राध्या क्या कदम उठाती है, देखना दिलचस्प होगा।
1: अंतरा का नया षड्यंत्र, बाल बाल बचा प्रथम।
6: हजारों बार मैंने कहा तुम सिर्फ वो ही करो जो मैं कहती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अलग से अपने अकल के घोड़े दौड़ाने।
1: अंतरा पर फूटा दादी का गुस्सा। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते ही रहते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां आज अंतरा ने ट्रेडमिल के साथ छेड़छाड़ कर दी थी राध्या को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उस ट्रेडमिल पर प्रथम था। हालांकि प्रथम बाल बाल बच गया, जिसके बाद अंतरा की जान में जान आई।
3: थैंक यू भगवान जी, ये प्रथम को कुछ नहीं होने दिया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाती।
1: लेकिन दादी को सब पता चल गया और वो पहुंच गई अंतरा के पास सवाल जवाब करने के लिए। भाई बात प्रथम की है, ऐसे में दादी ने अंतरा को भी नहीं छोड़ा। देखिए कैसे वो उसे फटकार लगा रही है और चेतावनी दे रही है कि वो प्रथम को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और दादी जो कहे वही करे।
3: क्या हुआ दादी?
6: चुप! तुम्हारी ये नौटंकी मेरे सामने तो करना मत। बोलो, सच सच बोलो, ट्रेडमिल के साथ तुमने छेड़छाड़ करी थी। खबरदार जो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश में की वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
3: रतन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी लेकिन पता नहीं वो अचानक कहां से आ गया। मैं तो उस राधा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी।
6: चुप। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है आज तुमने क्या किया। तुम्हारी बचकानी हरकत की वजह से आज हमारे पोते को हम खो सकते थे। तुम्हारी कोख में पल रहा जो बच्चा है वो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाता। तुमसे हजारों बार मैंने कहा तुम सिर्फ वो ही करो जो मैं कहती हूँ लेकिन नहीं, तुम्हें तो अलग से अपने अकल के घोड़े दौड़ाने हैं।
3: लेकिन दादी आपकी भी तो कोई प्लानिंग काम नहीं आ पा रही है और आपने कल रात को ऑफिस में आने से रोका क्यों नहीं?
6: बस बंद करो, चुप हो जाओ। अगर ऐसे ही हम दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते रहेंगे तो राधेबाजी जीत जाएगी। इसलिए अब से चुपचाप तुम वो ही करोगी जो हम कहेंगे वरना राधे के चक्कर में तुम अपना और शायद हमारे पोते का भी नुकसान। हमको राधे को
1: भाई दादी तो फटकार लगाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे में अंतरा राध्या और प्रथम की तस्वीरें देख रही है। ऐसे में गुस्से में वो तस्वीर से राध्या को मिटा देती है और ये भी धमकी देती है कि प्रथम की जिंदगी से भी वो राध्या को ऐसे ही मिटाएगी। तभी वहाँ राध्या पहुँच जाती है अंतरा के लिए जूस लेकर और हड़बड़ाहट में देखिए कैसे अंतरा बात को पलट देती है। लेकिन राध्या अंतरा पर विश्वास भी करती है
3: कि जिस तरह मैंने राध्या को इस फोटो से मिटाया है उसी तरह मैं उसे प्रथम की जिंदगी से मिटा दूंगी।

0: प्राची, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं और गुस्से में भी लग रही हैं। कोई बात हुई है क्या?
1: प्रेगनेंसी की वजह से मेरा पेट दिखने लगा ना, इसलिए सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं।
0: अंतरा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका तो यही मतलब है कि बच्चा अंदर अच्छे तरीके से बढ़ रहा है।
2: भाई देखिए कैसे राध्या होने वाले बच्चे से बातें करती है और ये बात अंतरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
0: ऐसे ही अच्छे से बड़े हो जाइए, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
3: आई मेरे बच्चे से बात करनी थी। ये बच्चा सिर्फ मेरा और प्रथम का।
2: खैर अंतरा ने तो ठान लिया है कि वो राध्या को सबक सिखा कर ही रहेगी। घर में पूजा होने वाली है जिसमें दादी चाहती है कि बहू की तरह सजकर अंतरा इस पूजा में शामिल हो, तभी तो वो अंतरा के लिए ये साड़ी लेकर आई है। वहीं दूसरी तरफ राध्या और बाकी घर वाले भी पूजा की तैयारी में लगे हैं, लेकिन दादी प्रथम के साथ अंतरा को पूजा में बिठाएगी। अब ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखना होगा कि राध्या को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा
0: आज की पूजा में।
1: गुरुमा मुझे प्रथम के बच्चे की माँ कहकर बुलाएगी ना, तो इस घर की बहू के रूप में आशीर्वाद देगी ना मुझे?
4: बिल्कुल, इसलिए तो आज तुम्हें घर की बहू की तरह ही तैयार होना।
1: कहीं वो राध्या भी पूजा में तो नहीं बैठ जाएगी?
4: उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस अच्छी तरह से तैयार होकर अपने कमरे में जाओ। जब तक हम नहीं बुलाएं, नीचे बता।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल तू ही रे दिल में एक तरफ, जहां घर पर आ रही परेशानियों को देखते हुए संजू की माँ परेशान है, तो वहीं इस परेशानियों को दूर करने के लिए पंडित जी ने पत्नी संग संजू को पूजा करने की सलाह दी है। ऐसे में क्या वृंदा का सच आएगा घर वालों के सामने, चलिए देखते हैं।

0: सीसीटीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज संजय की मम्मी काफी घबराई हुई है। घर में कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं। माधवी भी स्वाति को लेकर घर छोड़कर चली गई है। संजय भी जेल में था। इन सब की वजह से संजय की मम्मी काफी परेशान है कि आखिरकार घर और परिवार को किसकी नजर लगी है। इस घबराहट में संजय की मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में वृंदा देखी उनके साथ है और उनका सहारा बनी हुई है। ऐसे में संजय की मम्मी शास्त्री जी से मिलने की जिद करती है। ऐसे में वृंदा उनके साथ जाती है। वो संजय की मम्मी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती।
1: समझ नहीं रही हूँ, मेरा उनसे मिलना इसी वक्त बहुत जरूरी है। कुछ मुश्किल भी उपाय निकालेंगे, देख लेना। मैं भी जाके तो सुनो, किसी को कुछ बता दूंगी। चुप चुप
0: तो भाई संजय की मम्मी और वृंदा शास्त्री जी से मिलने जाते हैं और शास्त्री जी यही बताते हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं और ऐसे में संजय और उसकी बीवी को पूजा करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि संजय की अब तक शादी नहीं हुई है, लेकिन शास्त्री जी को कहीं ना कहीं पता है कि संजय शादीशुदा है। ऐसे में ये राज अब तक खुला नहीं है। ऐसे में संजय की माँ और भी ज्यादा परेशान हो गई है कि आखिरकार संजय की शादी अगर हुई है तो किससे हुई है।

भी पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों को खुश करिए, अपने पति का श्राद्ध करवाइए अपने बेटे और बहू के हाथ से। हाँ, आपके बेटे संजय की धर्म पर वही उसके जीवन की भाग्य लक्ष्मी।

0: अब इस पूजा के चलते क्या घर वालों को ये पता चलेगा कि संजय और वृंदा की शादी हो गई है या फिर ये राज राज ही बना रहेगा, ये तो आने वाली कहानी में पता चलेगा। फिलहाल तो टेंशन का माहौल है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: रुक करते हैं मनोरंजन की उस रंगीन दुनिया का, जहां से हम खास आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ रॉकिंग और कुछ शॉकिंग खबरें। ये चटपटी और मसालादार खबरें यकीनन आपके चेहरे पर भी ले आएंगी एक हल्की सी मुस्कान। तो चलिए बिना देर के देखते हैं आज की रॉकिंग न्यूज़।

पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्टर मोहसिन खान ने शादी रचा ली है। जी हाँ, सामने आई है इनके निकाह सेरेमनी की ये तस्वीरें, जहाँ मोहसिन खान अपनी वाइफ तमन्ना संग डांस करते नजर आ रहे हैं। तो आइए सास बहू और बेटिया में देखते हैं शादी के ये सभी नजारे, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन सजे धजे हैं, डांस कर रहे हैं और दिख रही है न्यूलीवेड्स की केमिस्ट्री। हमारी तरफ से भी मोहसिन और तमन्ना को शादी की ढेर सारी बधाइयाँ।

सृष्टि जैन जल्द ही शादी करने वाली है, ऐसे में उन्होंने की बैचलरेट पार्टी अपनी गर्ल गैंग के साथ। देख लीजिए इस पार्टी के ये नज़ारे, जहां होने वाली दुल्हनिया अपनी इस पार्टी को कर रही है काफी एंजॉय।

0: दुआ।
1: नजर डाल लीजिए मन्नत के नए प्रोमो पर, जहां पर दुआ अपने ही पापा यानी कि धैर्य के खिलाफ हो जाएगी। तो क्या इसके बाद धैर्य को होगा अपनी गलती का एहसास? यही है कहानी में आने वाला ट्विस्ट।
2: वही कर लो, आप इस घर से बाबा को वार्न करो, बाबा रॉन्ग के मम्मा, हमें उन्हें रोकना होगा।
0: दुआ, अपनी मम्मा को मुझे मारने के लिए बोलोगे?
2: हाँ, तोड़ दिया तुमने आज मेरी बेटी को।
3: समझा था अपनी ढाल, उसी बेटी ने दिखाया धैर्य को उसका असली चेहरा।
1: कोलकाता पहुंच गए हैं कृषाल अहूजा और देख लीजिए कृषाल का ये बेयर बॉडी अंदाज, जहां वो करा रहे हैं अपना हॉट एंड हैपनिंग फोटोशूट, जहां वो पुशअप्स कर रहे हैं और फोटोशूट के लिए दे रहे हैं पोजेस। देख लीजिए कृषाल का ये स्वैगर वाला अंदाज़।

0: और आप जिसे भी नॉमिनेट करना चाहते हैं,
1: नजर डाल लीजिए बिग बॉस के आने वाले नए टास्क पर, जहां होगा बॉक्सिंग नॉमिनेशन टास्क, जिसमें अपने ही अपनों के खिलाफ होने वाले हैं।
2: अकड़ है क्योंकि आपको लगता है कि आप ही हैं जो कुछ है।
3: ये एक वाहियात किस्म के बुली इंसान है।
4: इनको लगता है बहुत नेक है, बट मेरे को लगता है बहुत फेक है।
5: द रीजन फॉर मी टू नॉमिनेट हिम इज आई एम नॉट।
0: जो सदस्य इस हफ्ते नॉमिनेट होते हैं वो हैं

अक्षय कुमार और आर माधवन साथ साथ नजर आएंगे आने वाली कॉमेडी फिल्म में, जिसमें अब नजर आएंगी दिशा पटानी और श्रिया सरन, ऐसा सुनने में आ रहा है।

चलिए अब एक्ट्रेस शफक नाज संग शादी की शॉपिंग पर चलते हैं। चौंकी नहीं, ये शादी की शॉपिंग वो खुद के लिए नहीं बल्कि दोस्त की शादी के लिए कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि दोस्त की शादी में क्या पहनने वाली है शफक।

0: मिलिए शफकनास से, जिन्हें ज्यादातर लोग महाभारत की कुंती के रूप में जानते हैं, लेकिन अब शफकनास की शादी हो गई है। उनके पति हैं जिशान पावेकर। इनकी शादी तो 2024 में हुई थी, लेकिन 2026 में ही इन्होंने ये शादी अनाउंस की थी। लेकिन शफक आज कर रही हैं कुछ खास शॉपिंग, वो भी शादी वाली। जी नहीं, उनकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन उन्हें एक शादी अटेंड करनी है और इसके लिए वो निकली हैं सास बहू और बेटियां संग शॉपिंग करने। भाई वो लहंगा खरीदेंगी, रिसेप्शन की ड्रेस खरीदेंगी और चेकआउट करेंगी कि बाजार में आजकल क्या है वेडिंग का ट्रेंड। भाई शादी का मौसम शुरू होने जा रहा है, ऐसे में बाजार में आ गए हैं कुछ नए डिजाइन जो इस फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में आप पहन सकते हैं। तो शफकनास आज कर रही हैं सास बहू और बेटियां संग ये शॉपिंग डे आउट, जहां वो फेस्टिवल और शादी के कॉस्ट्यूम्स चेक करेंगी। शफक को लहंगे पहनने का बहुत शौक है, उनकी शादी तो गुपचुप हुई, लेकिन अब वो जो शादी अटेंड कर रही है इसके लिए वो कुछ खास ढूंढ रही हैं। तो चाहे वो लहंगा हो, वो चाहे कॉकटेल की ड्रेस हो, या फिर हो कुछ खास, शफक को ब्लिंग पसंद है और यहाँ पर वो ब्लिंग ढूंढ रही हैं। तो चलिए शॉपिंग से करते हैं ये शॉपिंग वाला डे आउट।
1: मेरा मन कर रहा है मैं वो मैनी क्वीन को हटा के खुद बैठ जाती हूँ वहाँ पे, एंड एज यू कैन सी पिंक इज माय फेवरेट कलर और आई रियली लाइक दिस। आई एम गोइंग देयर एंड सिटिंग फॉर अ वाइल, लाइक जस्ट फॉर अ वाइल। जैसे कि हम लड़कियों का शौक होता है कि हमें शादी के कपड़े बहुत पसंद हैं एंड वी लव शॉपिंग, तो यह मुझे एक नया बहाना मिल गया है शॉपिंग करने का, तो आई एम हेयर टू शॉप फॉर द वेडिंग एंड सो या लेट्स सी हाउ इज इट। एंड आई हैव हर्ड दिस स्टोर इन दिस शोरूम इज रियली गुड एंड देव गॉट अ रियली नाइस कलेक्शन, सो लेट्स चेक आउट। आई लव शॉपिंग, बट मैं शॉपिंग मेरी शॉपिंग मुझे पता होता है मुझे क्या लेना है, मैं जाती हूँ और मैं उठा लेती हूँ। आई डोंट गो एंड यू नो आई गो टू 10 स्टोर्स और वहाँ से फिर देखती हूँ कि अच्छा अभी इसमें से क्या लेना है। मुझे शॉपिंग करना पसंद है बट आई नो व्हाट आई वांट टू बाय, सो या आई सेव टाइम, बट या आई लव शॉपिंग, आई लव क्लोथ्स। लहंगों की खूबसूरती इसी में होती है कि जितना वो हैवी होता है और यू जस्ट लव वेयरिंग लहंगा। आई मीन मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की होगी जिसको लहंगे पहनने का शौक नहीं होगा या ऐसा कुछ पहनने का शौक नहीं होगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि मैं क्या ले सकती हूँ, क्या खरीद सकती हूँ। लेट्स गो।
0: शफक आजकल मुंबई और मस्कट के बीच में शटल करती हैं, लेकिन अब वो मुंबई में आई हैं अपनी इस फ्रेंड की वेडिंग के लिए कुछ खरीदने। तो उनकी कुछ स्पेसिफिक चॉइसेस हैं और उनकी कुछ खास नापसंद है और कुछ पसंद है जो उन्होंने इस वेडिंग स्टोर की टीम के साथ शेयर की।

0: So, मुझे रिसेप्शन के लिए आई नीड समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एम वेयरिंग अ लहंगा ऑलरेडी ऑन यू नो मेन बारात. सो आई एम लुकिंग फॉर अ गाउन और या समथिंग लाइक दैट.
1: I'll show you some gowns here.
0: Yeah.
2: शफक को ब्लिंग पहनना पसंद है और वो अपना लहंगा ढूंढ रहे हैं जो है भरा भरा. तो आखिर जानते हैं कि इस शादी के लिए शफक की चॉइस क्या है.

0: किसी भी लड़की से एक तो आप ये कभी जिंदगी में सवाल मत पूछना कि कितना डिफिकल्ट होता है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं. मतलब मैं यहाँ इस स्टोर पे बैठ सकती हूँ, एक दिन निकाल सकती हूँ और डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या मुझे पहनना है. बिकॉज यू नो लाइक आई सेड कि हमको तैयार होने का बहुत शौक होता है और शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है. तो जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, तब बड़ी इमोशनली परेशानी हो जाती है डिसाइड करने के लिए कि क्या पहनना चाहिए.
1: शफक ने इस वेडिंग स्टोर में अलग अलग कलेक्शंस चेकआउट किए और टीम को एक्सप्लेन किया कि आखिर स्पेसिफिकली उन्हें क्या चाहिए.

आई थिंक क्योंकि मैं ऑलरेडी लहंगा एक थोड़ा सा हैवी पहन रही हूँ, तो आई थिंक मैं रिसेप्शन को अगर एक रेड में थोड़े ऐसे कलर में नहीं रखे, थोड़ा एक सूदिंग कलर में रखूँ तो दैट विल बी मच बेटर. कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं ना देखा, बाएं ना देखा. सो आजकल फ्लोरल वर्क और लहंगा बहुत इन है, तो आई थिंक आई गो फॉर दिस वन बिकॉज यू नो बहुत सूदिंग कलर्स हैं. और सो जैसे कि देख सकते हो आप, इसके कलर्स बहुत सूदिंग हैं और जो कॉम्बिनेशन है, आई लव बेबी पिंक एंड दिस ब्लू कलर. ये बहुत, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली. और दिस कपड़ा, व्हाट दिस रॉसिल, सो ये रॉसिल वो जो शाइन आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है. सो यार गो फॉर दिस एंड दिस वन मोर, एक्चुअली टू मोर. मेरी बहुत देर से नज़र है इस लहंगे पे, दिस लहंगा. सो एज यू कैन सी, और जितना मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये बहुत हैवी लहंगा है, इतना काम किया. एग्जैक्टली. सो इसमें सीक्वेंस है, मोती है. आई मीन दिस इज दिस लहंगा इज फिल्ड विद वर्क, लाइक लॉट्स ऑफ वर्क, एंड इट्स ब्यूटिफुल. या इट्स वेरी ब्यूटिफुल. एक्चुअली डिपेंड तो करता ही है, बट मुझे ज़्यादा वर्क वाले चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो भरा भरा हो. यू नो व्हेन इट कम्स टू लहंगा, आई फील इट शुड बी भरा भरा, नॉट वेरी भरा, बट या वो एक थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ना वो आना ही चाहिए. सो जैसे कि दिस लहंगा, और मुझे पर्सनल लाइफ में लहंगे वेलवेट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मुझे वेलवेट के कपड़े में, आई डोंट नो समहाउ, मुझे ऐसा लगता है मटेरियल बहुत सुंदर लगता है, और आप कोई भी वर्क आप इस मटेरियल पे करो वो उसको और हाईलाइट करता है.

0: स्टोर के तमाम कॉस्ट्यूम्स को ट्राई करने के बाद फाइनली शफक ने दो ऑप्शंस को चूज किया। अब वो दोनों ट्राई करेंगी और इसमें से वो फाइनल शॉपिंग पूरी करेंगी।
1: सो फाइनली मैंने इतने सारे ऑप्शंस में से ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करके मैंने दो ऑप्शंस निकाले हैं और अभी मैं जाके उनको ट्राई करने वाली हूँ। बहुत अच्छी यात्रा थी। मैं अपनी इमेजिनेशन में सारे कपड़े पहन चुकी हूँ। सो या इट्स लाइक आई सेड आई लव द कलेक्शन। इट्स रियली नाइस एंड इट्स ब्यूटिफुल। और बेस्ट पार्ट है कि बहुत वैरायटी है। आपको अगर हैवी चाहिए तो दे हैव दिस हैवी का कलेक्शन। इफ़ यू वांट समथिंग इन फ्लोरल दे हैव दैट। और या एवरीथिंग इज़ देयर। सो आई एम गोना गो एंड ट्राई दोज ड्रेसेस।
0: अब शफक ने ट्राई किया अपना शॉपिंग नंबर वन जो है ये लहंगा। इसका कलर उनका फेवरेट है और इसका डिज़ाइन भी उन्हें पसंद आया। और देखिए ट्रायल के बाद कुछ ऐसा लग रहा है शफक का लुक। भाई लगता है एक बार फिर से वो दुल्हन बन गई हैं।

0: हाँ मुझे एक्चुअली ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं ऐसे खड़ी हो जाऊँ और यू नो ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली ये घूम जाए नीचे से, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. एज यू कैन सी बहुत सुंदर गाउन है और मैं अपने आप को भी देख रही हूँ बिकॉज इट्स रियली ब्यूटिफुल एंड बहुत प्रिंसेस जैसी मुझे फीलिंग आ रही है गाउन पहन के. एंड आई लव द स्लीव्स और द कलर इज रियली नाइस एंड सूदिंग एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर द रिसेप्शन.
1: स्ट्रगल है कि नहीं होता?
0: थोड़ा नहीं, बहुत. टू गेट इन टू थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है एंड यू नीड समवन सम हेल्प टू गेट इन टू दिस गाउन. बट यू नो जब आप देखते हो अपने आप को और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और लोग बोलते हैं दैट यू लुकिंग रियली प्रिटी और यू नो आई लाइक योर ड्रेस, तो आई थिंक उस टाइम पे ना आप सब सारा तैयार होने का स्ट्रगल भूल जाते हो और आपको बस अच्छा लग रहा होता है. तो मुझे लगता है कोई भी ड्रेस जब आपको अच्छा फील कराती है, आई थिंक जस्ट वेयर इट एंड एंजॉय इट. इट्स में फ्लोरल वर्क है और या इट्स बिकॉज उसका जो बेस है वो लाइट है और जो गाउन है उस पर गोल्डन एंड यू कैन सी इस पर ग्रीन कलर का भी हल्का सा वर्क है और पर्ल्स हैं, सो इट्स रियली ब्यूटिफुल. और जो नेक है इसका ऊपर का पोर्शन थोड़ा फिल्ड है और नीचे का थोड़ा सा लाइट है, सो ये आई थिंक वो उस गाउन को और ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं. हाँ अभी ये मेरा रिसेप्शन का ड्रेस है और अभी मैं लहंगा ट्राई करने वाली हूँ, तो देखते हैं.
2: अब देखते हैं कि शफक की शॉपिंग नंबर 2 क्या है. भाई ये है एक इंडियन कॉस्ट्यूम जिसका दुपट्टा भी खास है और इसका डिजाइन भी, और जैसा शफक को चाहिए इसमें ब्लिंग भी है और ये भरा भरा है. और देखिए दुपट्टा ओढ़ का कैसे दुल्हन की तरह शर्मा रही हैं.

0: गया।
1: ये मुझे कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा आउटफिट का, एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर बारात का फंक्शन, बिकॉज मेरी जो सेकेंड ड्रेस है वो लाइट थी और इसका कलर बहुत वाइब्रेंट कलर है इसके, तो आई थिंक आई एम गोइंग फॉर दिस वन, एंड या इट्स अ ब्यूटिफुल हैंग आउट। ये ठीक है, ये परफेक्ट है, ये मैं इसमें अच्छे से बारात में नाच भी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, सो या इट्स नॉट अ वेरी हैवी लहंगा एक्चुअली। मेरा इसलिए मैंने रिसेप्शन का थोड़ा हैवी चूज़ किया और बारात का, दिस इज इट्स नॉट अ लॉट्स ऑफ वर्क इन दिस लहंगा। इस लहंगे का प्लस पॉइंट है इसका कलर, कलर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि इस पर उतने वर्क की ज़रूरत ही नहीं है लहंगे पर। दुपट्टा, एज यू कैन सी, इसका दुपट्टा एक साइडेड, बहुत इंटरेस्टिंग दुपट्टा है इसका। इसका एक साइड दुपट्टे पे कम वर्क है और दूसरे साइड इसके दुपट्टे पे अच्छा खासा वर्क है, सो या और इट्स अ वेल वेट देयर एंड इट्स अ वेरी नाइस पल्ला एक्चुअली।
0: ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जा।
1: हाँ, मैं डिसाइड कर लिया है मैंने मुझे क्या पहनना और मुझे क्या लेना है, और यस, जो मैंने गाउन इसके पहले पहना था मैं वो गाउन मैंने चूज़ कर लिया है और आधा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, और मुझे बहुत अच्छी ड्रेसेस मिली हैं, सो नाउ आई विल वेट फॉर द गुड कॉम्प्लीमेंट्स।
2: वैसे शफक की अपनी शादी पर बात करें तो उन्होंने शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से की थी। जिशान के साथ उन्होंने 23 अक्टूबर 2024 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी तो की, लेकिन पब्लिकली उन्होंने सोशल मीडिया पर जून 2026 में इसका अनाउंसमेंट किया था। कहा जाता है कि वो अपने हस्बैंड से अपनी महाभारत की कोस्टार सुहानी धनकी के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मिली थी और अब वो हैप्पीली मैरिड है, यानी अब शफक अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं।
1: अपनी शादी के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता? ऑफ कोर्स यार, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी शादी का एक्साइटमेंट कम होता है, वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, और आई थिंक किसी भी लड़का या लड़की के लिए बहुत खूबसूरत पल होते हैं वो, जब वो शादी कर रहे होते हैं या शादी की बातें होती हैं।
2: काफी दिनों से OTT शोज में बिजी शफक जल्द ही टेलीविजन में दिख सकते हैं और शायद बिग बॉस भी हो सकता है वो शो जहां हो उनका कमबैक शादी के बाद।

0: मुझे नहीं पता है, मैं घर में रहकर मैं क्या करूँगी. आई डोंट नो राइट नाउ. मुझे आई नेवर थॉट अबाउट दिस थिंग. सो आई डोंट नो. सी मैं ना कुछ प्लान नहीं करती हूँ और दिमाग में कुछ सोच के नहीं रखती हूँ. आई टेक एज इट कम्स और मैं उसी पे बिलीव करती हूँ हर चीज़ को लेके. तो ये आई डोंट थिंक टू मच. आई मीन जो जैसे हो रहा है चल रहा है, जस्ट यू नो जस्ट गो विद द फ्लो. सिंपल.
1: फाइनली शफक की शॉपिंग हुई पूरी और देखिए बड़ा सा बैग उठाए उन्होंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लिए कुछ शॉपिंग की. कब खुद शादीशुदा है और अब नया परिवार और नई जिम्मेदारियों के साथ उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है.
0: मैंने ले लिया है, इसमें तो थोड़ा सा कुछ है और बाकी मैंने रखा दिया बिकॉज टू हैवी, आई कांट कैरी इट. एंड एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा. एंड दिस शोरूम इज इट्स लवली एंड स्टाफ इज रियली गुड एंड इट्स बीन नी. सो या ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड एंड आई रियली एंजॉयड दिस शॉपिंग. आप किसी शादी में जा रहे हैं या जो भी फंक्शंस है, जस्ट लुक प्रिटी, दैट्स ऑल एंड बी हैप्पी.
1: तो ये थी शफक नाज और उनके साथ आज सास बहू और बेटियां ने किया ये शॉपिंग वाला डे आउट, जहां उन्होंने बाजार में मौजूद फेस्टिवल के अलग अलग कलेक्शंस को चेक किया, थोड़ी शॉपिंग की और अब अपने त्योहारों और वेडिंग के सीजन में उनकी तैयारी हुई पक्की है. तो शफक की तरह क्या आपकी तैयारी हो गई है? नहीं हुई तो हमारी ये शॉपिंग गाइड शायद आपके काम आए. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
2: गेम रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का फिनाले हो चुका है और अविनाश मिश्रा बने हैं शो के विजेता. तो चलिए देखते हैं इस फिनाले के मजेदार नजारे.
3: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का विनर है अविनाश मिश्रा.
4: खतरों के खिलाड़ी बने अविनाश. अविनाश को मिला ईशा का साथ. ट्रॉफी हाथ में लिए इतराते अविनाश मिश्रा. तो फाइनली खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 को उसका विनर मिल चुका है. स्टंट पूरे कर खतरों से खेलकर हर डर को पार कर खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के विनर बन चुके हैं अविनाश मिश्रा. और देखिए उनकी खुशी आज देखने लायक है. और इनकी इस खुशी में शामिल हुई है इनकी बेस्ट फ्रेंड ईशा. भाई बिग बॉस में तो ये साथ थे ही. अविनाश खतरों से खेलकर जीत गए और इसकी डबल खुशी ईशा को है.
3: तीनों ने स्टंट परफॉर्म किया और कमाल किया. अब बात है कि किसने सबसे कम वक्त में किया वो होगा विनर. लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि किसने सबसे ज्यादा वक्त लिया. सबसे ज्यादा वक्त जिस खिलाड़ी ने लिया है वो है ओरी.
5: थैंक यू.
3: और अवत्रमानी राइट.
6: जब मैं ये शो किया मैं कभी नहीं सोचा कि मैं टॉप 5 या टॉप 3 में आएगा भी. मैं ये विश्वास मैं मेरा सेल्फ पर नहीं किया. तो और यू नो मेरा सेमीफाइनल स्टंट के पहला रूबीना ने मुझे पूछी, शी वाज लाइक आर यू प्राउड ऑफ योर स्टंट्स, आर यू प्राउड ऑफ हाउ फार यू कम. मैं बोला रूबी यू नो आई एम प्राउड ऑफ ऑल माय स्टंट्स पर मैं कभी एक बार साफ नहीं जीता था. और वो सेमीफाइनल स्टंट में मैं एक बार साफ जीता. दैट वाज माय ओन benchmark with myself. और क्योंकि अविनाश वो स्टंट में मेरे साथ था और यू नो हाउ मच मैं कंप्लेन किया कि मुझे हर बार हराता था. सो आई एम रियली हैप्पी और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय ओन जर्नी.
3: वी ऑल आर प्राउड ऑफ योर जर्नी. क्या बात है. अरे चलिए अब वक्त आ गया है अनाउंस करने का कि कौन है विनर. खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का विनर इन दोनों में से कोई एक है.
7: कोई
3: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का विनर है।

0: Are we nice person out? Yeah!
1: मैंने कहा था ना कि ये शो में हमने जो कुछ भी शूटिंग के दौरान कहा वो हुआ। तुम्हें याद है जब तुम रो रहे थे, मैंने कहा था कि तुम एंड तक टिकने वाली चीज हो, जीत गया।
2: एक बात बोलना है सर।
0: यस।
2: 2016 और अभी 2026, 10 साल में कई बार नॉमिनेट हुआ हूँ, हर बार अवार्ड फंक्शन में बैठा हूँ, लास्ट रियलिटी शो के फिनाले में भी पहुंचा। पूरे 10 साल की करियर में कोई ट्रॉफी कोई अवार्ड नहीं मिला था, पहला है और इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। थैंक यू सो मच सर।
0: चलिए ट्रॉफी टॉप 5 आप लोग दीजिए। कम
3: ऑल ऑफ अस गाइस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस।
4: भाई अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 को उसका विजेता मिला है, ऐसे में पार्टी तो बनती है। तो यहाँ पर शुरू हो गई सक्सेस पार्टी और विनर पार्टी, जहाँ सभी खतरों के खिलाड़ी हुए शामिल। साथ है रोहित शेट्टी, इसके अलावा यहाँ नजर आए अविनाश अपने बॉयज गैंग के साथ। साथ ही फरहाना और रूहानिका, रुबीना दिलैक, शगुन, जैस्मिन, हर्ष, सभी लोग इस पार्टी में पहुंचे और आज तो खतरों से खेलने का टाइम खत्म और पार्टी मोड ऑन हो चुका है, इसलिए आज ये सभी सजे धजे हैं पार्टी मोड में।

साथ ही देख लीजिए पार्टी के इनसाइड नज़ारे, कैसे अविनाश जीतने की खुशी में पार्टी करते नजर आए अपने खतरों के खिलाड़ियों संग। साथ है होस्ट रोहित।

0: Everybody asked me what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. मैं तो हार गई.
1: रख ला जरूर कोई ना, हो जूगा प्यार भी जरूर कोई ना.
2: भाई फिनाले एपिसोड की बात करें तो यहाँ खास मेहमान बनकर आई हैं ये जोड़ियाँ, यानी कि पति पत्नी और पंगा. यहाँ पर भी हो रहा है पंगा, साथ है होस्ट मुनावर. तो आइए देखते हैं ये नज़ारे.
3: पुलअप्स लगा सकते हैं. आपको नंबर लिखने हैं, छुपाइए और नंबर लिख दीजिए. चलिए बॉयज रेडी.
4: रेडी.
3: 3, 2, 1 गो.
5: अरे 1 मिनट खत्म हो जाएगा.
4: मैं ये मार सकता हूँ.
5: नहीं नहीं नहीं.
3: हाँ ये चलेगा चलेगा, आप ये मारो.

0: चलो मैं बताता हूँ किसने कितने पुलअप्स मारे हैं। विवेक भाई ने मारे हैं 17 पुलअप्स। दिव्यांका दिखाइए। क्या बात है। करण भाई ने 16 मारे हैं।
1: 16
0: फराना
2: 16 मारे, 16 मारे।
0: कितना है? दीपिका। ओह चलिए तो इनका जो तालमेल जो है और स्टेमिना दोनों ही खराब है। अब हम करेंगे पत्नियों का और बेस्ट फ्रेंड का रियलिटी चेक। हमने हमेशा देखा है कि पतियों की सबसे ज्यादा बुराई जो है वो पत्नियां करती है, तो मुझे लगता है क्यों ना पतियों को पूछा जाए कि आपको क्या लगता है एक मिनट के अंदर आपकी कितनी बुराइयां कर सकती है। दिव्यांका रेडी?
3: रेडी।
0: 3, 2, 1।
3: इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लेट लतीफ है। स्पेशली जब हम एयरपोर्ट जा रहे होते हैं 100% ये लेट कराते हैं, और अगर हम लोग गलती से टाइम पे पहुंच गए तो जस्ट गेट में एंटर करने से पहले इन्हें वॉशरूम जाना होता है। दूसरी बुराई ये हर बात में बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा,
0: केयरलेस केयरलेस।
3: इसके अलावा यार नहीं हो रहा, इतना बच्चा पति है मेरा, मैं कैसे बुराइयां निकालूं।
0: आपने ओवरऑल 2 ही बुराई की है। 75 बुराई। एक मिनट, रोहित सर कुछ बोल रहे।
4: अर्चना जी हाँ। आपको यहाँ होना चाहिए था।
0: चलो फराना स्टार्ट।
5: सबसे पहले इसने शेव किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्लीन शेव, चिकनी चमेली लग रहा था पूरा।
0: उसके बाद
5: हाँ, ही नेवर आस्क मी प्रॉपरली फॉर ए कॉफी और एनी अदर
0: लाइक के लिए पूछा नहीं है।
5: यस। एंड थर्ड वो मेकअप मैन में मेरे सामने बैठ के उनके साथ मेकअप वाली लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जो बहुत ही गंदी आदत है। मेरे से पहले खाना शुरू करता है। उसके बाद बस में केप टाउन में मेरे से पहले बस में चढ़ रहा था। After that, मेरे स्टंट्स जितने होते थे ये अपनी मस्ती में रह जाता था। जब इसको लगता था कि सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बाद उसे याद आता था ओ मैं भी, वो मुझे भी करना है, तो देन वो शुरू करता था फरहाना। कितने हुए?
6: 6 हो गई हैं।
5: इसके घर पे अभी कुछ फेस्टिवल है, उसके लिए भी इसने मुझे अच्छे से इन्वाइट नहीं किया। ही मेक्स इट फॉर्मेलिटी एंड
0: टाइम ओवर।
4: बहुत बढ़िया,
1: वेरी गुड। लेकिन अर्चना जी आपको यहाँ होना चाहिए था।
2: अच्छी बात नहीं है,
6: फरहाना को 10 सेकंड और दे देते
0: हाँ
1: तो तुम यूरोप जा सकते
6: तो
1: थे।
6: मैं यूरोप जा सकता था।
0: करण भाई डेट से पहले अगर ये हाल है तो हल तो। दीपिका
7: सबसे पहले तो बहुत कम पानी पीते हैं, पानी पीते ही नहीं है। दूसरा जब मैं सोहम को डांटती हूँ तो ये ऐसे रिएक्ट करते जैसे

0: बारह
1: इतने कहाँ से लाऊंगी?
2: लेकिन अर्चना जी आपको यहाँ होना चाहिए था।
3: रोहित सर के शो पे आए और डिमांड है तो अर्चना मैम परमित सर प्लीज आ जाइए।
1: तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इसे उल्टा कर देते हैं, मेरे बहुत ही अच्छे पति हैं तो इसलिए ये मेरी तारीफ करें, ये होना
3: चाहिए। अर्चना जी ग्रेट आइडिया, आप इसमें लिख दो कितनी तारीफ कर सकते हैं और सर ऑल द बेस्ट।
4: भाई इतना हंसती है, इतना हंसती है, इतना कमाल का हंसती है, पागलों कैसे हंसती है? लेकिन पागल नहीं है, पागल नहीं है।
1: ये मेरी तारीफ हुई है बेसिकली। समझ
4: नहीं आ रहा। अर्चना के हाथ का खाना कभी नुक्स निकाल ही नहीं सकते, कभी बनाए हो तो नुक्स निकालोगे ना। और इतनी पतिव्रता है, इतनी पतिव्रता है कि गैरों को छोड़ो वो अपने मर्द को भी नहीं देखती।
5: और इसी के साथ सीजन हुआ खत्म। अब आएगा नया सीजन और नए खिलाड़ी, तो हो जाइए तैयार। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीजन में
6: कौन?
2: वही वही
1: कुछ तो ही
6: मुझे लग ही रहा था,
1: मतलब
7: मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, लिप रीडिंग। अच्छा
2: और भी लोग हैं, और भी लोग हैं।
8: सीरियल वसुधा में हो रही है फूल की सगाई। एक तरफ जहां सगाई रस्म का सेलिब्रेशन है तो वहीं इस सेलिब्रेशन के बीच हुआ थप्पड़ ड्रामा। खुशी के इस माहौल में कैसे हुई अपशगुन की एंट्री, देखना दिलचस्प होगा।
9: हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई।
5: समर और फूल की सगाई की रस्म
9: शहनाई।
5: शुरू हुआ थप्पड़ ड्रामा। क्या सामने आएगा समर का सच?

देखिए कैसे फूल तो दुखी है लेकिन समर काफी खुश है क्योंकि समर यहाँ अलग इरादों से आया है। ऐसे में वसुधा देव और सभी घर वाले इस सगाई की रस्म में हो गए हैं शामिल।

0: रीति रिवाजों के साथ समर और फूल की सगाई की रस्म हो रही है। सभी घर वाले शामिल हैं, लेकिन सगाई की इन खुशियों में ट्विस्ट का तड़का तब लगता है जब आ जाते हैं समर के असली मम्मी पापा। और देखिए कैसे शुरू हो गया है थप्पड़ ड्रामा, जहां समर की माँ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि समर असली नहीं बल्कि नकली माँ बाप को सगाई में लेकर आया था। भाई समर के तो इरादे ही नेक नहीं है, ऐसे में यहाँ सच खुलने के बावजूद भी लाजवंती समर का ही साथ दे रही है।
1: मैं किसी जगह जाना,

0: देखते हैं कि अभी हमारा जो ये वसुधा में जो हमारा ट्रैक चल रहा है, अपना हमारा हक लेने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम कहाँ तक जाते हैं, जीतते हैं नहीं जीतते हैं। बाकी फाइनली जो हम मतलब बिरजू का, लाजवंती का और तीजन का जो सपना था कि उनकी पोती का, उनकी बेटी की शादी हो, तो वो होते हुए नजर आ रहा है।
1: भाई ये सब ड्रामे से पहले चंद्रिका ने खुद कहा था कि वो समर और फूल की शादी करवाएगी और उसमें शामिल भी होगी। देखिए कैसे वो सब चीजों के लिए माफी भी मांग रही है और शादी के लिए खुशी भी जाहिर कर रही है।
2: हम आप सब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हम भूल गए थे कि एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचती। समर के साथ हमारे परिवार का रिश्ता भले ही खराब है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि फूल के साथ भी ऐसा ही। अगर लाजवंती ने फूल का रिश्ता समर के साथ तय किया है तो फूल के लिए यही सबसे अच्छा होगा। माफी के साथ साथ हम और एक इजाजत चाहते हैं। फूल इस घर की बेटी जैसी है और पहली बार हमारे घर में किसी बेटी की शादी की तैयारियां होती है, तो अगर तीजन जी की इजाजत हो तो हम इस शादी में कोई कमी नहीं रहेंगे। मैं 2 मिनट अपनी पोती से बात कर लूं।
1: लेकिन जैसे ही चंद्रिका को ये पता चलता है कि फूल इस शादी से खुश नहीं है और वो समर को पसंद नहीं करती, तो ऐसे में वो लाजवंती से एक मौका मांगती है ये साबित करने के लिए कि समर गलत है, और उसे दादी मौका दे भी देती है और लाजवंती भी।
3: तो शादी से राजी क्यों है? समर से में क्या बुराई है?
2: समर अच्छा लड़का नहीं है और जब फूल भी इस शादी से खुश नहीं है तो हम ये रिश्ता तोड़ क्यों लिए? फूल इतनी प्यारी बच्ची है, इसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी। मौसा, ये औरत हमारी लाडो की खुशियों से जले है, इसलिए उसे उल्टी सीधी बात पढ़ा रही है। मौसा, इसे अभी कमरे से बाहर जाने के लिए कहिए। उस समर की असलियत साबित करने के लिए हमें बस एक मौका दीजिए।
3: ये इतनी बार कह रहे हैं तो एक बार मौका देने में हर्ज के है? थारे को मौका दिया लेकिन बस एक बार, जो साबित करना है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत जल्द समर की सच्चाई आप सबके सामने लेकर आएंगे।
1: असल में चंद्रिका और वसुधा को तो समर का असली चेहरा सबके सामने लाना है। ऐसे में वहाँ एक और परेशानी है कि प्रभात अब चल फिर नहीं रहे हैं, इसी टेंशन में घर वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आया है। वसुधा की कोशिशें रंग लाई और देखिए प्रभात अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ और उसने पानी भी अपने हाथों से पिया। ये देखकर चंद्रिका की खुशी का आज ठिकाना ही नहीं है और अब तो वसुधा और चंद्रिका के प्लान में प्रभात भी शामिल हो गया है। अब अतीत के पन्ने खुलेंगे और सच का खुलासा जल्द ही होगा।
4: बड़े हो, आइए आइए ना, पानी पीजिए, प्यास लगी है ना आपने?

0: अभी हमारे घर में फूल की सगाई की तैयारियां चल रही हैं और ये सगाई ऐसी है कि कोई चाहता नहीं है ये हो, क्योंकि समर वापस आ चुका है और समर तो पता है हमारे घर का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो आया भी इस बार फिर से दुश्मनी लेकर ही है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं हम। प्लान तो है कि सगाई नहीं होने देंगे और वहीं दूसरी तरफ फूल को प्यार हो गया देवसर से, तो वसुधा के मन में ये दोनों दुविधाएं हैं, उसके सर पे इतना बड़ा बोझ है, वो समझ नहीं आ रहा उसको किसे बताए। और यहाँ बड़े हुक्म को होश भी आ गया, जो एक गुड न्यूज है अमंग ऑल बैड न्यूज।
1: तो अब आगे जो स्टोरी बढ़ रही है फूल की सगाई को लेकर समर के साथ, वहां पर प्रभात का क्या योगदान होगा, क्या वो ये शादी को आगे बढ़ा पाएगा या नहीं। वसु जिस तरह से उस पूरे मामले में छानबीन कर रही है करमचंद बनकर, स्पाई बनकर, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और बिकॉज अब प्रभात कॉन्शियस स्टेज में आ चुका है, तो बहुत सारे स्टोरीज जो है वो अनफोल्ड होगी, जो सस्पेंस था वो भी अनफोल्ड होगा।
2: तो भाई अब देखना होगा कि शादी के दौरान क्या क्या ट्विस्ट आते हैं और कौन कौन से सच का खुलासा होता है। मुंबई से कामेंद्र और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: रियल जगधात्री में बहरूपिया बन महेश आरती के सामने आया रुद्र और खुल गया उसके जिंदा होने का सच। ऐसे में एक तरफ जहां महेश ने मारा रुद्र को थप्पड़, तो वहीं आरती ने दी सुसाइड की धमकी। आखिर क्या है इस सारे ड्रामे का कारण, देखते हैं।
2: रुद्र बना बहरूपिया। महेश आरती और तपस्या के सामने खुला रुद्र का राज। रुद्र को पड़े थप्पड़।

0: टीवी के सीरियल जगधात्री में आखिरकार सबके सामने ये राज खुल ही गया कि रुद्र मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वही पहले तो पंडित के रूप में रुद्र अपनी माँ और तपस्या के सामने आया और देखिए कैसे अपने बेटे को जिंदा देख आरती खुशी से फूले नहीं समा रही। ऐसे में रुद्र उसे सारी बातें बताता है कि कैसे वो गुंडों में फंस गया है और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसे भी कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि 100 करोड़ चाहिए, जिसके लिए अब लेनी होगी महेश की मदद।
1: तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे
2: 20 लाख 30 लाख बताओ जान के पीछे क्यों पड़े, इतना सब करने से पहले बताया क्यों नहीं तुमने?
3: वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम के बीच में नहीं लाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये सब कुछ मेरी फैमिली तक नहीं आए और मैं खुद अकेले मैनेज कर लूंगा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की सही में बताओ प्लीज।
2: क्या 100 करोड़?
4: यस सर, 20-30 lakhs
3: तो होते तो
4: हम दोनों मैनेज कर लेते हैं, इसलिए लेकिन हाँ तो
3: 100 करोड़ मुझे पैसे की बहुत जरूरत है इस वक्त। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ ये सबकी, पर
0: असल में इसी मंदिर में हो रहा था रुद्र का श्राद्ध, लेकिन जब महेश को पता चला कि उसका बेटा रुद्र जिंदा है तो पहले तो वो खुश हो गया, लेकिन फिर टूटा महेश का गुस्सा और देखिए कैसे उसने रुद्र को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिए और इमोशन सारे बाहर आ गए, क्योंकि रुद्र के मरे होने की बात से महेश ने खुद को नुकसान पहुंचाया था। रो रो कर सभी घर वालों का बुरा हाल था और इसी बात के लिए देखिए कैसे महेश अपने बेटे रुद्र को फटकार लगा रहा है, लेकिन रुद्र को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
5: आते तुम चुप रहो प्लीज, बीच में मत बोलो। पर तेरी मौत का मातम मनाता रहा, अपने आप को शराब में डुबो दिया मैंने, तबीयत खराब हो गई मेरी और तू
2: बेटा है हमारा।
5: आरती विल यू शट अप, तुम आज कुछ नहीं बोलोगी, तो शर्म मेरे बारे में छोड़, इसके बारे में सोच। देख इसे रो रो के बुरा हाल कर दिया, इसने आंसू सूख गए इसके, देख इसकी तरफ बेशरम।
2: जिंदा
5: बेटे की चिता को आग लगाई, अपने आप को शराब में डुबो दिया, तबीयत खराब होगी मेरी, रो रो के बुरा हाल कर दिया मैंने, तू कह रही है कि अच्छा किया इसने? जब
3: नहीं सच में मैं सच कह रहा हूँ, वो लोग बहुत खतरनाक है, वो तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हुए, वो मुझे नहीं बचा। आज रात तक मुझे उनको 100 करोड़ रुपए देने नहीं दिए, तेरे खेल में सच में
6: काम ही ऐसा किया भाई, काम ही ऐसा किया है। देखो पहले पहचान में आ रहा हूँ मैं कि नहीं आ रहा हूँ ये बताओ। वो वापस आ गया और उसने बोला अपने मॉम डैड को कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। तो ऑब्वियसली मॉम दुखी होती है पहले, तो वो जो वो मारती है वो प्यार वाला है कि तू कहाँ चला गया था, पर डैड देखते हैं तो ही फेल्ट बिट्रेड, तो उनका गुस्सा जाया था, तो उस चीज पे दे आर एंग्री।
0: भाई रुद्र तो इनके सामने इसीलिए आया है क्योंकि उसे 100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो सच में रुद्र की जान चली जाएगी। ऐसे में महेश पैसे देने से इनकार तो कर ही देता है, साथ ही साथ पुलिस को भी फोन लगाने लगता है क्योंकि वो इस बार रुद्र की मदद नहीं करेगा। इस बात पर बाप बेटे में फिर एक बार बहस छिड़ जाती है।
5: अगर पैसों की जरूरत नहीं होती तो अभी भी तो हमारे लिए मरा हुआ होता।
7: पुलिस वाले घर आता
5: राइट, तो पुलिस वाली खड़ा की सही कह रही थी, जिस जगह से तेरी मौत की न्यूज आई थी वहां पे एक गैंग वॉर हो रही थी। यू आर अ क्रिमिनल, क्रिमिनल है तू। एटीएम वरना हम जिए या मरे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन, अगर मैं मना कर दूं तो बिकॉज हमारे लिए तो तू पहले ही मर चुका है।
3: एक बात बताइए, अगर आपका वो बेटा वो शिवाय अगर ये बात कहता आप उसको पैसे दीजिए तो आप नहीं देते क्या?
5: शराब, इतनी गंदी जबान से शिवाय का नाम मत ले तू। कहा शिवाय और कहा तू, वो तेरी तरह नहीं है। वो ऐसा करना तो क्या ऐसा सोच भी नहीं सकता है। मैं अभी कमिश्नर को फोन
3: आपको समझ नहीं आ रही है क्या बात है? प्लीज डैड को समझाइए, वो कॉल करेंगे मैं और प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, लोग मुझे मार डालेंगे। डैड आप समझने की कोशिश कीजिए।
7: महेश एक बार बात सुन लो उसकी।
5: डैड इसकी बात मैं सुन चुका हूँ, इसकी बकवास नहीं सुननी है मुझे।
8: देखिए वो थप्पड़ गुस्सा भी था उसमें, प्यार भी था, खुशी भी है, क्योंकि इतने दिन रोने के बाद अब आपने देखा है आरती एक्चुअली रुद्र को देखती है अपनी आंखों के सामने, वो जिंदा है। ऑडियंस को तो पता था, आरती को नहीं पता था। तो एक शॉक है, एक ओवरवेलम वाली खुशी है, और आई थिंक अब आरती का ये है कि मैं किसी भी रूप में अब अपने बच्चे को अपने से दूर ना जाने दूं। और ये जो हुआ एक चमत्कार आरती के लिए बहुत बड़ा, तो बस इसीलिए उसको थप्पड़ तो पड़ना ही चाहिए। जिस तरह की हरकतें रुद्र करता है थप्पड़ तो डिजर्व करता है वो।
9: नहीं नहीं, रुद्र के साथ तो इसके पापा गुस्सा ही रहते हैं। रुद्र है ही ऐसी चीज, हरकत ही ऐसी करता है। लेकिन हाँ, जब वो ऐसी न्यूज आई थी कि वो गुजर गया है, तो जो भी है तो औलाद, तो एज अ फादर महेश देशमुख बहुत ज्यादा सैड हो गया था। बहुत उसने अफसोस किया, मौन किया उसकी डेथ पे, और अपने आप को शराब में डुबो दिया। लेकिन अब यहाँ इस मंदिर में आके जो है वो सच्चाई सामने आ गई है इस वक्त, तो कि रुद्र एक्चुअली मरा नहीं है। वो मरने का नाटक कर रहा था, एक गेम खेल रहा था। उसे वो बहुत बुरी तरह फंस गया है अंडरवर्ल्ड में, उसको पैसों की जरूरत है, और छोटे मोटे नहीं बहुत बड़ी रकम की। तो वो सुना जब महेश ने कि ये सब है, तो डेफिनेटली कोई भी बाप जो है वो उसका खून खौल उठेगा, वो गुस्सा हो जाएगा, और वही सीन चल रहा है यहाँ पे।
0: भाई महेश पुलिस को फोन लगा ही रहा होता है कि शुरू हो जाता है आरती का सुसाइड ड्रामा। अपने बेटे के लिए आरती खुद की जान लेने को भी तैयार है। ऐसे में महेश मजबूरन फोन रखकर आरती को बचाता है।
3: कुछ बोलिए ना डैड को।
5: आरती क्या कर रही हो तुम?
3: मॉम ये बेवकूफी मत करिए, उसको नीचे रखिए।
7: ससुमा प्लीज इसे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? एक बार अपने बेटे की चिंता जल्दी देख चुकी हूँ मैं, दोबारा नहीं दे सकती। महेश रुद्र कहीं नहीं जाएगा।
5: आरती प्लीज मेरी बात सुनो, आरती प्लीज इसे रख दो।
7: नहीं तुम जेल भेजना चाहते हो, उसे जेल भेजना चाहते हो ना? नहीं, वो हमारा बेटा है, समझो, उसकी हेल्प क्यों नहीं करना चाहते तुम?
5: ओके नो लिसन टू मी, तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को फोन नहीं करूँ?
0: भाई फिलहाल तो घर वालों के सामने ये सच आ गया है कि रुद्र जिंदा है और सही सलामत है। अब देखना होगा कि क्या महेश रुद्र की मदद करेगा या फिर उसे जेल भेजेगा। मुंबई से कामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
10: सीरियल तुम देना साथ मेरा में अपराजिता और रक्षित दोनों अपराजिता के मायके आए हैं, और घर वाले इस सच से अनजान है कि अपराजिता रक्षित को घर निकाला मिल चुका है। ऐसे में क्या आराध्या जलन के मारे करेगी इस सच का खुलासा? चलिए देखते हैं।

0: अर्शद के साथ अपने मायके आई अपराजिता
1: होते हैं अपने तो अपने होते हैं।
0: घर वालों ने किया अपराजिता और रक्षित का स्वागत। सच से अनजान घर वाले।

0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता और रक्षित को घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में अपराजिता अब अपने घर आई है, लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान है कि बेघर होकर रक्षित और अपराजिता इस घर में आए हैं। खैर, अपराजिता घर वालों को ये बात बताना भी नहीं चाहती है। ऐसे में देखिए कैसे अपराजिता के परिवार वाले रक्षित और अपराजिता का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर खुशी का माहौल है।
1: मुझे तो लगा था कि आप सब लोग साथ में आओगे। आप अलग से आएंगे, आप बिल्कुल अलग से, ऐसे कैसे?
2: अरे सबकी अपनी अपनी गाड़ी, आराम से आएंगे एक के बाद एक।
3: इस बार जीजी ने बिल्कुल सही कहा।
4: क्या है, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमें कैसे समझ आएगा, है ना?
5: अप्पू, ये गजरों की माला, फूलों का श्रृंगार, अप्पू सजी दुल्हन जैसी, चेहरे पे झलकता प्यार।
6: न सोना न हीरा न कोई जेवर भारी, फूलों में छुपी हुई है पापा की राजकुमारी। आग दिना दिन धा।
7: सोने चांदी से कहीं ज्यादा इन जेवरों की है शान। आज बनी है अप्पू अपने पति की जान, तक देना दिन।
2: अरे अप्पू, बेटा ये फूलों के जेवर कैसे पहने हैं?
7: यहाँ आते हुए मंदिर में रुके थे, वहाँ इन्हें ये गजरे पसंद आ गए तो इन्होंने खरीद कर पहना थी।
8: वाह पुदी, मुझे सच के पाठ पढ़ाते हो और खुद इतनी सफाई से छूट भूल गई।
4: लेकिन रक्षित जी, आपको क्या हुआ? आपने ना चेन पहनी है ना ब्रेसलेट पहना है। अप्पू, तूने रक्षित जीजू को फूलों के गहने नहीं पहना है?
9: रश्मि, तुमने क्या सवालों को मेला लगा रखा है? क्या जेवर पहने, क्यों पहने, किसने पहने? अरे मेहमान आए, उन्हें बिठाओ, खिलाओ, पिलाओ।
4: आइए ना मेहमान,
3: आइए ना,
4: आओ बिठाओ,
3: आओ।
10: अप्पू, मुझे लगता है तुम्हें अपने परिवार को बता देना चाहिए कि हुआ क्या था।
7: बता दूंगी ना डिनर के बाद। अभी कितने खुश लग रहे हैं, सबका मूड नहीं खराब करना चाहिए।
10: तुम्हें पता है ना कि आरू भी यही है, बहुत से सब पता है। मुझे डर है कि हम कुछ बताए उससे पहले वो सब कुछ बोल देगी।
7: नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बात करती हूँ आरू से, वो चुप रहेगी। कुछ देर में हम खुद ही सब बता दें। मैं भी आरू, सुनना, चलना कुछ काम था, अभी आई।
4: ठीक। अरे जीजू, आप वहाँ क्यों रह गए? चलिए अंदर आइए।
3: शादी आप सबको पता है किस तरह से हुई थी, रक्षित और अप्पू की। मुझे तो पता ही नहीं था, मालती को पता नहीं था, अचानक से हो गई। पग फेरे की रस्म भी बहुत जल्दी हो गई। सो मालती और शर्मा परिवार की ऐसी इच्छा है कि अच्छे से अप्पू और रक्षित खाना खाने आए और हम उन्हें थोड़ा स्पेशल फील करवाए, यू नो। जो रस्में नहीं हम कर पाए उनके लिए, या जो कुछ प्यार नहीं दिखा पाए, वो इस तरह से हम दिखाएं, तो इसीलिए बुलाया है। और उसी की तैयारी चल रही है, जो आपने देखा अभी। बहुत खुश लग रहे हैं एक्चुअली। वो बालों में गजरा लगा कर आई है, हाथों में भी थोड़ा सा गजरा है, तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं दोनों। और मालती के लिए तो रक्षित और अपराजिता इज़ द बेस्ट जोड़ी, सो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। हमें पता नहीं चलता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तक तो हमें नहीं ही पता है। और मालती को ऐसे भनक भी नहीं है कि शायद कोई गड़बड़ हुई होगी, यू नो। सो सब अच्छा है। और उल्टा मुझे जब पता चला कि अविनाश की नौकरी चली गई है, तो मैंने ही बोला कि चलो रक्षित को बोलते हैं कि भारद्वाज जो कंपनी है उसमें हम लोग यू नो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा ठीक है ऐसा। तो लेकिन नसीब को कुछ और चाहिए।
0: लेकिन आराध्या, उसे तो सारा सच पता है। ऐसे में अपराजिता आराध्या से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को भी सच ना बताए।
7: थी? क्या हुआ दी? अरु, आज जो घर पे हुआ यहाँ किसी को मत बताना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देख एक बार रक्षित सर, मैं हम दोनों समझ लेना आगे क्या करना है, उसके बाद हम खुद ही बता देंगे।
11: ठीक है, जैसी जैसी आपकी मर्जी।
7: थैंक यू गुड़िया। विवान, विवान नहीं आया?
11: विवान, जब से आप लोग घर छोड़ के गए हैं ना, दिल टूटे आशिक की तरह घर पे बैठ के रो रहा है। उसको क्या फर्क पड़ता है किसी भी रिश्ते से, तो मुझे ये दोनों घर संभालने तो आना पड़ा मुझे यहाँ मन मार के अपने।
7: मुझे पता था जिम्मेदारी आएगी, मेरे आरू बहुत अच्छे से निभाएगी। थैंक यू।
11: अच्छा। आज तो आपने मुझे चुप करा दिया थी, पर सच कब तक छुपाओगी? झूठ की चादर कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सच को ढकना आसान नहीं होता। और मैं तो वेट ही उसी दिन का कर रही हूं जब आपका सच सामने आएगा।
0: वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले वाले भी आ गए हैं और देखिए कैसे सभी लोग अपराजिता और रक्षित के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ये सब देखकर कहीं ना कहीं आराध्या को जलन भी हो रही है।
12: अरे अप्पू, मालती ने बताया था तू और कवासा आने वाले हैं, इसलिए हम भी आ रहे हैं। ये तो गरम गरम पकवान लेकर।
13: हाँ, ये ले मालती, ले लीजिए।
14: अरे क्यों जरूरत नहीं है? अरे आप इस मोहल्ले के सबसे क्यूट और नंबर वन जवाई है, तो ये सब तो बनता है आपके लिए। लीजिए लीजिए लीजिए।
8: ये आंटियां भी ना हमेशा गलत टाइम पे टपक जाती हैं।

0: ese Nate. काम में बिजी है, इतना फालतू टाइम नहीं कि ऐसे मुंह उठा के खाना खाने घर पे टपक जाए।
1: हाँ हाँ, बिजी तो रहना पड़ेगा ना। हमारे बड़े कबर साहब ने आपको को मुंह दिखाई पे गाड़ी दी थी, तुझे भी तो ऑटो के पैसे देने पड़ेंगे ना।
2: भारती आंटी, हमारे घर पे जो चीज एक की होती है वो सबकी होती है। आप रक्षित सर से बात कीजिए, मैं और आरुख किचन में, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं।
3: खैर, आराध्या यहाँ मौजूद है तो जाहिर है कि सच जल्द ही सामने आ सकता है, लेकिन हर मुश्किल का सामना डट कर करने के लिए रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के साथ है।
2: डर लगता है।
4: किस बात के लिए?
2: सब कुछ छोड़ दिया, अपने पैसा, घर, अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए।
4: हमारे साथ होना तो और क्या चाहिए।
2: मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी
4: तो साथ मिलकर झेलेंगे।
3: अब देखना होगा कैसे दोनों मुश्किलों का साथ साथ सामना करते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: डैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको दिखाते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें एक साथ।
3: जी टीवी के आने वाले शो शुभ शगुन शहनाइया में वाइटल पार्ट निभाते नजर आएंगे गौरव मुकेश, जो करेंगे शो में एंट्री।

0: हमारी भाभी नंबर वन में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहां पर भाभी हो जाएगी किडनैप।
1: दस सालों में तुमने मुझे कभी जज नहीं किया, मुझे माफ कर दो बंसरी। तुम अभी तक मुझसे नाराज बंसरी?
0: खबरों की माने तो क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, कंटिन्यू होगा इसके बावजूद कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जल्दी रैप अप होने वाला है। साथ ही नजर डाल लीजिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के इस नए प्रोमो पर, जहां मुंबई लौट कर आएगा मिहिर और होगा तुलसी और मिहिर का आमना सामना।
2: आखिरी मौका है, अगर मेरे ठीक होने का सिर्फ एक मौका है तो मुझे ठीक होना है, मुंबई जाना ही चाहिए।
3: पता चला आपको पापा के बारे में?
4: डेट मंथ इज जून, आज से ठीक 10 साल पहले सीट नंबर 56C मिस्टर मिहिर वीरांगना।

0: अफवाह में आएगा नया ट्विस्ट, जहां अनुपमा को पता चलेगा कि आरवी दिग्विजय का बेटा है।
1: पंडित जी, ये है दिग्विजय सर, मैंने फोन पे आपको बताया था ना, आज इनकी स्वर्गवासी बेटी का जन्मदिन है।
2: पर आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, वो भव्य हवन चल रहा है ना, उस लड़के की बहन भी इस दुनिया में नहीं है, उसका आज जन्मदिन है।
1: साफी

के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
7: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज। भारत में जन्मी चीता ने 5 चावकों को दिया जन्म, देश में बढ़ रहा चीतों का कुनबा। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदक वीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोल ताशों की गूंज के बीच में बरसे फूल। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक करीब 19 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में करीब 4 लाख श्रद्धालु। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी, दिल्ली के सीआर पार्क में खास थीम पर तैयार हो रहा भव्य पूजा पंडाल, यूपी से गुजरात तक गरबा की प्रैक्टिस। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधि विधान के साथ किए रामलला के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की। और चलिए इस वक्त की शानदार खबर आपको सुना देते हैं। प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी इस वक्त की एक गुड न्यूज आई है कि कूनो नेशनल पार्क में भारत में जन्मी चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है, जो कि देश के लिए एक गुड न्यूज है। भारत में चीतों की कुल संख्या अब 60 हो गई है, जिसमें से 41 चीतों का जन्म भारत में ही हुआ है। प्रोजेक्ट चीता की इस सफलता पर सीएम मोहन यादव ने भी पार्क की व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों को बधाई दी है, उनसे बातचीत की है और जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनके बारे में भी उन्होंने हालचाल पूछा है। तो भारत में जन्मी चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है। प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी हुई इस वक्त की शानदार खबर आपको सुना रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क से सीधी गुड न्यूज आई है और इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या अब 60 हो गई है। भारत में जन्म लेने वाले चीतों की संख्या है 41। और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: बद्रीनाथ धाम यात्रा में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। इस साल अब तक 18,67,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। साल 2023 में बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा 18,39,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। इस साल अक्टूबर की शुरुआत में टूटा रिकॉर्ड। हेमकुंड साहिब में दर्शन का नया कीर्तिमान, आंकड़ा 3,67,000 के पार पहुंचा कड़ाके की सर्दी। 7 समंदर पार रहने वाले लोगों को खींच रहा काशी के आध्यात्मिक आस्था, सनातन परंपराओं का आकर्षण। अमेरिका के मिशिगन से काशी पहुंचे जैक्सन। जैक्सन अपने दिवंगत चाचा की अस्थियां लेकर काशी पहुंचे, गंगा तट पर हिंदू विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के काशीपुर राजबाड़ी में आज से शुरू हुई सदियों पुरानी दुर्गा पूजा। लगातार 16 दिनों तक अलग अलग विधि और परंपरा के साथ माता की पूजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे, विधि विधान के साथ किए रामलला के दर्शन पूजन। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, चीता के JP21 ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। KJP-21 भारत में जन्मी 32 महीने की मादा चीता है। 5 शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या 60 हुई। हरिद्वार के श्यामपुर में एक जंगली हाथी सड़क पर दिखा, कार सवार वीडियो बनाने में जुट गए। बिहार के बेगूसराय में श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत संगम, वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण नौका महोत्सव का आयोजन। नौका विहार उत्सव का आयोजन रतनपुर के ऐतिहासिक महंत सियाराम दास सरोवर में किया गया, पूरे इलाके को वृंदावन जैसा रूप दिया। बंगलुरु कलकत्ता वृंदावन से 25 क्विंटल फूल की पंखड़ियों से सजाया गया था पोखर, हजारों श्रद्धालु राधे कृष्ण के बोल पर झूमते दिखे। राधे राधे हरे कृष्ण के जय घोष के साथ गूंजा पूरा इलाका, भजनों पर हजारों श्रद्धालु हुए भावभोर। नवरात्र में माता रानी के भजनों पर थिरकने को तैयार झांसी, ऐतिहासिक किले की तलहटी में महिलाओं ने शुरू की गरबा। बड़ी संख्या में महिलाएं डांडिया के अलग अलग स्टेप सीख रही, इस बार इंडो वेस्टर्न थीम पर ज्यादा जोर दिया गया। नवरात्र से पहले देश में बढ़ रही चनिया चोली की डिमांड, गुजरात के सुरेंद्र नगर में चनिया चोली बनाने में जुटे हैं तमाम कारीगर। गुजरात में नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों पर पुलिस की नजर, आयोजन स्थलों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष में फिर से उमड़ा लोगों का सैलाब, ब्रह्म कपाल में पिंडदान तर्पण करने के लिए श्रद्धालु आ रहे। पुरोहित समाज के मुताबिक पिछले 8 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु ब्रह्म कपाल पहुंच चुके हैं। यूपी के भदोही में कारपेट एक्सपो की धूम, पहले दिन एक्सपो में 32 देशों के 147 विदेशी बायर्स शामिल हुए। 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, हाथ से बने कालीन को बढ़ावा देने के लिए 223 भारत निर्यातकों ने स्टॉल लगाया। बायर्स ने कालीन की नई डिजाइन नई वैरायटी देखी और भविष्य के लिए बिजनेस इंक्वायरी भी करते हुए वो नजर आए। राजस्थान में कोटा के 10 एक्सपोर्ट शूटिंग क्लब ने तैयार किए 300 खिलाड़ी, साल भी 15 खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड।

0: एम्स दिल्ली में ओपीडी मरीजों की एमआरआई और सीटी स्कैन की वेटिंग लिस्ट होगी खत्म, एम्स कर रहा खास योजना पर काम। निजी लैब से करार कर ओपीडी मरीजों की सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट जल्द कराने की योजना पर भी लगातार काम किया जा रहा। गुजरात में राजकोट के अमरनगर गांव में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 की मदद से एक बच्चे की बची जान। बच्चा खेलते खेलते खेत में बनी पानी की कुंडी में गिर गया था। सूरत में ब्रेन डेड महिला के अंगदान से 5 लोगों को नया जीवन मिला। गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश पटेल की मामी मंजुला बेन पटेल ने अपने अंग दान किए। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के छतरपुर में हाथियों का आतंक, रात में गांव वालों को देखकर घर में घुसने की कोशिश करता दिखा हाथी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, आज से लेकर 23 अक्टूबर तक चलेगा ये आयोजन। अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती शुरू हो गई है। गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिले इसमें शामिल हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद भी सुनी। शिखर धवन अपनी पत्नी के साथ तिरुमला मंदिर में पहुंचे, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में आए 11 नए जानवर, नई प्रजातियों में जेब्रा, कंगारू और बाकी जानवर शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन, सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम के तहत आयोजन। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के उद्योगपति और कई क्षेत्रों की हस्तियां हुई शामिल, हरियाणा सिंगापुर के बीच में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी कला प्रदर्शनी, रंगों को कैनवस पर उतारने की कोशिश। रंगों के अलग अलग लेयर्स, टेक्सचर्स और उंगलियों से बनाए पैटर्न्स के जरिए कलाकारों ने बनाई सुंदर तस्वीरें, कहीं प्रकृति की झलक, कहीं अलग तस्वीरें। गुजरात सरकार के आधुनिक कृषि उपकरण योजना से बदले दाहोद के किसानों के दिन, किसानों को उपकरण खरीदने के लिए मिल रही सब्सिडी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ ने बीएसएफ वुलर अल्ट्रा रन के तीसरे एडिशन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। फिटनेस, खेल की भावना, युवाओं की भागीदारी, वुलर झील के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मकसद रहा। बांदीपुरा में बीएसएफ हेडक्वार्टर से शुरू हुई दौड़ वुलर विंटेज पार्क में जाकर खत्म हुई, आयोजकों अधिकारियों ने इसकी तारीफ की। इस इवेंट में 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 और 5 किलोमीटर की कैटेगरीज को शामिल किया गया था, युवाओं ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में चलाया गया स्वच्छता अभियान, सीएम पहुंचे। खटीमा में 3 दिवसीय रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे। 18 राज्यों से पहुंचे जनजातीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा, हर तरफ पारंपरिक रंग दिखे। खटीमा मुख्य चौक से आयोजन स्थल तक निकाला गया भव्य रोड शो, हनुमान अंश की टीम ने सीएम धामी के साथ बातचीत की। सीएम धामी हनुमान अंश के कलाकारों के साथ जौनसार भावर की ढोल दमाऊ टीम के साथ झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों को भी मंच पर पेश किया गया, सैकड़ों की संख्या में स्थानीय थारू जनजाति समेत अन्य समाज के लोगों ने स्टॉल लगाए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक 2, इसमें मौजूद बायो एक्टिव

0: तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, भारत में जन्मे चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया, देश में बढ़ रहा चीतों का कुनबा। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदक वीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोल ताशों की गूंज के बीच में बरसे फूल। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक करीब 19 लाख भक्तों ने किए दर्शन, सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड।

साहिब में करीब 4 लाख श्रद्धालु। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी। दिल्ली के सीआर पार्क में खास थीम पर तैयार हो रहा भव्य पूजा पंडाल। यूपी से गुजरात तक गरबा की प्रैक्टिस। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विधि विधान के साथ किए रामलला के दर्शन। सुख समृद्धि की कामना भी की।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज बात करेंगे एक ऐसी दिव्य तिथि की जिसकी महिमा का गुणगान स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। आज बताएंगे आपको पितृपक्ष के दिव्य व्रत इंदिरा एकादशी के विशेष प्रभावों के बारे में। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। हर एकादशी की तरह इस दिन भी श्रीहरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना की जाती है। पितृपक्ष की एकादशी आपके और आपके पितरों के कल्याण के लिए विशेष लाभकारी मानी गई है। कैसे करते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत, चलिए जानते हैं।

0: इंदिरा एकादशी पर करें श्री हरि का सत्कार।
1: मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहनी मूरत,
0: श्री हरि की साधना से पितरों का होगा उद्धार। इंदिरा एकादशी पर पितर आएंगे आपके द्वार। पूर्वजों के लिए खुल जाएगा बैकुंठ का द्वार। नारायण की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। एकादशी का ये व्रत श्री हरि के सभी अवतारों की साधना का पर्व है।
2: इंदिरा एकादशी का महत्व यह है कि इस दिन जो भी व्यक्ति साफ सुथरे ढंग से भगवान एकादशी का व्रत करता है और विष्णु जी को ध्यान करता है तो निश्चित ही उसे अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है और इस लोक को वह अच्छे से सुख भोग करके और पितरों के आशीर्वाद से वह स्वर्गलोक मिलता है।
0: हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य काम और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप भी समझिए एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना गया है। चंद्रमा की स्थिति के कारण ही व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब या अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या है इंदिरा एकादशी का महत्व और इसकी महिमा को विशेष क्यों माना गया है। आपको बता दें कि ज्योतिषियों के अनुसार इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
3: इसका विशेष महत्व है, ये पितरों के निमित्त है। पितरों को जल तर्पण इत्यादि करके, पिंडदान करके, श्राद्ध करके, ब्राह्मण भोजन करा करके और विकलांग या दिव्यांग जनों को भोजन करा के, प्रसाद दे करके, कुछ दक्षिणा दे करके, जो अनाथालय में हैं, जो बच्चे हैं, गौ सेवा करके, इस तरीके से उनके विशेषता रहती है।
0: भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में इंदिरा एकादशी के महत्व का उल्लेख किया है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि अश्विन महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतार होते हैं। अश्विन मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इस व्रत से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। विशेष तौर पर एकादशी का ये उपवास गंभीर रोगों से रक्षा करता है। पाप नाश और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अश्विन मास की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रताप से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है।
2: पितृपक्ष की एकादशी की महिमा बहुत निराली है। चूंकि पितरों में यह एकादशी पड़ती है तो इसका कथानक यह है कि पूर्व में भगवान नारद जी यमलोक को गए थे, तो यमलोक में उन्होंने देखा कि सत्यवान वहां पर विराजमान है। तो उन्होंने सत्यवान से पूछा कि क्या कारण है कि आप यमलोक में विराजमान हैं, आपको तो स्वर्ग लोक जाना चाहिए। तो सत्यवान ने बताया कि पूर्व में मैंने एकादशी व्रत का महत्व को नहीं समझा, जिसके कारण से मुझे यह दंड प्राप्त हुआ है। अगर आप महिष्मति नगर में मेरे पुत्र इंद्रसेन को इसके विषय में बताएं और इसके महत्व को समझाएं, अगर वह यह व्रत करते हैं तो निश्चित ही मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके कारण से यह इंदिरा एकादशी के नाम से एकादशी का महत्व बढ़ गया।
0: इंदिरा एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा। जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाते हैं व्रत और उपवास। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पितृपक्ष में किसी कारण से पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो इस दिन व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलता है। लेकिन कुछ सावधानी भी इस एकादशी से जुड़ी है, जिसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इंदिरा एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। काले नीले वस्त्र न पहने। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल रखें। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। और पूजा में पीले फल और फूल जरूर प्रयोग करें।
3: इंदिरा एकादशी में देखिए व्रत रहना चाहिए, अगर हो सके तो निर्जला व्रत रखना चाहिए, नहीं हो सकता है तो फल इत्यादि करके फलाहार रह करके व्रत करना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कलयुग का समय है, कोई ना कोई बीमार रहता है तो दवा खानी पड़ती है, तो उसकी दृष्टि से उस दृष्टि से देख करके उस दृष्टि को समझ करके अगर फलाहार ना रह पाए तो भोजन इत्यादि करें, लेकिन चावल का भक्षण ना करें, चावल ना खाएं।
0: सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्त करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। आगे हम आपको इंदिरा एकादशी पर उपासना की विधि और पितरों के लिए विशेष प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। शुभ शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का सबसे उत्तम मार्ग है एकादशी। इंदिरा एकादशी की विशेष पूजा से न केवल आपके जीवन की उन्नति होती है, बल्कि पितरों की मुक्ति और मोक्ष के रास्ते आसान हो जाते हैं। आश्विन महीने की इस एकादशी पर कैसे करें श्री हरि की पूजा उपासना, इस व्रत का उत्तम विधान क्या होगा, देखिए।

0: आपके जीवन में अब होगा शुभता का प्रवेश। नष्ट हो जाएंगे जीवन के सारे कलेश।
1: मिल जाएगा मन का कमल ये, मिल जाएगा।
0: पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है इंदिरा एकादशी। पुरखों की असीम कृपा बरसाने वाली पुण्यकारी तिथि। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की उपासना का महापर्व है एकादशी। इस मंगलकारी तिथि पर छोटी सी पूजा उपासना कर आप भी पा सकते हैं श्री हरि से मनचाहा वरदान। इंदिरा एकादशी पर पूजा उपासना की विधि क्या होनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे, गौर से देखिए।
2: इंदिरा एकादशी के पूजन की विधि यह है कि ऐसा कहा जाता है कि चावल आदि का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, गुड़ चने आदि का भोग लगाना चाहिए और विधिवत ढंग से पितरों की सेवा में इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए।
0: सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें, फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें, उनको पीले फूल पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, फल भी अर्पित किए जा सकते हैं, भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। पूर्ण रूप से जलीय आहार या फलाहार लें तो इसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। इस दिन फलाहार का दान करें और गाय को भी फल आदि ही खिलाएं। अगले दिन सुबह निर्धन लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान करें और स्वयं भोजन कर व्रत का समापन करें।
3: ये जो एकादशी है ये पितरों की शांति के लिए, जो अपने पूर्वज हैं उनकी शांति के लिए, अपने अपनी संपन्नता के लिए, हमारी जो है पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये विशेष तैयार यही है इसमें कि जो है पितरों को तर्पण करके पिंडदान करके और भगवान की कृपा और पितरों की कृपा विशेष रूप से प्राप्त हो करके, जिसमें धन धान वैभव समृद्धि इत्यादि से परिपूर्ण हो करके भक्तों के ऊपर कृपा और अपने जो पूर्वज हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इसको किया जाता है।
0: पितरों की तृप्ति के इन दिनों में पड़ने के कारण ये एकादशी और भी फलदायी है। कई बार पितरों का उद्धार न होने के कारण पितृ दोष लग जाता है, जिससे हर कार्य में बार बार रुकावटें आती हैं। ऐसे में ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करेंगे तो पितरों का उद्धार होगा। इस तिथि को कुछ विशेष उपायों और प्रयोगों से अतृप्त और अशांत पितृ गणों को मुक्ति दिलाने के उपाय भी किए जा सकते हैं।
2: पितरों की शांति का उपाय यह है कि हम तिल, जौ और उसके साथ ही चावल और उसके साथ ही आप पूसा और तुलसी का पत्र आदि ले लें और इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप उनको तर्पण दें तो जिसके कारण से पितरों की शांति होती है।
0: तो जानिए इंदिरा एकादशी के विशेष प्रयोग। पितृपक्ष की एकादशी के दिन महाप्रयोग कर पितरों की शांति की कामना करें। एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के वड़े और पूरियां बनाएं। इस दिन चावल का प्रयोग न करें। एक उपला जला लें और उस पर एक पूरी में रखकर उड़द की दाल और उड़द के वड़े की आहुति दें। एक जल से भरा पात्र भी रखें, फिर भगवत गीता का पाठ करें, निर्धनों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। एकादशी व्रत का पारायण एक दिन बाद किया जाता है, तो आप भी इंदिरा एकादशी के दिन इन विशेष ज्योतिषीय प्रयोगों के जरिए अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। आगे हम आपको पितरों की शांति के लिए एकादशी के दिव्य और अचूक उपाय बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
4: देखिए व्रत और उपासना इंसान को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि तर्पण और श्राद्ध का कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में पितरों की आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम तिथि है ये एकादशी। इस दिन केवल एक उपाय से आपके पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति मिल जाएगी। देखिए ये विशेष उपाय कौन सा है।

0: मोक्षदायिनी एकादशी के व्रत में है परम शक्ति। इंदिरा एकादशी के व्रत से मिलेगी पितरों को मुक्ति। महा उपाय से तृप्त हो जाएंगे पितृगण। श्राद्ध पक्ष में विधि विधान से करें भोग अर्पण। पितृ पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी अनंत सुख शांति और तृप्ति की तिथि है। जानकारों की माने तो इस दिन छोटा सा उपाय करके उन पितरों की आत्मा को शांति दिलाई जा सकती है जिन्हें किसी कारणवश अब तक नहीं मिल पाई है सांसारिक बंधनों से मुक्ति।
1: तर्पण विशेष होता है और तर्पण श्राद्ध जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, गौओं को दान किया जाता है, अन्नदान किया जाता है, घास खिलाई जाती है और तर्पण करके और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। पिंडदान में जो है चावल का प्रयोग ना करें और एकादशी के दिन पिंडदान जो है खोवा का या मिष्ठान का इससे पिंडदान करें, उस पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है।
0: भगवान विष्णु को फल और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु भगवान के सामने भगवत गीता का पाठ करें। निर्धनों को फल का दान करें और एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगा दें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत शुभ कार्य माना गया है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया जाए तो पितरों का उद्धार होता है और पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। तो इस एकादशी पर आप भी कीजिए पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के उपाय और स्वयं को भी पितृ ऋण से मुक्त कर लीजिए।
2: और चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अब आपको दिखाते हैं लोक संस्कृति और लोक कलाओं के रंग। उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव धूमधाम से शुरू हो चुका है, इसमें 15 राज्यों के कलाकार और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। इनके लिए ये उत्सव अपनी कला की नुमाइश के साथ साथ दूसरे इलाकों के लोगों से मेलजोल का भी एक खास मौका है।
7: नगाड़ों की गूंज के बीच बांसुरी और बीन की धुनों पर थिरक रहे ये लोग, लोक संस्कृति और नृत्य का मजा ले रहे लोगों की झलक दिख रही है हर ओर। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की है, बल्कि देश के और भी इलाकों की लोक संस्कृति का शानदार संगम दिख रहा है। असल में यह मौका उत्तराखंड आदि रंगोत्सव के आगाज का है। जहां देश की संस्कृति विरासत की अनूठी झलक देखने को मिल रही है और इसे बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है।
8: सर, मैं तिराकी भारत संस्कृति विभाग ग्रेड वन, वैसे मैं नीतिमाड़ा से हूं, लेकिन प्रस्तुति मैं ग्रेड वन देहरादून से देती हूं, और अपनी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए हम वैसे माना बद्रीनाथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको भी बोलना चाहेंगे, इस वेशभूषा की कदर बहुत ज्यादा है, गर्मी है लेकिन तभी भी हम संस्कृति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम संस्कृति के साथ हैं, वरना तो इन लोगों को गर्मी लग रही है।
7: इस महोत्सव में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक के 15 राज्यों की लोक संस्कृति की झलक पेश की जा रही है। तमाम राज्यों से आए कलाकार यहाँ अपनी कला के रंग बिखेर रहे हैं। मौसम और माहौल भले ही अलग है, लेकिन इन्हें यहाँ आकर खुशी बहुत हो रही है।
9: हम सिक्किम से आए हैं, मेरा नाम भूमिका है, और उत्तराखंड पहली बार आने से मुझे बहुत खुशी लग रहा है। लाइक बहुत सारी कम्युनिटी हम देख रहे हैं, और हमने जो ड्रेस पहना है वो मगर कम्युनिटी का है। उत्तराखंड पहले बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ। मेरे सिक्किम में उतना ज्यादा गर्मी नहीं है, और यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है।
7: इस मेले में उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों के पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट को भी पेश किया जा रहा है, जिसमें कपड़े हैं, हाथ से बने सजावटी सामान, मसाले और खाने पीने की सामग्रियां भी है। सुदूर इलाकों में गांव के छोटे कारोबारियों को यहां अपने प्रोडक्ट पेश करने का मौका मिला है।
10: हमारे यहाँ लहसुन का मिर्च का प्लस भल्ला पेड़े का और बड़र का, ये सब तरह का जहाँ बिना केमिकल के बनाते हैं, जो कि शुद्ध सरसों का तेल वगैरह घर के मसाले, ना कि मार्केट का कोई मसाला यूज करते हैं, ना कोई केमिकल यूज करते हैं।
7: संस्कृति का ये मेल एक ही जगह पर कई राज्यों के कलाकारों और दस्तकारों के मिलने का मंच बन गया है, जहां संस्कृतियों के मेल के साथ सबको अपने कारोबार को भी बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है।
8: उत्तराखंड देखने के लिए आया तो अच्छा कैसा लगता है, यहाँ का लोग कैसा है, हम लोग को क्या लगेगा, ऐसा हम लोग को मैंने कोई सोल्यूशन लेने के लिए आया है और थोड़ा बिजनेस भी ले गया साथ में।
11: मैं कलकत्ता से हूँ, कांथा वार्ड हैंड एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मेरा काम है, तो मेरे साथ बहुत सारे लेडीज जुड़ा हुआ है, जो लेडीज गांव में रहते हैं, जो शहर में नहीं आ सकते वो गांव में बैठ के हमारे लिए काम करते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराती हूँ उनको, ट्रेनिंग कराने के बाद उनको मैं प्रोडक्ट देता हूँ, वो खुद बनाते हैं हाथ की कढ़ाई और उसी को प्रमोट करने के लिए हम आगे आते हैं एग्जीबिशन में।
7: आदि रंग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के भव्य रोड शो से हुआ। ये महोत्सव पहले देहरादून में होता रहा है, अब पहली बार खटीमा में 3 दिन के लिए इसका आयोजन किया गया है, तो स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजेश छावड़ा, खटीमा, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमेरिका में चल रहे सतरंगी बैलून मेले की। अमेरिका के न्यू मैक्सिको का आसमान सतरंगी रंगों से सराबोर हो उठा जब अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा के दूसरे दिन दर्जनों हॉट एयर बलून्स ने एक साथ उड़ान भरी। इस दौरान आसमान में एक से बढ़कर एक अनूठे आकर्षक गुब्बारे तैरते हुए नजर आए। जहां कुछ गुब्बारे बीमा कंपनियों के विज्ञापनों से सजे थे, तो वहीं कुछ का आकार एलियन के सर जैसा था। यहां तक कि इंसानी दिमाग की शक्ति में बना एक विशालकाय गुब्बारा भी हवा में आपको तैरता दिखेगा, जो नीचे मौजूद दर्शकों के लिए भारी आकर्षण का केंद्र रहा। इस ऐतिहासिक महोत्सव की शुरुआत साल 1972 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी, लेकिन आज यह दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून इवेंट बन चुका है, जिसमें लगभग 600 गुब्बारे हिस्सा लेते हैं। देखिए, यूं तो दुनिया भर में कई तरह के फैशन परेड्स देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक बेहद क्यूट फैशन परेड का नजारा, जहां पैरिस की सड़कों की रैंप में बदली हुई नजर आई हैं, लेकिन मॉडल्स की जगह अलग अलग अट्रैक्टिव अटायर में आपको डॉग्स नजर आएंगे।
12: फैशन की राजधानी कहलाने वाले पेरिस की सड़कें इस बार डैक्शन डॉग्स की फैशन परेड से गुलजार हुई। दुनिया भर में मशहूर सॉसेज वॉक इवेंट पर तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में सजे डॉग्स ने सभी का ध्यान खींचा। धारियों वाली शर्ट और बेरेट टोपी पहनने से लेकर छोटे छोटे काउबॉय तक के रूप में सजे ये डॉग्स सबके आकर्षण का केंद्र रहे। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहने और पूंछ हिलाते इन डॉग्स ने देखने वालों का दिल जीत लिया। जहां हर आकार, साइज और रंग के डैक्शन डॉग्स अपने मालिकों के साथ नजर आए। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत लंदन से हुई थी, जो धीरे धीरे पेरिस समेत दुनिया के अन्य शहरों में फैल गई। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सॉसेज वॉक का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य छोड़े गए बुरे बर्ताव का शिकार हुए डैक्शन डॉग्स को बचाने और उनकी देखभाल के लिए फंड इकट्ठा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारत में जन्मे चीता ने 5 शावकों को दिया जन्म। देश में बढ़ रहा चीतों का कुनबा। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदकवीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोल ताशों की गूंज के बीच बरसे फूल। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक करीब 19 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी करीब 4 लाख श्रद्धालु। देशभर में शारदीय नवरात्रि की जोरदार तैयारी, दिल्ली के सीआर पार्क में खास थीम पर तैयार हो रहा भव्य पूजा पंडाल, यूपी से गुजरात तक गरबा की प्रैक्टिस। धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधि विधान से किए रामलला के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की।

0: जाम क्या समाधान, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। हम इस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि पहाड़ों से जाम की जो तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही है वो सोचने को मजबूर कर रही हैं। पहाड़ों पर मीलों जाम देखने को मिल रहा है, इससे टूरिस्ट परेशान है, स्थानीय निवासी परेशान है, हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसा ही हाल है। तो पहाड़ों पर मीलों जाम, परेशानी तमाम, हिल स्टेशन फुल, सुविधाएं गुल, कहीं रास्ते खोए, कहीं जमीन पर लोग सोए, तो इसी पर होगी आज हमारी चर्चा। हमारे साथ देश के बड़े पर्यावरणविद और दूसरे क्षेत्रों के जानकार भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि बरसात खत्म होने के साथ ही पहाड़ों पर पर्यटन बढ़ने लगा है। इसके साथ ही देश के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि वीकेंड की छुट्टियों के चलते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस पर बड़ी संख्या में पर्यटक जुटे, ये टूरिज्म सेक्टर के लिए अच्छा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैची धाम में भी वीकेंड के दौरान रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसे में सैलानियों की इस भारी संख्या के कारण कैची धाम और नैनीताल के सभी होटलों में कमरे कम पड़ गए और वे पूरी तरह पैक हो गए। होटल ना मिलने की मजबूरी में कई पर्यटकों को दुकानों के आगे और सड़कों के किनारे सोकर रात गुजारनी पड़ी। इस भारी भीड़ के बीच उत्तराखंड में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा भी पूरी रफ्तार से जारी है। बद्रीनाथ धाम के यात्रा मार्ग में लगे मीलों लंबे जाम के कई वीडियो भी सामने आए। हिमाचल प्रदेश के सोलन और शिमला जैसे प्रमुख शहरों में भी महाजाम की स्थिति दिखी। वीकेंड के दौरान ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा था कि घंटों तक कई गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दी। अचानक बढ़ी इस अनियंत्रित भीड़ के कारण पहाड़ों के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। ऐसा लगा मानो पहाड़ों पर सैलानियों की एक बड़ी बाढ़ सी आ गई हो। वीकेंड की ये छुट्टियां आम जनता और स्थानीय प्रशासन के लिए पहाड़ों पर एक बड़ी आफत बनकर आई है। और इतना ही नहीं, त्योहारों के सीजन को देखते हुए आने वाले दिनों में भी सैलानियों की संख्या और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक और होटल समेत कई स्तर पर चुनौतियां आएंगी जिनसे कि निपटने के लिए इंतजाम करने बेहद जरूरी है।
1: काम की स्थिति इतनी बुरी है कि हम लोग इतने परेशान हो गए। परसों आए थे, हम परसों भी 3 घंटे इस जाम में फंसे हैं और आज वही पोजीशन है। आज हमको 1 घंटा तो हो गया।
2: मैं बद्री का आश्रम 138वीं मेरी यात्रा है, पर इस बार मेरे जीवन में 45 साल जो है ऐसे 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो जाम कल 24 घंटे हम फंस गए थे। मतलब धारी देवी से लेकर के जोशीमठ तक 24 घंटे का पूरा जाम था। यात्रीगण सब परेशान थे, अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है।
3: लोग यहाँ लगभग 1-2 घंटा जाम में फंसे थे और रात को भी यहाँ बहुत जाम था, तो हम लोगों ने यही स्टे किया और अभी चल ही रहा है जाम जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ।
4: यहाँ पे रोका गया, क्या बताएगा?
3: अभी कुछ बताया नहीं हमें।
5: जाम था कल, हम लोग हेरंग से 3:30 बजे पहुँच गए थे, फिर वहाँ से जोशीमठ में यहाँ पे बहुत जाम था। हम लोग रात को बद्रीनाथ पहुंचे 11:30 बजे आजू बाजू।
0: और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं, पिछले 3 दिनों में कैसी तस्वीर रही पहाड़ों की आपको समझाते हैं। उत्तराखंड के कैची धाम और जोशीमठ में काफी भीड़ रही, तो शिमला और सोलन में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इससे रास्ते में लंबा जाम लग गया, घंटों वाहन ऐसे ही रेंगते रहे। तो आपको हम दिखा रहे हैं 5 तस्वीरें। इन 5 तस्वीरों में आप समझ पाएंगे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, जिसमें सोलन, शिमला, कैची धाम और जोशीमठ की तस्वीरें। जोशीमठ जाहिर सी बात है वो रास्ता है जहां से आप चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं। कैची धाम नीब करौली बाबा के दर्शन के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। शिमला नियरेस्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली वालों के लिए। अगर वीकेंड थोड़ा लंबा है, आपको छुट्टी 1 दिन और पहले की मिल गई है, तो 2-3 दिन मिलाकर के लोग नियरेस्ट शिमला पहुंच जाते हैं। और सोलन का भी कुछ वैसा ही हाल है।
6: शिमला तो वैसे हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, किसी मौसम में आप आओ ये अच्छे से अच्छा लगता है। और अभी समय इसलिए चुना क्योंकि अभी बच्चों का छुट्टी का प्लान था और लॉन्ग वीकेंड भी था, इसलिए सब कुछ मैनेज करते हुए टाइम को चुना। हाँ, थोड़ा सा बस ये पार्किंग का इश्यू हो रहा है क्योंकि रीजन भी कि क्राउड बहुत है, बाकी अदरवाइज बाकी ऑल गुड।
7: दिल्ली के मुकाबले थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन गर्मी यहाँ भी है, ट्रैफिक सब बहुत है। वीकेंड पे जो छुट्टियां दिन है उस टाइम बहुत ट्रैफिक है। कल हमें 4-5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में।
8: इससे पहले भी कभी शिमला?
7: नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तरह का टूरिस्ट को कहूंगा आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, ब्यूटी है ये हमारी।
0: और हमारे सहयोगी ने शिमला का जायजा लिया, देखिए वीकेंड पर कैसा रहा नजारा, लंबे जाम पर विकास शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए।
8: पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो रही है। हालांकि लंबे ऑफ सीजन के बाद अब टूरिस्ट जो है वो एक बार फिर से दिखना शुरू हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखें, मैं शिमला के कार्ट रोड के पास इस समय मौजूद हूँ। ये कार्ट रोड की तस्वीरें हैं और इस समय ट्रैफिक जाम जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी तरह के हालात कमोबेश पूरे शिमला शहर के अंदर दिखाई देते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ पर 10 मिनट का सफ़र हुआ करता था, अब वहाँ पर एक घंटे तक का जाम जो है वो देखा जा रहा है। घंटे का सफ़र जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, जहाँ सिर्फ 10 मिनट लगा करते थे। पूरे कार्ट रोड की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो दूर तक जहाँ कैमरे की नज़र जाती है ये सर्कुलर रोड है, और इस सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक जैम जो है वो पूरी तरह से लगा हुआ है, क्योंकि सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो पुलिस के मुताबिक आंकड़ों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो पुलिस का कहना है कि बीते एक हफ्ते के अंदर 80,000 से ज़्यादा वाहन जो हैं वो शिमला के अंदर शोघी बैरियर से एंट्री उनकी हुई है। शिमला के होटलों की बात करें तो इस समय लॉन्ग वीकेंड के कारण जो शिमला के होटल हैं पूरी तरह से जैम पैक बताए जा रहे हैं। होटलियर्स का कहना है 70-80% तक ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। इसके अलावा आज शनिवार का दिन है, लिहाजा आज भी बड़ी तादाद में लोगों के यहां पर पहुंचने यानी शिमला पहुंचने के आसार जो हैं वो नज़र आते हैं। ऐसे में पुलिस का ये भी दावा है कि पूरी तरह से ट्रैफिक जाम नहीं है, और जहां भी जाम लग रहा है वहां उसके करीब जो है कोई या तो बस खराब हो जाती है या फिर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, या फिर जो पैच वर्क किया जा रहा है सड़कों की रिपेयर का काम किया जा रहा है, टायरिंग का काम किया जा रहा है, उसके कारण थोड़ा जाम जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें ये बयान करती हैं कि ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को जो है वो दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। कैनोर्सन ओशियन के साथ विकास शर्मा, शिमला।
0: और आपको बता दें इस बीच सोलन में भी हाईवे पर ऐसा ही हाल रहा, यहां भी रास्ते में लोग गाड़ियों के अंदर पैक रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कब तक इस जाम से बाहर निकल सकेंगे।

0: लंबा लंबा जाम है।
1: मतलब वीकेंड पे काफी टूरिस्ट आया इस बार हिमाचल में?
0: हाँ, कुछ छुट्टियां भी है ना, तो उस वजह से आज सारे लोग वापस भी जा रहे।
2: और चलिए हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर रूपम शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT रुड़की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रूपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ आपको परिचय हम करा दें, डॉक्टर फैयाज हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ समय में। डॉक्टर फैयाज के बारे में भी आपको हम बताएंगे, पर्यावरणविद हैं। लेकिन डॉक्टर नवीन भटनागर इस बार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर DIG NDRF है। सर, आपका बहुत स्वागत है। दीक्षु कुकरेजा, जो कि आर्किटेक्ट हैं, अर्बन डिजाइनर, टाउन प्लानर एंड पर्यावरणविद भी हैं वो, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीक्षु जी। और साथ ही साथ अंकित शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर। अंकित से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अंकित के ही पास जाना होगा, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वहां पर वो एक बार फटाफट हम अंकित से जान लेते हैं। अंकित, लगातार हम तो खबरों में देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हिम्मत नहीं होती है कि लॉन्ग वीकेंड होने के बावजूद, दिल्ली में रहने के बावजूद, हम शिमला या फिर हिमाचल या उत्तराखंड के किसी भी इलाके में हम जाएं, इस वक्त वहां पर क्या एक्चुअल स्थिति है? जो लोग पहुंच रहे हैं, एकदम से फ्लडेड हो जा रहा है वीकेंड में ये इलाके, कितनी परेशानियां वहां के लोकल्स को, या फिर वहां कैसी स्थिति?
3: पता, मौजूदा स्थिति अगर देखें तो लगातार जो क्राउड बढ़ता जा रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि क्राउड बर्स्ट भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो फ्राइडे सैटरडे संडे को जो छुट्टियां हुई, उस वजह से जो 5 हॉटस्पॉट देखे गए, जहां पर अचानक पूरा ट्रैफिक जाम हुआ था और लोग कई घंटे फंसे रहे, उसमें देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शामिल है, मसूरी शामिल है, नैनीताल के साथ कैंची धाम शामिल है, और उसके साथ ही ऋषिकेश और चारधाम के जो अलग अलग जो रास्ते हैं, रूट्स हैं, वो भी शामिल है। जोशीमठ में हमको देखने को मिला कि लंबी कतार जो किलोमीटर की लगी हुई थी, पूरे रात भर लोग जाम में फंसे रहे, और लगातार जो जाम बढ़ता जा रहा है हर दिन, वो एक चिंता का विषय भी बन रहा है, जिसमें पर्यावरणविद से लेकर जो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के लोग हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, और इसके साथ विपक्ष भी अपनी बात और परेशानी इसको लेकर रख रहा है। बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, तो वहां पर जाम की वजह से ये हालत रही कि जो कैची धाम में जाम लगा था उससे लोग फंसे रहे, और बागेश्वर में जो सन्नाटा पसरा हुआ था उसका यही कारण था कि एक ब्लॉकेट देखने को मिला, और उस वजह से पर्यटक जो है वो आगे के रूट की तरफ पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हल्द्वानी से जब अल्मोड़ा के लिए जो रूट पकड़ते हैं उसमें कैची धाम बीच में पड़ता है, और यही एक रूट है जो कि बाकी आगे अल्मोड़ा से या फिर बागेश्वर की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको कनेक्ट करता है। तो क्योंकि नैनीताल में ही इतना भयानक जाम लगा रहा, जिस वजह से लोग घंटों फंसे रहे, और यही कारण था कि बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ लोग नहीं पहुंच पाए, यहाँ पर कौसानी, रानीखेत,
2: यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में बताइए कि ये जो घंटों जाम के बाद किसी तरह से लोग आसपास होटल में वहां रुक भी पा रहे होंगे, तो आपको लगता है कि पहाड़ों में इतना इंतजाम है कि इतने सारे लोग जब लाखों की संख्या में, हजारों हजार की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनको वो फैसिलिटी जो मिनिमम फैसिलिटी होती है, लाइट, पानी, खाना, ये उनको दे सके, ये वहां पर है अवेलेबल?
3: देखिए, अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो होम स्टे एक बड़ा बेस बनता है जब भी पहाड़ों की ओर टूरिस्ट रुक करते हैं, लेकिन अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो टूरिस्ट को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा होम स्टे किस जगह पर है या कहाँ रुका जाए, क्योंकि मेनली अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमेशा उसकी बात की जाती है, जो छोटे कस्बे हैं या छोटे जो रुकने वाली जगह है उनकी कभी बात नहीं की जाती, या उनको कैसे कनेक्ट किया है, छोटे ब्लॉक स्तर पर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी भी बात नहीं की जाती, इसलिए जो टूरिस्ट होते हैं वो अवेयर नहीं रहते हैं, और कई बार एंजाइटी और इस तरीके का उनको परेशानी हो जाती है और फंसे रह जाते हैं। इस वजह से यही है कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो खराब एक्सपीरियंस लेकर उत्तराखंड से लौटते हैं, और जो पर्यावरणविद हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें कीर्तिमान नहीं बनाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी भी एक मुद्दा है। हिमालय जो है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इतना ज्यादा लोड वहां पर नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन जो लोगों के अनुभव हैं वो बेहतर होने चाहिए, ना कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंचे इस पर फोकस होना चाहिए।
2: बिल्कुल अंकित, आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। जाहिर सी बात है आप ग्राउंड में हैं तो आप बेहतर वहां से खबर और जानकारी दे पा रहे हैं। डॉक्टर रूपम आपके पास आती हूं, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो ओवरफ्लो आप भी देख रही होंगी, खबरों में हम भी दिखा रहे हैं लगातार, बाकी भी आप न्यूज चैनल्स और अखबारों में आप पढ़ रही होंगी कि लॉन्ग वीकेंड होता नहीं है कि खास करके दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो पहाड़ों का रुख करते हैं, उत्तराखंड या हिमाचल, क्योंकि वो नियरेस्ट होता है, ट्रैवल टाइम कम होता है, 4 घंटे 4.5 घंटे 5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये बताइए कि पर्यावरण के लिहाज से अगर देखा जाए, एनवायरमेंट के लिहाज से देखा जाए, तो ये अच्छा है या फिर कितना खतरनाक है, क्योंकि मुझे तो बहुत खतरनाक लग रहा है ये।
4: जी धन्यवाद मुझे आज इस चर्चा से जोड़ने के लिए और जो हमारी जानकारियां जो हमारे शोध के थ्रू हमें मिल रही हैं उसे शेयर करने के लिए आपके व्यूअर्स के साथ। तो अच्छा और बुरा में इसका उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पर जो हमारा टूरिज्म है उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेट में जो हो रहा है, जो अभी का हमारा कंट्रीब्यूशन टू द GDSP इज़ आल्सो वेरी हाई फ्रॉम टूरिज्म, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, लोगों को भी जो क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं उनको उनका इकोनॉमी पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उत्तराखंड एक ऐसा हमारा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं, तो जब डिजास्टर्स होते हैं, जब ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, तो ये भी देखा गया है हमारे शोध में कि उनसे जब हमारी रिकवरी, उनसे ओवरकम करने के लिए टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बट वो क्यों इस समय इतना ज़्यादा अनसस्टेनेबल वे में हो रहा है, वो एक प्रश्न है जो कि हमें समझना है, और कैसे उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ और कैसे हम सस्टेनेबल टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, कि जो टूरिस्ट जो अभी पहले भी जिसके बारे में बात हो रही थी कि मुद्दा ये नहीं है कि हमें टूरिस्ट को रोकना है आने से, बट जो भी यहाँ पे आए इस क्षेत्र में आए उनका अनुभव कैसे अच्छा हो सके, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। जो ट्रैवल टाइम हम लेके चलते हैं कि 2.5 से 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, अब जब रोड्स इतनी विकसित हैं उस समय बिकॉज ऑफ ट्रैफिक हम वहां पे 10 घंटे में 12 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो कैसे हमारी टेक्नोलॉजी, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमें एनेबल करें कि हम इन चीज़ों को जो डेटा हमारे पास आ रहा है उनसे हम कैसे वेरी डायनेमिक वे में हम टूरिस्ट को इन्फॉर्म कर सकें कि कितने समय में आप पहुंचेंगे या कब हमें ग्रीन और रेड लाइट का सिग्नल अपने टूरिस्ट तक भी पहुंचा सकें कि कब हमें रुकना है, कहाँ पे रुकना है। तो एक होलिस्टिक प्लानिंग की बात है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्षेत्र में जिसके बारे में चर्चा भी हो रही है और सरकार काम भी कर रही है, बहुत ज्यादा हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में, जहाँ पे लोग इन सब चीजों पे शोध भी कर रहे हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छे से हो सके उस चीज पे हमें मतलब वो एक ऐसा गैप है जो हमें अब
2: बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन पे आके मैम सारी चीजें रुक जाती है कई मामलों में हमारे देश में। ये बहुत ही सैड पार्ट है इन चीजों का, टाउन प्लानिंग की बात हो, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, या फिर अभी जो हम देख रहे हैं, और ये बात आपने सही कही, हम खुद भी जानते हैं कि खास करके हिमाचल और उत्तराखंड जैसे जो राज्य हैं टूरिज्म बेस्ड है यहाँ की इकोनॉमी, तो इसे हमें समझना होगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से कैसे किया जाए, प्लान कैसे किया जाए, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। नवीन सर हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर DIG NDRF। सर ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि एकाएक ना जैसे बाढ़ सी आती है, तो लोगों की बाढ़ सी आ जाती है जब वीकेंड आता है या फिर लंबी छुट्टियां आती हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको लगता है क्या होती है? क्राउड मैनेजमेंट वहां की सबसे बड़ी चुनौती होती है या फिर इमरजेंसी रेस्पॉन्स, ट्रैफिक, आपको क्या लगता है?
5: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है, और दूसरा अभी हमने महसूस किया है कि अभी 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा लोग जो है इतना एडवर्टाइजमेंट किया गया है, ये आपका गवर्नमेंट की तरफ से भी, और पिक्चरें भी बन रही हैं, धार्मिक पिक्चरें, इससे पब्लिक के अंदर एक जागृति पैदा हुई है। अभी आप देखिए मैक्सिमम लोग कैची धाम जा रहे हैं, और वहां पर दो मतलब आप ये मान के चलो कि 8 घंटे 10 घंटे का जाम लगा हुआ है। अब आप ये बताइए गाड़ी में एक बच्चा औरत या फैमिली फंसी हुई है, ना टॉयलेट जा सकते हैं, ना चाय मिल सकती है, ना पानी मिल सकता है, तो ऐसी समस्याएं आती है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर वैसे ध्यान दे रही है, आने वाले टाइम में कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से पहाड़ी स्थानों पे ना भागे। अभी क्या भेड़ा चाल है, उन्होंने कहा चलो जी शिमला, शिमला चलो, चलो जी कैची धाम, कैची धाम चलो। मतलब कहने का है कि लोगों के अंदर एक भेड़ा चाल हो गई।
2: बिल्कुल वो तो है सर, लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली ये जानना चाह रही थी कि जब इस तरह से लोग एकदम से आ जाते हैं वहां पर, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती
5: बिल्कुल,
2: है?
5: बिल्कुल उसमें होता है मैन मैनेजमेंट, कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जाए। इसके लिए क्या होता है, एक एस्केप रूट बनाया जाता है। अगर ऐसी कोई भीड़ आ जाती है या इतने वाहन इकट्ठे हो जाते हैं तो एस्केप रूट बनाना चाहिए। दूसरा, हर आधा किलोमीटर पे फर्स्ट एड रूम बनाने चाहिए जहाँ पर पूरा फर्स्ट एड का अरेंजमेंट हो। और इसके अलावा जो ड्रोन से इसके ऊपर पूरा ट्रैफिक पे जो है कंट्रोल किया जाना चाहिए, कहाँ पर किस किस चीज की जरूरत है। हमारे पास मोटरसाइकिलें हैं, मोटरसाइकिलों का रूट पे यूज करके और इसको जो पब्लिक की परेशानी है उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत से तरीके हैं जो स्टेट गवर्नमेंटों को अपनाना चाहिए।
2: बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास और हम और जानकारी आपसे लूंगी। दीक्षु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आर्किटेक्ट भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, जाहिर सी बात है अर्बन डिजाइनर और टाउन प्लानर भी हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ आप सर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं इन जगहों पर। जाहिर सी बात है दिल्ली में बेस्ड होने के नाते अक्सर जाना आना रहा है, हिमाचल भी गई हूं, उत्तराखंड भी गई हूं। जो मेनली हम वहां पर दिक्कत देखते हैं इन पहाड़ी इलाकों में कि एरिया की कमी है, उतनी जगह नहीं है जितने लोग पहुंच जाते हैं। यह अलग बात है कि आज के समय में यह सच है कि एयरबीएनबी होने की वजह से कई लोग ये पसंद भी करते हैं कि भाई हम पहाड़ी घरों में ही जाकर रहें और उनके घर में उनके जैसा फील करें, उनके तरह का खाना खाएं। ये एक नया एक्सपीरियंस आ गया है। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि जितनी सुविधाएं अभी वहां पर हैं उतनी काफी है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए?
6: नमस्कार, आपने जैसे मेरा परिचय दिया है आर्किटेक्ट अर्बन प्लानर का, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं एक संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है सीपी कुकरेजा फाउंडेशन फॉर डिजाइन एक्सीलेंस, जिसने अभी एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ द हिमालयस। तो ये इतनी गंभीर समस्या है जिसके ऊपर आप लोग चर्चा कर रहे हैं और ये चीज हमें जानना बहुत आवश्यक है कि ये तस्वीरें फॉर एग्जाम्पल जो अभी आपके स्क्रीन पे चल रही है ये कितनी खतरनाक है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह की है जो एक हाईली इको फ्रेजाइल जोन है। हिमालयन माउंटेन रेंज एक बहुत ही यंग और टेक्टोनिक ऐसी रेंज है जो अभी भी अपकमिंग है, जो बहुत हाईली फ्रेजाइल जोन है, और उसमें हम इस तरीके की तस्वीरें देख के घबराहट होती है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस पे चर्चा ही कर रहे हैं, इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि जब तक ये हम एक तरीके से अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे कि एक प्लानिंग जो होती है जो प्लेन्स में दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में होती है, वही चीज को हम क्या पहाड़ों में रेप्लिकेट थोड़ी ना कर सकते हैं। यहाँ पे देवनागरी है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ऑब्वियसली पब्लिक सेंटिमेंट रहता है। अभी मिस्टर भट्टागर ने मेंशन किया क्योंकि एक बॉलीवुड फिल्म आई है तो कैंची धाम पे ही सब लोग जाने लग गए हैं। ये सब चीजें तो एक पब्लिक में होंगी, तो जहां पे करेक्टिव एक्शन है वो पॉलिसी मेकिंग पे होता है, जिसका मतलब ये है कि हम शिमला जैसी जगहों के लिए भी जो बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि हम 6-6 लेन के हाईवे बना रहे हैं पहाड़ों पे, इसकी क्या आवश्यकता है। जो हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि अब हम देहरादून पहले 6 घंटे में पहुंचते थे, अब 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम बड़े प्राउड हैं इसके लिए भी, इसकी क्या आवश्यकता है। पहाड़ों में जाने का एक मजा ही ये होता था कि आप धीरे धीरे एंजॉय करते हुए सीनरी वहां पे पहुंचे। और जहां तक की तादाद की बात हुई, आप टूरिस्ट फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि इस समय पे आके हम इसका एक टूरिज्म पॉलिसी ऐसी, ये 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हिमालयस की है, यहाँ पे होलिस्टिकली इसको देखें कि ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करनी जरूरी है जहाँ पे टूरिज्म इन्फ्लक्स की भी एक लिमिट की जरूरत है। पासेस जेनरेट होने चाहिए, सीजन टू सीजन एक लिमिटेड नंबर होता है जहां तक ये पहाड़ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम ऐसी अनलिमिटेड पॉपुलेशन वहां पे पहुंच जाएगी तो ये डिस्ट्रॉय कर रही है और डिस्ट्रॉय का रिएक्शन हम सब जानते हैं। हमने अभी वो नेपाल की तस्वीरें देखी हैं और यहाँ का भी डर लगा रहता है कि उत्तराखंड में क्या हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसको सीरियसली कंट्रोल किया जाए। और इस तरीके की अगर हम सोचे चलो टूरिस्ट हमारे हाईवे पे रुक जाते हैं तो चलो और टॉयलेट फैसिलिटीज क्रिएट कर दें और बीएनबीज क्रिएट कर दें। ये अनलिमिटेड प्लानिंग और डेवलपमेंट नहीं है, ये अनडेवलपमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे डेवलपमेंट ना हो, बहुत आवश्यक है कि अगर हम विकसित भारत बना रहे हैं तो ये हिमालयन एरिया की भी स्टेट्स और यूनियन
2: बिल्कुल, लेकिन सर ये समझना होगा एट द सेम टाइम कि वो टेरेन बिल्कुल अलग है, आप उसे दिल्ली की तरह बॉम्बे की तरह या दूसरे और शहरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं हिमालयन टेरेन को, या फिर पहाड़ी किसी भी इलाके को वैसे आप ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप दूसरे किसी भी प्लेन्स को आप ट्रीट करते हैं। डॉक्टर रूपम, आपके पास आते हुए

0: भी किया है और एक लेटर भी पब्लिश आपने किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें रेगुलेटेड वे में टूरिस्ट को वहां भेजा जाना, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारी सरकारों को वो कॉल लेना पड़ेगा कि नाउ दिस इज टू मच या फिर नाउ यू हैव टू स्टॉप, हमें रुकना होगा यहां पर और सोच समझ के आगे इसे बढ़ाना होगा इस पूरे टूरिज्म प्रोसेस को?
1: जो मुझे हमारे शोध में समझ में आया, हम ऐसे हिमालयन लैंडस्केप में मल्टीपल टाउन्स में हम गए और हमने वहाँ के लोगों से भी बात करी, और हमारा जो मेन हैजर्ड प्रोसेस जिसपे हम देख रहे थे वो लैंडस्लाइड था। तो मैं आपको कुछ जो मेरी फील्ड मेमोरीज है अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड, जस्ट अपहिल लैंडस्लाइड है और जस्ट नीचे देवर होटेल्स कंस्ट्रक्शन and there were a lot of economic activities that were going, and then we interacted, हमने लोगों से पूछा कि मतलब ये जो landslide है यहाँ पे इससे आपको क्या लगता है, मतलब आपको डर नहीं लग रहा है कि आगे जो आपकी economic activities हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा? तो जब हम एक क्षेत्र में रहते हैं तो जो वहाँ के रिस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाते हैं, या तो हमें ये लगता है कि ये शायद हमारे साथ नहीं होगा, या फिर जैसे जैसे अभी बोला गया कि नैनीताल सॉरी नेपाल में भी ऐसी ही आपदा हुई। तो बहुत बार जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं कि अच्छा लॉन्ग वीकेंड है, क्या हम जाएं क्या हम नहीं जाएं, तो कभी भी हमारे ख्यालों में हमारी चॉइसेस में वो रिस्क फैक्टर इन नहीं होता कि शायद ऐसा हो सकता है। तो इट्स नॉट एंड हमने जो फाइंड किया, एक नॉर्मलेंसी बायस क्रिएट हो जाता है अमंग पॉपुलेशन, नॉट जस्ट जो कि जो लोग वहां रह रहे हैं बट ऑल्सो जो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन इन लार्ज नंबर्स। मतलब अभी आप अभी चैनल पे बताया गया था कि पिछले 3 दिनों में शिमला में 80,000 लोग आए हैं। तो हमारी जो भी प्लानिंग होती है हिल्स की, जो हमारे कन्वेंशनल वे रहा है उसमें हम क्या लेते हैं, हम एक क्षेत्र की जितनी भी जनसंख्या है वहां के जो लोग हैं उनको लेके हम प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग ऑफ यू नो ऑल दीज फैसिलिटीज, ऑल द हॉस्पिटल्स इज डन अराउंड दैट कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन जो वहां की है। बट हिमालयन क्षेत्र में इस टाइम पे ये देखा जा रहा है कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एंड इन सम ऑफ द सीजनल पीक्स आर देयर, तो उनको अकाउंट करना हमारी प्लानिंग में, जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने भी अभी जिन बातों को बोला वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चीज में जो नीतियों की बात हो रही थी, मैं हम जैसे काफी सारी नीतियों टूरिज्म से रिलेटेड उन पे भी शोध करते हैं, तो हमने ये देखा है कि जो नीतियां हैं जैसे उत्तराखंड सरकार की 2023 में टूरिज्म पॉलिसी आई है उसमें भी ये लिखा गया है, दे हैव एक्नॉलेज्ड दैट देयर इज, उसमें ऐसा नहीं किया गया है, बोला गया है कि हमें अपने क्षेत्र के एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखना है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। हमें ये भी समझना है एज अ टूरिस्ट, आई थिंक व्हाट आई वुड मतलब एक जो मेन एसेंस जो हमें या एक मेन जहाँ पे अवेयरनेस की बात भी है वो ये है कि टूरिज्म जो लोग हम लोग जा रहे हैं उनको भी कैसी अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब देर आर न्यूज दैट आर कमिंग बट स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग हैं, छात्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जाएंगे, एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जब हम वहां जाके, क्या हम एनवायरमेंट सेंसिटिव बिहेवियर रखते हैं जब हम ऐसे लैंडस्केप में जाते हैं, तो वहां पे एक अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: अवेयरनेस, और मुझे लगता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पर स्टेप्स उठाने की जरूरत है। इस पर भी हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे, और एकाएक जब इस तरह से ये हिली टेरेन फ्लडेड हो जाते हैं, ये पहाड़ी इलाके फ्लडेड हो जाते हैं, तो पुलिस को, वहां की लोकल पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कौन से 3 स्टेप्स उठाने चाहिए, हम नवीन सर से भी जानेंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी।

इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: चलिए तो हम बात कर रहे हैं पहाड़ों पर महाजान की। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, नवीन जी हमारे साथ अगर हैं तो उनसे हम जानना चाहेंगे। सर आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि एकदम से जब ट्रैफिक इतनी ज्यादा जिसे हम कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या वो तीन चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जो तस्वीरें हमारे सामने चल रही हैं जहां पर घंटों आप देख रहे हैं लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, सड़कों पर लोग रात बिताने को मजबूर हैं, ऐसे में सेफ्टी कंसर्न्स को लेके क्या कहेंगे?
1: हर आधा किलोमीटर पे आपको जो है, देखिए ट्रैफिक को आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा जो इनटेक है जो नीचे से पहाड़ों पे आते हैं वहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जो इकोनॉमी हैम्पर होगी। दूसरा, पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि अपना फर्स्ट एड का अरेंजमेंट, हर आधा किलोमीटर पे फर्स्ट एड सेंटर बनाए जाने चाहिए जिसमें वॉलंटियर्स और पुलिस के ट्रेंड बंदे लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा चाय पानी और खाने वगैरह के स्टॉल वगैरह वो अगले आधा किलोमीटर पे लगा देने चाहिए, यानी कि एक किलोमीटर पे खाने पीने और चाय का अरेंजमेंट भी होना चाहिए।
0: लेकिन सर यहाँ पे आपसे एक सवाल कि इन इलाकों में जो आप कह रहे हैं कि हर थोड़ी दूर पे खाने पीने का अरेंजमेंट होना चाहिए, यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि अगर एक गाड़ी जा रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन से दूसरी गाड़ी आ रही है तो आपको रुकना होता है वहां पर, और वहां पर अच्छा खासा समय लगता है। कुछ कुछ तो रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर दूसरी गाड़ी को पास कराने में ही अच्छी खासी मशक्कत लग जाती है, ऐसे में अगर वैसे स्टॉपेज बना दिए जाएंगे खाने पीने के तो जाहिर सी बात है वहां भीड़ इकट्ठा होगी, वहां और ज्यादा कैओटिक हो सकता है सिचुएशन।
1: नहीं, ऐसा नहीं है, ये रोड पे नहीं बनाए जाते, ये जो पहाड़ों की तरफ ऊंचाई पे जो है जहाँ अच्छा प्लेन एरिया होता है, सेफ एरिया होता है, वहां बनाए जाते हैं। इसके अलावा ड्रोन सिस्टम से जो है पूरा ट्रैफिक पे मूवमेंट पे कंट्रोल किया जाता है, वॉकी टॉकी सेट और वायरलेस सेट से पूरे ट्रैफिक का कहाँ गड़बड़ है, कहाँ पर कोई गाड़ी खराब हो गई है, क्या हो गया है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को दी जाती है, साथ ही मोटरसाइकिल पुलिस वालों के पास है।
0: तो क्या वीकेंड जैसे जब वीकेंड में या फिर कोई फेस्टिव सीजन है इस समय क्या विशेष अलग से कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है या उनके तरफ से तैयारियां होती हैं?
1: ये एसओपी बनी हुई है, हर पुलिस की एसओपी बनी है इस बारे में, और उसमें सब चीफ मिनिस्टर का और चीफ सेक्रेटरी के आदेश होते हैं। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो अभी हमें उसमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुलिस पैटर्न पे अभी भी पुराने सिस्टम ढर्रे चले आ रहे हैं जो आज के टाइम में लागू नहीं है। आप ये देखिए ना, एक फिल्म बनी कैची धाम के ऊपर और उसके लिए लोग पागल हो गए कैची धाम जाने के लिए, तो अब आप देखिए सिचुएशन चेंज हो गई है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं जैसा मैंने अभी बताया है, अगर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो सारी चीज कंट्रोल हो जाएगी, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
0: बिल्कुल, सेफ्टी को लेकर के आप क्या कहेंगे, जो लोग रात में जिनको होटल्स नहीं मिल रहे हैं, बीएनबी नहीं मिल रहे हैं, वो जो सड़कों पर रात गुजार रहे हैं उनके सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर क्या कहेंगे?
1: ये गवर्नमेंट को चाहिए कि मेकशिफ्ट जो होम्स हैं ये आजकल अवेलेबल हैं, तो ये आप जो है सेफ प्लेस देकर, रोड पे नहीं ऊंचाई पर थोड़ा सेफ प्लेस देकर वहां पर गवर्नमेंट को चाहिए इनको बसा दे, इनको बना दे। इससे क्या होता है, इमरजेंसी में लोग वहां रुक सकते हैं, तो ये अभी नई टेक्नोलॉजी है और ये बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो मैं कहता हूं अगर एवलांच आ गया या आपका लैंडस्लाइड हो गई तो मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, आपके नेशन चैनल पे कह रहा हूँ, इतना भयानक सिचुएशन हो जाएगी, इतने लोग जो उसके चपेट पे आ जाएंगे कि इसकी कल्पना मात्र से हम सिहर जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो सर आपने बहुत बड़ी बात की, उम्मीद है कि सरकार और उन तक जो उनके मंत्री हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इससे कंसर्न, वो सुन रहे हों इन बातों को और उस पर इम्प्लीमेंट कुछ करें, कुछ काम, कुछ नए नियम कानून फैसले कुछ बनाए और इम्प्लीमेंटेशन हो। डॉक्टर रूपम, आपको नहीं लगता है कि अब की स्थिति अब वो समय आ गया है जब सरकारों को भी नो पार्किंग नो एंट्री जैसे सख्त नियम बना देने चाहिए।
2: जी ये मैं हमारे शोध के थ्रू तो ऐसा नहीं कुछ बता सकते क्योंकि दैट इज नॉट एन एरिया ऑफ रिसर्च वेयर वी आर करंटली डूइंग।
0: बट आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, आप भी तो रिसर्च के दौरान कई बार पहाड़ों में गई हैं।
2: ऐसे मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन माय पर्सनल कैपेसिटी आई सी दैट अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब जहां पे जैम ऐसा हो सकता है बिकॉज आपने भी जैसे बोला कि सीधे एक रोड है वहां पे दोनों तरफ का मूवमेंट है, दोनों ट्रैफिक का मूवमेंट, व्हीकुलर मूवमेंट सिर्फ उस एक रोड पे है, बट द काइंड ऑफ रोल जो लोकल गवर्नमेंट और जो लोकल ऑफिशियल्स मेनली द ट्रैफिक पुलिस जो वहां पे प्ले करते हैं काफी एक्टिव रोल है इज वॉट एटलीस्ट माई एक्सपीरियंस इज। एंड ऑल्सो जो एक जब हम एक स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि सिर्फ कितनी कैपेसिटी है एक लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इतना बिग नंबर कैसे हैंडल कर सकते हैं, दो आई थिंक जब ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं इट बिकम्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू रिफ्लेक्ट एंड यू नो री इवेल्यूएट कि उनकी जो करंट पॉलिसीज हैं क्या वो इतने लार्ज स्केल नंबर्स के लिए रेडी हैं। तो जैसे सर ने भी पहले बोला तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ रीडिजाइनिंग द सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट जो लोग वहां पे आपस में मैंने पहाड़ों में जितना देखा, जितनी ज्यादा लोगों की हेल्पफुल बिहेवियर है, जितना ज्यादा लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टाइम्स ऑफ क्राइसिस,
0: वो बहुत डॉक्टर रूपम वो तो सपोर्ट इसलिए करते हैं ना क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात को पहले ही कह चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि ये जितने भी एरियाज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं खास करके, वो सभी उनकी इकोनॉमी ही चलती है टूरिज्म पे, तो ऑब्वियसली जो लोकल्स हैं उनके लिए तो एक तरह से वो देवता के समान होते हैं जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो वो तो बहुत मदद करते हैं। लेकिन सबकी सुरक्षा के मद्देनजर आपको नहीं लगता है कि एक ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, इसलिए उसका वैसे ही आपसे जवाब चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पहाड़ों के हिसाब से, पहाड़ों को टूरिस्ट के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए या फिर वहां पे चीजें बदलनी चाहिए, या फिर टूरिस्ट जो जा रहे हैं उनको पहाड़ों के हिसाब से थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है और जिस टेरेन में वो जा रहे हैं उसके हिसाब से उनको भेजना वहां सही होगा?
2: आई थिंक कंट्रोलिंग का जो फैक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। अगर आज मुझे अभी इमीडिएटली पता चल रहा है कि आज से अभी से लाइक फॉर इंस्टेंस गूगल मैप, बहुत बार हमें लाइव इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमारी जो हमारा बिहेवियर होता है या जो हम एक्शन लेते हैं वो बदलता है उसी स्वरूप में। तो अगर यहाँ पे जो हमारा कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम है और अगर सरकार की तरफ से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करा गया इन अ वेरी यू नो डायनेमिक मैनर जिसमें हमें तुरंत मूवमेंट की जानकारी मिल सकती है, ये पता चल सकता है अच्छा अभी यहाँ पे होटल्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इतना इस टाइम पे ट्रैफिक है, तो आई थिंक कुछ चीजें एज अ टूरिस्ट हमें भी अपनी तरफ से करनी जरूरी है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन।
0: बिल्कुल, नवीन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। नवीन जी यहाँ पर आपको आपसे समझना चाहूंगी, अब देखिए समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, हर जगह हम देख रहे हैं कि एआई का इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है जिस हिसाब से ये क्राउड यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग वीकेंड्स में, तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट खास करके लाइव पार्किंग इन्फॉर्मेशन वो और साथ ही क्राउड अलर्ट्स, इस तरह की चीजें जो हैं हम एआई की मदद से ले सकते हैं और काफी हद तक इस तरह के परेशानियों का, दुविधाओं का समाधान हो सकता है?
1: देखिए ऐसा है, आज की तारीख में हमारा हिंदुस्तान जो है टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस हो गया है, तो ये कहना कि एआई की मदद से हम नहीं कर सकते, करेंगे। और आपको जल्दी मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन साल 6 महीने में आपको ये दिखाई देगा कि हमने एआई की मदद से बहुत चेंजेस किए और आगे भी करेंगे, इससे क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आने वाले डेंजर क्या क्या है उन सब के बारे में भी करेंगे। अभी क्या है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है, मान लीजिए आप या हम जा रहे हैं और करीब 8 घंटे के लिए फंस गए, अब आप देखिए बीमार आदमी को दवा भी चाहिए, घबरा जाएगा, टॉयलेट भी जाना है, अब ये सब हो नहीं पाएगा क्योंकि गाड़ी फंस गई है, तो ऐसे टाइम के अंदर हमारे पास मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स होने चाहिए और कोई बहुत महंगे नहीं है, आप मेक शिफ्ट जो है हाउस वगैरह बना सकते हैं, वो रोड पे नहीं बनाने, थोड़ी दूर हटके पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं। आप इंडिया में हम लोग नहीं कर रहे हैं, विदेशों में अगर आप जाएं तो वहां ये चीज कॉमन है। आज हमारे यहाँ दिक्कत है, लेकिन कल हमारे यहाँ भी ये होगा। और इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। रोड सेफ्टी का जैसे बताया आपने, या आपने बताया कि जो है मैप, जो गूगल मैप वगैरह है, या इंडिया के अपने मैप हैं, इनके ऊपर जो है अगर हम लोग ध्यान दें और इसको और एडवांस बना दें, तो इससे जो है हमारे जो ये यात्राएं सफल होगी और लोगों को दिक्कत नहीं होगी।
0: बिल्कुल, सफल और सुगम हो ये सबके लिए जरूरी है, खास करके इन इलाकों में। आइए आपको जरा ये दिखाते हैं और ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि खास करके चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो किस तरह से कोरोना काल से लेकर अभी तक जो है यहाँ पर लोग आते रहे हैं। साल 2020 की बात करें, 3,21,700 कुछ लोग वहां गए थे, 2021 में 5 लाख से ज्यादा, 22 में 30,13,000 कुछ, और 54 लाख 2023 में लोग गए थे, 45 लाख लोग 2024 की अगर हम बात करें तो उससे ज्यादा, 51 लाख लोग 2025, 2026 और अभी तक जो ये आंकड़ा जो है वो 54 लाख तक पहुंच चुका है और अभी भी यहां पर यात्रा जारी है। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली के समय में कपाट यहां पर बंद होते हैं, तो आप जरा देख लीजिए इन आंकड़ों को और आपको समझ में आ जाएगा ये लाखों लाख जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं चारधाम यात्रा में, तो इन इलाकों में पूरे रास्तों में जो कि ये पूरा इलाका है, आपको बता दें ये पूरा ही हिली टेरेन है, और यहां पर क्या स्थिति होती है। डॉक्टर रूपम, अभी आपको देखिए ग्राफिक्स के भी जरिए दिखा रहे हैं 2020 कोरोना काल से लेकर, कहा 30 लाख से लेकर अभी 54 लाख तक यहां पर यात्री श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। एक सीधा सवाल आपसे अगर पूछूं तो आपको लगता है कि क्या ये पहाड़ी इलाके तैयार हैं इतनी बड़ी क्षमता में श्रद्धालुओं को वहां पर बुलाने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए, उन्हें वहां सुरक्षित रखने के लिए?
2: तो आपने जो आंकड़े दिखाए अभी, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं साल दर साल, और ये हर साल नंबर बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ये बढ़ रहा है, इन पे भी चर्चाएं करना उतना ही जरूरी है। अगर हम समाधानों को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या करने से चीजें इतनी ज्यादा अपस्केल नहीं होंगी, और नंबर रिडक्शंस की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका अनुभव और उनकी सेफ्टी अगर हमें सेंट्रलाइज करनी है। तो कोरोना के बाद एक पूरे आई थिंक पूरे नेशन में अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, देयर हैज बीन अपवर्ड इंक्रीज इन दीज नंबर्स दैट आर देयर। सॉरी,
0: बिल्कुल
2: जी। पर अगर हम बात करें कि क्या हमारे पहाड़ और क्या ये क्षेत्र इन नंबर्स को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं जो विजुअल्स हमें दिख भी रहे हैं तो वो एक प्रश्न हमारे दिमाग में, यही ऐसा ही प्रश्न आएगा, इतनी ज्यादा संख्या में
0: नहीं, बढ़ तो अभी तक जो आपने रिसर्च किया है, आपने तो कई सारे रिसर्च किए हैं इन इलाकों में, आप गई हैं, रही हैं, देखा है, आपको अभी तक आपके रिसर्च क्या कहते हैं, क्या तैयार हैं पहाड़?
2: जैसे मैंने आपको बोला, एक सीधा आंसर देना कि क्या पहाड़ तैयार हैं, क्या वहां के लोग तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं, तो ये मतलब एक सीधा जवाब इसका देना कि ये हाँ या नहीं में, मुझे लगता है हमारी रिसर्च भी हमें एक सीधा जवाब नहीं देती। वो उन फैक्टर्स को इलिसिडेट करती है कि इनको हम सस्टेनेबली कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमें, जैसे मैंने बोला, एक टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, और जो हम आपने अभी पहले भी पेपर की बात करी उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि अगर एक हम स्मॉल टैक्स टूरिज्म पे, अगर हम जो टूरिस्ट आ रहे हैं अगर उन पे अगर हम इम्पोज करते हैं, तो वो दो जो सर अभी पहले भी बात कर रहे थे, वो टैक्स कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल एंड द टूरिस्ट हु आर कमिंग टू दीज हिल टाउन्स। तो अभी हमें ये सोचना है कि क्या अब आपको जाना है, मुझे जाना है, तो हम कंट्रोल ये नहीं कर सकते कि कौन जा सकता है। मतलब अगर मैं डे टू डे बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करूं, अगर बहुत स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशंस ना लाए हम कि हम कैप कर दें, इससे ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे, बट उसमें भी बहुत लीकेजेस हैं। बट आई थिंक इनोवेटिव।
0: लेकिन अभी कुछ समय पहले, बिल्कुल डॉक्टर रूपम, अभी चूंकि समय की भी कमी है, लेकिन जितना जितनी बातें आप लोगों से सामने आई हैं, समझ हम पाए हैं, उसमें यह है कि कुछ समय पहले भी हमने देखा था, आई थिंक पिछले साल ही या इस साल ही गर्मी, जब समर वेकेशंस हुए थे तो मनाली में भी और कुछ और ऐसे इलाकों में गवर्नमेंट की ही तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि कितने लोग जा सकेंगे, और कंट्रोल्ड वे में टूरिस्ट को परमिशन दिया गया था वहां पर जाने का। तो ऐसे में यही कहेंगे कि एक कंट्रोल्ड वे में टूरिज्म भी जो है वहां पर जाए, पहुंचे, ताकि जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो और जो लोकल्स हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इन बातों का ख्याल रखना होगा और एक्टिवली गवर्नमेंट को इस पर काम करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: और अब आपको दिखाते हैं लोक संस्कृति और लोक कलाओं के कुछ और रंग जो उत्तराखंड के खटीमा में आदि रंगोत्सव के रूप में इन दिनों बिखर रहे हैं। इस उत्सव में 15 राज्यों के कलाकार और कारीगर अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इनके लिए ये उत्सव उनकी कला की नुमाइश के साथ साथ दूसरे इलाकों के लोगों के मेलजोल का भी खास अवसर है।
2: ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच बांसुरी और बीन की धुनों पर थिरक रहे ये लोग, लोक संस्कृति और नृत्य का मजा ले रहे लोगों की झलक दिख रही है हर ओर। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की है, बल्कि देश के और भी इलाकों की लोक संस्कृति का शानदार संगम दिख रहा है। असल में यह मौका उत्तराखंड आदि रंगोत्सव के आगाज का है। यहाँ देश की संस्कृति विरासत की अनूठी झलक देखने को मिल रही है और इसे बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है।
3: सर, मैं तिराकी बरावत, संस्कृति विभाग ग्रेड वन। वैसे मैं नीतिमाड़ा से हूँ, लेकिन प्रस्तुति मैं ग्रेड वन देहरादून से देती हूँ। और अपनी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए हम वैसे माना बद्रीनाथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको भी बोलना चाहेंगे, इस वेशभूषा की कदर बहुत ज्यादा है। गर्मी है, लेकिन तभी भी हम संस्कृति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम संस्कृति के साथ हैं, वरना तो इन लोगों को गर्मी लग रही है। जय।
2: इस महोत्सव में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक के 15 राज्यों की लोक संस्कृति की झलक पेश की जा रही है। तमाम राज्यों से आए कलाकार यहाँ अपनी कला के रंग बिखेर रहे हैं। मौसम और माहौल भले ही अलग है, लेकिन इन्हें यहाँ आकर खुशी बहुत हो रही है।
4: हम सिक्किम से आए हैं, मेरा नाम भूमिका है, और उत्तराखंड पहली बार आने से मुझे बहुत खुशी लग रहा है। बहुत सारी कम्युनिटी हम देख रहे हैं, और हमने जो ड्रेस पहना है वो मगर कम्युनिटी का है। उत्तराखंड पहले बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे सिक्किम में उतना ज्यादा गर्मी नहीं, पर यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है।
2: इस मेले में उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों के पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट को भी पेश किया जा रहा है, जिसमें कपड़े हैं, हाथ से बने सजावटी सामान, मसाले और खाने पीने की सामग्रियां भी है। सुदूर इलाकों में गांव के छोटे कारोबारियों को यहां अपने प्रोडक्ट पेश करने का मौका मिला है।
5: हमारे यहां लहसुन का मिर्च का प्लस बल्ला पेड़े का और बड़र का, इस सब तरह का चाह हम बिना केमिकल के बनाते हैं, जो कि शुद्ध सरसों का तेल वगैरह घर के मसाले, ना कि मार्केट का कोई मसाला यूज करते हैं, ना कोई केमिकल यूज करते।
2: संस्कृति का ये मेल एक ही जगह पर कई राज्यों के कलाकारों और दस्तकारों के मिलने का मंच बन गया है, जहाँ संस्कृतियों के मेल के साथ सबको अपने कारोबार को भी बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है।
5: उत्तराखंड देखने के लिए आया तो अच्छा कैसा लगता है, यहाँ का लोग कैसा है, हम लोग को क्या लगेगा, ऐसा हम लोग को मैंने कोई सोल्यूशन लेने के लिए आया है, और थोड़ा बिजनेस भी ले गया है साथ में।
6: मैं कलकत्ता से हूँ, कांथा वार हैंड एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मेरा काम है, तो मेरे साथ बहुत सारा लेडीज जुड़ा हुआ है। जो लेडीज गांव में रहते हैं, जो शहर में नहीं आ सकते, वो गांव में बैठ के हमारे लिए काम करते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराती हूँ उनको, ट्रेनिंग कराने के बाद उनको मैं प्रोडक्ट देता हूँ, वो खुद बनाते हैं हाथ की कढ़ाई, और उसी को प्रमोट करने के लिए हम आगे आते हैं एग्जीबिशन में।
2: आदि रंग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के भव्य रोड शो से हुआ। ये महोत्सव पहले देहरादून में होता रहा है, अब पहली बार खटीमा में 3 दिन के लिए इसका आयोजन किया गया है, तो स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजेश छाबड़ा, खटीमा, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमेरिका में चल रहे सतरंगी बलून मेले की। अमेरिका के न्यू मैक्सिको का आसमान सतरंगी रंगों से सराबोर हो उठा है, जब अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा के दौरान इन दर्जनों हॉट एयर बलून्स ने एक साथ उड़ान भरी। इस दौरान आसमान में एक से बढ़कर एक अनूठे और आकर्षक गुब्बारे तैरते नजर आए। जहां कुछ गुब्बारे बीमा कंपनियों के विज्ञापनों से सजे थे, तो वहीं कुछ का आकार एलियन के सिर जैसा था। यहां तक कि इंसानी दिमाग की शक्ल में बना एक विशाल काय गुब्बारा भी हवा में तैरता दिखा, जो कि नीचे मौजूद दर्शकों के लिए भारी आकर्षण का केंद्र रहा। इस ऐतिहासिक महोत्सव की शुरुआत साल 1972 में महज 13 गुब्बारों के साथ हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून इवेंट बन चुका है, जिसमें लगभग 600 गुब्बारे हिस्सा लेते हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। लेकिन चाय पर चर्चा में हम खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले आपको बोले है तो मंडे, लेकिन यहाँ पर जो लड़कियां ये बैठी हैं ना, किसी को मंडे ब्लूज नहीं हो रहे, सभी इतनी खुश हैं। और अभी शगुफ्ता कह रही थी बैक ऑफ द कैमरा कि हर दिन मंडे होना चाहिए।
3: नहीं, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेती हूं, उसके चक्कर में फ्राइडे थर्सडे नहीं आएगा। हाँ। तो मैंने आई टेक बैक माय वर्ड्स, मंडे शुड बी वन डे,
4: मंडे होना चाहिए, सुकून वाला होता है
2: मंडे, सुकून वाला। लेकिन लग रहा
3: है मंडे हमारे लिए बहुत सुकून वाला है,
2: ये आपने कहीं सुना है? मतलब मुझे लगता है गुड न्यूज टुडे के अलावा और कहीं भी लोगों ने नहीं सुना हो कि मंडे सुकून वाला लोगों को लग रहा है। लेकिन क्या करें, अपना चैनल ही ऐसा है, इसलिए प्लीज आप बने रहे हमारे साथ। और आज आपको क्या कुछ दिखाने वाले हैं ये चलिए फटाफट बता देते हैं। तो शक्ति और भक्ति का महापर्व यानी कि दुर्गा पूजा बस कुछ ही दिनों बाद शुरू हो रहा है। धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हुए माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के दिन बस आने को हैं। तो शहर दर शहर किस तरह से पंडालों और माँ की प्रतिमाओं को तैयार किया जा रहा है, सबसे पहले आज इसी खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे गरबा डांडिया को लेकर महिलाओं और युवतियों में कैसा उत्साह है।
3: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आपको आस्था के सफर पर उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्यटन भी खूब फल फूल रहा है। दिखाएंगे नैनीताल में मौजूद कैंटी धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है। साथ ही एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झीलों में से एक वूलर झील संरक्षण के साथ पर्यटन बढ़ाने और युवाओं को फिटनेस के प्रति कैसे जागरूक बनाया जा रहा है, तस्वीर आई है, दिखाएंगे आपको।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। दृश्यम 3 के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन की भी बात होगी, बीते वीकेंड तक फिल्म का कमाई को लेकर कैसा रहा है रिकॉर्ड, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और साथ ही जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस के स्वागत की भी गर्व से भरने वाली तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कार्ल डिसरॉथ, पीटर एगमैन और जॉर्ज नागेल को मिलेगा। संयुक्त रूप से सम्मान रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारत में जन्मी चीता ने 5 शावकों को दिया जन्म, देश में बढ़ रहा चीतों का कुंभ। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदकवीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोल ताशों की गूंज के बीच बरसे फूल। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक करीब 19 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी करीब 4 लाख श्रद्धालु।

0: देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम उत्सवों और फेस्टिवल्स का जिक्र करते हैं तो नाम क्या आता है जहन में, सिर्फ एक ही चैनल जिसका नाम है गुड न्यूज़ टुडे। कोई भी त्योहार अगर आपसे गलती से मिस हो जाए तो जीएनटी की स्क्रीन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सारे त्योहारों की डिटेल हम आपको देंगे। अब चूंकि एक और एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट इस बात की है कि माता रानी के 9 दिनों की शुरुआत होने जा रही है। गरबा डांडिया की धूम तो दिखाई देगी ही, लेकिन वहां पर पहुंचेगा कौन और किसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं लहंगों को लेकर सारा कुछ। पहले मैं श्वेता को पूछना चाहूंगी, ऑफ द रिकॉर्ड मैं पूछना चाहूंगी, यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर द फेस्टिवल, है ना? व्हाई?
1: मैं हमेशा रहती हूँ शगुफ्ता, पता है, जब से गुड न्यूज टुडे में आना हुआ और यहाँ से जब भी हर साल गुजरात जाती हूँ ना, तो यहाँ के रंग तो मैं देखती रही थी, लेकिन गुजरात में जो रंग रहता है, एक घर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां से परिवार, पूरा का पूरा परिवार वो डांडिया खेलने ना गया हो। दैट इज अमेजिंग। यानी कि पूरा शहर, आप अंदाज लगाइए कि पूरा शहर आपको रात में ग्राउंड पे मिल रहा है, घर में एक आदमी नहीं है। वो तो रौनक ही अलग होती है, वो वाइब्स ही अलग होते हैं गुजरात में।
0: पहुंच कर आई थिंक आपकी भी वाइब अलग हो जाती
1: है। बिल्कुल, तो रात
0: बड़ी सुंदर दिखाई देती है श्वेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस घाघरा चोली मुझे लगता है इस बार भी इनकी वो तैयारियां शुरू हो गई,
2: हाउ एक्साइटेड आर यू? तैयारियां इनकी सब शुरू हो गई, जब आप बड़े बड़े झुमके पहनती है, वो वाली बिंदी लगाती है जिसमें प्रॉपर गुजराती फील आती है। मेरी वाली बहुत एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि कॉलेज के डेज से ही ना हम लोग गरबा करते थे, अलग अलग ड्रेसेस पहनना, 9 दिनों तक आपने क्या पहनना है सब कुछ डिसाइड करना। अब भी इनफैक्ट और गुड न्यूज टुडे पे तो ये भी रहता है ना कि अब शाम को 5 बजे हम कौन सी ड्रेस पहने, तो वो सारी एक्साइटमेंट बनी रहती
1: है। शगुफ्ता, आप सबने सबके बारे में पूछ लिया, आप अपने बारे में बताइए।
0: मैं या तो कैमरा के इस पार रहूंगी या उस पार रहूंगी, आपके साथ तो मैंने रहना ही रहना है, इतना तो मुझे पता ही है। तो लेकिन आपको देखने की एक्साइटमेंट हमें इस बार ज्यादा होगी। हम तो प्लान कर ही लेंगे, स्टूडियो के लिए तो कर ही लेंगे, क्योंकि वहां की वाइब और वहां के रंग अलग होते हैं, तो देखने में मजा।
1: लेकिन ये बताइए, दुर्गा पूजा या फिर नवरात्रि? बिकॉज नवरात्रि यानी गरबा डांडिया, दुर्गा पूजा इज आप वो बंगाली साड़ी पहन के और जब आप जाते हैं पंडालों में,
0: मुझे तैयार होने का मौका दे दो, मुझे तैयार होने का मौका दे दो, मुझे कोई भी मौका दे दो, बस मौका दे दो एक बार। अब चलिए, इस त्योहार की बात कर रहे हैं तो तमाम रंग भी आपको दिखाते हैं। शक्ति की आराधना, भक्ति की भावना, उत्सव के उल्लास से सजे शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा फिर से बस शुरू होने को है, जहां माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ वातावरण भक्तिमय उठेगा, तो पंडालों की रौनक माँ के जयकारों से हर मन में नई ऊर्जा भी भर जाएगी।
2: और देखिए, अब क्योंकि ये पर्व केवल आस्था का उत्सव नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश भी देता रहा है, तो हर साल की तरह इस साल भी मां भवानी का नाम लेकर पावन पर्व की तैयारियां देश भर में हो रही है। खासकर की दुर्गा मूर्तियों को बनाया जा रहा है, जिसमें कुछ ही डिमांड तो विदेशों से भी आ रही है। देखिए तस्वीरें।

0: शक्ति, भक्ति और सत्य की जीत का प्रतीक दुर्गा पूजा, जो सदियों से एक त्योहार के रूप में हमें नारी शक्ति का सम्मान करने, खुद के अंदर साहस, आत्मविश्वास और करुणा जगाने की प्रेरणा देता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी उसी देवी शक्ति को पूजने, प्रेम और एकता की भावना के साथ मजबूत करने के दिन आ रहे हैं। माँ की आराधना, उनको नमन करने के दुर्गा पूजा के पावन दिन आ रहे हैं। आस्था और श्रद्धा से लबरेज देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने भी इस बीच रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को खासकर पश्चिम बंगाल के पारंपरिक डिजाइन की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिनकी डिमांड अब विदेशों से भी खूब हो रही है। पूर्वी बर्दवान में कालना के हटगाछा गांव की तस्वीरें हैं। यहां के कलाकार तापस पाल पारंपरिक शैली से लेकर नए और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली मूर्तियां बनाते हैं। इस साल इन्हें 20 मूर्तियों के ऑर्डर मिले, जिनमें से एक मूर्ति को इंग्लैंड भेजा जा रहा है। करीब 5 किलो वजनी, 28 इंच ऊंची ये मूर्ति खास पैकेजिंग में इंग्लैंड भेजी जाएगी।
1: बड़ दुर्गा प्रतिमा है, মাছের মুজি আছে, আপনার খড় আছে, দড়ি আছে, মাটি আছে, যেরকম বড় প্রতিমা সেভাবেই ছোট প্রতিমাটা করা আছে। ছোট প্রতিমাটা এটা 8 দিন লেগে যাচ্ছে প্রায়।
0: दरअसल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर तापस पाल की एक मूर्ति को पसंद किया और उसे इंग्लैंड भिजवाने का अनुरोध किया, जिसके बाद तापस का परिवार बेहद खुश है।
1: वो खूब विदेश जाते, खूब खुशी, खूब भालो लग जे।
0: वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी इस बार माँ दुर्गा पूजा के अलग रंग बिखेरने के लिए तैयार हो रही है। दरअसल यहाँ के मूर्तिकार इस बार माँ की आराधना के माध्यम से मोबाइल के अनावश्यक इस्तेमाल पर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए इस मूर्तिकार ने महिषासुर नहीं बल्कि मोबाइल असुर नाम के राक्षस की आकृति बनाई है।
2: इस बार का ये जो थीम है, जो बच्चे, आजकल के बच्चे आपके घर में, हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए हमेशा जो कि मोबाइल के समझ लीजिए कि हैबिचुअल हो गए हैं, उनसे उनको बच्चों को दूर करने के लिए ये समझ लीजिए विजुअलाइज दिखाने के लिए ये विजुअल कि देखिए बच्चों ये गलत चीज है, ये समाज में एक समझ लीजिए दर्शन देने के लिए बच्चों के लिए ऐसा बनाया जा रहा है।
0: ये मोबाइल असुर का मॉडल वाराणसी में कचहरी इलाके के पूजा पंडाल में स्थापित किया जाएगा, जहां मां नारायणी उसका संहार करेंगी। इस संहार को इलेक्ट्रॉनिक शो के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
3: जैसे ही जो मोबाइल असुर आप लोग देखे हैं, जैसे ही मतलब दुर्गा माता उनका वध करेंगी, उसी समय फिर ये बच्चा को दर्शाया जाएगा रोते हुए, और उनके अकॉर्डिंग जो बालक आप लोग देखे हैं उनका ये देखिए जैसे माँ बोल सकते हैं, उनको भी दर्शाया गया, मतलब ये मना करेंगे कि मत चलाओ, फोन मत देखो।
0: बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, और यही संदेश दुर्गा पूजा का भी रहा है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद जीवन से अंधकार दूर कर सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। इसी शुभेच्छा के साथ देश भर में मूर्तिकार भी पंडालों से लेकर वर्कशॉप तक दुर्गा भवानी की इन सुंदर प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। पूर्वी बर्दवान से सुजाता मेहरा और वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो माँ दुर्गा की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं बन रही हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। देखिए, मैं तो इतने समय में यही समझ पाई हूँ, नवरात्रि यानी कि गुजरात, गरबा डांडिया, और दुर्गा पूजा यानी कि पश्चिम बंगाल कोलकाता, है ना।
5: और उसमें से बीच का रास्ता निकल जाता है सीआर पार्क। मैं वहां पे गई थी ना, तो मैंने देखा था कि वो लोग किस तरीके से मूर्तियां बनाते हैं, वो वहीं के कलाकारों को, कारीगरों को बुलाते हैं, वो लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत ही डेडिकेशन से बनाते हैं हर एक। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब वो आंखों पर काम करते हैं ना, तो बहुत ही पेशेंस के साथ, मतलब बहुत सुंदर बनाते हैं।
6: तो मेरा वही कहना है कि जिन लोगों को मौका नहीं लगता कोलकाता या यहाँ जाने का, आप यहाँ पर मिनी बंगाल के दर्शन कर लीजिए, यहाँ भी आपके पास वैसे ही रंगत आपको नजर आएगी, है ना।
5: और खाना खाना बहुत
4: बिल्कुल खाना तो जैसे कि वही है कि आप देर रात अगर पंडाल हॉपिंग करेंगे आप अलग अलग पंडाल में जाएंगे तो आपको भूख लगेगी ऑब्वियसली तो उसके बाद लेकिन खास करके आप वही एक जो फर्क बेसिक फर्क मैंने देखा कि अगर आप उधर गुजरात के साइड में जाएंगे तो वहां नॉनवेज नहीं चलता है खास करके नवरात्रि में भी नहीं और अदरवाइज वहां नॉनवेज आपको बाहर वैसे नहीं मिलेगा किसी खास रेस्टोरेंट में आपको जाके नॉनवेज लेना पड़ेगा ज्यादातर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स होते हैं लेकिन हाँ वहां भी आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि खाने पीने की इतनी चीजें होती हैं कि आपको मजा आ जाएगा लेकिन जो पश्चिम बंगाल की इन्होंने बात की आपने जो दीपिका बात की उसमें खाने पीने में बिना मतलब आप जो कह लीजिए गोलगप्पे से लेकर के आप नॉनवेज का कोई भी आइटम आप कह लीजिए वो सारे स्टॉल्स आपको मिलते हैं और चूंकि पश्चिम बंगाल यानी कि वहां की लोक संस्कृति कला गाना बजाना सब कुछ होता है तो यहाँ के पंडालों में भी विशेष करके आपको बता दें कि अलग अलग कलाकार आते हैं बहुत सारे गाना होता है नृत्य होता है ये सारी चीजें देखने को मिलती है लेकिन कलकत्ता और खास करके पश्चिम बंगाल पूरा अगर देख लें वहां की रौनक ही अलग है आपको बता दें वहां पर प्रतिमाएं अभी बननी शुरू हो चुकी हैं अब तो अंतिम रूप दिया जा रहा है और पंडालों को लेकर महीनों से डेकोरेशन वहां पर चल रहा होता है चलिए आपको लिए चलते हैं दिखाते हैं तैयारियां वहां कैसी हैं

0: जैसे जैसे दुर्गा पूजा के दिन करीब आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में उत्सव के रंग और गहराते जा रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के केशपुर की हैं। यहाँ के गढ़ सोनापोता में 18 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की आराधना की परंपरा है। बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 500 साल से दुर्गा पूजा में 18 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा की पूजा होती है। वैसे तो मंदिर में प्रतिमा स्थापित है, लेकिन पंडाल के अंदर भी स्थापना के लिए माँ की 18 भुजाओं वाली मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा में आमतौर पर माँ दुर्गा की 8 भुजाओं वाली प्रतिमाएं ही बनाई जाती रही हैं, लेकिन माँ की 18 भुजाओं वाली इस प्रतिमा के स्वरूप की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है। भक्तों को अब बेसब्री से इंतजार है दुर्गा पूजा के शुभारंभ का। जैसे जैसे उत्सव के दिन करीब आ रहे हैं, श्रद्धालुओं का उल्लास भी बढ़ता जा रहा है।
1: महादेव पूजा शुरू है अष्टमी थी के, तारपद दिन थी कल्प आरम्भ, तारपद दिन थी के মানে কল্পারম্ভ যে শুরু হয় ওই দিন থেকে আপনার যত মায়ের আমাদের মায়ের যে আঁকা থাকে ওই পুজো এক এক দিন হয়, আরতি হয়, চণ্ডী পাঠ হয়।
0: ওই পশ্চিম বঙ্গাল কে দুর্গাপুর মে এসবার অযোধ্যা কে রাম মন্দির কি তর্জ পর ভব্য দুর্গা পূজা পন্ডাল তৈয়ার হো রাহা হ্যায়। कलाकारों की मेहनत से विशाल पंडाल अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। आयोजकों के अनुसार पंडाल के निर्माण में 1 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। पंडाल की भव्यता को देखते हुए इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस के सामने सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की चुनौती भी रहेगी।
2: না আমরা মেইনলি সেফটি সিকিউরিটির আসপেক্ট যেটা আছে ওটাই দেখছি, আর সঙ্গে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের কি রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো কমপ্লাই করা হয়েছে কিনা আমরা দেখছি।
0: पंडालों से लेकर वर्कशॉप तक कलाकारों और मूर्तिकारों की अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने के आसार हैं। माँ की उपासना के इस उत्सव का इंतजार श्रद्धालुओं को पूरे साल रहता है। अब आराधना और उल्लास के इस महापर्व में कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा भक्तों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। दुर्गापुर से अनिल गिरी, पूर्वी बर्दवान से सुजाता मेहरा और वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी हर साल दुर्गा पूजा की रौनक देखने लायक रहती है। ऐसे में चितरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडालों की तो बात ही क्या कहें।
4: बिल्कुल, देखिए तो चलिए आपको दिखाते हैं सीआर पार्क में द कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाए जा रहे पंडाल के बारे में बताते हैं, जिसे इको फ्रेंडली थीम पर सजाया जा रहा है। दरअसल इस बार पंडाल को जूट और बांस से तैयार किया जा रहा है और यहाँ की माँ की मूर्ति को कपड़ा प्लास्टिक से नहीं बल्कि मिट्टी से आकार दिया जा रहा है।
5: चितरंजन पार्क में कई जगहों पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, उसी में से एक कोऑपरेटिव ग्राउंड में भी भव्य थीम बेस्ड पंडाल बनाया जाता है जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर इस पूजा को इस वर्ष 51 साल पूरे हो रहे हैं और इस बार इस तरह यहां पर किस तरीके की तैयारी है उसको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जूट के थीम पर यहाँ पर यह पूरा बनाया जा रहा है और उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। और ये एक बड़ा पूजा है जहाँ 51 सालों से पूजा हो रही है, इस बार 51 साल है और हम दिखाते हुए चल रहे हैं अंदर किस तरीके से बनाया गया है। देख सकते हैं पूरा जूट का जो एक ट्रेडिशन है उसको इस पंडाल के जरिए दिखाया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जूट और बांस आप देख सकते हैं, जूट और बांस के जरिए जो है पूरी जो है दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बांस की ये लकड़ी वगैरह के सब डिजाइन बनाए जा रहे हैं। जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हम आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। जो कारीगर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं बांस के सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। ये सब जूट है और जूट के जरिए सिलाई कर कर के आप देख सकते हैं जूट है जूट और उसको सिलाई कर करके ये पूरी तैयारियां की जा रही है। और जो कारीगर हैं वो आपका एक काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर पूजा समिति के भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं।
6: इधर पे बेसिकली हम लोग थीम बना रहे जूट बेस, बैम्बू भी यूज हो रहा है बट जूट इज द मेन बेस, क्योंकि हम लोग ये थीम बोलना चाहते हैं कि जूट का क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकते हैं एंड ऑलवेज कोऑपरेटिव ग्राउंड हैज सपोर्टेड इको फ्रेंडली थीम को. तो इस बार हम लोग सोचा थोड़ा वही एक दिखा है ना कि पुराना जो जूट का है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, यूटिलाइजेशन कैसे हो सकते हैं.
5: क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी है और कितना इंतजार है आप लोगों को, चूंकि पूरे साल आप लोगों को इंतजार रहता ही है, किस तरीके से?
7: ये पूरे साल का एक्टिविटीज है एंड एक पूजा खत्म नहीं होता कि हम दूसरे के अगले साल के लिए तैयारी चालू कर देते हैं और ये बहुत बढ़िया तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं. वी आर द ऑल्सो द अवार्ड विनिंग ये पंडाल है फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स. ऐसा कोई भी साल नहीं है कि हम लोग किसी भी तरीके का प्राइज नहीं मिला, हर साल प्राइज मिला है बिकॉज हम थीम पैंडल करते हैं, इको फ्रेंडली पंडाल करते हैं और वन ऑफ द हाईएस्ट फुटफॉल इन दिल्ली अगर बोलते हैं तो इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा होता है.
5: हम आपको थोड़ा सा अब माता की प्रतिमा भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं कारीगर काम कर रहे हैं, सब कुछ मिट्टी का बनाया जा रहा है, प्रतिमा वस्त्र वगैरह तमाम चीजें जो है आपको मिट्टी का ही नजर आएगा और इको फ्रेंडली जो है पूरा बनाया जा रहा है और जो कारीगर हैं यहाँ पर काम करते आपको नजर आएंगे और भव्य पंडाल जो है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा. और यह पंडाल एक बार आप देखो फिर से दिखा देते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से जूट बेस्ड जो जूट इंडस्ट्री बंगाल में कलकत्ता में हुआ करता था और वो आजकल काफ़ी पीछे छूट गया है और तो उसको प्रमोट करने के लिए और उसका संदेश देने के लिए यहाँ पर जूट थीम पर यहाँ का पंडाल बनाया जा रहा है. आशुतोष कुमार, दिल्ली.
3: तो शक्ति उपासना का पर्व है शारदीय नवरात्र, एक तरफ दुर्गा पूजा और नवरात्रि में शक्ति की भक्ति तो दूसरी तरफ इन्हीं पावन नौ दिनों में गरबा डांडिया की रौनक बिखरी है जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है. देखिए गुजरात से भी ढेर सारी खबरें आ रही है, जब मैं वहां पर पहुंचूंगी तो वहां से भी आपको खबरें दूंगी, लेकिन यहां पर अदरवाइज जो वहां नहीं भेजा पाते हैं यहां भी आई थिंक दिल्ली एनसीआर में जितने भी गरबा ग्राउंड्स होते हैं वहां भी जमकर एकदम नवरात्र मनाया जाता है,
4: शुरू हो चुकी है. अगर वर्कशॉप्स भी इनफैक्ट लगती हैं, आपके पास ऑप्शन अगर वहीं नहीं जा सकते तो यहां पे थोड़े से पैसे के आप अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न द बेसिक स्टेप्स.
8: बिल्कुल, और उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं ना वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनके लिए एक बहुत ग्रेट फेस्टिवल होता है. कपल्स में भी जाते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं और भयंकर डांस.
4: नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जो सोसाइटीज वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे सोसाइटीज में जो हाउस होल्ड लेडीज हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया हो जाता है, आपके पास ऑप्शन है कि त्योहार है तो आप सज धज कर
8: बिल्कुल
4: नृत्य में शामिल हो जाए, है ना.
3: बिल्कुल, और उसमें मैं कई सारे सोशल मीडिया पे शगुफ्ता देख रही थी, ऐसे मीम्स बन रहे थे, ऐसे आ रहे थे, उसमें ये था कि फ्रेंड्स है या कपल है वो गरबा खेल करके आए हैं तो फिर स्प्रे लगाया जा रहा है पैरों में क्योंकि इतना गरबा खेल रहा है, रात में 2-3 बजे तक लोग खेते हैं तो दर्द हो रहा है. उसके बाद ये कहा जा रहा है जब उठती हैं वो महिला तो उसके बाद फिर बोलते हैं अच्छा इतना सारा सामान है, मतलब क्योंकि वो तैयार होके गई हैं तो कई सारे कपड़े निकाले इसको भी तैयार समेटना है रखना, बोले अच्छा ये भी काम है. फिर अपने हस्बैंड को ये कहते हैं कि अभी 9 दिनों तक मुझे कुछ नहीं बोलना, घर का कोई काम नहीं होगा, मैं ऐसे ही गरबा खेल के आऊंगी, पैर में स्प्रे लगाऊंगी और फिर सोऊंगी, सुबह उठ के फिर नेक्स्ट डे की तैयारी. तो ये होता है गरबा, ये होती है मस्ती.
8: बिल्कुल, देखिए गुजरात से भी ऐसी खास करके तस्वीरें सामने आ रही है, मध्य प्रदेश से तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अलग अलग डिजाइन की पगड़ियां, परंपरागत रंग बिरंगी पोशाकें पूरे लगन से तैयार की जा रही है. तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं.
9: अलग अलग डिजाइन की पगड़ियां, परंपरागत रंग बिरंगी पोशाक, कपड़ों पर अलग अलग डिजाइन की कढ़ाई, हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है क्योंकि देश भर में अब नवरात्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. ये तस्वीरें हैं गुजरात के शहर थान की, जहां इन दिनों इस तरह की पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है. यहां अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही है जिनकी डिमांड यूपी, एमपी, दिल्ली से लेकर साउथ इंडिया तक है.
10: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली कैरिया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं. हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है और हम बनाते हैं, सब बाहर गांव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है और आरी वर्क होता है और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, सब यहाँ बनता है.
9: पारंपरिक डिजाइनों के साथ साथ इस बार लाइट वेट और वाइब्रेंट कलर्स का क्रेज सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे परफेक्ट है कच्छी और आरी वर्क जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है.
11: यहाँ पे किसम टाइप की चोली मिलती रहती है, पोजिशन प्रिंट है, कच्ची वर्क है, यहाँ की चोली का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, फिर फ्रेंड्स भी यहाँ से ही लेने का प्रेफर करती है।
9: यहाँ सिर्फ चनिया चोली ही नहीं बल्कि उसकी मैचिंग का दूसरा सामान भी मौजूद है। कपल्स के लिए सेम डिजाइन के जूते और पारंपरिक पगड़ियाँ भी मौजूद हैं। गुजरात के थान की बनी चनिया चोली धूम मचा रही है, तो वीरांगनाओं की भूमि झांसी में परंपरा आधुनिकता का ऐसा संगम दिखाई दे रहा है जो हर किसी का दिल जीत ले। झूमती थिरकती महिलाओं की ये तस्वीरें झांसी के ऐतिहासिक किले की छांव पार्क की हैं, जहां सैकड़ों महिलाएं और युवतियां डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं। अलग अलग स्टेप्स करती हुई इन महिलाओं का उत्साह देखने लायक है। हर साल गरबा में नए नए स्टेप्स देखने को मिलते हैं, ऐसे में लोग इस तरह की गरबा ट्रेनिंग क्लासेस में शामिल होते हैं और माता रानी की भक्ति में डूब जाने के इस उत्सव की तैयारी करते हैं।
12: लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
9: हर साल की तरह इस बार भी नवरात्र की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बस कुछ दिन का इंतजार और, जिसके बाद गरबे की थाप पर पूरा भारत माँ अम्बे की भक्ति में झूमता हुआ नजर आएगा। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए कैंची धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे,
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में, आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डिसे

बॉली बील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारत में जन्मी चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया, देश में बढ़ रहा चीतों का कुनबा। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदक वीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोल ताशों की गूंज के बीच में बरसे फूल। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक करीब 19 लाख भक्तों ने किए दर्शन, सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में करीब 4 लाख श्रद्धालु। देशभर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारी, दिल्ली के सीआर पार्क में खास थीम पर तैयार हो रहा भव्य पूजा पंडाल, यूपी से गुजरात तक गरबा की प्रैक्टिस।

0: भाई ये न्यूज़ देखकर और सोशल मीडिया पर भी सुन देखकर समझ में नहीं आ रहा कि लॉन्ग वीकेंड प्लान किया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि आस्था पर तो आप निकल जाते हैं लेकिन वहां जाकर आप ऐसा फंसते हैं कि फिर आपको दिक्कत होने लगती है। लेकिन ठीक है, आस्था सबसे ऊपर है। श्रद्धा और भक्ति के ऐसे ही रंग दिखाई दे रहे हैं इन दिनों कैंची धाम में। आई एम श्योर कि आप में से अभी तक कोई गया है रिसेंट, क्योंकि मैं होकर आई हूँ।
1: मैं भी होकर आई हूँ।
0: बहुत ही लंबा ट्रैफिक जाम,
1: मतलब मैं तो अब ये सब देखने के बाद यही लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर वाकई आपको श्रद्धा है और आप सिर्फ वहां जाना चाह रहे हैं तो वीक डेज में समय निकालिए और उसमें होके आइए, वीकेंड तो नहीं प्लान करिए।
0: नहीं, वीकेंड पे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं।
2: इस बार तो मतलब इतने हजार लोग वहां पर जा चुके थे कि बहुत ही लंबा ट्रैफिक था और इनफैक्ट हमारी टीम में से भी एक शख्स उसमें फंस चुके हैं जो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।
0: और देखिए हम में से ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वहां जाकर आए हैं और ऐसी ही तस्वीरें हमने भी वहां पर देखी हैं। रिकॉर्ड संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं कैंची धाम में। देखिए आस्था के रंग तो नजर आएंगे, साथ ही आपको हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के धाम में पहुंचे हुए नजर आएंगे। हनुमान अंश का एक इन्फ्लुएंस कहें, प्रभाव कहें, क्योंकि उसके बाद लगातार यहां पर आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आई एम श्योर कि मूवी देखने वालों के बाद जिन लोगों की आस्था ज्यादा गहरी हुई है वो पहली बार पहुंचे हैं दर्शन करने।
1: मैं तो आपको ये बोलूंगी, आपने शायद पहले देख ली थी हनुमान अंश। शायद मैं तो कल मैंने देखा और सोचे कब रिलीज हुई है ये मूवी, लेकिन कल जब मैं पहुंची हूँ, कल वीकेंड था और क्या भीड़ थी इसको देखने के लिए, मतलब पूरा हाउस फुल था। हमें लिटरली टिकट लेने के लिए हम 2 वीक से ट्राई कर रहे थे और इस बार हम दिन में गए हैं देखने के लिए। 1 बजे की वो मूवी थी, शो थी, और मतलब लंबी कतार थी, लिटरली लाइन में खड़े होकर लेना पड़ा, तो इसका असर तो जरूर पड़ रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए कैंची धाम लंबे समय से शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता रहा है। नीम करौली बाबा के भक्त यहाँ ध्यान, जप और हनुमान चालीसा का पाठ करने आते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर हाल में आई फिल्म हनुमान अंश के बाद रिकॉर्ड दर्शन हो रहा है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वीकेंड पर एक दिन में 27,000 से 30,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि वो फिल्म देखने के बाद यहां आए हैं। उधर हनुमान अंश का जलवा भी देश विदेश में कायम है। महज 2 करोड़ रुपए के बजट वाली ये फिल्म सिनेमाघरों में वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच बसे बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सड़क से लेकर मंदिर तक श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है। जिसे देखो वही कैंची धाम की ओर खींचा चला आ रहा है। आस्था के इस महाकाफिला का रुख उस संत के धाम की ओर है जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार, कोई उन्हें नीब करौली बाबा कहता है तो कोई नीम करौली बाबा, कोई महाराज जी कहता है तो कोई हांडी वाले बाबा। नीम करौली बाबा की कर्मभूमि कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले भी उमड़ती थी, लेकिन जब से बाबा नीम करौली महाराज के जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने पर्दे पर दस्तक दी है, तब से न सिर्फ इस धाम में श्रद्धालुओं की दिलचस्पी बढ़ी है बल्कि रिकॉर्ड संख्या में इस धाम

0: के दर्शन करने लोग भी उमड़ पड़े हैं।
1: जो प्रचार प्रसार तो नहीं बोल सकते, ये इनकी कृपा दृष्टि है जो सब लोगों पे बिखर रही है। अगर देखने जाए तो बाबा को किसी भी प्रचार और प्रसार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाबा अपने आप में ही एक प्रचार और प्रसार है। तो उनके लिए किसी के आवागमन, मतलब उनको अपने आप में ही एक बोलते हैं कि हनुमान जी का अंश, ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, वो अपने आप में एक अनुभूति है। जो यहाँ पे आते हैं वही इस चीज को समझ पाते हैं।
0: आलम यह है कि कैंची धाम में भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में बड़ी तादाद युवाओं की भी है। कोई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार कैंची धाम पहुँच कर बाबा की भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना चाहते हैं।
2: अब कुछ भी बोलो मत, जो बाबा का चमत्कार है वही देखो और आगे आने वाली पीढ़ियों भी देखो कि जो अपना सनातन धर्म के अंदर जो चल रहा है उसी बात पे गौर करो।
3: काफी टाइम पहले से थी बट अब जाके बाबा ने मौका दिया है अपने दर्शन करने का, देने का। और हम दिल्ली से आए, नोएडा रहते हैं, और आस्था तो जैसे अभी मूवी आई है उसके बाद मैंने सुनने को मिला है कि उसके बाद बहुत ज्यादा आस्था बढ़ गई है।
0: सड़क पर भारी संख्या में कतार में लगी इन गाड़ियों की मौजूदगी को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आस्था किस कदर उमड़ रही है। खासकर वीकेंड पर तो यहाँ मानो जन समुद्र ही उमड़ पड़ा। कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या पहले करीब 8 लाख थी, जो फिल्म के प्रभाव के बाद 3 गुना बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है। आम दिनों में रोजाना 4 से 5 हजार भक्त आते थे, अब 6 हजार के पार आने लगे हैं। वीकेंड यानी शनिवार रविवार को ये संख्या 15 हजार से 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुंच रही है। आलम यह है कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच जो सफर पहले 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाता था, भारी जाम की वजह से श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग रहा था। लोगों को जाम की तकलीफ से बचाने के लिए पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था।
4: नैनीताल और आसपास के स्थानों में वाहन अधिक संख्या में पार्किंग नहीं है, तो आउटर एरिया में जो पार्किंग स्थल हमारे डेजिग्नेटेड है वहाँ से सड़क के माध्यम से इन जगहों पे पर्यटकों को भेजा जा रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।
0: सोशल मीडिया की वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में कैंची धाम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों और जीवन दर्शन से जुड़ी कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई हनुमान अंश फिल्म ने इसमें और इजाफा कर दिया, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने वुलर अल्ट्रा रन 3.0 मैराथन का भव्य आयोजन किया। 4 अक्टूबर को हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बांदीपुरा में बीएसएफ हेडक्वार्टर से शुरू होकर यह मैराथन खूबसूरत वादियों का दीदार कराते हुए वुलर झील के किनारे खूबसूरत वुलर विंटेज पार्क पर समाप्त हुए।
6: और देखिये, इस साल मैराथन की थीम सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन रखी गई थी, जिसका मुख्य मकसद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वुलर झील के संरक्षण का संदेश देना और युवाओं में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देना था।
0: कश्मीर की खूबसूरत वादियों में सैकड़ों कदम एक मकसद को लेकर जब दौड़ पड़े तो पूरी वादी जोश और एनर्जी से भर गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में रविवार को बीएसएफ ने मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा धावकों ने हिस्सा लिया। बांदीपुरा में बीएसएफ हेडक्वार्टर से शुरू होकर ये मैराथन खूबसूरत वादियों का दीदार करते हुए वुलर झील के किनारे खूबसूरत वुलर विंटेज पार्क पर समाप्त हुई। बीएसएफ की ओर से आयोजित ये तीसरा वुलर अल्ट्रा रन था, जिसमें पेशेवर एथलीट से लेकर बड़ी संख्या में बच्चे और युवाओं ने हिस्सा लिया।
7: जितने ये रन जो स्टार्ट हुई है बीएसएफ बांडीपुरा कैंप से स्टार्ट हुई है, ये रन जो हमने की ये हमने बोलर लेग के किनारे किए हैं। अभी हमने ये जो इख्तिताम किया है ये हमने वुलर विंटेज पार्क में ख़त्म की है। अभी हमारा जो ये रेस बहुत ही अच्छी हुई और हमें बहुत ही मज़ा आया।
0: धावकों की क्षमता के मुताबिक मैराथन को चार श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे कम 5 किलोमीटर के फन रन से लेकर 50 किलोमीटर के अल्ट्रा रन में स्थानीय लोगों से लेकर प्रोफेशनल एथलीट और बीएसएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। इस बार मैराथन में महिला सशक्तिकरण की अनूठी झलक दिखी, जहां कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों से आई करीब 200 महिला धावक पूरे उत्साह के साथ शामिल हुई।
8: पूरा जो एलिवेशन था रूट का, मतलब आई थिंक जो सारे अरेंजमेंट थे बहुत अच्छे थे और मज़ा आ गया ये रन कर। एंड माई मैसेज टू द यूथ इज़ कि अभी हम रोज़ न्यूज़ में यही देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है नशे की तरफ जा रहा है। तो मेरा उनको जो भी ये नशे कर रहे हैं, मेरा उनको एक ही मैसेज है कि एक बार आप रनिंग का नशा करके देखें।
9: बीएसएफ ने ये बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कराया ये मैराथन, एंड दे आर मल्टीपल लाइक डिफरेंट कैटेगरीज लाइक 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 एंड 42, एंड एवरीवन इज हियर फुल ऑफ जोश, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम बीएसएफ हेलीपैड एंड एंडेड हियर एट विंटेज वुलर लेक।
0: इस वर्ष मैराथन की थीम सेव वुलर रन विद बॉर्डर मैन रखी गई थी, जिसका मुख्य मकसद भारत की सबसे बड़ी और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वुलर झील के संरक्षण का संदेश देना और युवाओं में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देना था। वुलर झील कश्मीर की मशहूर डल झील से करीब 10 गुना बड़ी है, जहां डल झील मुख्य रूप से हाउस बोट और शिकारा पर्यटन के लिए पहचानी जाने वाली एक छोटी शहरी झील है। वहीं वुलर झील एक विशाल प्राकृतिक जल बेसिन है, जो झेलम नदी के अतिरिक्त पानी को सोखकर पूरी कश्मीर घाटी को बाढ़ से बचाती है। पिछले कुछ सालों से वुलर झील अपने अस्तित्व की कठिन लड़ाई लड़ रही है। इंसानी लापरवाही, कचरे और प्रदूषण की वजह से वुलर झील काफी हद तक सिमट गई है, जिसके संरक्षण की कोशिशें लगातार जारी है। बांदीपोरा में हुआ वुलर अल्ट्रा रन 3.0 मैराथन इसी वुलर झील के संरक्षण को लेकर चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा था। बांदीपोरा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: राजस्थान से गुड न्यूज आई है। यहां जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी सेंटर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पहला सफल रिलीज अभियान संपन्न हुआ, जिसके तहत 2 बस्टर्ड पक्षियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया गया।
10: बिल्कुल, आपको बता दें केंद्र और राजस्थान सरकार के सहयोग से वन विभाग कई सालों से राज्य में विलुप्त हो रहे राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने के लिए बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम चला रहा है, और इसी कड़ी में ये कदम काफी अहम है।
11: ये है राजस्थान की शान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोंडावन पक्षी, जिसके संरक्षण की दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल की गई है। देश में पहली बार 2 कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सॉफ्ट रिलीज सुविधा से राजस्थान की जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में उनके प्राकृतिक आवास पे छोड़ दिया गया है। दोनों गोंडावन की उम्र करीब 7 महीने, हाइट 1 फीट और वजन लगभग 5 किलो है। दोनों ही पक्षियों को टैग किया गया है ताकि उनकी गतिविधियों और जंगल में अनुकूलन पर नजर रखी जा सके।
12: आज 2 गोंडावन मेल छोड़े गए हैं, पर ये अभी शुरुआत हुई है। अभी पहले उनके पूरे बिहेवियर को, क्योंकि तो पहली बार वाइल्ड में गए हैं, बिहेवियर को, पैटर्न को, फूड हैबिट को, हैबिटेट में एडजस्टमेंट को, इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद हमारे जो और बर्ड्स हैं उनको समय समय पर छोड़ा जाएगा।
11: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पुनर्वास की ये पहल पिछले 1 दशक से किए जा रहे निरंतर परिश्रम और वैज्ञानिक प्रयासों का नतीजा है। दरअसल गुजरात में अब केवल गिने चुने ही गोंडावन पक्षी बचे हैं, जिसके कारण उनकी आबादी को बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण मिशन बन गया था। यही वजह है कि वन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सावधानी बरती है और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग की विशेष टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: तो चलिए हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद देखिए दृश्यम 3 मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर कैसा धमाल.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: तो चलिए अब बात करते हैं मेडल वीरों की। जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाकर देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का एयरपोर्ट पर ऐसा भव्य स्वागत हो रहा है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। ढोल नगाड़ों की थाप, फूलों की बारिश और लहराते तिरंगे के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। अपने पसीने और मेहनत से देश को स्वर्णिम सफलता दिलाने वाले इन एथलीट्स का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा है।
1: और देखिए, खिलाड़ियों के परिजन उनके गले लगकर भावुक होते हुए नजर आए तो पूरा देश नायकों पर गर्व महसूस करने लगा। अपने घर चंबा पहुंची एशियन गेम्स की मेडलिस्ट सीमा कुमारी का भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। परिवार के लोग बेहद खुश दिखे। कुछ ऐसे ही तस्वीरें दिल्ली से आईं जहां रेसलर दीपक पुनिया का शानदार स्वागत हुआ।
2: बिल्कुल, आपको बता दें वहीं पुणे में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुरलीधर मोहोल ने एयरपोर्ट पर पदक वीरों का स्वागत किया। एशिया कप में लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतकर देश को गर्व का एहसास कराने वाले क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचे संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन का शानदार स्वागत हुआ तो मुंबई एयरपोर्ट में कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवमन दुबे को परिवार ने रिसीव किया। जैसे जैसे खिलाड़ी अपने घर वापस लौट रहे हैं उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ा दिखा। चलिए अब बात करते हैं फिल्म दृश्यम 3 की। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। अजय देवगन की इस फिल्म ने तीसरे दिन भी फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी। उम्मीद है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना लेगी।
0: और देखिए, दृश्यम 1 और 2 भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी, लेकिन दृश्यम 3 में खास बात यह भी है कि फिल्म सिर्फ साउथ की दृश्यम का हिंदी वर्जन नहीं है बल्कि इस फिल्म की कहानी भी साउथ की दृश्यम से थोड़ी अलग है। यानी ये फिल्म पूरी तरह हिंदी के दर्शकों के लिहाज से बनाई गई है।
3: जिस कहानी ने पिछले 11 सालों से दर्शकों को अपनी सीट पर बांध कर रखा, अब उसका फाइनल चैप्टर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। अजय देवगन की दृश्यम 3 का फिल्म प्रेमियों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई, फिर पहले वीकेंड पर शानदार कलेक्शन और अब रिलीज के बाद पहले रविवार को भी इस फिल्म ने धमाकेदार आमदनी हासिल करके नेट कलेक्शन में 200 करोड़ के क्लब की ओर कदम बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 61 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इससे पहले शनिवार को यानी दूसरे दिन फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की थी, जबकि ओपनिंग डे पर भारत में इसका कलेक्शन था 62 करोड़ रुपए। इसके साथ ही भारत में ये फिल्म अब तक 176 करोड़ के पार नेट कारोबार कर चुकी है। इस तरह फिल्म दृश्यम 3 अब नेट कलेक्शन के मामले में 200 करोड़ के क्लब से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये पहले ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन में भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 212 करोड़ के करीब रहा। वहीं इस अवधि में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 273 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इस फिल्म में एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक को चकमा दे देता है और अब विजय सालगांवकर की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। जिसे पहले दिन गांधी जयंती की छुट्टी होने का पूरा फायदा मिला, लेकिन फिल्म की कमाई की असली तस्वीर दूसरे दिन सामने आई। 2 दिनों की कमाई के मामले में फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रिलीज होते ही कमाई के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। खास बात यह है कि दृश्यम 3 ने सिर्फ 2 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 95 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। यह अजय देवगन के 35 साल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है। ये उनके करियर में सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई। कुल मिलाकर दृश्यम 3 साल 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म बन चुकी है। इससे पहले धुरंधर 2 ने 4 दिन में 466 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि एक बात थोड़ी हैरान करने वाली रही, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कुछ कमी आई, लेकिन तीसरे दिन इसने फिर रफ्तार पकड़ी और बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना रखी है। फिल्म का तूफान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि विजय सालगांवकर की ये आखिरी कहानी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए यहाँ रुकेंगे इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए चीन में चेंगदू फेस्टिवल के रंग।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: चलिए हम तो अपने प्लान बनाते रहेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल चीन लिए चलते हैं। चीन के चेंगदू में इन दिनों रातें रंगीन रोशनी और परंपराओं के नाम है, कहीं जगमगाते लैंटर्न लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं आसमान में सजे विशाल किरदार और पारंपरिक प्रस्तुतियां माहौल बना रही हैं। नेशनल डे की छुट्टियों में ये नजारे लोगों के लिए यादगार बन गए हैं।
2: चीन के चेंगदू शहर में इन दिनों रोशनी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ चल रहे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लैंटर्न शो में रात का आसमान रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा रहा है। नेशनल डे की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग इस शो को देखने पहुँच रहे हैं। इस लैंटर्न शो में चीन की पुरानी कला और संस्कृति को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ शैंग शुंगदुई सभ्यता से जुड़े डिजाइन वाले लालटेन भी लगाए गए हैं। शू एम्ब्रॉयडरी यानी खास तरह की कढ़ाई से सजाया गया गलियारा भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। खूबसूरत लालटेन के बीच घूमते लोग तस्वीरें खींच रहे हैं और इस यादगार रात को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन इस शो का सबसे रोमांचक हिस्सा है पिघले हुए लोहे से होने वाली आतिशबाजी। कारीगर बेहद गर्म पिघले हुए लोहे को हवा में उछालते हैं और देखते ही देखते आसमान में सुनहरी चिंगारियों की बारिश होने लगती है। चिंगारियां कई परतों में फैलती हैं और ऐसा लगता है जैसे रात के आसमान में पेड़ों पर फूल खिल गए हों। इसीलिए इस प्रदर्शन को फायर ट्रीज एंड सिल्वर फ्लावर्स कहा जाता है। चेंगदू के एक और पुराने इलाके में भी नेशनल डे की छुट्टियों के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चेंगशियांग एंशियंट टाउन में आयोजित नाइट टूर गाला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रात के इस कार्यक्रम में पारंपरिक गीत और नृत्य ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम की सबसे खास चीज थी हवा में लटकती करीब 15 मीटर लंबी आयोयू मछली की आकृति। आयोयू चीन की एक पौराणिक जीव है जिसका सिर ड्रैगन जैसा और शरीर मछली जैसा बताया जाता है। रंग बिरंगी रोशनी में सजी ये विशाल आकृति रात के आसमान में बेहद शानदार दिखाई दी। चीन के चेंगदू में कहीं पारंपरिक नाच गाना हुआ तो कहीं पुरानी कला से जुड़ी चीजों के बाजार लगाए गए। कुल मिलाकर नेशनल डे की छुट्टियों में ऐसे कई कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, आपने दही हांडी उत्सव तो देखा ही होगा, वही दही हांडी जो महाराष्ट्र में खासतौर से खूब धूमधाम से मनाया जाता है। युवाओं की टोली पिरामिड बनाती है और हांडी फोड़ती है। बस कुछ ऐसे ही स्पेन के तारागोना शहर में भी हर साल एक प्रतियोगिता आयोजित होती है। दरअसल यहाँ के टराको एरिना में हजारों लोग दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी मीनार यानी कि ह्यूमन टावर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हुए। तीसरी बार इस प्रतियोगिता में कैटलोनिया के 12 प्रमुख कास्टलेनर समूह ने भाग लिया, जिनमें छोटे बड़े सब शामिल नजर आए।
3: इस अनूठी प्रतियोगिता में इतनी ऊंची मीनारें बनाने के लिए जरूरी टीम वर्क देखने को मिला। दर्जनों कास्टेलर मिलकर आधार बनाते थे जबकि दूसरे लोग ऊपर की ओर चढ़ते नजर आए। जब रंग बिरंगी टीमें अपनी मीनारें पूरी करती तो दर्शक उत्साह से तालियां बजाते थे और जब कुछ मीनारें गिर जाती तो वे हैरान रह जाते थे।
1: वैसे यहाँ ये बता दें कि इन इंसानी मीनारों को कास्टेल्स कहा जाता है, जिसको साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलिए आपको आखिर में दिखाते हैं स्पेन के इसी कल्चर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें, जिसे देखने के लिए देसी ही नहीं विदेशी मेहमान भी पहुंचे थे।
4: चलिए इसी के साथ चाय पर चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी चाय और गर्मा गर्म खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बॉलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारत में जन्मी चीता ने 5 शावकों को दिया जन्म, देश में बढ़ रहा चीतों का कुनबा। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदक वीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोलताशों की गूंज के बीच में बरसे फूल। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक करीब 19 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में करीब 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। क्या है शक्ति? हमारी सभ्यता में शक्ति देवी का प्रतिरूप है, संसार के सृजन का आधार है। हमारे देश में न केवल देवी भगवती को शक्ति रूप में पूजा जाता है, बल्कि देश और समाज की वो अद्भुत अदम्य महिलाएं जो अपने अपने कर्म क्षेत्रों में शक्ति रूपेण संस्थिता के मंत्र को चरितार्थ करती हैं, वो भी हमारे यहाँ सदा से आदरणीय रही हैं और उन्हें बेहद गर्व और उत्साह के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। अब से चार दिनों बाद देश में शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, लेकिन नवरात्र से पहले ही अब की बार जापान में भारत की शक्ति का उत्सव पूरी दुनिया ने देखा। ये दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, एक शक्ति उत्सव भारत में और दूसरा जापान में। देश में एक तरफ शहर शहर देवी मां के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर शहर बेटियों का स्वैग चल रहा है। एक तरफ मूर्तियों और पंडालों का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ एशियन गेम्स में देश की विजय पताका लहराकर लौटी बेटियों के सम्मान में रैलियां निकाली जा रही हैं, समारोह यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में इस बार एशियन गेम्स में भारत का अभियान शक्ति के नाम रहा। भारत की बेटियों ने एशियन गेम्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारत ने इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें से लड़कियों के इवेंट में 11 और लड़कों के इवेंट में 7 गोल्ड मेडल आए हैं, जबकि 3 गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में जीते गए। इससे पहले साल 2002 में बुसान में हुए एशियन गेम्स में भारत की लड़कियां आगे रही थी, तब भारत ने लड़कियों के इवेंट में 6 और लड़कों के इवेंट में 5 गोल्ड जीते थे। यानी साल 2002 के बुसान एशियाड के बाद ये पहली बार हुआ जब गोल्ड मेडल जीतने के मामले में भारत की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया। वैसे सिर्फ एशियन गेम्स ही क्यों, बल्कि हाल ही के सालों में विशेषकर 2024 से 2026 के बीच में भारत की महिला खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कई बड़ी चैंपियनशिप्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट्स में पूरी तरह डोमिनेट किया। तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग, एथलेटिक्स, कहीं भी तो कम नहीं भारत की बेटियां। बल्कि अब तो कहना पड़ेगा हमारी छोरियां छोरों से कम है के, बल्कि हमारी छोरियां छोरों से ज्यादा ही हैं हर बात में और हर जगह पर। एशियन गेम्स से बॉक्सिंग का गोल्ड जीतकर लौटी चैंपियन लवलीना बोरगोहेन से जब हमने यही सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
1: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया।
2: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है। पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है। जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है, हाँ गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था, तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
2: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ। ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है। 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस।
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट, एम इज LA 2028 सेम।
0: तो मेडल्स की चमक बिखरी है, देश को फेस्टिव सीजन से पहले सेलिब्रेट करने का बहाना मिल गया है। वाकई में एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम इंडिया ने अपने इस विजयी अभियान में 85 मेडल जीते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत ने कौन कौन से इवेंट्स में झंडे गाड़े हैं और क्यों इस मेडल टैली को देखकर 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए देश की उम्मीदों को पंख लग गए हैं।
3: शान से ऊपर उठ रहा है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया है। भारत की ऐतिहासिक जीत,

0: देश के हवाई अड्डों से लेकर शहरों गांवों की गलियों तक आज उत्सव का माहौल है। ये चैंपियंस का स्वागत है, उन चैंपियंस का जिन्होंने अपने शानदार खेल से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जापान की धरती पर आयोजित 20वें एशियन गेम्स 2026 में भारत के एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने इस साल कुल 85 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सफर में टीम इंडिया ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। 20वें एशियन गेम्स के सफर में भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। सुनहरी कामयाबी की इस फेहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ एजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मोहोर, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की टीम ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। यहाँ भारतीय तीरंदाजों ने 3 गोल्ड अपने नाम किए। आईची नागोया में न केवल भारत की तीरंदाजी टीम ने अपनी धाक जमाई, बल्कि क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। कुश्ती में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के अनुसार जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिया। शूटिंग में नीरू धांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वही कमान जीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात ये रही कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच डाला। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आईची नागोया के बाद अब भविष्य का खेल महाकुंभ लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 हमारा इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही कि भारत की ये चैंपियन एशिया के बाद दुनिया फतह करने के मिशन पर भी शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाकर देश का सर्वगर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का शहर शहर एयरपोर्ट्स पर भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाओं की बारिश के साथ और लहराते हुए तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारों के बीच में फैंस के दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, वेलकम होम चैंपियंस।

दिवाली में अभी वक्त है, लेकिन चंबा में दिवाली आ चुकी है। शहर की बेटी एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर लौटी है, सो सारा शहर जश्न मना रहा है। चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आईटी नगोया में झंडे गाड़ कर सीमा वापस लौटी तो बैंड बाजे के साथ सीमा का स्वागत हुआ। आरती उतार कर बेटी का गृह प्रवेश करवाया गया। घर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, शहर भर का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। नाचने गाने जश्न मनाने का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सीमा के स्कूल में भी शानदार स्वागत समारोह हुआ। मंच पर सीमा को हिमाचली टोपी पहनाई गई, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कभी जिस स्कूल के प्ले ग्राउंड पर सीमा ने रनिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, आज वहां सीमा को उड़न परी कहकर सम्मानित किया जा रहा था। सीमा के लिए ये कभी न भुलाने वाले पल था।

0: कुछ ऐसे ही यादगार पलों का गवाह बना महाराष्ट्र का अमरावती शहर। जापान में हुए एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और अमरावती का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उनके शहर में जोरदार स्वागत हुआ। जापान की धरती से लौटे पदक वीरों के लिए अमरावती में विक्ट्री रैली हुई। बता दें कि अमरावती की 60 तीरंदाज कुमकुम मोहोड़ ने रिकर्व आर्चरी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। जबकि यशदीप भोगे ने पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है।
1: अमरावती आके कितना अच्छा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा स्वागत किया है, इसके लिए भी मैं बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, यहाँ का DSO का, सर लोगों का, मैडम का, खासदार साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरावती में बाजी मारी है
2: जी जरूर, और अमरावती की सुवर्ण कप में सबसे ज्यादा मेडल लेके आई है तो अमरावती की बाजी जरूर मारेगी।
0: चैंपियंस के लिए निकली इस विजय रैली में मानो सारा शहर विजेताओं के स्वागत में उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश के बीच खिलाड़ी खुली जीप में आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ चल रहे थे अमरावती के सैकड़ों लोग। स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर उम्र और वर्ग के लोग बेहद खुशी और जोश के साथ इस रैली का हिस्सा बने।

0: विजेताओं की इस रैली में खिलाड़ियों के कोच, ट्रेनर्स, खेल विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। आम लोगों के साथ ही चैंपियंस के स्वागत के लिए जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। रैली के बाद मंच पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, सांसद अनिल बोंडे, विधायक सुलभा खोड़के और भाजपा नेता संगीता शिंदे समेत कई गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का इस मौके पर सम्मान किया। मेडल जीतकर लौटे इन खिलाड़ियों के लिए ये दिन खास है। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराने के बाद अब नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर हैं।
1: मोहन ने जो अमरावती की शान बढ़ाई है, हम सभी अमरावती वासी बहुत खुश है और आने वाले ओलंपिक में 100% मेडल मिलाने के लिए जिला प्रशासन, क्रीड़ा विभाग, हम सब उसकी तैयारी के लिए उसको सहयोग देंगे। आज हमको अमरावती के लिए 4 मेडल प्राप्त हुए, उसके लिए बहुत बहुत खुशी जाहिर करते हैं।
0: एशियन गेम्स खत्म होने के साथ ही शहर शहर चैंपियंस के स्वागत का ये सिलसिला यूं ही चला। एशियन गेम्स में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। जापान में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह स्वदेश लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इनके स्वागत में लोगों की भीड़ जुट गई।

वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का भी जोरदार वेलकम हुआ। इसी कड़ी में वतन वापसी के बाद क्रिकेटर तिलक वर्मा का भी शानदार स्वागत किया गया।

चैंपियंस के स्वागत की तस्वीरें चेन्नई से भी आईं, जहां तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन खुद एशियन गेम्स चैंपियंस का स्वागत करने पहुंचे। स्कूली बच्चों और लोक कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।

इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार में मंत्री विघ्नेश एशियन गेम्स में जोरदार प्रदर्शन कर वापस लौटी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट विद्या राम राज से मिलने मीनाक्षीपुरम पहुंची।

0: अमरावती से धनंजय साबले और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हर रोज अलार्म से पहले जागना, यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती की उम्र में मैदान से दोस्ती कर लेना, कोच को ही सब कुछ मान लेना, शादी ब्याह त्योहार बर्थडे पार्टी सब कुछ भुलाकर कड़े डिसिप्लिन के साथ बरसों तक एक ही गोल पर फोकस्ड रहना, जी तोड़ मेहनत करना। एक चैंपियन एथलीट बनने की यात्रा तपस्या से कम नहीं, लेकिन इसी तपस्या इसी यात्रा को सफलतापूर्वक अगर आपने खत्म कर लिया तो फिर कहीं जाकर आता है वो दिन जब आप वापस लौटते हैं और एयरपोर्ट पर आपको लेने बस आपका परिवार नहीं बल्कि आपका सारा शहर आता है।

0: ये महज जश्न नहीं, कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजो कर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे, साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान, दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। ये लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देख कर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वही महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए एक गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028, बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही है उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ जेएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: मेडिकल क्षेत्र में 2026 में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ट डे सिलरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नगल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारत में जन्मी चीता ने 5 शावकों को दिया जन्म, देश में बढ़ रही है चीतों की संख्या। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधे पर उठाया। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदक वीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडिकल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोल ताशों की गूंज के बीच अपर से फूल। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक करीब 19 लाख भक्तों ने किया दर्शन। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी करीब 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: बद्रीनाथ धाम यात्रा में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड्स। साल अब तक 18,67,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साल 2023 में बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा 18,39,000 श्रद्धालु पहुंचे। साल अक्टूबर की शुरुआत में ही टूट गए रिकॉर्ड। हेमकुंड साहिब में भी दर्शन करना कीर्तिमान, आंकड़ा 3,67,000 के पार पहुंच गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सात समुद्र पार रहने वाले लोगों को खींच रहा है काशी की आध्यात्मिक आस्था और सनातन परंपरा का आकर्षण। जैक्सन अपने दिवंगत चाचा की अस्थियां लेकर कांची पहुंचे। गंगा तट पर हिंदू विधि विधान के अनुसार अस्थि विसर्जन किया। बिहार के बेगूसराय में श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत रंग। वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण नौका महोत्सव का आयोजन। नौका विहार उत्सव का आयोजन रतनपुर के ऐतिहासिक महंत सियाराम दास सरोवर में किया गया। पूरे इलाके को वृंदावन जैसा रूप दिया गया। मंगलौर कलकत्ता वृंदावन से 25 क्विंटल फूल की पंखुड़ियां से सजाया गया पोखड़। हजारों श्रद्धालु राधे कृष्ण के बोल पर झूमते नजर आए। राधे राधे हरे कृष्ण के जयकारे। नवरात्र में माता रानी के बजरों पर थिरकने को तैयार है झांसी ऐतिहासिक किले की तलहटी में महिलाओं ने शुरू की गरबा डांडिया की प्रैक्टिस। बड़ी संख्या में महिलाएं डांडिया के अलग अलग स्टेप्स सीख रही हैं। इस बार इंडो वेस्टर्न थीम पर जोर। 12 अक्टूबर को डांडिया नाइट का किया जाएगा आयोजन। नवरात्र से पहले देश में बढ़ रही चनिया चोली की मांग। गुजरात में नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों पर पुलिस की नजर। आयोजन स्थलों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष में फिर से उमड़ा लोगों का सैलाब। ब्रह्म कपाल में पिंडदान तर्पण करने के लिए देश के कोने कोने से आ रहे हैं श्रद्धालु। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित समाज के अनुसार पिछले 8 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु ब्रह्म कपाल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज। भारत में जन्मी मादा चीता ज्वाला ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। भारत में चीतों की कुल संख्या 60 हो चुकी है जिसमें से 41 चीतों का जन्म भारत में ही हुआ। प्रोजेक्ट चीता की इस सफलता पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पार्क की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को बधाई दी। हिमाचल के पोंटा साय में घर में मिला किंग कोबरा। वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। गनीमत रही कि किंग कोबरा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में टॉयलेट में मिला किंग कोबरा। टॉयलेट की सीट पर 5 फीट लंबा कोबरा बैठा हुआ था। काफी मशक्कत करने के बाद करीब 5 फीट लंबे कोबरा को सुरक्षित पकड़ा गया। उससे आबादी से दूर जंगल में छोड़ा गया। नवरात्र से पहले झांसी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। शिल्पकार अब्दुल्ला खलील अपने हाथों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं कर रहे हैं तैयार। अब्दुल खलील का परिवार पिछले 45 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने का कर रहा है काम। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी कनेक्शन के बदले नियम। राजधानी में किराए पर रह रहे किराएदारों को हर फ्लोर पर मिल सकेगा अलग पानी कनेक्शन। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन से जुड़े नियमों में किया बदलाव। लक्षद्वीप में नौसेना को मिलने वाला है तीसरा बेस। आईएनएस बिट्रा के लिए बिट्रा द्वीप अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। मेडिसिन नोबेल का ऐलान। दिमाग का रिमोट खोजने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला सम्मान। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल रेस्ट्रोथ, जर्मन की पीटर हैकमैन और जॉर्ज नगिल को मिलेगा सम्मान। उत्तर प्रदेश के भदोही में कारपेट एक्सपो की धूम। पहले दिन एक्सपो में 32 देशों के 147 विदेशी बायर्स शामिल हुए। चार दिवसीय कारपेट एक्सपो का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। बार्स ने कालीन को नई डिजाइन, नई वैरायटी दिखाई और भविष्य के लिए बिजनेस इंक्वायरी भी की। राजस्थान में कोटा के 10 एक्स स्पोर्ट शूटिंग क्लब में ने तैयार किए 300 खिलाड़ी। इस साल भी 15 खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड। टेनेक्स स्पोर्ट शूटिंग क्लब से प्रशिक्षण ले चुके 50 से 60 खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर मेडल हासिल किए। एक्स एम्स दिल्ली में ओपीडी मरीजों की एमआरआई और सीटी स्कैन की वेटिंग लिस्ट होगी खत्म। एम्स कर रहा है खास योजना पर काम। निजी लैब से करार करके ओडीपी मरीजों के सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट जल्द कराने की योजना। गुजरात में राजकोट के अमरनगर गांव में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 की मदद से एक बच्ची की बची जान। सूरत में ब्रेन डेड महिला के अंगदान से 5 लोगों को मिलेगा नया जीवन। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के चदरपुर में हाथियों के आतंक, रात में गांव वालों को देखकर घर में घुसने की कोशिश करता नजर आया हाथी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन आज से लेकर 23 अक्टूबर तक बीआईजी एंड सेंटर रुकनी में भर्ती रैली। अग्निवीर डीजी, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती रैली। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। शिखर धवन अपनी पत्नी के साथ तिरुमला मंदिर में पहुंचे, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में आए 11 नए जानवर। पहाड़ों के सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं सैलानी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक चरम पर टूरिज्म। धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए बदले मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो विश्व प्रसिद्ध त्रिवुंडा ट्रैक पर भी दिख रही है सैलानियों की भारी भीड़। सैलानियों की रिकॉर्ड भीड़ को देखते खिले कारोबारियों के चेहरे। भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन सतर्क, पुलिस बल तैनात। हिमाचल के सोलन में सैलानियों का सैलाब, दिल्ली शिमला हाईवे पर जाम। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा। स्वतंत्रता के बाद पहली बार डिब्रूगढ़ से एक मालवाहक पोत विदेशी गंतव्य के लिए रवाना हुआ। गढ़ में नव विकसित आईवाई या बोगी बील नदी बंदरगाह से मालवाहक पोत एमवी पटकाई को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। ये पोत नदी मार्ग से लगभग 783 किलोमीटर की दूरी पर तय करेगा और लगभग 7 दिनों में बांग्लादेश पहुंचने की उम्मीद। अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में प्रथम फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली कोलियात क्रेन का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। राजधानी में दिल्ली हाट पर सजा है खादी महोत्सव। एक ही मंच पर कपड़ों से लेकर सजावटी सामान। अलग अलग राज्यों के कारीगरों, कारीगरी और खादी से जुड़े कई प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर उपलब्ध। पीतल से बने होम डेकोर के आइटम लोगों को लुभा रहे हैं। खादी महोत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सिंगापुर के उद्योगपति और कई क्षेत्रों की हस्तियां भी शामिल हुई। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी कला प्रदर्शनी, यहां पर रंगों को कैनवस पर उतारकर ब्रश नहीं बल्कि उंगलियों का किया गया है इस्तेमाल। रंगों के अलग अलग लेयर्स, टेक्सचर्स और उंगलियों से बनाए गए हैं पैटर्न्स। गुजरात सरकार के आधुनिक कृषि उपकरण योजना से बदले दाहोद के किसानों के दिन, किसानों को उपकरण खरीदने के लिए मिल रही है सब्सिडी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ ने बीएसएफ वुलर अल्ट्रा रन के तीसरे एडिशन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। फिटनेस खेल की भावना, युवाओं की भागीदारी और वुलर झील के संरक्षण के बारे में जागरूकता। बांदीपुरा में बीएसएफ हेडक्वार्टर्स से शुरू हुई दौड़ वुलर वेंटेज पार्क में जाकर हुई खत्म। आयोजकों और अधिकारियों ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। इवेंट में 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 और 5 किलोमीटर की कैटेगरी शामिल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता में चलाया गया स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के खिलाड़ियों को दी बधाई। एशियन गेम्स में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 32 पदक हरियाणा के नाम रहे। रूस ने सेंटर 2026 अभ्यास में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन दिखाया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के ओरनबर्ग इलाके में सैनिकों का लाइव फायर अभ्यास। अमेरिका और इसराइल के साथ तनाव के बीच ईरानी महिलाएं ले रही हैं मिलिट्री ट्रेनिंग, तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीरें। महिलाएं हैंडगन समेत कई तरह के हथियारों की प्रशिक्षण ले रही हैं। महाराष्ट्र में हंडी की तर्ज पर स्पेन में बनाई गई मानव पिरामिड। स्पेन के टारगोना शहर में मानव मीनार प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। इस प्रतियोगिता में विशाल संरचनाओं के निर्माण करने के लिए दर्जनों कैस्टेलर आधार बनाते हुए ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तीसरी बार इस प्रतियोगिता में कैटेलोनिया के 12 प्रमुख कैस्टेलर समूह ने भाग लिया। जब रंग बिरंगी टीमें अपनी मीनारें पूरी करती हैं तो दर्शक का उत्साह से तालियां बजाते हैं। कैस्टेलर्स को साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। बेल्जियम में गेंट शहर में भीषण गर्मी और सूखे के बाद ऐतिहासिक नहरों में बतख पौधे उगने से हरी भरी हुई नदियां। बतख के पौधे एक चमकीले हरे रंग के जलीय पौधे हैं, गर्मी और बारिश की कमी इस पौधे के प्रजनन के लिए बेहतरीन माहौल करते हैं तैयार। अपने मध्यकालीन वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध घेंट पर्यटकों और छात्रों दोनों के लिए लोकप्रिय। चीन के हाईलोंग जियांग नदी के किनारे रात में दिखा अद्भुत खगोलीय नजारा, एक फोटोग्राफर ने तस्वीर क्लिक की। उल्काएं आकाश में लकीरें बनाती हुई नजर आ रही हैं। अरोरा उल्काएं और तारों भरे आकाश की रोशनी और छाया नदी के सतह पर प्रतिबिंब बनाती हुई नजर आई। वुझोई प्रांत ने नेशन डे की छुट्टियों में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन दिनों पूरे चीन में होता है घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। इस प्रतियोगिता में देखने को मिलते हैं लोक कला और संस्कृति के रंग। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं सैलाब। दस से ज्यादा प्रांतों से 80 से ज्यादा घुड़सवार और 145 घोड़े प्रतियोगिता में शामिल। प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले संगीतमय कार्यक्रम ने बांधा समा। 5 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। कलाकारों ने घोड़े पर सवार होकर साहसी हैंडस्टैंड समन्वित कलाबाजी और पिरामिड नुमा करतब भी दिखाए। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए पहुंचे मुंबई। रणबीर कपूर और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ तस्वीरें खिंचाई। फिल्म हनुमान अंश का रिलीज के 59वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ के पार। अब नए अंदाज में दिखेगी अमर अकबर और एंथनी की कहानी। 3 मंकी नाम से अब्बास मस्तान की जोड़ी बनाएगी फिल्म। कलापति विजय ने बेटे जैसन विजय की डेब्यू फिल्म सिग्मा को किया प्रमोट। शाहिद कपूर की हिट सीरीज फर्जी 2 में युक्ति थरेजा की हुई एंट्री। अभिनेता अविनाश मिश्रा ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का खिताब अपने नाम कर लिया। शानदार प्रदर्शन करके चमचमाती ट्रॉफी उठाई। अविनाश मिश्रा को खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 की ट्रॉफी के अलावा 20 लाख रुपए की नकद राशि और एक शानदार कार भी मिली। साजिद खान की अगली कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन पहली बार साथ में नजर आएंगे। फिल्म की स्टार कास्ट में दिशा पाटनी और श्रेया सरन भी शामिल। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब अपने नाम किया। रश्मिका मंदना महान कर्नाटक संगीत गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक एमएस लेगेसी ऑन स्क्रीन में निभाएंगी मुख्य भूमिका।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। संभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: देखिए, यूं तो दुनिया भर में कई तरह की फैशन परेड्स देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक बहुत क्यूट फैशन परेड का नज़ारा, जहां पर पेरिस की सड़कों पर रैम में तब्दील ये नजर आई, लेकिन मॉडल्स की जगह अलग अलग अट्रैक्टिव अटायर में सजे नजर आए डॉग्स।

0: फैशन की राजधानी कहलाने वाले पेरिस की सड़कें इस बार डैक्शन डॉग्स की फैशन परेड से गुलजार हुईं। दुनिया भर में मशहूर सॉसेज वॉक इवेंट पर तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में सजे डॉग्स ने सभी का ध्यान खींचा। धारियों वाली शर्ट और बेरेट टोपी पहनने से लेकर छोटे छोटे काउबॉय तक के रूप में सजे ये डॉग्स सबके आकर्षण का केंद्र रहे। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहने और पूंछ हिलाते इन डॉग्स ने देखने वालों का दिल जीत लिया। जहां हर आकार साइज और रंग के डैक्शन डॉग्स अपने मालिकों के साथ नजर आए। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत लंदन से हुई थी जो धीरे धीरे पेरिस समेत दुनिया के अन्य शहरों में फैल गई। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सॉसेज वॉक का आयोजन हुआ जिसका उद्देश्य छोड़े गए बुरे बर्ताव का शिकार हुए डैक्शन डॉग्स को बचाने और उनकी देखभाल के लिए फंड इकट्ठा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट दिखाला सही तीखा सही लाल।
9: मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। कार्ल डिसरॉथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्वाइकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्ववैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध।

0: स्टार है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के साथ बज चुके हैं और सात गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की सात गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। नवरात्र उत्सव करीब आते ही देश भर में तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। दिल्ली में भव्य पूजा पंडाल आकार ले रहे हैं, मूर्तिकार मूर्ति को सजा रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है काशीपुर राजबाड़ी में शुरू हुई सदियों पुरानी दुर्गा पूजा। जी हाँ, आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में तैयार हो रही मां दुर्गा की प्रतिमा सात समंदर पार इंग्लैंड पहुंच रही है। तो वाराणसी में दुर्गा पूजा के जरिए बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है। यानी इस बार दुर्गोत्सव में आस्था के साथ कला, संस्कृति और सामाजिक सरोकार का रंग भी देखने को मिल रहा है।

0: आस्था, भक्ति और उत्सव के रंग में शहर शहर रंगने को तैयार है। पुरुलिया में शुरू हुआ दुर्गा उत्सव, दिल्ली के सीआर पार्क में भव्य पंडालों की तैयारी, पश्चिम बंगाल से मां की प्रतिमा का इंग्लैंड तक सफर, काशी में मोबाइल असुर के जरिए सामाजिक संदेश। नवरात्र में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन देश भर में नवरात्र उत्सव का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की काशीपुर राजबाड़ी में तो सदियों पुरानी दुर्गा पूजा की शुरुआत भी हो गई है। आमतौर पर जहां दुर्गा पूजा कुछ दिनों तक चलती है, वहीं काशीपुर राज परिवार की इस पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा से करीब 11 दिन पहले ही हो जाती है। यहां लगातार 16 दिनों तक अलग अलग विधि और परंपरा के साथ मां की पूजा अर्चना की जाती है। स्थानीय परंपरा कहती है कि पुरुलिया के काशीपुर राजबाड़ी की ये पूजा करीब 350 सालों से चली आ रही है। इस पूजा का संबंध पंचकोट राज परिवार और राजा नीलमणि सिंह देव के शासनकाल से जोड़ा जाता है। लंबे समय से चली आ रही राज परिवार की परंपराएं आज भी इस पूजा में देखने को मिलती हैं।
1: देखिए, ये पूजा हम लोग का 16 कल्प का पूजा होता है। भगवान श्री रामचंद्र ये पूजा शुरू किए थे रावण वध के लिए, और 16 दिन पहले ही शुरू किए थे। सीताष्टमी के दूसरे दिन माँ ओ कृष्ण पक्ष का आद्रा नक्षत्र युक्त, उसमें जो नवमी है उसमें पूजा शुरू होता है। ये पूजा चलेगा दुर्गा नवमी तक। दशमी के दिन घट विसर्जन के माध्यम से ये पूजा का परिसमाप्ति होगा।
0: हर साल दिल्ली के सीआर पार्क में भी भव्य दुर्गा पंडाल सजता है। हर साल यहां सजने वाले पंडालों की एक नई थीम होती है। इस साल कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति ने खास थीम रखी है। इस साल पूजा पंडाल को दरअसल पश्चिम बंगाल के अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जूट थीम पर बनाया जा रहा है।
2: रंजन पार्क मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है, और यहां नवरात्रों के दौरान भव्य उत्सव मनाया जाता है और माँ की खूब आराधना की जाती है। जहाँ चितरंजन पार्क में कई जगहों पे भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, उसी में से एक कोऑपरेटिव ग्राउंड में भी भव्य थीम बेस्ड पंडाल बनाया जाता है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर इस पूजा को इस वर्ष 51 साल पूरे हो रहे हैं, और इस बार इस तरह यहाँ पर किस तरीके की तैयारी है उसको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जूट के थीम पर यहाँ पर ये पूरा बनाया जा रहा है और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है।
0: पंडाल को तैयार करने में बांस और जूट जैसी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, मां दुर्गा की प्रतिमा को भी पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है।
3: बेसिकली हम लोग थीम बना रहे जूट बेस, बैम्बू भी यूज हो रहे हैं, बट जूट इज द मेन बेस, क्योंकि हम लोग ये थीम बोलना चाहते हैं कि जूट का क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकते हैं। एंड ऑलवेज कोऑपरेटिव ग्राउंड इज सपोर्टेड इको फ्रेंडली। जूट इंडस्ट्री ग्रेजुअली बहुत डाउन हो गया है, एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया बोलो, मेन तो बंगाली होता था। तो इस बार हम लोग सोचा थोड़ा वही एक दिखा है ना कि पुराना जो जूट का है उसको कैसे रिवाइव किया जाए।
0: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में भी दुर्गा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां के कलाकार तापस पाल पारंपरिक शैली से लेकर नए और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली मूर्तियां बनाते हैं। इस साल उन्हें 20 मूर्तियों के ऑर्डर मिले, जिनमें से एक मूर्ति को इंग्लैंड भेजा जा रहा है। करीब 5 किलो वजनी 28 इंच ऊंची ये मूर्ति खास पैकेजिंग में इंग्लैंड भेजी जाएगी। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक आस्था के ऐसे ही रंग बिखरे हुए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी इस बार मां दुर्गा पूजा के अलग रंग बिखेरने के लिए तैयार हो रही है। इस साल आस्था के साथ सामाजिक संदेश को भी केंद्र में रखा जा रहा है। काशी के एक मूर्तिकार ने इस बार मां की आराधना के माध्यम से मोबाइल के अनावश्यक इस्तेमाल पर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है, और इसके लिए इस मूर्तिकार ने महिषासुर नहीं बल्कि मोबाइल असुर नाम के राक्षस की आकृति बनाई है। ये मोबाइल असुर का मॉडल वाराणसी में कचहरी इलाके के पूजा पंडाल में स्थापित किया जाएगा, जहां मां नारायणी उसका संहार करेंगी। इस संहार को इलेक्ट्रॉनिक शो के माध्यम से दर्शाया जाएगा। जाहिर है हर प्रतिमा के पीछे कलाकारों की महीनों की मेहनत है, और हर प्रतिमा के साथ जुड़ी है भक्तों की आस्था भी, क्योंकि मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन का इंतजार अब बस कुछ ही दिनों का है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, पूर्वी बर्दवान से सुजाता मेहरा, पुरुलिया से सत्यजीत बनर्जी और वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: शक्ति उपासना का पर्व है शारदीय नवरात्र। एक तरफ दुर्गा पूजा और नवरात्रि में शक्ति की भक्ति, तो दूसरी तरफ इन्हीं पावन नौ दिनों में गरबा डांडिया की रौनक बिखरी रहेगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में हमारे आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है नवरात्र में गरबा की तैयारी शुरू। जी हाँ, गुजरात और मध्य प्रदेश से नवरात्र की तैयारियों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। यहां अलग अलग डिजाइन की पगड़ियां, परंपरागत रंग बिरंगी पोशाकें पूरे लगन से तैयार की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के झांसी में महिलाएं गरबा डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं।
5: अलग अलग डिजाइन की पगड़ियां, परंपरागत रंग बिरंगी पोशाक, कपड़ों पर अलग अलग डिजाइन की कढ़ाई, हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है, क्योंकि देश भर में अब नवरात्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के शहर थान की, जहां इन दिनों इस तरह की पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है। यहां अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही है, जिनकी डिमांड यूपी, एमपी, दिल्ली से लेकर साउथ इंडिया तक है।
6: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहां बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है और हम बनाते हैं। सब बाहर गांव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है और आरी वर्क होता है और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, सब यहां बनता है।
5: पारंपरिक डिजाइनों के साथ साथ इस बार लाइट वेट और वाइब्रेंट कलर्स का क्रेज सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे परफेक्ट है कच्ची और आरी वर्क, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।
7: यहाँ पे किसम टाइप की चोली मिलती रहती है, पोजीशन प्रिंट है, कच्ची वर्क है, यहाँ की चोली का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, फिर फ्रेंड्स भी यहाँ से ही लेने का प्रेफर करती है।
5: यहाँ सिर्फ चनिया चोली ही नहीं बल्कि उसकी मैचिंग का दूसरा सामान भी मौजूद है। कपल्स के लिए सेम डिजाइन के जूते और पारंपरिक पगड़ियां भी मौजूद हैं। गुजरात के थान की बनी चनिया चोली धूम मचा रही है, तो वीरांगनाओं की भूमि झांसी में परंपरा आधुनिकता का ऐसा संगम दिखाई दे रहा है जो हर किसी का दिल जीत ले। झूमती थिरकती महिलाओं की ये तस्वीरें झांसी के ऐतिहासिक किले की छांव पाक की हैं, जहां सैकड़ों महिलाएं और युवतियां डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं। अलग अलग स्टेप्स करती हुई इन महिलाओं का उत्साह देखने लायक है। हर साल गरबा में नए नए स्टेप्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में लोग इस तरह की गरबा ट्रेनिंग क्लासेस में शामिल होते हैं और माता रानी की भक्ति में डूब जाने के इस उत्सव की तैयारी करते हैं।
8: लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ, सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड है और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
5: हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बस कुछ दिन का इंतजार और, जिसके बाद गरबे की थाप पर पूरा भारत माँ अम्बे की भक्ति में झूमता हुआ नजर आएगा। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और उत्तराखंड के खटीमा में लोक संस्कृति और लोक कलाओं के रंग बिखर रहे हैं। खटीमा में आदि रंगोत्सव धूमधाम से शुरू हो चुका है। इसमें 15 राज्यों के कलाकार और कारीगर भाग ले रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 15 राज्यों की जनजातियों के रंगोत्सव महोत्सव का आगाज। जी हाँ, इस महोत्सव में शामिल होने वाले लोगों के लिए ये उत्सव अपनी कला की नुमाइश के साथ साथ दूसरे इलाकों के लोगों से मेलजोल का भी खास अवसर है।
9: ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच बांसुरी और बीन की धुनों पर थिरक रहे ये लोग। लोक संस्कृति और नृत्य का मजा ले रहे लोगों की झलक दिख रही है हर ओर। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की है, बल्कि देश के और भी इलाकों की लोक संस्कृति का शानदार संगम दिख रहा है। असल में ये मौका उत्तराखंड आदि रंगोत्सव के आगाज का है। जहां देश की संस्कृति विरासत की अनूठी झलक देखने को मिल रही है और इसे बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक के 15 राज्यों की लोक संस्कृति की झलक पेश की जा रही है। तमाम राज्यों से आए कलाकार यहां अपनी कला के रंग बिखेर रहे हैं। मौसम और माहौल भले ही अलग है, लेकिन इन्हें यहां आकर खुशी बहुत हो रही है।
10: हम सिक्किम से आए हैं, मेरा नाम भूमिका है और उत्तराखंड पहली बार आने से मुझे बहुत खुशी लग रहा है। लाइक बहुत सारी कम्युनिटी हम देख रहे हैं और हमने जो ड्रेस पहना है वो मगर कम्युनिटी का है। उत्तराखंड पहले बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे सिक्किम में उतना ज्यादा गर्मी नहीं है और यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है।
9: इस मेले में उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग हिस्सों के पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट को भी पेश किया जा रहा है, जिसमें कपड़े हैं, हाथ से बने सजावटी सामान, मसाले और खाने पीने की सामग्रियां भी है। सुदूर इलाकों में गांव के छोटे कारोबारियों को यहां अपने प्रोडक्ट पेश करने का मौका मिला है।
10: हमारे यहां लहसुन का मिर्च का प्लस बल्ला पेड़े का और बड़र का, ये सब तरह का चाय हम बिना केमिकल के बनाते हैं, जो कि शुद्ध सरसों का तेल वगैरह घर के मसाले, ना कि मार्केट का कोई मसाला यूज करते हैं, ना कोई केमिकल यूज करते हैं।
9: संस्कृति का ये मेल एक ही जगह पर कई राज्यों के कलाकारों और दस्तकारों के मिलने का मंच बन गया है, जहां संस्कृतियों के मेल के साथ सबको अपने कारोबार को भी बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है। आदि रंग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के भव्य रोड शो से हुआ। ये महोत्सव पहले देहरादून में होता रहा है, अब पहली बार खटीमा में 3 दिन के लिए इसका आयोजन किया गया है, तो स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजेश छाबड़ा, खटीमा, गुड न्यूज टुडे।
4: बेगूसराय भक्ति, आध्यात्म और अलौकिक आनंद के अद्भुत रंग में उस वक्त सराबोर हो गया जब वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण का नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। ये नौका विहार उत्सव शहर के रतनपुर स्थित ऐतिहासिक महंत सियाराम दास सरोवर में श्री राधा कुंज बिहारी मठ के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जहां इस महोत्सव में पूरे क्षेत्र को वृंदावन जैसा रूप दे दिया गया था। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है बेगूसराय में मनाया गया राधा कृष्ण नौका विहार महोत्सव। जी हां, आपको बता दें कि बेगूसराय में महंत सियाराम दास सरोवर वृंदावन की तर्ज पर इस महोत्सव में सरोवर को कोलकाता और वृंदावन से मंगाए गए 25 क्विंटल फूलों की पंखुड़ियों से सजाया गया। फूल की पंखुड़ियों से सजी सरोवर के जल पर प्रकाश की तरंगे और भव्य मोर के नौका पर राधा कृष्ण की नौका विहार यात्रा शुरू हुई, तो वातावरण में राधे राधे तथा हरे कृष्ण का जय घोष गूंजने लगा।
11: जो लाखों श्रद्धालु आए और आ रहे हैं और जा रहे हैं, सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, तमाम बेगूसराय वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। हम श्री राधा कुंज बिहारी मठ जिनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, जो श्रद्धालु आए इस कार्यक्रम में उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और आज यहाँ के तमाम लोग इस बात का गवाह बने जो हमारा बेगूसराय वृंदावन बना, और वृंदावन में जिस तरह भगवान नौका विहार करते हैं आज नौका विहार कर रहे हैं।
12: ये नौका विहार का हमारे कृष्ण जी राधा जी यहाँ पर आए तो आपने देखा होगा, पहली बार हम लोग एस प्लस है उसमें करवाए थे तो जनसंख्या थोड़ा कम थी, ये दूसरी बार हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि पूरा जिलेवासी यहाँ आए हैं, भक्ति भाव का एक माहौल बना है, सभी अपनी अपनी भागीदारी दिए हैं, अपनी पुण्य का भागी बने हैं।
4: भदोही में कारपेट एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। यहां आयोजित 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो का रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। पहले दिन एक्सपो में 32 देशों के 147 विदेशी खरीदार शामिल हुए। खरीदारों ने इस मौके पर कालीन की नई डिजाइन, नई वैरायटी देखा और भविष्य के लिए बिजनेस इंक्वायरी की। आयोजकों के मुताबिक इससे भविष्य में 1,000 करोड़ का कारोबार पैदा होगा। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है, और वो है भदोही में कालीनों के महाकुंभ में पहुंच विदेशी खरीदार। देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पिछले एक वर्ष में लगने वाले दिल्ली और जर्मनी के कारपेट फेयर रद्द कर दिए गए थे, लिहाजा लंबे समय बाद भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में 50वें इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया। हस्तनिर्मित कालीन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय के कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इस फेयर में जहां देश के कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोई के 223 भारतीय निर्यातकों ने स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद पेश किए। इस मौके पर 65 देशों के 450 बायर्स और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस बार नए बाजार तलाशने के लिए ब्रिक्स देश के भी 106 बायर्स एक्सपो में आ रहे हैं। बायर्स के विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर इन डिजाइन और नए वेरायटी की कालीनों को देखा और बायर्स और एक्सपोर्टर्स के बीच विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज हुए तो भविष्य में व्यापारिक रिश्ते में तब्दील हो सकेंगे।
13: जानते हैं हमारी इंडस्ट्री में 25 लाख लेबर इन्वॉल्व है जो कि स्किल लेबर है और उनकी स्किल को हमें देखना है कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे वो आगे चलता रहे। ये इतने परिवारों का रोजी रोटी का भी सवाल है तो इंडस्ट्री अभी तो चल रही है और आई थिंक आने वाले समय में मुझे बहुत उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। उसकी एक वजह और भी है कि इस वक्त हैंडमेड कार्पेट्स।
4: जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ ने तीसरे वुलर अल्ट्रा रन का आयोजन किया। रन विद बॉर्डरमैन थीम के तहत हुए इस आयोजन में देशभक्ति, फिटनेस और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिला। कश्मीर की खूबसूरत वादियों और वुलर झील के शानदार नजारों के बीच जब बॉर्डरमैन के साथ रनर्स ने दौड़ लगाई तो पूरा माहौल जोश और उत्साह से भर गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है वुलर झील के संरक्षण के लिए मैराथन। जी हाँ, आपको बता दें कि बांदीपुरा में आयोजित वुलर अल्ट्रा रन कार्यक्रम के जरिए युवाओं को फिटनेस, खेल और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही लोगों को वुलर झील की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यावरण के महत्व से जोड़ने की कोशिश भी की गई।
14: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, वुलर झील का शानदार नजारा और इसी खूबसूरती के बीच दौड़ते सैकड़ों रनर्स, ये तस्वीरें हैं उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा की जहाँ बीएसएफ ने वुलर अल्ट्रा रन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। दौड़ के दौरान कहीं जोश नजर आया, कहीं जुनून और कहीं फिट रहने का जज्बा। बीएसएफ वुलर अल्ट्रा रन 3.0 में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से रनर्स पहुंचे और मैराथन में हिस्सा लिया। दौड़ को अलग अलग श्रेणियों में आयोजित किया गया जिसमें 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल रही। यानी किसी ने लंबी दूरी के जरिए अपने धैर्य और सहन शक्ति को परखा तो किसी ने छोटी दूरी की दौड़ के जरिए फिटनेस का संदेश दिया।
15: सुरक्षा बल बीएसएफ की तरफ से कश्मीर में तीसरी वुलर मैराथन का आयोजन आज किया गया। इस मैराथन का मकसद कश्मीर के युवाओं के साथ साथ देश भर के लोगों को एक अवसर देना अपने सेहत और अपनी तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए। पिछले 3 साल से चल रही वुलर मैराथन कश्मीर में अब एक वेयरली कैलेंडर बना है जिसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों और बीएसएफ के परिवारजन शामिल होते हैं। 4 हिस्सों में इस मैराथन को बांटा गया था, 50 किलोमीटर की लंबी दौड़, 25 किलोमीटर की लंबी दौड़ और साथ ही साथ 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़।
14: बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव ने बांदीपुरा स्थित बीएसएफ मुख्यालय से रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद रनर्स ने बांदीपुरा के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए दौड़ लगाई। बीच रास्तों में जवान मौजूद रहे जिन्होंने प्रतियोगियों को फल और पानी बांटा। ये रन वुलर वेंटेज पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। इस अल्ट्रा रन में सिर्फ प्रोफेशनल रनर्स ही नहीं बल्कि युवा, फिटनेस प्रेमी और खेलों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
16: ये रन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल रन इन इंडिया एंड जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे वुलर का व्यू है, पूरा जो एलिवेशन था रूट का, मतलब आई थिंक जो सारे अरेंजमेंट थे बहुत ही बहुत अच्छे थे और मजा आ गया ये रन कर।
14: इस साल मैराथन की थीम सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन रखी गई थी जिसका मकसद भारत की सबसे बड़ी और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वुलर झील के संरक्षण का संदेश देना है और युवाओं में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देना था। बीएसएफ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को फिटनेस, खेल और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही लोगों को वुलर झील की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यावरणीय महत्व से जोड़ने की कोशिश भी की गई। यानी एक तरफ दौड़ते कदम तो दूसरी तरफ कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच वुलर को बचाने का संकल्प लिया गया। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
4: एशियन गेम्स में शूटिंग में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 मेडल जीते। शूटिंग में भारतीय दबदबे को बरकरार रखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के शूटिंग क्लब खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। कोटा में ऐसा ही एक क्लब है जिससे अब तक 300 से ज्यादा खिलाड़ियों को तैयार किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज, शूटर्स की नर्सरी बना कोटा का शूटिंग क्लब। जी हाँ, कोटा के 10X स्पोर्ट शूटिंग क्लब से अब तक करीब 300 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनमें 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर पर मेडल हासिल किया। इस साल भी क्लब के करीब 15 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

0: शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। आईची नागोया में हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भी भारतीय शूटर्स ने कमाल की शूटिंग करते हुए कुल 15 पदक अपने नाम किए। भारत को मिले 85 पदकों में केवल शूटिंग की स्पर्धा से ही 15 मेडल प्राप्त हुए। एशियाड में शूटिंग स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों को 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 मेडल प्राप्त हुए। एशियन गेम्स में शूटर्स के शानदार प्रदर्शन के बाद देश लौटने पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। कोटा में भी एक ऐसा शूटिंग क्लब है जो नेशनल लेवल के शूटिंग खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है। कोटा के 10X स्पोर्ट्स शूटिंग क्लब से अब तक करीब 300 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनमें 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर पर मेडल हासिल किए हैं। इस साल भी क्लब के करीब 15 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस क्लब की शुरुआत 2013 में हुई थी। तब यहां सिर्फ 10 से 12 बच्चे ट्रेनिंग लेते थे और संसाधन भी सीमित थे। पिस्टल की सर्विस से लेकर सिलेंडर में हवा भरवाने तक के लिए खिलाड़ियों को काफी संघर्ष करना पड़ता था। समय के साथ खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती गई और अब क्लब के खिलाड़ी जिला, राज्य और नेशनल स्तर के प्रतियोगिताओं में पहचान बना रहे हैं। इन्हीं में से एक खिलाड़ी हैं साधना बुलीवाल। शूटिंग में सक्रिय रहने के साथ अब वो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने में जुटी हैं।
1: शूटिंग स्टार्ट किए उस समय हमारे पास 10 से 12 बच्चे थे, फिर हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते हमारे 300 बच्चे हमने नेशनल प्लेयर निकाले। मैं यहाँ कोचिंग देती हूँ, मैं कोच हूँ यहाँ पे, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मेरा ऑल इंडिया 4th पोजीशन पे मेरा लगा था। उस समय मेरा जकार्ता के लिए है ना सिलेक्शन हुआ था एशियाड और वर्ल्ड कप के लिए, बट मुझे पता नहीं चल पाया, इस वजह से मैं रह गई थी। तो अब मैं धीरे धीरे शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद मैं शूटिंग में ध्यान तो दे रही हूँ, मगर वही है कि कोचिंग करती हूँ तो बच्चों को संभालती हूँ। और हर साल हमारे बच्चे एक ना एक ऐसा है कि जो मेडल भी लगाता है प्लस इंडियन टीम के लिए भी सेलेक्ट होता है।
0: यहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिला स्तर और राज्य स्तर पर अपना कमाल दिखाते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। यहाँ के खिलाड़ियों के लिए शूटिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि पैशन है। इससे खिलाड़ियों में फोकस, मेडिटेशन और मानसिक मजबूती बढ़ती है। क्लब के खिलाड़ी रिद्धि तवर ने हाल ही में जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो नेशनल लेवल पर भी शूटिंग कर चुकी हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। रिद्धि के अनुसार शुरुआत में उन्हें शूटिंग में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन लगातार अभ्यास करने के बाद उनका शूटिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया और धीरे धीरे शूटिंग उनका पसंदीदा खेल बन गया। कोटा का ये शूटिंग क्लब लगातार जिला और राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग खिलाड़ियों को तैयार करने में जुटा हुआ है और जब तक स्थानीय स्तर पर शूटिंग में शानदार खिलाड़ी निकलते रहेंगे तब तक देश का शूटिंग के खेल में इंटरनेशनल लेवल पर दबदबा बना रहेगा। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: बैंक कर्मचारियों को मिलेगी हर शनिवार छुट्टी। बैंकों में 5 दिन वर्किंग का आ गया नोटिफिकेशन। पेमेंट के लिए बाइक वाले से क्यों भिड़ी लड़की। पार्क में सुरों की महफिल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राज शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डेसरोथ, पीटर हैकमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम के जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बोलीवील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारत ने जन्मी चीता ने 5 शावकों को दिया जन्म। देश में बढ़ रहा है चीतों का कुनबा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना

0: नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ का पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना जांचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटी जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल गजट नोटिफिकेशन की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद भी पैसे देने के समय लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण रोड पर तमाशा हो गया। क्या है वायरल वीडियो का दावे का सच, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक। दरअसल एक वायरल लेटर में केंद्र सरकार के हवाले से यह दावा किया गया है कि बैंकों में अब हर शनिवार को अवकाश रहेगा और सिर्फ 5 डे वर्किंग होगी। ये चौंकाने वाला दावा हमारे सामने भी आया, हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या निकलकर सामने आया देखते हैं।
1: बैंक यूनियंस काफी समय से हफ्ते में 5 दिन काम करने और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से इसके लिए कमेटी बनाने और दूसरी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिए जाने के बाद यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर के बीच होने वाली 3 दिन की हड़ताल टाल दी थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक गेजेट नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसे कई सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार के नए फैसले के तौर पर शेयर किया जा रहा था। एक सोशल मीडिया यूजर ने संयुक्त सचिव शालिनी पंडित के हस्ताक्षर वाले इस कथित राजपत्र को शेयर करते हुए लिखा, बैंक अब सिर्फ 5 दिन खुलेंगे, शनिवार को बैंकों की छुट्टी का प्रावधान। लोग इस पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: देखिए बैंक यूनियन ने हाल ही में 5 वर्किंग डे की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया। यह हड़ताल बैंक को शनिवार को बंद रखने के लिए की गई थी। अब अचानक सोशल मीडिया पर यह खबर निकल कर आई है कि हर शनिवार को देश भर में बैंक बंद रहने वाले हैं। यह खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि अभी देश के सभी सरकारी बैंकों हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। बैंक कर्मचारियों के संगठनों की मांग है कि कॉरपोरेट्स की तर्ज पर बैंकों में 5 डे वर्किंग का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए। सरकार ने भी उनकी इस डिमांड पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में यह खबर सामने निकल कर आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोग इसे सच मानने लगे। हमने भी इसकी जांच शुरू की, लेकिन देखिए हमें ऐसी कोई जानकारी या आदेश की कॉपी देखने को नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो, क्योंकि अगर ऐसे किसी भी आदेश को दिया गया होता तो एक प्रेस ब्रीफिंग या ट्वीट के जरिए इसके बारे में जरूर बताया गया होता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हमने खंगाला, लेकिन वहां पर भी 5 डे वर्किंग को लेकर कोई पोस्ट हमको देखने को नहीं मिला। तो देखिए सरकार ने बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी होने का आदेश दिया होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती, आप खुद सोचिए। लेकिन ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हुई है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये उठता है कि देश के बड़े चैनल्स और अखबारों में ये खबर क्यों नहीं देखने को मिली। ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी शालिनी पंडित इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। वायरल गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम भी दिख रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर वित्त मंत्रालय ने यह आदेश दिया होता तो इस पर सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी शालिनी पंडित का नाम ही क्यों है, उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं दिख रहा है। 5-day वर्किंग की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सभी पक्षों से बात करके ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे बैंक कर्मचारियों को सहूलत मिले और लोगों के काम पर भी असर ना हो। यानी अभी छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये उठता है कि कहीं एडिटेड गजट नोटिफिकेशन को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम जांच में जुटी। जांच के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें 5-day वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। सर्च के दौरान हमें जानकारी मिली कि सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने भी वायरल हो रहे इस दस्तावेज की पड़ताल की है। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल किया जा रहा दस्तावेज फर्जी है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो। PIB फैक्ट चेक ने लोगों को ऐसे संदिग्ध कंटेंट से सावधान रहने और केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी संदिग्ध दावे को सत्यापित करने की अपील की है। पुष्टि के लिए हमने इस अधिसूचना को OpenAI के इमेज वेरिफिकेशन टूल पर भी चेक किया और पाया कि इसमें OpenAI का SynthID वाटरमार्क मौजूद है जिससे पुष्टि होती है कि इसे OpenAI के AI टूल्स की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा दस्तावेज फर्जी और AI जनरेटेड है। इसे OpenAI के AI टूल की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करते हैं वायरल हो रही दूसरी खबर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि राइट पूरे होने के बाद भी पैसे देने के समय यह लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। यह खबर क्या है, इसकी सच्चाई आगे आपको दिखाते हैं।
2: हेलो, पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही है, मैं कर दूंगी बाद में।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक राइडर और एक लड़की के बीच बहसबाजी हो रही है।
3: उसमें आपका नंबर आता है रैपिडो वाले में या QR, मैं उसमें कर दूंगी।
2: किसमें नंबर आता है यार?
3: अरे रैपिडो बुक किया है, उसमें आता है ना QR या नंबर, तो मैं कर दूंगी।
2: अरे अभी पेमेंट करके जाओ ना।
1: पहले ये सुनिए लड़की और बाइक राइडर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बीच सड़क पर उलझ गए।
2: तो आपने पेमेंट किया भी नहीं, आप ऐसे भाग रहे हो यार, हद है।
3: बट सर्वर ही नहीं चल रहा, मैं कैसे पेमेंट करूं?
2: पेमेंट करिए, पहले पेमेंट तो करो।
3: अरे जो बोल रही हूँ मैं।
1: दरअसल बाइक राइडर ने लड़की को तय जगह पर पहुँचाया, इसके बाद लड़की बिना पेमेंट किए वहाँ से जाने लगी। जिसके बाद बाइक राइडर ने लड़की को पेमेंट के लिए बोला तो लड़की तरह तरह के बहाना बनाने लगी।
2: अरे हाथे, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे कहाँ जाओगे बताओ, पेमेंट तो करो आप।
3: अरे नहीं,
2: रैपिडो फ्री में चलती है यार।
1: इसे शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की को बाइक राइडर ने शॉर्टकट लेकर फटाफट पहुंचा दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो लड़की आनाकानी करने लगी।
2: सर्वर कब, मेरे को क्या पता क्या नहीं चल रहा, आप करके तो देखो एक बार, ट्राई भी नहीं किया आप।
1: वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि बॉयफ्रेंड का दिया हुआ महंगा मोबाइल लेकर चलने वाली कुछ लड़कियां इस तरह के गरीब रैपिडो वालों को लूटने का काम करती हैं।
3: सर्वर चलेगा, मैं नहीं चल रहा है ना, अभी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं बताओ।
2: तो एक बार चेक करो।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: देखिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरे होने के बाद पैसे देने के समय यह लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। इसको लेकर एक नैरेटिव फैलाया जाने लगा, बिना सोचे समझे लोग इसमें कूद पड़े और रैपिडो वालों को लूटने का आरोप लगाने लगे। हमारे सामने भी ये खबर निकलकर सामने आई। खबर की सच्चाई जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल की। वायरल वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हमने पहले वीडियो को देखा, इस दौरान हमें एक ऑटो नजर आया, इसके कलर पर हमारा ध्यान गया और इससे ये साफ हो गया कि ये दिल्ली का वीडियो है। इसके बाद वीडियो में एक खास चीज देखने को मिली, लड़की और रैपिडो वाले के बीच बहस हो रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई नहीं आता है, ये हमें हजम नहीं हुआ, क्योंकि अगर बीच सड़क पर इस तरह का मामला निकलकर सामने आता है तो वहां पर लोग जुट जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखिए, राइड खत्म होने के बाद लड़की पेमेंट नहीं देने के लिए बहानेबाजी करने लगी, रैपिडो वाले से भिड़ गई। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो रैपिडो वाले ने पुलिस को फोन करके वहां पर क्यों नहीं बुलाया। लड़की और रैपिडो वाले के बीच बड़े आराम से बहस हो रही है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई अपने हक का पैसा छोड़ता नहीं है, मेहनत के पैसे को लेने के लिए वो हर हथकंडा अपनाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नजर नहीं आया। एक तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक दोनों अपने रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं गुजर रहे हैं, सामने एक आइसक्रीम वाला भी नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर ये उठता है कि कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: हेलो,
1: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर एक खास नैरेटिव फैलाई जा रही थी। कुछ लोग सच झूठ जाने बगैर इस खबर में कूद गए और लड़की के व्यवहार पर सवाल खड़े करने लगे।
3: देख लिया मैंने करके।
2: अरे हद है यार, क्या बातें कर रहे हो आप?
3: अरे जब बोल रहे भी कर दूंगी मैं।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर ये मिला, यहाँ इसे 27 सितम्बर को अपलोड किया गया था। जब हमने इस फेसबुक पेज के अकाउंट सेक्शन को खंगाला तो ये जानकारी सामने आई कि ये कंटेंट क्रिएटर का पेज है और यहाँ मनोरंजक वीडियो के साथ साथ ब्लॉग भी बनाया जाता है।
2: पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही मेरे से, पेमेंट नहीं हो रही, देख ले, कोई नहीं रही पेमेंट।
2: अब पागल उगल, पेमेंट तो बिना पेमेंट के जाओ, कैश दे दो।
3: अरे
2: अरे,
1: यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी वीडियो मिले जिनमें बाइक राइडर का पेमेंट को लेकर किसी न किसी लड़की से झगड़ा होता है। इनके तमाम वीडियो में वही बाइक नजर आती है जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है।
2: नो नो नो नो। हेलो, एक्सक्यूज मी, ओ मैडम इधर आना।
3: क्या हुआ?
2: एक काम कर दोगे?
3: हाँ बोलो।
2: यार मेरे हाथ में ना चोट लगा हुआ है, तो ये ना पीछे एक बार पॉकेट से ना पैसा निकाल लें।
1: इसके अलावा भी ये नजर आया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की इस चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियो में भी दिखाई दे रही है।
2: और इधर आ जाओ यहाँ पे, इसमें से ना आप 500 रुपया निकाल लो।
1: इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: पेमेंट करूंगी तो आप तुम्हारे पास ही आएंगे?
2: मेरे पास आ जाएगा वो पेमेंट।
3: ओ गॉड।
0: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त उछला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
10: इनकी इस मासूम अदा पर कौन न दिल हार जाए। मुस्कान देखिए जरा चेहरे पर, पारंपरिक लिबास में नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती, मुस्कुराती और साथ में अपने दोस्त को सिर पर बिठाकर खुश होती इस प्यारी बच्ची का वीडियो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। इन दिनों एक छोटी बच्ची और एक शख्स की बातचीत का ये अंदाज लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
11: तुम थे ही नहीं
10: यहाँ पे। बच्ची अपनी बालकनी से बाहर काम कर रहे एक शख्स से बात करती नजर आती है। वो शख्स एक ऊंची बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में रस्सी के सहारे काम कर रहा होता है।
11: याद आई थी, पर हमने याद करा था अंकल, ये कह रहे थे स्कूल गई है, तो तुमने कब आवाज दिया था मुझे।
10: दोनों के बीच होने वाली छोटी सी बातचीत इतनी प्यारी और अपनापन भरी है कि इसे देखने वाले लोग भी मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं।
12: अंकल
10: दो बड़े बॉल और दो नन्हे हाथ, बैलेंस बनाना है, दोनों हाथों को एक्टिव रखना है और सामने आई गेंद को दूसरे हाथ को पास करना है। जरा सी चूक और आप गेम से आउट, इसलिए सबकी निगाहें एकदम निशाने पर। गेंद आते ही हाथ से दूसरी तरफ मोड़ दी जा रही है, कोई देरी नहीं, कोई चूक नहीं। संभव है ये मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बच्चों में एकाग्रता लाने, फोकस बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है, पर ये एक्सरसाइज है इतनी मजेदार कि यकीनन बच्चों को इसका इंतजार रहता होगा। जब क्लासरूम में संगीत बजने लगा तो अपने आप इन नन्हे बच्चों के पांव थिरकने लगे। बच्चों की मासूमियत, प्यारे एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे मूव्स देखकर यूजर्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्लासरूम में पढ़ाई के माहौल के बीच बच्चों की ये छोटी सी मस्ती देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए पूरा कमरा ही डांस फ्लोर में बदल गया हो। उनके डांस में किसी तरह की बनावट नजर नहीं आती और यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। लोकगीत हों या लोक नृत्य, एक कहानी कहते हैं जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

0: रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में क्या किया जाए, इसे लेकर हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई घूमने निकलता है, कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता है, तो कोई अपने पुराने शौक को फिर से जीने लगता है। लेकिन नोएडा के कुछ बुजुर्गों ने अपनी रोज की सुबह की सैर को ही कुछ खास बना दिया।
1: जिंदगी का मजा।
0: पार्क में टहलने निकले इन दोस्तों ने अचानक ऐसा सुर छेड़ा कि देखते ही देखते वहाँ का माहौल किसी छोटी सी संगीत महफिल जैसा हो गया। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत मांगने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं। एक नीली और सफेद रंग की बस सड़क पर चल रही है। पहली नजर में ये एक सामान्य बस लगती है, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे की ओर बढ़ता है असली ट्विस्ट सामने आता है। बस में आगे कोई सामान्य इंजन काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक लाल रंग के ट्रैक्टर से जोड़ा गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर बड़े मजे से बस को खींचते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा है और बस के पायदान पर खड़े यात्री आराम से सफर का आनंद ले रहे हैं। बंदर तो बंदर है, वो कहीं हो और अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराए ऐसा हो नहीं सकता। अब इसे ही देख लीजिए, भालू और कुत्ते की दोस्ती से इन्हें भला क्या परेशानी थी। देखा नहीं गया इनसे इतना प्यार, एकदम से टपक पड़े और फिर तो देख ही रहे हैं इनके कारनामे। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें दूर करने की, और जब जी भर गया तो निकल पड़े, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो करना है करो, हम तो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं, बंदर कुत्ते को बचाने आया था या दोनों की केमिस्ट्री से जल रहा था, अब ये तो वही जाने। बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। नूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सुन ली।
5: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि माँ के आगमन की तैयारी, राम मंदिर के थीम वाले पंडाल में विराजेंगी माँ दुर्गा। इसके अलावा नवरात्र में दिखेगा गरबा का मॉडर्न अंदाज, गरबा के ड्रेस में जेन जी वाला टच। साथ ही स्वदेशी खादी का नया फैशन स्टेटमेंट, पारंपरिक कारीगरी के साथ आधुनिक डिजाइन। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
5: मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डिसरॉथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्वाइकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्ववैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारत में जन्मी चीता ने 5 शावकों को दिया जन्म, देश में बढ़ रहा चीतों का कुंभ। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधे पर उठाया। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स के पदकवीरों का ग्रैंड वेलकम, मेडल विजेताओं के सम्मान में रैली, ढोल ताशों की गूंज के बीच बरसे फूल। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसकी शुरुआत 5 दिन बाद होने जा रही है। ऐसे में नवरात्र को लेकर न सिर्फ मंदिरों में जोर शोर से तैयारी चल रही है, बल्कि दुर्गा पूजा को लेकर शहर शहर भव्य पूजा पंडाल और देवी दुर्गा की मनोहारी मूर्तियां भी तैयार हो रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, बंगाल से लेकर यूपी और राजस्थान तक दुर्गोत्सव से जुड़ी तैयारियां हर तरफ चल रही है। दुर्गा पूजा से जुड़ी इन्हीं तैयारियों पर देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: शक्ति उपासना का पर्व शुरू होने में बस चंद रोज ही बाकी है। ऐसे में देवी दुर्गा के स्वागत के लिए जगह जगह भव्य पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। कहीं थीम आधारित भव्य पंडाल बन रहा है तो कहीं पूजा पंडालों में फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर बंगाल के दुर्गापुर से सामने आई है, जहां राम मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल का ढांचा करीब करीब बनकर तैयार है और अब पंडाल के अंदरूनी हिस्से में काम चल रहा है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस पंडाल को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने अभी से क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।
1: না আমরা মেইনলি সেফটি সিকিউরিটির আসপেক্ট যেটা আছে ওটাই দেখছি, আর সঙ্গে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের কি রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো কমপ্লাই করা হয়েছে।
0: बंगाल की तरह ही दिल्ली के सीआर पार्क में भी थीम आधारित पंडाल बनाया जा रहा है। इस पूजा पंडाल की खासियत है कि इसे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जूट इंडस्ट्री की थीम पर बनाया जा रहा है। पूजा समिति के लोगों ने बांस और जूट का इस्तेमाल किया है, साथ ही देवी दुर्गा की प्रतिमा भी इको फ्रेंडली बनाई जा रही है।
2: राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में जगह जगह नवरात्र उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है, भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। बता दें दिल्ली के चितरंजन पार्क मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है और यहां नवरात्रों के दौरान भव्य उत्सव मनाया जाता है और मां की खूब आराधना की जाती है। जहां चितरंजन पार्क में कई जगहों पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, उसी में से एक कोऑपरेटिव ग्राउंड में भी भव्य थीम बेस्ड पंडाल बनाया जाता है, जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर इस पूजा को इस वर्ष 51 साल पूरे हो रहे हैं और इस बार इस तरह यहां पर किस तरीके की तैयारी है उसको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जूट के थीम पर यहां पर ये पूरा बनाया जा रहा है और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। और जो कारीगर हैं वो आपका एक काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बांस की डिजाइन वगैरह बना रहे हैं।
3: बंगाल में जूट इंडस्ट्री ग्रेजुअली बहुत डाउन हो गया है, एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया बोलो, मेन तो बंगाल ही होता था। तो इस बार हम लोग सोचा थोड़ा वही एक दिखा है ना कि पुराना जो जूट का है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, यूटिलाइजेशन कैसे हो सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग ये प्लान किया है। सीआर पार्क में एक ही पैंडल है जिसमें मूर्ति हम लोग पैंडल में बनाते हैं,
4: अच्छा, पैंडल
3: एकदम डे वन से। हर जगह पे क्या होता है कि मूर्ति कोई दूसरी जगह से बनते हैं, उधर से आते हैं, हम लोग इधर पे खुद बनाते हैं।
0: भव्य पूजा पंडालों की तरह देवी दुर्गा की मनोहारी मूर्तियों का निर्माण भी बहुत तेजी से इन दिनों चल रहा है। चाहे बंगाल हो या यूपी, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र, मूर्तिकार ऑर्डर और डिमांड के हिसाब से इन दिनों मूर्तियों को तैयार करने में जुटे हैं। ये तस्वीर पूर्वी बर्धमान जिले से आई है, जहां मूर्तिकार तापस पाल पारंपरिक शैली से लेकर नए और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। इस साल उन्हें 20 मूर्तियों का ऑर्डर मिला है। मूर्तिकार तापस पाल का कहना है कि पारंपरिक शैली में बनी देवी दुर्गा की ये मूर्ति मुख्य रूप से पुआल और मिट्टी से तैयार की गई है। इनमें एक मूर्ति इंग्लैंड भेजी जानी है।
5: प्रथम जाच्छे इंग्लैंड, फेसबुक माध्यमे जोगाजोग होयेछे, भद्रलोक दीर्घदिन आमार संगे फेसबुके आछे, आमार प्रतिमा देखेन।
0: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोई मूर्तियों की फिनिशिंग में लगा है और कोई फिनिशिंग के बाद प्रतिमाओं को सजाने और संवारने में जुटा है। मूर्तिकार प्रद्युमन ने दुर्गा पूजा पर सामाजिक संदेश देने के लिए इस साल मोबाइल आसुर नामक राक्षस बनाया है। यह प्रतिमा जय माता दी सपोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल में स्थापित होगी।
6: इस बार का ये जो थीम है, जो बच्चे आजकल के बच्चे आपके घर में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना खाने के लिए पढ़ने के लिए हमेशा जो कि मोबाइल के समझ लीजिए कि हैबिचुअल हो गए हैं, उनसे उनको बच्चों को दूर करने के लिए ये समझ लीजिए विजुअलाइज दिखाने के लिए ये विजुअल कि देखिए बच्चों ये गलत चीज है, ये समाज में एक समझ लीजिए दर्शन देने के लिए बच्चों के लिए ऐसा बनाया जा रहा है।
0: उधर महाराष्ट्र के अकोला में भी पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अकोला के कुम्भारवाड़ा में मूर्तिकार दिन रात प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जहां 1 फीट से लेकर 25 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि गणपति स्थापना के बाद ही वो माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण और सजावट में जुट जाते हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियां दी जा सके।
4: शारदीय नवरात्र उत्सव को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर पंडाल में देवी माँ की मूर्ति विराजमान करनी है, उसकी घट स्थापना करनी है। उससे पहले कलाकार जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सुंदर 3.5 शक्तिपीठों में एक रही नांदेड़ जिले की रेणुका माँ, जो इसकी आप देख रहे हो कि ये है माँ तुर्जा भवानी की प्रतिमा, जिसको अभी कलाकार जो है वो रंगोपन कर रहे हैं। माँ शक्ति की, माँ दुर्गे की जो सुंदर प्रतिमाएं हैं, उसे बनाने का काम जो है कलाकार कर रहे हैं, और उसमें अब रंगोपन का भी काम यहाँ चल रहा है। ये कलाकार जो है माता रानी के हाथ में मेहंदी निकाल रहे हैं, उन्हें डिजाइनिंग कर रहे हैं। किस तरह से देखिए माता रानी की ये सुंदर सुबक मूर्ति जो है वो पहला कलरिंग का हाथ इस पर चढ़ चुका है। अब इस पर जो है बारीकी नक्शी काम करने का काम ये दोनों कलाकार लड़कियां करते नजर आ रहे हैं।
0: इन मूर्तिकारों की ये मेहनत कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा पंडालों में नजर आएगी। देवी माँ के स्वागत के लिए तैयार हो रही ये प्रतिमाएं सिर्फ मिट्टी और रंगों से बनी आकृतियां भर नहीं है, बल्कि कलाकारों की श्रद्धा, मेहनत और भक्ति का भी प्रतीक है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, दुर्गापुर से अनिल गिरी, वर्धमान से सुजाता मेहरा, वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट कुटिया टुडे।
7: शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही गरबा और डांडिया नाइट्स से जुड़े आयोजन भी देश भर में शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अभी से गरबा और डांडिया नाइट्स को लेकर लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, खास करके महिलाओं ने। वहीं गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए बाजार भी सज गए हैं। बाजार में रंग बिरंगे ड्रेस बिकने शुरू हो गए हैं। महिलाओं के लिए नए नए डिजाइन की चनिया चोली और लहंगा, जबकि पुरुषों के लिए अलग अलग तरह के कुर्ते और पगड़ी बाजार में छा गए हैं।

0: जगमगाती शाम, तेज संगीत और थिरकते कदम, ये तैयारी उस उत्सव को लेकर है जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर महिलाएं और युवतियां जो गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए प्रैक्टिस में जुट गई हैं। प्रैक्टिस की ये तस्वीर यूपी के झांसी से आई है, जहां शारदीय नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा और डांडिया को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसी उत्साह की झलक झांसी के विपिन रावत पार्क में हर तरफ देखने को मिली। ये सभी महिलाएं जोर शोर से गरबा और डांडिया के लिए तैयारी कर रही हैं।
1: बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाई है, एनर्जी भर दी सारी लेडीज में, यहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। नवरात्रि हर साल हम हिंदुओं का एक बहुत ही पावन पर्व है। हम अपनी देवी जी को 9 दिन पूजा करते हैं अलग अलग रूपों में, जो कि शुरुआत होने वाली है 11 अक्टूबर से। तो हमारा डांडिया 12 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि रामेश्वरम में होगा, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं।
2: जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है, रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है, बहुत अच्छी इन डांसर सिखाती हैं हम लोगों को। और जो 12 अक्टूबर को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग उसमें ना अलग अलग टाइप का ट्रेडिशंस देखने को, इंडियन ट्रेडिशन है, अलग अलग आउटवियर देखने को मिलेगा, कुछ वेस्टर्न होगा, कुछ ट्रेडिशंस होगा, कुछ मिक्सअप होगा हर चीज़ का। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उस नाइट को और जो रामेश्वरम में हो रहा है।
0: इन महिलाओं और युवतियों को प्रैक्टिस करा रही ऋतु जैन ने बताया कि डांडिया और गरबा को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है। डांडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये माता रानी की भक्ति से भी जुड़ा लोक नृत्य है। इसी भावना के साथ ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांडिया सीख रही हैं।

0: आज यहाँ पे जलसा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया बिपिन रावत पार्क में एक डांडिया सिखाया जा रहा है, जिसमें मैं एज अ इंस्ट्रक्टर आई हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा था पता नहीं कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड है। और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
1: दुर्गोत्सव के दौरान हर शाम होने वाला ये आयोजन रंग बिरंगी और खूबसूरत ड्रेसेस के बगैर अधूरा है। गरबा और डांडिया नाइट्स के दौरान पहने जाने वाली ड्रेसेस बहुत अहम होती हैं, चाहे महिलाओं के लिए चनिया चोली और लहंगा हो या फिर पुरुषों के लिए कुर्ता और पगड़ी हो। बाजार एक से बढ़कर एक ऐसी खूबसूरत ड्रेसेस से सज चुके हैं। इस बार भी गरबा और डांडिया के लिए मार्केट में गुजराती ड्रेस की डिमांड शुरू हो गई है।
2: हम बरसों से चनिया चोली और जेंट्स वेयर का कपड़ा बनाते हैं। चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है और हम बनाते हैं। सब बाहर गाँव जाते हैं, बॉम्बे साइड और जाते हैं और उसकी रेट 2000 से लेके 15000 तक चनिया चोली का रहता है। कपड़ सेट भी हम बनाते हैं।
3: इसमें कौन कौन सा वर्क होता है?
2: उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है और आरी वर्क होता है और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
1: बाजार में रंग बिरंगे पैटर्न्स, शानदार एम्ब्रॉयडरी और एक परफेक्ट मॉडर्न टच का ऐसा कॉम्बिनेशन मौजूद है जो देखने वालों को एक नजर में ही पसंद आ जाए।
4: कच्ची वर्क है या फिर चोली का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ से ही लेने का प्रेफर करते हैं और हमें यहाँ का काम बहुत पसंद है।
5: अब कितने साल से यहाँ पे खरीदी करते हो?
4: 10 साल से यहाँ से।
5: और कैसा लगा यहाँ का हैंड वर्क वगैरह?
4: बहुत अच्छा होता है, हर साल न्यू कलेक्शन मिल जाता है। इस साल हैंड वर्क, कच्ची वर्क, पोजिशन प्रिंट है, हर साल न्यू कलेक्शन मिल जाता है। बंडी, पाखड़ी, छतरी, डाकड़ी सब मिल जाता है।
1: हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में बनी इन ड्रेसेस की डिमांड देश के दूसरे राज्यों में काफी है, लिहाजा नवरात्रि के नजदीक आते ही इस बार गुजरात से चनिया चोली, लहंगा, कुर्ता और पगड़ी की डिलीवरी शुरू हो गई है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अब बात उस खादी की जो कि बापू की जयंती पर खुद एक उत्सव की तरह बन जाती है। दिल्ली हाट में खादी महोत्सव चल रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए खादी से जुड़े इस उत्सव में देश भर के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगर और बुनकर वहां अपने अनोखे और खूबसूरत उत्पाद के साथ आए। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देना भी है। खास बात यह भी है कि जेन जी को भी खादी काफी पसंद आ रही है। पारंपरिक कारीगरी, आधुनिक डिजाइन वाली खादी के नए फैशन स्टेटमेंट का गवाह आप भी बनिए।

0: 121 साल से देश में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की प्रतीक खादी अब हर घर स्वदेशी अभियान के जरिए देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। भारत और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी एक बार फिर राष्ट्र का संकल्प बन रही है। दिल्ली हाट भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों का एक अनूठा बाजार है जो देश भर की कला और परंपरा को एक मंच मुहैया करवाता है, उनको आपस में जोड़ता है। बिना किसी भेदभाव के समाज के हर कारीगर को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मान और पहचान दिलाने का मंच बनता है। यहाँ हस्तशिल्प और हथकरघा बेचने वाले कारीगर और बुनकर अपने उत्पाद के जरिए सीधे ग्राहकों से जुड़ते हैं। खादी, स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा में अपनी जिंदगी खपा देने वाले ग्रामीण और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ खादी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सेवा संकल्प खादी महोत्सव के माध्यम से आधुनिक फैशन के इस दौर में खादी अब युवा पीढ़ी और जेन जी के लिए नया फैशन स्टेटमेंट बनती जा रही है। युवा अब इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक तरीकों से तैयार टिकाऊ कपड़ों को प्राथमिकता देने लगे हैं।
1: गांधी जयंती के मौके पर शुरू हुआ ये खादी मौसम जो है वो सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है बल्कि बदलते सफर की जो तस्वीर है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ पर हर एक स्टॉल में जो है अलग अलग ऑप्शन जो है वो खादी से जुड़े जो है वो नजर आ जाएंगे। एक तरफ जहाँ खादी की पारंपरिक कपड़े और जो हस्तशिल्प है वो देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनके जो चीज़ है जो यहाँ पर जो चीज़ें ये लेकर आए उसमें नया डिज़ाइन, नया अंदाज जो है वो लोगों तक पहुँचाने की ये पूरी तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक स्टॉल में जो है आपको खादी की अलग जो है वो आमतौर पर जो है वो नजर आ जाएगी। और फेस्टिव सीजन की शुरुआत है तो उससे जुड़ा भी यहाँ पर आपको स्टॉक अच्छा खासा जो है वो दिखने वाला है। हर एक स्टॉल देखेंगे अलग अलग राज्य के जो है यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पहुंचे, तकरीबन 100 के करीब जो है वहाँ यहाँ पर आपको स्टॉल जो है वो नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको फेस्टिव सीजन का जो से जुड़े जो तमाम कपड़े है वो नजर आ जाएंगे, डेकोर आइटम्स है वो नजर आ जाएंगे।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश उत्सव के साथ फेस्टिव सीजन का आरंभ हो चुका है। नवरात्रि आने वाली है, उसके बाद दशहरे की बारी है, फिर सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पूरी तरह से निर्जला और निराहार व्रत वाला करवा चौथ आएगा, उसके बाद दीपों का त्योहार दीपावली आएगी। ऐसे में फेस्टिव मूड से मैच करते हुए एथनिक वेयर भी मौजूद हैं, जिनमें लहंगे, ब्लाउज, दुपट्टे जैसे फेस्टिव वाइब्स देने वाले कपड़े भी शामिल हैं। खास बात ये कि सभी खादी से तैयार किए गए हैं। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि पारंपरिक पहनावे के साथ लोगों का मॉडर्न लुक भी बरकरार रहे।
1: डांडिया नाइट्स, दुर्गा पूजा और नवरात्रि सब बस आने ही वाले और लड़कियां बेहद ही एक्साइटेड रहती है इस पर्व के लिए क्योंकि इसमें पहनने को मिलता है सुंदर सुंदर कपड़े। तो अगर इस बार आप फेस्टिव सीजन में कुछ ऐसा फैशन पहनना चाहते हैं जिसमें खादी की सादगी भी जो है आपको नजर आए तो दिल्ली हाट का ये स्टॉल आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर गुजरात का ये स्टॉल है और यहाँ पर आपको बहुत सारे घाघरे जो है सुंदर सुंदर नजर आ जाएंगे जो डांडिया नाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाले हैं। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि खादी का जो टच है वो भी आपको मिल जाएगा, तो खादी की सादगी भी है और अलग अलग डिजाइन के साथ फैशनेबल घाघरे जो है वो आपको दिख जाएंगे कि किस तरीके से मिरर वर्क वाले आपको घाघरे जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि एक ही घाघरे में आपको कितनी सारी अलग अलग स्ट्राइप्स जो है वो नजर आ जाएगी, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कलर्स जो है वो नजर आ जाएंगे क्योंकि ये जो फेस्टिवल होता है वो कलरफुल फेस्टिवल होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके के वाइब्रेंट घाघरा जो है वो बनाया गया है लड़कियों के लिए। और क्या ऑप्शन यहाँ पे है?
2: वो दानिया के लिए स्कर्ट है, फिर ये दुपट्टा है, ब्लाउज है, सब खादी में,
1: सब कुछ खादी में।
0: दीपावली जैसे अहम त्योहार पर घर को सजाने की परंपरा भी रही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि दीपावली पर स्वच्छ, सुंदर और प्रकाश में घरों में ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आगमन होता है। ऐसे में खादी और पारंपरिक कारीगरी से जुड़े होम डेकोर के प्रोडक्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं। वॉल हैंगिंग से लेकर डेकोरेटिव पीसेस, टेबल और चेयर्स तक कई तरह के आइटम्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं।
1: खादी के इस मौसम में लोग सिर्फ कपड़ों की खरीदारी नहीं कर रहे क्योंकि अब जो है फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का सीजन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब बारी है घर को सजाने की। तो जब बारी आती है घर को सजाने की तो यहाँ पर सजावट के भी कई ऑप्शंस जो है वो आपको दिख जाते हैं। तो इस खादी मौसम के इस स्टॉल में लेकर आई हूं जिसका नाम है खादी आश्रम और चंडीगढ़ से ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हर एक डेकोर आइटम आपको सिर्फ कॉपर का मिलने वाला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटी बड़ी चीज आपको जो है यहाँ पर कॉपर की ही बनी हुई नजर आएगी। लेकिन लेकिन जो एक सबसे ज्यादा मेन अट्रैक्शन इस वक्त बनी हुई वो है टेबल चेयर। टेबल चेयर तो आपने नॉर्मल देखी ही होगी, चाहे फिर वो लकड़ी की टेबल चेयर की बात करें या प्लास्टिक की, लेकिन यहाँ पर आपको ये कॉपर की बनी हुई टेबल दिख जाएगी जो कि बेहद ही दिखने में खूबसूरत लग रही है। इसको आप सेंटर टेबल के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो।
0: प्रोडक्ट्स में पारंपरिक कारीगरी के साथ मॉडर्न डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, यानी खादी और हस्तशिल्प अब सिर्फ गांव कस्बों तक सीमित बाजार नहीं बल्कि शहरों की बदलती पसंद का हिस्सा भी बन रहे हैं। हर स्तर पर खादी को नई पीढ़ी और आधुनिक बाजार से जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के जरिए खादी को बढ़ावा देने की अपील करते दिख रहे हैं, ताकि विशेष रूप से युवाओं को खादी जैसे स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही खादी को लेकर उन्हें गर्व की भावना भी जगे। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज पथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।

0: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई समस्याओं की और उनके समाधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। 6 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 10:17 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:17 तक राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा की समस्याओं के बारे में और चंद्रमा की समस्याओं के समाधान के बारे में। चंद्रमा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस किस तरह की समस्या चंद्रमा की वजह से पैदा होती है। देखिए, चंद्रमा हमारे मन का, हमारे मेंटल लेवल का ग्रह है और चंद्रमा हमारे सोच को और हमारे विचार को प्रभावित करता है और चंद्रमा के माध्यम से, या यूं कह लें कि हमारे मन के माध्यम से ही सारे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर

0: पड़ता है। और अगर कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ हो, अगर कुंडली में चंद्रमा निगेटिव हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याएं देता है। चंद्रमा के गड़बड़ होने पर हर समय मन में तनाव, मन में टेंशन बना रहता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो आप मन से चैन महसूस नहीं कर पाएंगे, मन के तनाव और मन की चिंताएं आपको हमेशा परेशान करेंगी। अगर चंद्रमा की वजह से आपको मन की समस्या है, मानसिक दिक्कत है, मेंटल डिप्रेशन है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय। जल में सुगंध डालकर या गुलाब जल डाल करके नियमित रूप से स्नान करिएगा। तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है तो लिक्विड डाइट लेकर जलीय आहार ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। और अगर आपको तनाव जरूरत से ज्यादा रहता हो तो मोती और चांदी ये आपको सोच समझकर धारण करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मोती और चांदी पहनने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है, समस्या ट्रिगर कर जाती है। तो अगर मानसिक तनाव ज्यादा होता हो तो मोती और चांदी आपको सोच समझकर धारण करना चाहिए। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, धन के खर्चों से आपको परेशानी होगी। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आज दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को क्रोध आता है, व्यक्ति इरिटेट हो जाता है या उसका मूड अच्छा नहीं रहता, बेवजह की मानसिक चिंताएं उसको पकड़े रखती हैं और इरिटेट होना, क्रोध होना, मूड खराब होना, ये बार बार होता है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, तेल मसालेदार और गरिष्ठ भोजन त्याग दीजिए। रोज रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठकर ही कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। संभव हो तो नियमित रूप से प्राणायाम भी करने का प्रयास करें। और अगर छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते हो, क्रोध आता हो, गुस्सा आता हो, तो काले रंग की चीजों का प्रयोग बंद कर दें। काले रंग की चीजों का प्रयोग कम से कम करिएगा। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। चंद्रमा अगर गड़बड़ हो तो मन गड़बड़ होता है और मन की गड़बड़ियों से आपके पेट का सीधा संबंध है, इसीलिए चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से डाइजेशन की, खाना डाइजेस्ट होने की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अगर चंद्रमा की वजह से पेट की समस्या है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से स्नान जरूर करिएगा। दोनों समय नहाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय जरूर नहाइए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए, ठूस ठूस कर गले तक भर करके खाना मत खाइए। भोजन जमीन पर या जमीन पर आसन पर बैठ करके करिए, अच्छा होगा। एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में किसी भी सोमवार की रात को पहन लीजिएगा और रोज शाम को 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में हर समय तनाव, हर समय टेंशन बना रहता है। अगर आपको हर समय चिंता रहती है, हर समय तनाव रहता है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह और शाम। अधिक से अधिक जलीय आहार ग्रहण करने का, लिक्विड डाइट लेने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए और नींद अपनी पूरी करिए, नींद में कमी मत करिए। दिन में कुछ देर वॉकिंग करिए, दिन में कुछ देर अगर आप पैदल टहलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें, अगर आपको हर समय तनाव रहता है तो, और भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर समय का जो तनाव रहता है वो तनाव दूर हो जाएगा। देखिए, अगर आप मोती धारण करते हैं तो ये जान लीजिए कि एक मोती का जीवन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल का होता है। 3 साल बीतने के बाद मोती बदल देनी चाहिए, इसके बाद मोती खराब होने लगती है और खराब मोती धारण करने से आपको नुकसान होगा। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? जिसके प्रति गलती हुई हो उससे हृदय से क्षमा याचना करिएगा, एक दिन का उपवास रखिए और उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे ये संकल्प लीजिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: यूं तो दुनिया भर में कई तरह की फैशन परेड्स देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक बेहद क्यूट फैशन परेड का नजारा, जहां पेरिस की सड़कें रैंप में तब्दील नजर आई, लेकिन मॉडल्स की जगह अलग अलग अट्रैक्टिव अटायर्स में सजे नजर आए डॉग्स।

0: वर्ल्ड फैशन की राजधानी कहलाने वाले पेरिस की सड़कें इस बार डैक्शन डॉग्स की फैशन परेड से गुलजार हुई। दुनिया भर में मशहूर सॉसेज वॉक इवेंट पर तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में सजे डॉग्स ने सभी का ध्यान खींचा। धारियों वाली शर्ट और बेरेट टोपी पहनने से लेकर छोटे छोटे काउबॉय तक के रूप में सजे ये डॉग्स सबके आकर्षण का केंद्र रहे। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहने और पूंछ हिलाते इन डॉग्स ने देखने वालों का दिल जीत लिया। जहां हर आकार साइज और रंग के डैक्शन डॉग्स अपने मालिकों के साथ नजर आए। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत लंदन से हुई थी, जो धीरे धीरे पेरिस समेत दुनिया के अन्य शहरों में फैल गई। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सॉसेज वॉक का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य छोड़े गए बुरे बर्ताव का शिकार हुए डैक्शन डॉग्स को बचाने और उनकी देखभाल के लिए फंड इकट्ठा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देशभर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां। शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा निर्माण। झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। कार्ल डिसरॉथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्वाइकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज। इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीवील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूलमालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधे पर उठाया। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा बिहार में राधा कृष्ण नौका विहार महोत्सव की भी है। देखिए,
0: बिहार के बेगूसराय में भक्ति उत्सव के दिव्य आयोजन ने श्रद्धालुओं को आनंद से सराबोर कर दिया। बेगूसराय के रतनपुर स्थित महंत सियाराम दास सरोवर में वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य झांकी को मोर के आकार के आकर्षक और सुसज्जित नाव पर विराजमान कर जब नौका विहार कराया गया, तो श्रद्धालु भक्ति भाव से भर उठे और पूरा वातावरण राधे राधे और हरे कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। इस विशेष अवसर पर पूरे सरोवर परिसर और भगवान के नौका विहार स्थल को सजाने के लिए 15 अलग अलग किस्म के 25 क्विंटल फूल मंगाए गए। कोलकाता और बेंगलुरु से लाए गए फूलों से दिव्य सजावट की गई। सरोवर के जल तट से लेकर मुख्य प्रवेश द्वारों तक फूलों की मनोरम छटा बिखेरी गई। महोत्सव का सबसे प्रमुख आकर्षक भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य नौका विहार लीला और महाआरती रही। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां पितृपक्ष में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु अपने पितरों के पितृमोक्ष की कामना और उनके पिंड तर्पण के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां ब्रह्म कपाल में वो अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण कर रहे हैं, साथ ही भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इसके चलते बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं से भरा दिखाई पड़ रहा है। पितृपक्ष के दौरान बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार पितृपक्ष में भीड़ पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक बताई जा रही है। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित समाज के अनुसार यहां पिंडदान के लिए 60,000 से भी कहीं अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पहाड़ों की खूबसूरती का दीदार कर सुकून के पल बिताने के लिए बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश जाते दिखे। इसके लिए दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का रेला नजर आया। पर्यटकों की इस आवक से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। मंदी की मार झेल रहे होटल मालिकों, होम स्टे संचालकों और स्थानीय दुकानदारों को इस वीकेंड पर पर्यटकों की आमद ने बड़ी राहत दी है। सोलन, कसौली, चायल, शिमला, मनाली और आसपास के लगभग सभी होटल पूरी तरह पैक हो गए। कारोबारियों का कहना है कि लंबे समय बाद ऐसा वीकेंड देखने को मिला है, जिससे उनका बिजनेस एक बार फिर पटरी पर लौट आया है। राजस्थान में अजमेर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस कर रह गया। ये देखते ही मौके पर मौजूद लोग और जीआरपी जवान यात्री को बचाने के लिए दौड़ पड़े। अजमेर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दुरई टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय बैलेंस बिगड़ने से एक यात्री के साथ ये घटना हुई। गनीमत ये रही कि पहले एक युवक ने यात्री का हाथ पकड़ लिया और फिर जीआरपी कांस्टेबल राम अवतार और बाकी लोगों की मदद से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे यात्री को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हरिद्वार में एक हाथी ने सड़क से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। श्यामपुर इलाके में एक जंगली हाथी सड़क किनारे खड़ा था, जिसे देखकर लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी और उसका वीडियो बनाने लगे। इसी बीच नजीबाबाद की ओर जाने वाले रास्ते से एक थार सवार भी वीडियो बनाने के मकसद से जैसे ही नीचे उतरा, हाथी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। ये देखकर थार सवार तो भाग गया, लेकिन हाथी उसकी गाड़ी को पलटने की कोशिश करने लगा। हालांकि बाद में हाथी गाड़ी को छोड़कर सड़क पार करते हुए दूसरी ओर जंगल की ओर चला गया। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
3: और अब बात करते हैं एशियन गेम्स के चैंपियंस की। एशियन गेम्स में कामयाबी के रंग बिखेर कर घर लौट रहे खिलाड़ियों का फैंस खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और ग्रैंड वेलकम से ये चैंपियंस भी बेहद उत्साहित हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी आई है, जहां पर रेसलर दीपक पुनिया का शानदार स्वागत हुआ। वहीं पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एयरपोर्ट पर पदक वीरों का स्वागत किया और देश के लिए मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों को भरोसा है कि आगे भी ये शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे और फैंस को जश्न मनाने के मौके मिलते रहेंगे।

0: जश्न नहीं, ये कामयाबी का वो उत्सव है जो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बॉक्सिंग और कुश्ती जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण और दूसरे पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। जापान की धरती पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के बाद जब भारतीय विजेता वतन लौटे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप, फूलों की बारिश और लहराते तिरंगे के साथ भारत माता की जय की गूंज, अपनी कड़ी मेहनत से देश को स्वर्णिम सफलता दिलाने वाले इन एथलीट्स का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा। परिजन गले लगाकर भावुक हो रहे हैं तो पूरा देश इन नायकों पर गर्व महसूस कर रहा है। एशियन गेम्स में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे।
1: लवलीना, बर्थडे पे गोल्ड, 2023 में जो सिल्वर मेडल था वो गोल्ड में चेंज हुआ, एंड आपने मैरी कॉम और परवीन उनके साथ अब एक इलस्ट्रियस लिस्ट में हो एशियन गेम्स के बॉक्सिंग में, तो ये क्या सबसे एक ड्रीम टूर्नामेंट रहा है आपके लिए?
2: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन, सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा। और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था। और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार। और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई।
1: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
2: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है। इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है। एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है। और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं।
0: लवलीना से लेकर प्रवीण हुड्डा और अंकुश पंघाल तक ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। 4 साल पहले जिस एशियन गेम्स में परवीन हुड्डा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने करियर को नई उड़ान दी थी, उसी मेडल से उन्हें बाद में हाथ धोना पड़ा और अब 4 साल बाद वही परवीन आईची नागोया एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे हैं।
1: जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नागोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
3: सो जो लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी, एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापस ले लिया था। तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी, तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे।
1: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
3: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था। और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती, तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी।
1: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती, एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था।
3: नहीं मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की, हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके, बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट।
0: युवा मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 80 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया।
1: कैसा लग रहा है वो मौका जब आप गोल्ड जीते थे, वो पहला ख्याल क्या आया था आपके पास?
4: उस टाइम तो यही ख्याल था कि 10 साल की मेहनत कुछ तो रंग लाई और इसी ओवर के आगे भी करते रहेंगे।
1: अंकुश, क्या संदेश मिला था जब आप एशियाई खेल में आए थे, और क्या संदेश मिला किसी से, आपके परिवार वालों से या कोच से, जब आप गोल्ड मेडल जीत चुके थे?
4: आने से पहले मतलब यही था कि देश के लिए कुछ करना है और अपना 100% देना है, रिजल्ट की वो निकल नहीं, अपना 100% देना, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा, और फिर गोल्ड आने के बाद तो फिर रिजल्ट आ ही गया था।
1: ऐसा क्या हुआ था एशियाई खेल में कि यार आप ऐसे जीत रहे थे, ओपोनेंट्स को आप बहुत बढ़िया तरीके से, वो क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा था कि हाँ मैं गोल्ड जीत सकता हूँ, वो क्या एक मैच था, क्या वो पल था?
4: ये था कि उस टाइम तो दिमाग में सिर्फ यही था कि हाँ जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे, पूरी कंटिन्यू फोकस था, वो रंग ला रही है और उसका रिजल्ट मिला भी।
0: एशिया कप में लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतकर देश को गर्व का एहसास कराने वाले क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचे संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन का शानदार स्वागत हुआ, तो मुंबई एयरपोर्ट में कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे को परिवार ने रिसीव किया। जैसे जैसे खिलाड़ी अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, साथी खिलाड़ियों निक्की प्रधान, दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, तो ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। वहीं हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने डांस भी किया। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया। महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता बल्कि 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
5: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अब एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: स्वागत अभिनंदन का ये पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
6: बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के, ये लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अपने घर चंबा पहुंची एशियन गेम्स के मेडलिस्ट सीमा कुमारी का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए जैसा पूरा शहर उमड़ आया हो, परिवार के लोग बेहद खुश दिखे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी आई जहां रेसलर दीपक पुनिया का शानदार स्वागत हुआ। पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एयरपोर्ट पर पदक वीरों का स्वागत किया। वहीं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देखकर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आए। महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुमकुम मोहोल की वापसी पर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी भी की गई। 17 साल की कुमकुम मोहोर ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। एशियन गेम्स के 20वें पड़ाव पर भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। आईची नागोया 2026 एशियन गेम्स में 21 गोल्ड के साथ इंडियन एथलीट्स ने एक बार फिर अपनी धाक जमाई। भारतीय खिलाड़ियों ने 21 गोल्ड के साथ 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए, जिसके बदौलत पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पर रहा। सुनहरी कामयाबी के इस फहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। क्रिकेट से लेकर हॉकी, कुश्ती, शूटिंग और रेसलिंग तक हर मोर्चे पर भारतीय खिलाड़ियों ने परचम लहराया और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को खुश होने का मौका दिया। उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों की सफलता से देश के युवा खिलाड़ी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का सबक सीखेंगे। महाराष्ट्र की अमरावती से धनंजय साबले के साथ दिल्ली से सिद्धार्थ विश्वनाथन, गुड न्यूज टुडे।
7: प्रोजेक्ट चीता के नाम जुड़ी एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: भारत की पहली स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सर्वावैक को WHO से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी मिल गई है। मतलब WHO ने इस वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित, असरदार और उच्च गुणवत्ता का माना है। इस टीके को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये सर्वाइकल कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी है। इसके लगने के बाद कैंसर की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। देश में इसे सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियानों में शामिल किया गया है। अब WHO से मान्यता मिलने के बाद ये वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंच सकेगी। असम में दशकों बाद समंदर के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नया अध्याय शुरू हुआ। आजादी के बाद यहां पहली बार कार्गो जहाज सेवा शुरू की गई। इस खास मौके पर डिब्रूगढ़ में बने नए IWAI बोगीवेल रिवर पोर्ट से औपचारिक रूप से कार्गो जहाज MV पटकाई को बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया। इस कार्गो शिप से 540 टन मेथनॉल बांग्लादेश भेजा जा रहा है। नदी के रास्ते ये जहाज लगभग 783 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और लगभग 7 दिनों में बांग्लादेश पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे हरी झंडी दिखाई। ये जहाज डिब्रूगढ़ से चलकर ब्रह्मपुत्र नदी और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए बांग्लादेश में ढाका के पंगाउन पोर्ट पहुंचेगा। यूपी के भदोही में चल रहे कारपेट एक्सपो में पहले दिन 32 देशों के 147 विदेशी खरीदार शामिल हुए। इन्होंने कालीन की नई डिजाइन, नई वैरायटी देखी और भविष्य में बिजनेस की संभावनाओं पर भी चर्चा की। हस्तनिर्मित कालीन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय के कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय एक्सपो में, जहां देश के कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, पानीपत, आगरा, कलकत्ता, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही के 223 भारतीय निर्यातकों ने अपने उत्पाद पेश किए हैं, वहीं 65 देशों के 450 बायर्स और उनके प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजकों का मानना है कि इससे भविष्य में 1000 करोड़ का कारोबार पैदा होगा। प्रोजेक्ट चीता के साथ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। कुनू नेशनल पार्क में जन्मे 5 नए नन्हे शावकों के साथ ही भारत में अब चीतों की बोत्सवाना वंशावली की भी शुरुआत हो गई है। असल में मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में भारत में जन्मे 32 महीने की मादा चीता KJP-21 ने 5 शावकों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि इन शावकों के पिता बोत्सवाना से आया नर चीता है। ऐसे में इन शावकों ने भारत की बढ़ती चीता आबादी में एक नई जेनेटिक वंशावली की भी शुरुआत की है। इन 5 शावकों के आने के बाद भारत में चीता की कुल आबादी 60 हो गई है, जिसमें भारत में जन्मे 41 चीते शामिल हैं। राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस सुनीता अग्रवाल फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के, जबकि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तीनों जज अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे। तीनों जजों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत 34 जज हैं।
7: और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की, जिसकी शुरुआत 5 दिन बाद होने जा रही है। ऐसे में नवरात्रि उत्सव के करीब आते ही देश भर में तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। लिहाजा दुर्गा पूजा को लेकर शहर शहर भव्य पूजा पंडाल और देवी दुर्गा की मनोहारी मूर्तियां भी तैयार हो रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, बंगाल से लेकर यूपी और राजस्थान तक दुर्गोत्सव से जुड़ी तैयारियां हर तरफ चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में तैयार हो रही माँ दुर्गा की प्रतिमा 7 समंदर पार इंग्लैंड पहुंच रही है। तो वाराणसी में दुर्गा पूजा के जरिए बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने का संदेश दिया जा रहा है।

0: शक्ति उपासना का पर्व शुरू होने में बस चंद रोज ही बाकी है, लेकिन देश भर में नवरात्र उत्सव का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की काशीपुर राजबाड़ी में तो सदियों पुरानी दुर्गा पूजा की शुरुआत भी हो गई है। आमतौर पर जहां दुर्गा पूजा कुछ दिनों तक चलती है, वहीं काशीपुर राज परिवार में इस पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा से करीब 11 दिन पहले ही हो जाती है। यहां लगातार 16 दिनों तक विधि और परंपरा के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। स्थानीय परंपरा के मुताबिक पुरुलिया के काशीपुर राजबाड़ी की ये पूजा करीब 350 वर्षों से चली आ रही है। इस पूजा का संबंध पंचकूट राज परिवार और राजा नीलमणि सिंहदेव के शासनकाल से जोड़ा जाता है। लंबे समय से चली आ रही राज परिवार की परंपराएं आज भी इस पूजा में देखने को मिलती हैं। वहीं मां दुर्गा के स्वागत के लिए जगह जगह भव्य पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। कहीं थीम आधारित भव्य पंडाल बन रहा है तो कहीं पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर बंगाल के दुर्गापुर से आई है, जहां राम मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस पंडाल को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने अभी से क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के ही पूर्वी बर्धमान में भी दुर्गा उत्सव की तैयारी जोरों पर है। यहाँ के कलाकार तापस पाल पारंपरिक शैली से लेकर नए और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली मूर्तियां बनाते हैं। इस साल इन्हें 20 मूर्तियों के ऑर्डर मिले हैं, जिनमें से एक मूर्ति को इंग्लैंड भेजा जा रहा है। करीब 5 किलो वजनी और 28 इंच ऊंची ये मूर्ति खास पैकेजिंग में इंग्लैंड भेजी जाएगी।
1: बड़ दुर्गा प्रतिमा মাছের মুজি আছে, আপনার খড় আছে, দড়ি আছে, মাটি আছে, যেরকম বড় প্রতিমা সেভাবেই ছোট প্রতিমাটা করা আছে। ছোট প্রতিমাটা এটা 8 দিন প্রায় 8 দিন লেগে যাচ্ছে প্রায়।
0: বঙ্গাল কি তরহ হি দিল্লি কে সিআর পার্ক মে ভি থিম আধারিত পন্ডাল বানায়া জা রাহা হে। इस पूजा पंडाल की खासियत है कि इसे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जूट इंडस्ट्री की थीम पर बनाया जा रहा है।
2: राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में जगह जगह नवरात्र उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। बता दें, दिल्ली के चितरंजन पार्क मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है और यहां नवरात्रों के दौरान भव्य उत्सव मनाया जाता है और मां की खूब आराधना की जाती है। जहां चितरंजन पार्क में कई जगहों पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, उसी में से एक कोऑपरेटिव ग्राउंड में भी भव्य थीम बेस पंडाल बनाया जाता है, जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर इस पूजा को इस वर्ष 51 साल पूरे हो रहे हैं और इस बार इस तरह यहां पर किस तरीके की तैयारी है उसको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जूट के थीम पर यहां पर ये पूरा बनाया जा रहा है और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। और जो कारीगर हैं वो आपका एक काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बांस की डिजाइन वगैरह बना रहे हैं।
0: पूजा समिति के लोगों ने बताया कि उनका फोकस इको फ्रेंडली दुर्गा पंडाल बनाने पर है, इसलिए पंडाल निर्माण में बांस और जूट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
3: जूट का क्या हो रहा है कि आज बंगाल में जूट इंडस्ट्री ग्रेजुअली बहुत डाउन हो गया है, एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया बोलो, मेन तो बंगाल ही होता था। तो इस बार हम लोग सोचा थोड़ा वही एक दिखा है ना कि पुराना जो जूट का है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, यूटिलाइजेशन कैसे हो सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग ये प्लान किया है। सीआर पार्क में एक ही पैंडल है जिसमें मूर्ति हम लोग पैंडल में बनाते हैं।
4: अच्छा, पैंडल
3: एकदम डे वन से। हर जगह पे क्या होता है कि मूर्ति कोई दूसरी जगह से बनते हैं, उधर से आते हैं, हम लोग उधर पे खुद बनाते हैं।
0: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोई मूर्तियों की फिनिशिंग में लगा है और कोई फिनिशिंग के बाद प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटा है। काशी के एक मूर्तिकार ने इस बार मां की आराधना के माध्यम से मोबाइल के अनावश्यक इस्तेमाल पर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है और इसके लिए मूर्तिकार ने महिषासुर नहीं बल्कि मोबाइलासुर नाम के राक्षस की आकृति बनाई है। ये प्रतिमा जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल में स्थापित होगी।
5: ये तो इस बार का ये जो थीम है, जो बच्चे आजकल के बच्चे आपके घर में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाना खाने के लिए पढ़ने के लिए हमेशा जो कि मोबाइल के समझ लीजिए कि हैबिचुअल हो गए हैं, उनसे उनको बच्चों को दूर करने के लिए ये समझ लीजिए विजुअलाइज दिखाने के लिए ये विजुअल कि देखिए बच्चों ये गलत चीज़ है, ये समाज में एक समझ लीजिए दर्शन देने के लिए बच्चों के लिए ऐसा बनाया जा रहा है।
0: उधर महाराष्ट्र के अकोला में भी पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अकोला के कुम्भारवाड़ा में मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहां 1 फीट से लेकर 25 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं।
4: शारदीय नवरात्र उत्सव को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर पंडाल में देवी माँ की मूर्ति विराजमान करनी है, उसकी घट स्थापना करनी है। उससे पहले कलाकार जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सुंदर 3.5 शक्तिपीठों में एक रही नांदेड़ जिले की रेणुका माँ, जो इसकी आप देख रहे हो कि ये है माँ तुर्जा भवानी की प्रतिमा, जिसको अभी कलाकार जो है वो रंगोपन कर रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले हर कलाकार जो है हर प्रतिमा को आखिरी रूप देने में लगा हुआ है। और सबसे अहम बात ये है कि देखिए ये माता रेणुका की ये सुंदर ये प्रतिमा है और इसको अभी कुछ देर पहले ही रंगोपन किया है। तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हो कि कलाकार लगभग जो है आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं।
0: मूर्तिकारों का कहना है कि गणपति स्थापना के बाद ही वो माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण और सजावट में जुट जाते हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियां दी जा सकें।
4: ये कलाकार जो है माता रानी के हाथ में मेहंदी निकाल रहे हैं, उन्हें डिजाइनिंग कर रहे हैं। किस तरह से देखिए माता रानी की ये सुंदर सुबह मूर्ति जो है वो पहला कलरिंग का हाथ इस पर चढ़ चुका है। अब इस पर जो है बारीकी नक्शी काम करने का काम ये दोनों कलाकार लड़कियां करते नजर आ रहे हैं। माँ का ये सुंदर रूप जो है वो आप देख सकते हो कि माँ आदिशक्ति का ये सुंदर रूप, और इस रूप को और श्रृंगार करने के लिए उस पर नक्शी काम करने के लिए ये कलाकार हर संभव कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
6: मेहंदी लगा रहे हैं और हम उनको श्रृंगार करते हैं, हम उनका छोटे छोटे काम करते
4: हैं। और क्या-क्या करते हो?
6: पेंटिंग करते, श्रृंगार करते, उनको उनका तैयार करते रहते हैं उनको।
4: और पूरा श्रृंगार भी इंटीमेट ज्वेलरी से करते हो?
6: हाँ।
4: उसमें क्या क्या होता है?
6: नहीं, उनके कान के झुमके होते हैं, गले में नेकलेस होता है, माथे में बिंदिया होती है, माहौल होता है, पायल होती है।
4: कितनी खुशी मिलती है? आप तो बहुत ही हंसकर ये बात कर रही
6: हो। बहुत खुशी मिलती है, बहुत मतलब मन से ऐसा लगता करना चाहिए।
0: जाहिर है हर प्रतिमा के पीछे कलाकारों की महीनों की मेहनत है और हर प्रतिमा के साथ भक्तों की आस्था जुड़ी है। लिहाजा माँ दुर्गा के स्वागत के लिए तैयार हो रही ये प्रतिमाएं सिर्फ मिट्टी और रंगों से बनी आकृतियां भर रही हैं, बल्कि कलाकारों की मेहनत, भक्ति और श्रद्धा की भी प्रतीक हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से अनिल गिरी, वर्धमान से सुजाता मेहरा, वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता और अकोला से धनंजय साबले के साथ दिल्ली से आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज पेपर पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सोमवार 5 अक्टूबर को सेंसेक्स 473 अंक चढ़कर 72,382 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 134 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 22,556 पर पहुंच गया। सोमवार 5 अक्टूबर को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें स्थिर रहीं। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत सभी टैक्स मिलाकर 1,49,800 रुपये पर स्थिर रही, तो वहीं चांदी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,27,000 रुपये पर स्थिर रही। तेल की ऊंची कीमतों और लगातार विदेशी फंड की निकासी के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। सोमवार 5 अक्टूबर को इसमें 5 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 96.30 रुपए हो गई।
7: न्यूज पक में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय

0: से पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: बात तो सही है, उम्र का स्वभाव से क्या लेना देना। जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा बदला बदला सा जरूर नजर आता है, लेकिन मौका मिले तो फिर अपनी रॉ में आते देर नहीं लगती। इन बुजुर्ग महिलाओं को ही देखिए, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, तो कैसे अपने पुराने रंग में लौट आई हैं। दोस्त, बेफिक्री और दुनिया जहान की बातें, हंसती मुस्कुराती दोस्ती निभाते इन बुजुर्ग महिलाओं का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वार पलटवार, आत्मरक्षा सब है कर्तव्य, और सबसे दिलचस्प है लाठियों पर इन नन्हे खिलाड़ियों का संतुलन। नन्हे नन्हे हाथों में लाठियां ऐसे घूम रही हैं मानो खास संगीत पर थिरक रही हैं। छोटी हैं पर आत्मविश्वास देखिए इनका। खेल चाहे कितना भी आक्रामक नजर आए, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, मानो जीत पर पूरा भरोसा है। परछाइयां भी बोल सकती हैं, पर इसके लिए भी हुनर चाहिए जैसा इनके पास है। देखिए कैसे उंगलियों की हरकतों से दीवार पर एक कहानी कह रही है, एक नन्ही डांसर की कहानी। पर्दे पर किरदार भले ही उंगलियों की परछाइयों से उकेरे गए हैं, पर इनकी कहानी लिखने और उसे दीवार पर सजीव करने के लिए भी तो खास हुनर चाहिए। वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। इंसान हो या जानवर, प्रेम फर्क मिटा देता है। देखते हैं तो सिर्फ भाव जो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देते हैं, चाह जगाते हैं। देखिए इस वीडियो में, खुद साइकिल पर है ये शख्स और डॉगी को कंधे पर ऐसे बिठा रखा है मानो कोई छोटा बच्चा हो। डॉगी के साथ इस शख्स की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आ रही है।

घर में माँ आ रही हैं। हर तरफ ढाक और शंख ध्वनि की गूंज है। पारिजात के फूल खिलने लगे हैं। माँ दुर्गा आ गए हैं। इस गीत में शरद ऋतु के आगमन की शीतल बयार भी है और माँ दुर्गा के आगमन की पावन आहट भी। जितना प्यारा ये गीत है वैसी ही मनोहारी प्रस्तुति स्कूली छात्राओं की भी है जो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रही है।

न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा में परोसे जाने वाले खाने को लेकर उठाए गए एक बड़े कदम की। ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा सहित सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठानों को अब ये ग्राहकों को बताना होगा कि उनके यहाँ किस तेल से खाना बनाया जा रहा है। होटल और रेस्टोरेंट को खाने के मेन्यू में ही इस्तेमाल किए जाने वाले कुकिंग ऑयल की जानकारी देनी होगी। दुकानों पर FSSAI लाइसेंस लगाना जरूरी होगा, साथ ही फूड सेफ्टी कनेक्ट का QR कोड भी लगाना होगा, ताकि ग्राहक खाने से जुड़ी शिकायत आसानी से कर सके। उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे के लिए ये नए निर्देश FSDA यानी कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है। विभाग के अनुसार केंद्रीय लाइसेंस वाले और 10 या फिर अधिक प्रतिष्ठान संचालित करने वाले कारोबारियों के लिए मेन्यू कार्ड अनिवार्य होगा। मेन्यू में शाकाहारी और मांसाहारी खाने की पहचान के साथ उसमें डाले गए रंग, मिठास और एलर्जी करने वाली चीजों की जानकारी भी देनी होगी। दुकानों और होटल्स में खाने पीने की चीजों में प्रतिबंधित केमिकल और लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होगा। होटल में स्टोर करके रखे जाने वाले खाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों को लाते, ले जाते और रखते समय सही तापमान बनाए रखना होगा। नए निर्देशों में कहा गया है कि कौन सा खाना कितनी देर और किस तापमान में रखा गया, इसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। फ्रोजन यानी कि जमी हुई चीजों को -18 डिग्री सेल्सियस और ठंडी चीजों को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना होगा। पके हुए खाने को दोबारा परोसने से पहले कम से कम 4 मिनट तक 74 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना जरूरी होगा। खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। रसोइयों के लिए हेयरनेट, दस्ताने और एप्रन पहनना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में होटल और रेस्टोरेंट में बनने वाले खाने को लेकर उठाए गए नए कदम को लेकर प्रयागराज में हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।

0: प्रदेश खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग ने अब नए नियम लागू किए हैं, जिसमें अब होटल और रेस्टोरेंट वालों को बताना होगा वे कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस वक्त सिविल लाइन के एक रेस्टोरेंट पे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां खाना खाने के लिए आते हैं और तमाम लोग यहां आकर के अपने परिवार के साथ आते हैं। और अब इस नए नियम को लेकर के जो ग्राहक हैं क्या कहते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अब यहाँ पर नए नियम उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग ने लगाए हैं, जिसमें अब आपको यहाँ जो रेस्टोरेंट वालों को बताना होगा कि कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसी पहल?
1: मतलब यूपीए सरकार ने बहुत अच्छी पहल ये किया है, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पे, कम से कम आप शाम को देखेंगे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे भोजन करने के लिए। ये काफ़ी फेमस है ये भरीस भोजनालय जो है, और ये भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल किया है कि जो कि आप उत्तर प्रदेश सरकार ने कि आप जो भी घी यूज कर रहे हैं, जो भी आप सामग्री यूज कर रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि हाँ ये हम सामग्री यूज कर रहे हैं, ताकि इसमें जो लोग हैं वो जागरूक हों, उनको पता रहे कि हम ये सारी चीजें इस चीज को खा रहे हैं, उनके सेहत भी ठीक रहे, स्वस्थ रहें, ताकि उनको मतलब ये सारी चीजें अच्छी रहें।
0: ये बिल्कुल यहाँ पर खाने की थाली सज रही है और तमाम सब्जियां हैं जो तेल या रिफाइंड से बनाई जाती है। ये बताइए कितनी सेहत का ख्याल अब रहेगा, क्योंकि अब नए नियम लग गए हैं, कहना है कि अब रेस्टोरेंट वालों को बताना होगा कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें।
2: जी, गवर्नमेंट की इस पहल को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया, ये बताने से अच्छा मैंने आपको बताया कि एक बार लिख के ही टांग दें तो ना आपको दिक्कत होगी ना हमें, ना जनता को, क्योंकि जनता आएगी खा के चली जाएगी, पूछेगी नहीं किस तेल ने बनाया, बस आप खाने के बाद जो बवाल करती फिर बवाल नहीं करेगी कि हाँ तेल अच्छा है, मेरा सब आइटम अच्छा है, ठीक है, सेहत भी ठीक रहेगी। सरकार की योजना को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ।
0: अच्छा, QR कोड भी जनरेट करना होगा, जिसमें कि बता अगर कोई शिकायत हो तो उसमें आप शिकायत कर सकते हैं।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, इनको रेटिंग मिल जाएगी और इनका भी फायदा, हमारा भी फायदा, सबका फायदा होगा इसमें, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और इनको भी पता चलेगा कि इनके खाने की क्वालिटी क्या है। और सिर्फ हम आप नहीं जान पाएंगे, वो QR कोड तो बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग भी जान पाएंगे कि हमारे प्रयागराज में किस तरीके का खाना मिलता है।
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट में लोग आए हैं खाना खाने के लिए, अब यहाँ पर इनकी सेहत भी ठीक रहेगी, क्योंकि अब जो तेल या रिफाइंड है किस कंपनी का है उनको होटल रेस्टोरेंट वालों को बताना पड़ेगा। आप यहाँ खाना खाने के लिए अक्सर आते हैं, अब ये नए नियम के अनुसार इनको बताना होगा कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, तो कितनी सेहत अब ठीक रहेगी?
3: नहीं, बहुत अच्छी पहल है और हर एक ग्राहक को मालूम होना चाहिए कौन सी तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंट हो अच्छी तरीके से, राज्य सरकार भी इसको देखती रहे, और मैं चाहता हूँ कि ये देखना क्या है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज, इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था ये सब चीज़ें। अब डायरेक्ट जो ऐप इन्होंने लगाया है, जिसको आप क्या बोल रहे थे अभी,
4: QR कोड
3: के माध्यम से जनता अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकती है, ये सबसे बड़ी बात।
0: यहाँ पर अब रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब इस रेस्टोरेंट में खाना बनता है, किस क्वालिटी का रहता है, किस कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं आप?
5: हम लोग रिफाइंड परचून का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, या जो भी होता है ब्रांडेड ही करते हैं। जी, भाई घर में भी यही इस्तेमाल हो रहा है, परचून है, सोयम है, यही सब है। अच्छा, लोकल इस्तेमाल नहीं करते, लोकल
0: को काफी सालों से इस बिजनेस में है, अक्सर लोग आपके यहाँ खाना खाने आते हैं, तो आपको बताना भी होगा कि कौन सा तेल इस्तेमाल।
5: तो बताएंगे, हम बताएंगे क्या, टीन जो लाते हैं रिफाइंड सामने रख देंगे, भैया ये वाला रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड का टीन आता है, उस पर लिखा भी रहता है ब्रांडेड है, वो लोग देखेंगे, हाँ कहेंगे यार यही तो हम लोग घर में भी खाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रहेगी।
0: अच्छा, QR कोड भी जनरेट करना होगा, जिसमें लोग शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं।
5: करें भैया, और क्या, शिकायत का मौका ही नहीं मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं अब इस जो पहल है इसकी तारीफ कर रहे हैं, इनका कहना है कि अब किस तेल में खाना बन रहा है, किस रिफाइंड में ये खाना बन रहा है, उनको जानकारी होगी और अपनी सेहत के साथ वो अब खिलवाड़ होते नहीं देखना चाहते। फिलहाल जो ये पहल की गई है खाद्य विभाग की तरफ से, इसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
6: अजय देवगन के दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट शो, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले फिल्मी मोड़ पर।
7: अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन का जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। पहले दिन ये फिल्म 62 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग फिल्म बन गई। इसके साथ ही अजय देवगन को अपने करियर की सबसे बेहतरीन ओपनिंग भी मिली। शनिवार को भी दृश्यम 3 ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया और 2 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ के पास पहुंच गया। रविवार को 61 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ फिल्म का 3 दिनों का नेट कलेक्शन 176 करोड़ रुपए के पार कर चुका है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 272 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका है। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे मराठी सिनेमा में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। बतौर प्रेजेंटर उनकी पहली मराठी फिल्म 16 का ट्रेलर रिलीज भी हो गया है, जो एक 13 वर्षीय लड़के के इर्द गिर्द बनी गई है। इस फैमिली ड्रामा के ट्रेलर में पर्शिया नाम का लड़का है, जिसके मराठी परंपरा के मुताबिक 13 साल होने पर पारंपरिक उत्सव 16 मनाया जाता है, जिसे लड़के का बचपन से बड़े होने की तरफ पहला कदम माना जाता है। ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे पारिवारिक संकट की वजह से लड़कों को रातों रात समझदार होना पड़ता है। इस फिल्म को सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल ने सचिन श्रीवास्तव, रत्ना श्रीवास्तव और कविता बागवान के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि डायरेक्शन सैकत बागवान का है। ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
4: क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है?
7: हॉरर थ्रिलर 418 का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। मैत्री मूवी मेकर्स की इस फिल्म को मशहूर फिल्म मेकर KGF फेम प्रशांत नील पेश कर रहे हैं। फिल्म के कहानी और निर्देशन की जिम्मेदारी कीर्तन नगद गौड़ा ने संभाली है। इस फिल्म में चैत्रा आचार, सूर्या राज, चरण लक्काराजू, प्रीति पगडाला और शशांक पाटिल अहम भूमिकाओं में हैं। प्रोड्यूसर नवीन येरनेनी और वाई रविशंकर की ये फिल्म 23 अक्टूबर को तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और तमिल भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
8: हमने ये बिल्डिंग खोल के गलती कर दी है सर, वो रूम तो बंद है ना, रूमर्स रोकने के लिए उतना काफी है।
7: जूनियर NTR और KGF फेम प्रशांत नील के फिल्म ड्रैगन अपने तय समय पर ही रिलीज होगी। मैत्री मूवी मेकर्स के निर्माता रविशंकर येलाम चिली ने देरी की अफवाह को गलत करार दिया है, यानी फिल्म ड्रैगन अपने पहले से तय तारीख 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जूनियर NTR की हाथ की चोट की सर्जरी के बाद फिल्म के शेड्यूल को लेकर अटकलें तेज हो गई थी और रिलीज डेट को लेकर भी कई तरह की चर्चा चल रही थी।
9: कैप्टन स्मिथ मछा, इस नाम का देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डंका बज रहा है। वो कैप्टन जिसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ का ऐसा परिचय दिया जिसके कायल दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हो चुकी। भारत के इस जांबाज ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हवा में जबरदस्त हिम्मत दिखाई। खुद घायल होकर विमान के को पायलट की साजिश को नाकाम करने वाले कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने के लिए जगह जगह प्रार्थना की जा रही है।

0: ये प्रार्थना उस जांबाज के लिए की जा रही है जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए 174 लोगों की जान बचाई। पूजा पाठ हवन अनुष्ठान का ये सिलसिला उस बहादुर कैप्टन स्मिथ के सलामती के लिए चल रहा है जिसने बुरी तरह घायल होने पर भी अदम्य साहस का परिचय दिया। देश ही नहीं पूरी दुनिया उस वीरता को सलाम कर रहा है जो कैप्टन स्मिथ मछार ने हवा में दिखाई। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। ये तीन तस्वीरें मुंबई, आसनसोल और अबू धाबी की हैं, जहां कैप्टन स्मिथ की सलामती के लिए लोग प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। देश दुनिया में इससे पहले जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हर कोई बस यही कामना कर रहा है कि स्मिथ जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मुंबई में तिलक नगर में जहां कैप्टन स्मिथ का घर है, वहां रहने वाले लोगों ने उनके लिए विशेष प्रार्थना की। पूजा पाठ के अलावा हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, ताकि स्मिथ जल्द से जल्द स्वस्थ होकर उनके बीच आ सकें और वो उनके दिखाए गए शौर्य को लेकर उनका जबरदस्त स्वागत कर सकें।
1: ये कैप्टन स्मिथ हमारे तिलक नगर के रहवासी है, हमारे यहाँ जो स्वस्तिक टॉवर से वहाँ पर वो रहते हैं, तो इस कॉलोनी के वो बेटा है, तो उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो और फिर से एक बार वो हमारे कॉलोनी में आए, हम उनका इंतजार करें। एक भव्य दिव्य स्वागत पूरे तिलक नगर वासियों की तरफ से हम उनका करना चाहते हैं।
2: पूरा तिलक नगर आएंगे तो मैं पूरे पूछे मतलब इतना उमंग रहेंगे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते। जिस दिन आया उसी दिन दिवाली।
0: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने को लेकर विशेष अनुष्ठान किए गए। धेमोमेन कोलियारी स्थित शिव मंदिर परिसर में विशेष हवन यज्ञ और महामृत्युंजय जाप का आयोजन, लोगों ने स्मिथ के दीर्घायु होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में स्थित बीएपीएस मंदिर के स्वामी और श्रद्धालु सभी ने मिलकर कैप्टन स्मिथ मछार के लिए प्रार्थना की। हर कोई उनके अद्भुत साहस और बहादुरी का सम्मान कर रहा है। इन सब के बीच यूएई में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने कैप्टन स्मिथ के तेजी से ठीक होने की जानकारी दी है, साथ ही ये भी बताया है कि उनका मनोबल ऊंचा है। कैप्टन स्मिथ का इलाज संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक अस्पताल में चल रहा है। 30 सितंबर को फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। कॉकपिट में मौजूद विमान के को पायलट के हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद भी कैप्टन स्मिथ ने हिम्मत गजब की दिखाई, जिसके चलते विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई और विमान में सवार 174 लोगों की जान बची। भारत के इस कैप्टन की दिखाई गई वीरता की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। कैप्टन स्मिथ के अदम्य साहस के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनकी खूब तारीफ की और उन्हें हीरो करार दिया। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने तो कैप्टन स्मिथ से बातचीत भी की, उनका हाल जाना और पूरी घटना के बारे में समझा। नेतन्याहू कैप्टन स्मिथ के इस कदर घायल हो गए हैं कि उन्होंने उन्हें इसराइल आने का न्योता तक दिया है।
3: कैप्टन, आई वांट टू इनवाइट यू एंड माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लाइट अ सेलिब्रेटरी फ्लेम ऑन आवर नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे। यू आर ट्रू हीरो ऑफ द ब्रेव पीपल्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल एंड यू आर अ हीरो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आई विश यू अ वेरी स्पीडी एंड कंप्लीट रिकवरी।
0: बहरहाल हर किसी की यही इच्छा है कि कैप्टन स्मिथ जल्द स्वस्थ होकर उनके बीच आए, इसके लिए प्रार्थना का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: स्पेन के तारागोना में दिखा महाराष्ट्र के दही हांडी उत्सव जैसा नजारा। इसीलिए आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: चिकित्सा के क्षेत्र में साल 2026 का नोबेल पुरस्कार कार्ल डिसेरोथ, पीच हिगमन और जॉर्ज नागिल को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हें ये सम्मान ऑप्टोजेनेटिक्स और लाइट गेटेड आयन चैनलों की खोज के लिए दिया गया है। आसान भाषा में कह सकते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने दिमाग का रिमोट कंट्रोल ढूंढ निकाला है। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि यादें, भावनाएं और व्यवहार कैसे बनते हैं। कार्ल डिसेरोथ अमेरिका से हैं, तो वहीं पीच हिगमन और जॉर्ज नागिल का संबंध जर्मनी से है। महाराष्ट्र के दही हांडी जैसे उत्सव का नजारा स्पेन के तारागोना शहर में भी देखने को मिला। यहाँ के टाराको एरिना में हजारों लोग दुनिया के सबसे बड़े इंसानी मीनार यानी ह्यूमन टावर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ इसे कास्टेल्स कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में कैटालोनिया के 12 प्रमुख कास्टेलर समूहों ने हिस्सा लिया। इस अनूठी प्रतियोगिता में दर्जनों कास्टेलर मिलकर आधार बनाते थे, जबकि दूसरे लोग ऊपर की ओर चढ़ते नजर आए। जब रंग बिरंगी टीमें अपनी मीनारें पूरी करती तो दर्शक उत्साह से तालियां बजाते थे और जब कुछ मीनारें गिर जाती तो वे हैरान रह जाते। आपको बता दें कि कास्टेल्स को साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में शामिल किया गया है।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: रांची में भारत वेस्टइंडीज T20 मुकाबले का जबरदस्त क्रेज, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: एशियन गेम्स से गोल्ड मेडल जीतकर लौटी भारतीय पुरुष हॉकी टीम का दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। जापान में हुए एशियन गेम्स के हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर न सिर्फ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया बल्कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान कप्तान, कोच और खिलाड़ियों सभी ने एशियन गेम्स में जीत को देश के लिए गर्व का पल बताया। तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20वें एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया। यहां मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया और फिर मंत्री आधव अर्जुन खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई देते नजर आए। वहीं एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय धाविका विद्या रामराज को तमिलनाडु के मंत्री के विघ्नेश ने भी विशेष रूप से सम्मानित किया। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाले भारत वेस्ट इंडीज T20 मुकाबले को देखने के लिए गजब का क्रेज नजर आ रहा है। रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत वेस्ट इंडीज के बीच मैच होना है। इस मैच के टिकट के लिए काउंटर खुलते ही फैंस की लंबी कतार लग गई। टिकट पाने वालों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी जबकि लाइन में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान की पत्नी सोफी शाइन भी उनके साथ नजर आए। दोनों बालाजी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों पारंपरिक परिधान में दिखे। दोनों यहां सुप्रभातम सेवा में शामिल हुए।
1: इसी के साथ न्यूज़पत में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: चमोली में माड़ा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण, झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डेसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन वेबवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज। इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं धाम पर बेहिसाब भक्ति की। अभी जो वीकेंड गुजरा है वो इस मायने में खास बन गया है कि कैंची धाम पर श्रद्धा का नया रिकॉर्ड बन चुका है। शुक्रवार से लेकर रविवार तक की छुट्टियों में बाबा नीब करौरी के धाम पर दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं और हालात ऐसे हो गए कि हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई और मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नैनीताल में तस्वीर कुछ ऐसी रही कि होटल्स नहीं मिलने की वजह से लोग सड़कों पर टहलते हुए नजर आए। भक्ति और श्रद्धा की ऐसी तस्वीरें देश में धार्मिक पर्यटन के लिए बढ़ते क्रेज को दर्शाती हैं। बड़ी तादाद में लोग, जिसमें युवा पीढ़ी भी शुमार है, अब छुट्टियों में धार्मिक जगहों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में ही केदारनाथ और अगर हम देखें बद्रीनाथ में भी दर्शन करने के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज आपको इन दोनों जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कैंची धाम से, जहां पर वीकेंड पर भक्तों ने नया इतिहास रच दिया। अंदाजा है कि शनिवार को कुछ ही घंटे में करीब 28,000 लोगों ने मत्था टेका। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी तादाद की वजह लंबी वीकेंड भी था, लेकिन आमतौर पर पिछले कई महीनों से बाबा नीब करौरी के धाम पर ऐसी ही भीड़ देखने को मिल रही है। एक तो कैंची धाम के प्रति लोगों में गहरी आस्था और दूसरा ये कि देश में धार्मिक पर्यटन का चलन अब बढ़ रहा है। चलिए आपको नैनीताल की भारी भीड़ और कैंची धाम में आस्था का जनसैलाब दिखाते हैं।
8: बहुत होकर नहीं मिला
9: पहली बार ऐसा हो रहा है
10: उत्तराखंड में।
11: हर बार होटल,
12: हर बार मिलता है होटल।
13: हम नैनीताल में रात में वॉक कर रहे हैं
14: और हमें होटल
13: और हमें होटल नहीं मिल रहे, कहीं
15: तो भी मजा आ रहा है।
14: होटल का प्राइस 12,000 बोल रहे हैं।
13: रात के 1 बज गए बट हम ऐसी धूप में जा रहे हैं। यहाँ पे
16: जाने वाले भी हैरान हैं, रहने वाले भी हैरान। ऐसा तो कभी नहीं होता कि नैनीताल आए लोगों को रात यूं सड़क पर गुजारनी पड़े, बस अड्डे पर चादर बिछाकर सोना पड़े।

0: और ये तो हद ही हो गई। बच्चों को सुलाने के लिए कार की पिछली सीट को फोल्ड कर उसे बेड बनाना पड़ा। ये तो रात की बात है, सुबह के नजारे का क्या कहना। नैनीताल से आगे कैंची धाम के रास्ते पर ठहरी हुई गाड़ियां, सरकता ट्रैफिक जैसे धीमी गति का समाचार। बमुश्किल एक या दो घंटे की दूरी पर 10-11 घंटों का इंतजार, और इस इंतजार के बाद धाम पर बे इंतहा भीड़, श्रद्धा का ऐसा सैलाब कि मंदिर प्रबंधन भी हैरान परेशान। मंदिर के मुख्य गेट से हाईवे के दोनों ओर लंबी कतार, हजारों भक्तों की भीड़, जयकारों से गूंजती वादी, भक्ति से सराबोर पहाड़। वीकेंड पर कैंची धाम में भीड़ भाड़ कोई नई बात नहीं, पर ऐसा जनसैलाब। शनिवार की कहानी सुनिए, करीब 6 बजे महाआरती के बाद मंदिर के कपाट खुले और 11 बजे तक करीब 28,000 लोगों ने बाबा के दर पर माथा टेका और श्रद्धालुओं की संख्या का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। अगले दिन यानी रविवार को भी यही कहानी दोहराई गई। श्रद्धालुओं को संभालने के लिए पुलिस के अलावा निजी कंपनी के सुरक्षा कर्मी जुटे और किसी तरह लोगों की आवाजाही मुमकिन हुई। बेशक इस वीकेंड में एक छुट्टी एक्स्ट्रा थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कैंची धाम पर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि बाबा नीप करौरी से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है, उनसे जुड़े चमत्कारों की कहानियों में लोगों को विश्वास है। तभी तो न सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर हिस्से से लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार पहले कैंची धाम में साल भर में औसतन 8 लाख श्रद्धालु आते थे, पर अब ये आंकड़ा बढ़कर करीब 24 लाख तक पहुंच गया है। सामान्य दिनों में रोजाना लगभग 6,000 भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन छुट्टियों और वीकेंड पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 20,000 से ज्यादा हो चुकी है। कुछ साल पहले तक कैंची धाम की लोकप्रियता आसपास के इलाकों में थी, पर अब ये देश और दुनिया में आध्यात्मिक पर्यटन के बड़े केंद्रों में शामिल हो चुका है। हाल के वर्षों में विराट कोहली समेत कई चर्चित हस्तियों के कैंची धाम पहुंचने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है, और खास तौर पर युवाओं में बाबा नीप करौरी को लेकर आकर्षण बढ़ा है। देखिए तो इस भीड़ में बड़ी तादाद युवाओं की ही नजर आएगी। कोई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार कैंची धाम पहुंचकर बाबा की भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना चाहते हैं। हो सकता है पहली बार आने वाले श्रद्धालु फिल्म हनुमान अंश से भी प्रभावित हुए हों, हालांकि इस फिल्म से पहले भी यहां भीड़ ऐसी ही रही है।
1: बाबा का जो प्रचार प्रसार तो नहीं बोल सकते, ये इनकी कृपा दृष्टि है जो सब लोगों पे बिखर रही है। अगर देखने जाए तो बाबा को किसी भी प्रचार और प्रसार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाबा अपने आप में ही एक प्रचार और प्रसार है। तो उनके लिए किसी के आवागमन मतलब उनको अपने आप में ही एक बोलते है कि हनुमान जी का अंश, ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, वो अपने आप में एक अनुभूति है। जो यहाँ पे आते वही इस चीज को समझ पाते हैं। आस्था श्रद्धा में तो देखिए बस पैदल कोशिश करेंगे, आए हैं काफी दूर तक और काफी दूर तक पैदल जाएंगे, और बाबा का आशीर्वाद है बना रहे, बस वैसी मनोकामना करते हैं अपने आप से और लोगों के लिए भी।
2: अब कुछ भी बोलो मत, जो बाबा का चमत्कार है वही देखो और आगे आने वाली पीढ़ियों भी देखो कि जो अपना सनातन धर्म के अंदर जो चल रहा है उसी बात पे गौर करो तो सबसे बड़ी बात है। जय सियाराम।
0: धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर कैंची धाम की बढ़ती लोकप्रियता इस पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि इससे हल्द्वानी, भवाली, नैनीताल, भीमताल और काला ढूंगी तक पर्यटन में तेजी आई है। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और स्थानीय कारोबारियों की कमाई का जरिया बढ़ा है, क्योंकि दिन ब दिन भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं।
3: काफी टाइम पहले से थी, बट अब जाके बाबा ने मौका दिया है अपने दर्शन करने का, देने का। और हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा रहते हैं। और आस्था तो जैसे अभी मूवी आई है उसके बाद मैंने सुनने को मिला है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ गई है। तो इनका तो हनुमान जी का मतलब अंश ही है, साक्षात्कार हनुमान जी इनके अंदर हैं, थे और रहेंगे जैसे कि सब जानते हैं। और अपने दर्शन देते हैं जो हनुमान जी के, मतलब इनको इतनी मतलब ज्ञान था, इतनी इनको आस्था थी हनुमान जी के अंदर कि खुद ये सारी चीज़ें जानते थे और किसी को लिए भी कुछ भी इनकी हेल्प करते थे। मंदिर के बारे में तो काफी टाइम पहले से पता था, बट अब जाके बाबा ने दर्शन दिए, अब जाके हमें मौका मिला है।
0: लेकिन इस बेहिसाब भीड़ की अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो रहा है।
4: ये सभी लोग कैंची धाम दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इन सभी के दृष्टिगत जो ट्रैफिक प्लान नैनीताल पुलिस का है उसको लागू किया गया है। यहाँ की पार्किंग पूरी तरह से फुल है, जो हमारी ऑल्टरनेट पार्किंग आउटर साइड में है, रूसी वन, रूसी टू, नारायण नगर में, वहाँ से शटल के माध्यम से पर्यटकों को नैनीताल शहर में और आसपास भेजा जा रहा है। इसी तरह से कैंची धाम में भीमताल और भवाली पे गाड़ियाँ रोकने के बाद शटल के माध्यम से उनको कैंची धाम दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। इन सभी स्थानों पे पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और ये बढ़ने पे, संख्या बढ़ने पे काठगोदाम और कालाडूंगी जहाँ से कि नैनीताल और भीमताल के लिए वाहन पहाड़ के लिए चढ़ते हैं, उन जगहों पे भी पिकेट लगाने के बाद ये तय किया गया है कि जिनकी बुकिंग है उन्हीं पर्यटकों को सैटरडे और संडे को प्रवेश दिया जाए, ये व्यवस्था लागू की गई है। साथ में दुपहिया वाहनों पे आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऊपर ना आने दिया जाए, उनको डाइवर्ट किया जाए, वो आने स्थानों की ओर को जाए। उनके कारण भी कैंची धाम में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उन पर भी नियंत्रण किया जा रहा है।
0: रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से न सिर्फ हल्द्वानी से कैंची धाम बल्कि आगे अल्मोड़ा की ओर जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लग रहा है। इसका असर सिर्फ कैंची धाम तक नहीं बल्कि रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी और बागेश्वर जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है। यानी बाबा नीप करौली की भक्त जहां देश भर के लोगों को कुमाऊं की ओर खींच रही है, वहीं सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ रहा है। देखिए कैसे वीकेंड पर 12,000 से ज्यादा सैलानियों के पहुंचने के बाद नैनीताल का सिस्टम चरमरा गया। भवाली से कैंची धाम, गर्म पानी और खैरना की ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि प्रशासन ने शटल सेवा का इंतजाम किया, बावजूद इसके ऐसे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि आस्था के इस सैलाब को संभालने के लिए बड़े प्लान की जरूरत होगी। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आपको बता दें, भक्ति का जनसैलाब सिर्फ कैंची धाम में नजर नहीं आया है बल्कि लंबे वीकेंड और पितृपक्ष के कारण बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से आए भक्तों की भारी भीड़ के चलते मंदिर प्रांगण में दर्शन की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से शाम तक यात्रियों का जो तादाद है वो कम नहीं हो रही। हालांकि दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, फिर भी लोग धैर्य के साथ खड़े नजर आते हैं। तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ की वजह से जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच करीब 7 किलोमीटर के दायरे में चक्का जाम जैसे हालात हो चुके हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जोशीमठ के पेट्रोल पंप के बाद मारवाड़ी तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु और गाड़ियों को संभालने में प्रशासन और मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों के लिए भी हालात चुनौतीपूर्ण इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक तो देखिए लंबा वीकेंड और उस पर पितृपक्ष, यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे इलाकों से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ का रुख किया है और इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा।
6: ट्रैफिक रास्ता मार्ग पर मारवाड़ी में इस समय ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अब ऊपर साइड की गाड़ियां जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, उसके बाद एक घंटे का यहां पे ट्रैफिक प्लान जो है वो आज दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानी का सबब है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ ही देर में गाड़ियों की जो कतार है वो एक बार फिर से विष्णुप्रयाग की तरफ बढ़ती जा रही है। गाड़ियों को यहाँ पे रोक दिया गया है, हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है जाम कब खुलेगा, सड़क कब खुलेगी, उन्हें आगे भेजा जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री है, जो हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्री है, वहीं स्थानीय लोग जो मौजूद है इस यात्रा मार्ग पे, जो यात्रा करके इस समय वापस लौट रहे हैं, वो मार्ग पे फंसे हुए हैं, लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो यहाँ से जोशीमठ का 7 किलोमीटर का जो दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा संकरा होने के कारण ये परेशानी, और मुख्य सीजन में भी इसी तरह की परेशानी देखने को मिला था, लेकिन अभी भी जो 7 किलोमीटर का दायरा है वहाँ ना मलवा उठाया गया है ना सड़कों को चौड़ीकरण किया गया है। ऐसे में जो परेशानी है वो एक बार फिर से अब अंतिम दौर की जो यात्रा चल रही है उसमें देखने को मिल रही है। ऐसे में जो तीर्थयात्री है, स्थानीय लोग हैं, हर कोई इस समय परेशान है, क्योंकि शुक्रवार से शुरू हुआ सिलसिला शनिवार सुबह से ही लगातार जारी है। अभी दोपहर के 12 नहीं बजे हैं, जाम की स्थिति इतनी खतरनाक है कि गाड़ियां एक बार फिर से विष्णुप्रयाग को पार करने वाली हैं। ऐसे में जो ट्रैफिक प्लान है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है।
5: हालांकि देखिए उत्तराखंड में मौसम रुख बदल रहा है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। लेकिन इससे पहले मौसम ठीक होने की वजह से केदारनाथ धाम में आस्था का महासैलाब उमड़ा। तस्वीरें देखिए और घंटों तक लाइन में खड़े होकर शिव भक्तों ने दर्शन का इंतजार किया, अपने बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। अक्टूबर में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए ऐसा जोश देखने लायक है। देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तरह ही गंगोत्री हर्षिल में सैलानियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और हर्षिल घाटी में सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सुक्की से लेकर क्रमकुंड और भैरव घाटी तक लंबा लंबा जाम आपको नजर आएगा। इस साल गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड 8,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अभी भी दर्शन के लिए लोगों में जोश जस का तस है। भारी भीड़ की मुश्किल हो तो है, लेकिन उत्तरकाशी पुलिस और प्रशासन द्वारा जगह जगह वाहनों को बाकायदा रोक रोक कर आगे भेजा जा रहा है, ताकि गंगोत्री धाम और हर्षिल में अव्यवस्था ना फैले। अब बात करते हैं उत्तराखंड के टिहरी में मौजूद बूढ़ा केदार मंदिर की। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब इस इलाके में पर्यटन की संभावना तलाश की जा रही है। खूबसूरत वादियां और झील वाले इस इलाके में ट्रैकिंग की बड़ी संभावना है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ये इलाका भी कैंची धाम की तरह धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन सकता है। रिपोर्ट देखिए।

0: पहाड़ों के साए में खूबसूरत बुग्याल, हरी भरी वादी और पारदर्शी पानी वाली झील। प्रकृति का ऐसा सौंदर्य भला और कहाँ। ट्रैकिंग करनी हो या फिर कुदरत की खूबसूरती में खो जाना हो, सैलानियों को ये जगह शर्तिया पसंद आएगी। ये इलाका है टिहरी का, जहाँ मौजूद है बूढ़ा अमरनाथ, यानी भगवान शिव का वो मंदिर जो धार्मिक तौर पर बड़ा महत्व रखता है और हर साल अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अगर इस धार्मिक वजह के साथ साथ घूमने फिरने और लुत्फ उठाने का मकसद भी मिल जाए तो यकीनन सैलानियों की तादाद यहाँ बढ़ जाएगी। इसलिए टिहरी के बूढ़ा केदार में पर्यटन की नई संभावनाओं की तलाश हो रही है।
1: देहरादून से आ रखे हैं स्पेशली ट्रैकिंग के लिए, जिसमें सबसे मेन था ताना ताल। ताना ताल न सिर्फ ट्रैकिंग के लिए, ये मुझे लग रहा है इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ये सबको ही मोहने वाली है। और जितना जो गवर्नमेंट का प्रयास भी चल रहा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट तो हमेशा से फोकस कर रही है रूरल इकोनॉमी पे।
0: एक संस्था की पहल से स्थानीय लोगों और छात्रों ने इस इलाके में सैर सपाटा किया। दिल्ली, देहरादून और अल्मोड़ा से आए लोगों ने करीब 7 किलोमीटर की ट्रेकिंग की और इस इलाके की खूबसूरती को देखा समझा।
2: आशा और मैं यहाँ चमैला से आ रखी हूँ और ट्रैकिंग बहुत अच्छी थी। जो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी ये भी अच्छी थी। जो भी हमको यहाँ घूमने को मिला ये भी अच्छा था। हम यही चाहते कि दूसरी बार हम फिर यहीं आए।
0: बूढ़ा केदार का इलाका किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन धर्म और आस्था से जुड़ी इस जमीन को पर्यटन के हिसाब से अभी वैसी लोकप्रियता नहीं मिली। आपको बता दें कि भगवान शिव को समर्पित बूढ़ा केदार मंदिर बाल गंगा और धर्म गंगा नदी के जोड़ पर बना है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु की पूजा की थी, इसलिए इसे भगवान विष्णु के तीर्थ स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मान्यता ये भी है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव की तलाश में निकले थे तब यहाँ भगवान शिव वृद्ध स्वरूप में दिखाई दिए थे। पांडवों ने यहाँ प्राचीन मंदिर की नींव रखी थी। मंदिर का फिर से निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया और इसका जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके शिवलिंग में 5 पांडवों समेत द्रौपदी और शिव पार्वती के चित्र बने हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के गुरुकुल में पुराने धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, जिनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पर अब इस मंदिर के साथ ही प्राकृतिक स्थलों को भी दुनिया के सामने लाने की कोशिश है। असल में मंदिर के आसपास कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जैसे महासर ताल, सहस्र ताल, मंझाड़ा ताल, जरल ताल और बाल खेलने आश्रम।
3: देखिए, सरकार से हम ये पर्यटन की दृष्टि से इसको मांग करते हैं कि भाई हमारे डेवलप हो जाए, क्षेत्र डेवलप करें और यहाँ होम स्टे की व्यवस्थाएं कर के और इसका प्रचार प्रसार हो और इसको पर्यटन के मानचित्र में दर्शाया जाए, जिससे कि दूर दूर के पर्यटकों को ऑनलाइन के माध्यम से पता चले कि यह भी एक रमणीक पर्यटन स्थल है।
0: घने जंगल, पहाड़ी रास्ते, खूबसूरत बुग्याल और तालू का मनमोहक नजारा इस इलाके को खास बनाता है। फिर भी पर्यटन के बड़े मानचित्र पर इसकी जगह नहीं बन पाई है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने इस क्षेत्र को विकसित करने और ट्रेकिंग रूट में शामिल करने की पहल की है। प्रशासन की कोशिश है कि इस इलाके में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और देश भर से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पूजा पाठ के साथ घूमने फिरने के लिए आएं।

जराल ताल, मंजियारा ताल और काना ताल क्षेत्र की ये खूबसूरती पर्यटन के लिहाज से बेजोड़ है। और अगर सड़क के साथ ठहरने जैसी जरूरी सुविधाएं विकसित होती हैं, तो टिहरी का बूढ़ा केदार भी कैंची धाम की तरह सैलानियों की पसंद बन सकता है। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं को दिया जा रहा है निर्माण। झांसी से लेकर अमरावती तक मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डिसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागिल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वावैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: बंगाल की मिट्टी से अमरावती में साकार हो रही है मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं, प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। नवरात्रि उत्सव से करीब 3 महीने पहले ही प्रतिमाएं बनाने वाले कारीगर यहां आकर कर रहे हैं काम। बंगाल की पारंपरिक शैली में तैयार की जा रही इन प्रतिमाओं में मां दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप नजर आ रहा है। प्रतिमाओं के बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से ही मिट्टी और रास सजावट करने सामान मंगाया जा रहा है। मिट्टी से बनी ये प्रतिमाएं न सिर्फ परंपरा और कला का संगम है बल्कि पर्यावरण का प्रति जागरूकता का भी संदेश देती है। नवरात्रि से पहले झांसी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं शिल्पकार अब्दुल खलील। अपने हाथों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं कर रहे हैं तैयार, अपने पिता की विरासत को बढ़ा रहे हैं आगे। अब्दुल खलील का परिवार पिछले 45 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने में कर रहा है काम। दिल्ली सरकार और एनसीडी की अनोखी और सराहनीय पहल, खंडित मूर्तियों के सम्मानित विसर्जन के लिए 250 वार्ड में लगाए गए हैं विसर्जन बूथ। सरकार की श्रद्धालुओं से अपील, मंदिरों मूर्तियों या पूजा सामग्री को प्राकृतिक जल स्रोतों में ना बहाएं। बद्रीनाथ धाम यात्रा में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड्स, इस साल अब तक 18,67,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साल 2023 में बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा 18,39,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। हेमकुंड साहिब में भी दर्शन कराया कीर्तिमान, आंकड़ा 3,67,000 के पार। सात समुद्र पार रहने वाले लोगों को खींच रहा है काशी की आध्यात्मिक आस्था का सनातन परंपरा का आकर्षण, अमेरिका के मिशिगन से काशी पहुंचे जैक्सन। जैक्सन अपने दिवंगत चाचा की अस्थियां लेकर काशी पहुंचे, गंगा तट पर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विसर्जन। बिहार के बेगूसराय में श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत रंग, वृंदावन की तर्ज पर राधा कृष्ण नौका महोत्सव आयोजन। नौका विहार उत्सव का आयोजन रतनपुर के ऐतिहासिक महंत सियाराम दास सरोवर में किया गया। मंगलौर कलकत्ता वृंदावन से 25 क्विंटल फूल की पंखुड़ियों से सजाया गया पोखर। राधे राधे हरे कृष्ण के जयघोष से गुंजायमान हुआ इलाका। नवरात्र में माता रानी के भजनों पर रात रखने को तैयार है झांसी। ऐतिहासिक किले की तलहटी में महिलाओं ने शुरू की गरबा डांडिया प्रैक्टिस।

0: नोटिस। बड़ी संख्या में महिलाएं डांडिया के अलग अलग स्टेप्स सीख रही हैं, इस बार इंडो वेस्टर्न थीम पर जोर। नवरात्र से पहले देश में बढ़ रही है चनिया चोली की डिमांड, गुजरात के सुरेंद्रनगर में चनिया चोली बनाने में जुटे कारीगर। गुजरात नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों पर पुलिस की पैनी नजर। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष में फिर से उमड़ा लोगों का सैलाब, ब्रह्म कपाल में पिंडदान तर्पण करने के लिए पहुंचे लोग। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित समाज के अनुसार पिछले 8 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु ब्रह्म कपाल पहुंचे। राम मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां तेज, व्यवस्था को आर्थिक पारदर्शी अनुशासित और आधुनिक बनाने की तैयारी। सभी कर्मचारियों और एजेंसियों के कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सॉफ्टवेयर से गिनती जारी। मंदिर परिसर में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू करने की तैयारी। करीब 40 नए स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन पर जोर, चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था भी बदलेगी। यूपी के सहारनपुर में सजा ऐतिहासिक गुघाल मेला, 23 दिन तक लोग ले सकेंगे इस मेले का आनंद। हर साल काली मंदिर में भव्य तरीके से आयोजित होने वाला यह मेला कई दशकों से सहारनपुर की पहचान बना हुआ है। देखते ही बनती है मेले की रौनक, बड़ी संख्या में मेला देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, मौत का कुआं आकर्षण का केंद्र। मेले में विदेशी कलाकारों का जल परी शो बना आकर्षण का केंद्र, बच्चों के लिए कई नई तरीके के झूले। मेले में आसपास के जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग, व्यापारियों को भी अच्छी कमाई मिलती है। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रतिष्ठानों को लेकर FSDA ने जारी कर दिए नए दिशा निर्देश, होटल्स रेस्टोरेंट्स को बताना होगा किस तेल में बनाए खाना। शिकायत के लिए QR कोड भी अनिवार्य, इस कोड के जरिए ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहकों ने फैसले का किया स्वागत, ग्राहकों का कहना है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी। अकोला में त्योहारी सीजन में FDA की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद से आया 1900 किलो खोया जब्त। जब्त किए गए खोए की कीमत है करीब 5 लाख। बिहार के दो युवाओं ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हासिल की बड़ी कामयाबी, दोनों ने मिलकर विकसित की PCB मोटर टेक्नोलॉजी। बिजली की खपत कम करने के साथ साथ मोटर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कॉपर की जरूरत भी काफी कम कर सकती है तकनीक। PCB मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले समय में ड्रोन, EV, रोबोटिक्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के उत्तर दमदम नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों बाद पहुंची बिजली, जीवन हुआ आसान। पूर्व उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे ऋषिकेश, पूरे परिवार के साथ आरती में शामिल हो गया। कजाकिस्तान के ओस्केमेन में पूरे जोश के साथ चल रहा भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2026 का 9वां संस्करण। भारतीय कजाकिस्तान के सैनिक युद्ध कौशल में दिखा रहे हैं कौशल। 28 सितंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास 11 अक्टूबर 2026 तक यूं ही जारी रहेगा। दोनों देश की सेनाओं को अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। सैनिकों ने संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों में भाग लिया जिससे शारीरिक फिटनेस और टीम भावना मजबूत हुई। टुकड़ियों ने संयुक्त हथियार संचालन और सामरिक प्रशिक्षण के साथ साथ छोटे हथियारों में वास्तविक फायरिंग और संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। रूस ने सेंटर 2026 अभ्यास में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन दिखा दिया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के ओरेनबर्ग इलाके में सैनिकों का लाइव फायर अभ्यास। अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरानी महिलाएं ले रही हैं मिलिट्री ट्रेनिंग। महिलाएं हैंडगन समेत कई तरह के हथियारों की प्रैक्टिस करती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में खिलाड़ियों को बधाई दी। एशियन गेम्स में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 32 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। 6 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में प्रथम फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। राजधानी में दिल्ली हाट पर सजा है खादी महोत्सव, एक ही मंच पर कपड़े से लेकर सजावटी सामान। अलग अलग राज्यों के कारीगरों और खादी से जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स, पीतल से बने होम डेकोर के आइटम्स भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। माणापास देवताल मार्ग पर घसतोली में बिछी सफेद चादर, प्रकृति ने किया पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने के लिए तैयारी में, मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए 6 से 11 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। देहरादून में 11 अक्टूबर तक होगी बारिश। 6 और 7 अक्टूबर को नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में मध्यम बारिश के साथ तेज गर्जना और बिजली गिरने की आशंका। ऊंचाई वाले इलाकों में 6 से 8 अक्टूबर के बीच बर्फबारी संभव, ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वालों और सैलानियों से सावधानी की अपील। मध्य प्रदेश के गुनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, भारत में जन्मी मादा चीता ज्वाला ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। भारत में चीतों की कुल संख्या अब 60 हो गई है, जिसमें से 41 चीतों का जन्म भारत में ही हुआ। प्रोजेक्ट चीता की इस सफलता पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पार्क की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की। हिमाचल के पोंटा साहिब में एक बार एक घर में मिला किंग कोबरा। वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा को रेस्क्यू करके जंगल में वापस छोड़ा। गनीमत रही कि किंग कोबरा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी कनेक्शन के बदल दिए नियम। राजधानी में किराए पर रह रहे किराएदारों को हर फ्लोर पर मिल सकेगा अलग पानी कनेक्शन। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन से जुड़ी नियमों को बदलाव कर दिया। नए प्रावधानों का उद्देश्य पानी के नए कनेक्शन आसान बनाना। लक्षद्वीप में नौसेना को मिलने वाला है तीसरा बेस। INS बिट्रा के लिए बिट्रा द्वीप अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। मेडिसिन नोबेल का ऐलान, दिमाग का रिमोट खोजने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला सम्मान। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डाइस रॉथ, जर्मनी के पीटर हैकमैन और जॉर्ज नागेट को मिला सम्मान। महाराष्ट्र में दही हांडी की तर्ज पर स्पेन में बनाई गई है मानव पिरामिड। स्पेन के टारगोना शहर में मानव मीनार प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचे लोग। इस प्रतियोगिता में विशाल संरचनाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है। तीसरी बार इस प्रतियोगिता में कैटलोनिया के 12 प्रमुख कास्टेलर समूह ने भाग लिया। जब रंग बिरंगी टीमें अपनी मीनारें पूरी कर लेती हैं तो दर्शक उत्साहित हो जाते हैं। कास्टेल्स को साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला था। बेल्जियम के घेंट शहर में भीषण गर्मी और सूखे के बाद ऐतिहासिक नहरों में बत्तख का पौधे उगने से हरी भरी हुई नदियां। बत्तख के पौधे एक चमकीले हरे रंग के जलीय पौधे हैं। अपने मध्ययुगीन वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है घेंट। चीन के हेई लोंग जियांग नदी के किनारे रात में देखा अद्भुत नजारा। उल्काएं आकाश में लकीरें बनाती हुई नजर आई। अरोरा उल्काएं और तारों भरे आकाश की रोशनी नदी में चमकती हुई नजर आई। गोईजोई प्रांत में नेशन डे की छुट्टियों में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देखने को मिलते हैं लोक कला और संस्कृति के रंग। इस प्रतियोगिता को देखने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं सैलानी। 10 से ज्यादा प्रांतों से 80 से ज्यादा घुड़सवार और 145 घोड़े प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रतियोगिता में शुरू होने से पहले संगीतमय कार्यक्रम ने बांध दिया समा, 5 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। कलाकारों ने घोड़े पर सवार होकर साहसी हैंडस्टैंड भी दिखाए। चीन के राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में उइगर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित प्राचीन काशी शहर सैलानियों से है गुलजार। सैलानी स्थानीय मुकाम संगीत और हू जवान नृत्य का ले रहे हैं लुत्फ। खाने पीने की दुकानें, हस्तशिल्प की दुकानें, कैफे और फोटो स्टूडियोज उपलब्ध। ब्यूनस आयर्स में मैसी के अर्जेंटीना के साथ आखिरी मैच टिकट लेने के लिए प्रशंसकों की लंबी कतारें। 6 अक्टूबर को जब लियोनेल मैसी अर्जेंटीना के लिए अपना आखिरी मैच खेलेंगे, उनका विदाई मैच 2 दशकों से ज्यादा लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत होगा। नवंबर महीने में पोप लियो 16 के पेरू दौरे से पहले जेल में कैदी महिलाओं ने बनाया मखमली खिलौने। सभी स्मृति चिन्ह पर बनी है पोप की तस्वीरें। महिलाओं के लिए ये काम मानसिक शांति और दूसरे अपने परिवारों का समर्थन करने का एक जरिया। हस्तशिल्प वर्कशॉप में महिला कैदियों को सिखाए जा रहे हैं अन्य हुनर। वहीं कुछ कैदी महिलाएं इन कामों से आध्यात्मिक संतुष्टि का एहसास कर रही हैं।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: चीन के चेंगदू में इन दिनों रातें रंगीन रोशनी और परंपराओं के नाम हैं, कहीं जगमगाते लैंटर्न लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं पर आसमान में सजे विशाल किरदार और पारंपरिक प्रस्तुतियां माहौल को और ज्यादा खास बना रही हैं। नेशनल डे की छुट्टियों में ये नज़ारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
5: चीन के चेंगदू शहर में इन दिनों रोशनी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ चल रहे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लालटन शो में रात का आसमान रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा रहा है। नेशनल डे की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग इस शो को देखने पहुँच रहे हैं। इस लालटन शो में चीन की पुरानी कला और संस्कृति को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ शेंग शुंगदुई सभ्यता से जुड़े डिजाइन वाले लालटेन भी लगाए गए हैं। शू एम्ब्रॉयडरी यानी खास तरह की कढ़ाई से सजाया गया गलियारा भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। खूबसूरत लालटेन के बीच घूमते लोग तस्वीरें खींच रहे हैं और इस यादगार रात को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन इस शो का सबसे रोमांचक हिस्सा है पिघले हुए लोहे से होने वाली आतिशबाजी। कारीगर बेहद गर्म पिघले हुए लोहे को हवा में उछालते हैं और देखते ही देखते आसमान में सुनहरी चिंगारियों की बारिश होने लगती है। चिंगारियां कई परतों में फैलती हैं और ऐसा लगता है जैसे रात के आसमान में पेड़ों पर फूल खिल गए हों। इसीलिए इस प्रदर्शन को फायर ट्रीज एंड सिल्वर फ्लावर्स कहा जाता है। चेंगदू के एक और पुराने इलाके में भी नेशनल डे की छुट्टियों के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चेंगशियांग एंशियंट टाउन में आयोजित नाइट टूर गाला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रात के इस कार्यक्रम में पारंपरिक गीत और नृत्य ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम की सबसे खास चीज थी हवा में लटकती करीब 15 मीटर लंबी आयोयू मछली की आकृति। आयोयू चीन की एक पौराणिक जीव है जिसका सिर ड्रैगन जैसा और शरीर मछली जैसा बताया जाता है। रंग बिरंगी रोशनी में सजी ये विशाल आकृति रात के आसमान में बेहद शानदार दिखाई दी। चीन के चेंगदू में कहीं पारंपरिक नाच गाना हुआ तो कहीं पुरानी कला से जुड़ी चीजों के बाजार लगाए गए। कुल मिलाकर नेशनल डे की छुट्टियों में ऐसे कई कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: क्या आप लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं? डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं? तनाव बढ़ा रहता है? कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: चमोली में माड़ा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण, झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डेसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की वजह से कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और क्या कुछ समाधान हैं जिससे इसको दूर किया जा सकता है। पंडित जी से इस बारे में जानेंगे इस शो में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, अगर आप मोती धारण करते हैं तो ये जान लीजिए कि एक मोती का जीवन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल का होता है। 3 साल बीतने के बाद मोती बदल देनी चाहिए, इसके बाद मोती खराब होने लगती है और खराब मोती धारण करने से आपको नुकसान होगा।
0: तो चलिए गुड लक मंत्र के बाद अब सबसे पहले पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है कि 6 अक्टूबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 6 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 10:17 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। रात के 10:17 तक राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे इस विषय की, जो है चंद्रमा का हमारे जीवन पर प्रभाव। चंद्रमा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये जीवन में किस किस तरह की समस्या दे सकता है, सबसे पहले इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
1: जी, हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा की समस्याओं के बारे में और चंद्रमा की समस्याओं के समाधान के बारे में। चंद्रमा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस किस तरह की समस्या चंद्रमा की वजह से पैदा होती है। देखिए, चंद्रमा हमारे मन का, हमारे मेंटल लेवल का ग्रह है और चंद्रमा हमारे सोच को और हमारे विचार को प्रभावित करता है और चंद्रमा के माध्यम से, या यूं कह लें कि हमारे मन के माध्यम से ही सारे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और अगर कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ हो, अगर कुंडली में चंद्रमा निगेटिव हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याएं देता है। चंद्रमा के गड़बड़ होने पर हर समय मन में तनाव, मन में टेंशन बना रहता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो आप मन से चैन महसूस नहीं कर पाएंगे, मन के तनाव और मन की चिंताएं आपको हमेशा परेशान करेंगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि अगर चंद्रमा की वजह से मन की समस्या हो तो इसको दूर करने के उपाय क्या कुछ हैं।
1: अगर चंद्रमा की वजह से आपको मन की समस्या है, मानसिक दिक्कत है, मेंटल डिप्रेशन है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय। जल में सुगंध डालकर या गुलाब जल डाल करके नियमित रूप से स्नान करिएगा। तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है तो लिक्विड डाइट लेकर जलीय आहार ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। और अगर आपको तनाव जरूरत से ज्यादा रहता हो तो मोती और चांदी ये आपको सोच समझकर धारण करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मोती और चांदी पहनने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है, समस्या ट्रिगर कर जाती है। तो अगर मानसिक तनाव ज्यादा होता हो तो मोती और चांदी आपको सोच समझकर धारण करना चाहिए।
0: और अब वक्त हो चला है सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, धन के खर्चों से आपको परेशानी होगी, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आज दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन डी जी से जान लेते हैं, अगर चंद्रमा के कारण क्रोध और मूड की समस्या हो तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए इसे दूर करने के लिए।
1: बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को क्रोध आता है, व्यक्ति इरिटेट हो जाता है या उसका मूड अच्छा नहीं रहता, बेवजह की मानसिक चिंताएं उसको पकड़े रखती हैं और इरिटेट होना, क्रोध होना, मूड खराब होना ये बार बार होता है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल प्लेन वाटर, तेल मसालेदार और गरिष्ठ भोजन त्याग दीजिए। रोज रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठकर ही कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। संभव हो तो नियमित रूप से प्राणायाम भी करने का प्रयास करें। और अगर छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते हो, क्रोध आता हो, गुस्सा आता हो, तो काले रंग की चीजों का प्रयोग बंद कर दें। काले रंग की चीजों का प्रयोग कम से कम करिएगा।
0: और अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
1: कर्क राशि, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न सुजल पाटिल ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 2003 11:55 प्रातः अकोला महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को आगे करियर में क्या करना चाहिए और मेरे बेटे का स्वास्थ्य खराब रहता है, कब तक उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। सुजल जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा राहु की चल रही है। देखिए, आपके पुत्र के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि ग्रेजुएशन करने के बाद ये गवर्नमेंट जॉब में जाएं, सरकारी सेवा में जाएं, उसमें इनको सफलता मिलेगी। और दूसरे नंबर पर अगर ये शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें तो एजुकेशन के फील्ड में भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, हड्डियों और नसों की समस्या और पेट की दिक्कतें इनको परेशान कर सकती हैं। इनके बेहतर करियर और स्वास्थ्य के लिए इनको एक मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करवाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, दूसरा सवाल आज किसका रहने वाला है?
1: जी, अगला प्रश्न सत्यनारायण जी ने हमें लिखा है, जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं। 12 दिसंबर 1968 का जन्म है। 7:40 प्रातः लूणी जोधपुर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मेरा पैसा कहीं पर फंस गया है, मेरा फंसा हुआ पैसा मुझे कब तक वापस मिलेगा और मैं खाने पीने की चीज का होटल रेस्टोरेंट का व्यापार करना चाहता हूँ, क्या ऐसा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर रहेगा? सत्यनारायण जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा भी बृहस्पति की चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। एक माणिक्य बनवा के पहने, 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आप ये उपाय करें तो आपका फंसा हुआ पैसा निकलेगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

0: का व्यापार कर सकते हैं।
1: अब बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय चंद्रमा की। अगर चंद्रमा के कारण पेट की समस्या हो तो इसका क्या कुछ उपाय होते हैं?
0: चंद्रमा अगर गड़बड़ हो तो मन गड़बड़ होता है और मन की गड़बड़ियों से आपके पेट का सीधा संबंध है। इसीलिए चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से डाइजेशन की, खाना डाइजेस्ट होने की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अगर चंद्रमा की वजह से पेट की समस्या है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से स्नान जरूर करिएगा। दोनों समय नहाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय जरूर नहाइए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए, ठूस ठूस कर गले तक भर करके खाना मत खाइए। भोजन जमीन पर या जमीन पर आसन पर बैठ करके करिए, अच्छा होगा। एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में किसी भी सोमवार की रात को पहन लीजिएगा और रोज शाम को 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा।
1: और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब पंडित जी से ये जान लेंगे कि अगर चंद्रमा की वजह से आपके जीवन में हर समय तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो इसे दूर करने के क्या कुछ उपाय होते हैं?
0: बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में हर समय तनाव, हर समय टेंशन बना रहता है। अगर आपको हर समय चिंता रहती है, हर समय तनाव रहता है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह और शाम। अधिक से अधिक जलीय आहार ग्रहण करने का, लिक्विड डाइट लेने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए और नींद अपनी पूरी करिए, नींद में कमी मत करिए। दिन में कुछ देर वॉकिंग करिए, दिन में कुछ देर अगर आप पैदल टहलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें अगर आपको हर समय तनाव रहता है तो, और भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर समय का जो तनाव रहता है वो तनाव दूर हो जाएगा।
1: और अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त है।
0: मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ।

0: होगी, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का। इससे पहले कि तीसरा सवाल पंडित जी से जाने, आपको बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी तक अपना कोई प्रश्न पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है, इस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी, आज तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी अगला प्रश्न हमें अर्पित जी ने लिखा है। अर्पित जी मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 मई 1998, 4:30 अर्ली मॉर्निंग, मथुरा उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अभी बैंक में नौकरी कर रहा हूं, आगे मैं आरबीआई में जाना चाहता हूं, क्या मुझे आरबीआई में नौकरी मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अर्पित, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, साल 2027 का समय एक अच्छा समय है और अगर इस समय में आप कोशिश करें तो आप आरबीआई में जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन सकती है। विवाह साल 2028 में होगा, स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। आपका भाग्य बेहतर हो, आप करियर में तरक्की कर सकें,

0: उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त है आज के चौथे और अंतिम सवाल का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी,

0: नंदिनी सोनी ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है, 2 जनवरी 2004 का जन्म है, 6:45 शाम को दमोह मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। नंदिनी आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपको इस समय मार्च 2027 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने का प्रयास अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन के सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। एक मोती बनवा के पहने 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन 6 अक्टूबर को है। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 6 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में रह सकती हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी इस साल में दिखाई दे रहा है। हालांकि फरवरी के महीने से जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। परिवार का सहयोग इस साल आपके साथ बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष

0: नहीं करना चाहिए। देखिए, तांबे के पात्र में जब दूध रखा जाता है तो ये पूरी तरह से विष बन जाता है, तूतिया, एक तरह का विष। ऐसे में ये दूध जो विष हो गया हो, इसको अर्पित करना बिल्कुल उचित नहीं होता। ऐसे दूध का प्रयोग करना या ऐसे दूध को ग्रहण करना भी उचित नहीं होता है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि 6 अक्टूबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 6 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 अक्टूबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इनकी एक साथ कई स्ट्रीम में शिक्षाएं चल सकती हैं। अच्छी शिक्षा के लिए मिथुन वालों को नियमित रूप से मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप करने से इनको लाभ होगा।
1: और अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं अपना सबसे जरूरी प्रश्न, जो है आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। जिसके प्रति गलती हुई हो उससे हृदय से क्षमा याचना करिएगा। एक दिन का उपवास रखिए और उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे ये संकल्प लीजिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा।
1: पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करते हैं शारदीय नवरात्र की, जिसकी शुरुआत जो है 5 दिन बाद होने जा रही है। ऐसे में नवरात्रि को लेकर न सिर्फ मंदिरों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, बल्कि दुर्गा पूजा को लेकर शहर शहर भव्य पूजा पंडाल और देवी दुर्गा की मनोहारी मूर्तियां भी तैयार हो रही हैं। दिल्ली से लेकर

0: शक्ति उपासना का पर्व शुरू होने में बस चंद रोज ही बाकी है। ऐसे में देवी दुर्गा के स्वागत के लिए जगह जगह भव्य पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। कहीं थीम आधारित भव्य पंडाल बन रहा है तो कहीं पूजा पंडालों में फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर बंगाल के दुर्गापुर से सामने आई है, जहां राम मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल का ढांचा करीब करीब बनकर तैयार है और अब पंडाल के अंदरूनी हिस्से में काम चल रहा है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस पंडाल को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने अभी से क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।
1: না আমরা মেইনলি সেফটি সিকিউরিটির আসপেক্ট যেটা আছে ওটাই দেখছি, আর সঙ্গে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের কি রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো কমপ্লাই করা হয়েছে।
0: बंगाल की तरह ही दिल्ली के सीआर पार्क में भी थीम आधारित पंडाल बनाया जा रहा है। इस पूजा पंडाल की खासियत है कि इसे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जूट इंडस्ट्री की थीम पर बनाया जा रहा है। पूजा समिति के लोगों ने बांस और जूट का इस्तेमाल किया है, साथ ही देवी दुर्गा की प्रतिमा भी इको फ्रेंडली बनाई जा रही है।
2: राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क में जगह जगह नवरात्र उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है, भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। बता दें दिल्ली के चितरंजन पार्क मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है और यहां नवरात्रों के दौरान भव्य उत्सव मनाया जाता है और मां की खूब आराधना की जाती है। जहां चितरंजन पार्क में कई जगहों पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, उसी में से एक कोऑपरेटिव ग्राउंड में भी भव्य थीम बेस पंडाल बनाया जाता है, जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर इस पूजा को इस वर्ष 51 साल पूरे हो रहे हैं और इस बार इस तरह यहां पर किस तरीके की तैयारी है उसको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जूट के थीम पर यहां पर ये पूरा बनाया जा रहा है और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है और जो कारीगर हैं वो आपका एक काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बांस की डिजाइन वगैरह बना रहे हैं।
3: बंगाल में जूट इंडस्ट्री ग्रेजुअली बहुत डाउन हो गया है, एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया बोलो, मेन तो बंगाली होता था। तो इस बार हम लोग सोचा थोड़ा वही एक दिखा है ना कि पुराना जो जूट का है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, यूटिलाइजेशन कैसे हो सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग ये प्लान किया है। सीआर पार्क में एक ही पैंडल है जिसमें मूर्ति हम लोग पैंडल में बनाते हैं, एकदम डे वन से। हर जगह पे क्या होता है कि मूर्ति कोई दूसरी जगह से बनते हैं, उधर से आते हैं, हम लोग इधर पे खुद बनाते हैं।
0: भव्य पूजा पंडालों की तरह देवी दुर्गा की मनोहारी मूर्तियों का निर्माण भी बहुत तेजी से इन दिनों चल रहा है। चाहे बंगाल हो या यूपी, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र, मूर्तिकार ऑर्डर और डिमांड के हिसाब से इन दिनों मूर्तियों को तैयार करने में जुटे हैं। ये तस्वीर पूर्वी बर्धमान जिले से आई है, जहां मूर्तिकार तापस पाल पारंपरिक शैली से लेकर नए और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। इस साल उन्हें 20 मूर्तियों का ऑर्डर मिला है। मूर्तिकार तापस पाल का कहना है कि पारंपरिक शैली में बनी देवी दुर्गा की ये मूर्ति मुख्य रूप से पुआल और मिट्टी से तैयार की गई है। इनमें एक मूर्ति इंग्लैंड भेजी जानी है।
4: বিদেশে মাটিতে প্রথম যাচ্ছে ইংল্যান্ড। ফেসবুক মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে, ভদ্রলোক দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে ফেসবুকে আছে, দেখেন আমার প্রতিমা দেখেন।
0: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोई मूर्तियों की फिनिशिंग में लगा है और कोई फिनिशिंग के बाद प्रतिमाओं को सजाने और संवारने में जुटा है। मूर्तिकार प्रद्युमन ने दुर्गा पूजा पर सामाजिक संदेश देने के लिए इस साल मोबाइल आसुर नामक राक्षस बनाया है। यह प्रतिमा जय माता दी सपोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल में स्थापित होगी।
5: इस बार का ये जो थीम है, जो बच्चे आजकल के बच्चे आपके घर में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना खाने के लिए पढ़ने के लिए हमेशा जो कि मोबाइल के समझ लीजिए कि हैबिचुअल हो गए हैं, उनसे उनको बच्चों को दूर करने के लिए ये समझ लीजिए विजुअलाइज दिखाने के लिए ये विजुअल कि देखिए बच्चों ये गलत चीज है, ये समाज में एक समझ लीजिए दर्शन देने के लिए बच्चों के लिए ऐसा बनाया जा रहा है।
0: उधर महाराष्ट्र के अकोला में भी पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अकोला के कुम्भारवाड़ा में मूर्तिकार दिन रात प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जहां 1 फीट से लेकर 25 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि गणपति स्थापना के बाद ही वो माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण और सजावट में जुट जाते हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियां दी जा सके।
6: शारदीय नवरात्र उत्सव को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर पंडाल में देवी माँ की मूर्ति विराजमान करनी है, उसकी घट स्थापना करनी है। उससे पहले कलाकार जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सुंदर 3.5 शक्तिपीठों में एक रही नांदेड़ जिले की रेणुका माँ, जो इसकी आप देख रहे हो कि ये है माँ तुर्जा भवानी की प्रतिमा, जिसको अभी कलाकार जो है वो रंगोपन कर रहे हैं। माँ शक्ति की, माँ दुर्गे की जो सुंदर प्रतिमाएं हैं, उसे बनाने का काम जो है कलाकार कर रहे हैं, और उसमें अब रंगोपन का भी काम यहाँ चल रहा है। ये कलाकार जो है माता रानी के हाथ में मेहंदी निकाल रहे हैं, उन्हें डिजाइनिंग कर रहे हैं। किस तरह से देखिए माता रानी की ये सुंदर सुबक मूर्ति जो है वो पहला कलरिंग का हाथ इस पर चढ़ चुका है। अब इस पर जो है बारीकी नक्शी काम करने का काम ये दोनों कलाकार लड़कियां करते नजर आ रहे हैं।
0: इन मूर्तिकारों की ये मेहनत कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा पंडालों में नजर आएगी। देवी माँ के स्वागत के लिए तैयार हो रही ये प्रतिमाएं सिर्फ मिट्टी और रंगों से बनी आकृतियां भर नहीं है, बल्कि कलाकारों की श्रद्धा, मेहनत और भक्ति का भी प्रतीक है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, दुर्गापुर से अनिल गिरी, वर्धमान से सुजाता मेहरा, वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही गरबा और डांडिया नाइट्स से जुड़े आयोजन भी देश भर में शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अभी से गरबा और डांडिया नाइट्स को लेकर लोगों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, खासकर महिलाओं ने। वहीं पर गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए बाजार भी सज चुके हैं। बाजार में रंग बिरंगे ड्रेसेस बिकने भी शुरू हो चुके हैं। महिलाओं के लिए नए नए डिजाइन की चनिया चोली और लहंगा, जबकि पुरुषों के लिए अलग अलग तरह के कुर्ते और पगड़ी नजर आ रही है।

0: जगमगाती शाम, तेज संगीत और थिरकते कदम, ये तैयारी उस उत्सव को लेकर है जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर महिलाएं और युवतियां जो गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए प्रैक्टिस में जुट गई हैं। प्रैक्टिस की ये तस्वीर यूपी के झांसी से आई है, जहां शारदीय नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा और डांडिया को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसी उत्साह की झलक झांसी के विपिन रावत पार्क में हर तरफ देखने को मिली। ये सभी महिलाएं जोर शोर से गरबा और डांडिया के लिए तैयारी कर रही हैं।
1: बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाई है, एनर्जी भर दी सारी लेडीज में, यहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। नवरात्रि हर साल हम हिंदुओं का एक बहुत ही पावन पर्व है। हम अपनी देवी जी को 9 दिन पूजा करते हैं अलग अलग रूपों में, जो कि शुरुआत होने वाली है 11 अक्टूबर से। तो हमारा डांडिया 12 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि रामेश्वरम में होगा, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं।
2: जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है, रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है, बहुत अच्छी इन डांस सिखाती हैं हम लोगों को। और जो 12 अक्टूबर को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग उसमें ना अलग अलग टाइप का ट्रेडिशन देखने को, इंडियन ट्रेडिशन है, अलग अलग आउटवियर देखने को मिलेगा। कुछ वेस्टर्न होगा, कुछ ट्रेडिशन होगा, कुछ मिक्सअप होगा हर चीज़ का। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उस नाइट को और जो रामेश्वरम में हो रहा है।
0: इन महिलाओं और युवतियों को प्रैक्टिस करा रही ऋतु जैन ने बताया कि डांडिया और गरबा को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है। डांडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये माता रानी की भक्ति से भी जुड़ा लोक नृत्य है। इसी भावना के साथ ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांडिया सीख रही हैं।

0: आज यहाँ पे जलसा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया बिपिन रावत पार्क में एक डांडिया सिखाया जा रहा है, जिसमें मैं एज अ इंस्ट्रक्टर आई हूँ और यहाँ पे काफी लोग हैं, मैं देख रही हूँ। मुझे लग रहा था पता नहीं कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड है, और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
1: दुर्गोत्सव के दौरान हर शाम होने वाला ये आयोजन रंग बिरंगी और खूबसूरत ड्रेसेस के बगैर अधूरा है। गरबा और डांडिया नाइट्स के दौरान पहने जाने वाली ड्रेसेस बहुत अहम होती हैं, चाहे महिलाओं के लिए चनिया चोली और लहंगा हो या फिर पुरुषों के लिए कुर्ता और पगड़ी हो। बाजार एक से बढ़कर एक ऐसी खूबसूरत ड्रेसेस से सज चुके हैं। इस बार भी गरबा और डांडिया के लिए मार्केट में गुजराती ड्रेस की डिमांड शुरू हो गई है।
2: हम बरसों से चनिया चोली और जेंट्स वेयर का कपड़ा बनाते हैं। चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है और हम बनाते हैं, सब बाहर गाँव जाते हैं, बॉम्बे साइड और जाते हैं, और उसकी रेट 2000 से लेके 15000 तक चनिया चोली का रहता है। कपल सेट भी हम बनाते हैं।
3: इसमें कौन सा वर्क होता है?
2: उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
1: बाजार में रंग बिरंगे पैटर्न्स, शानदार एम्ब्रॉयडरी और एक परफेक्ट मॉडर्न टच का ऐसा कॉम्बिनेशन मौजूद है जो देखने वालों को एक नजर में ही पसंद आ जाए।
4: कच्ची वर्क है या फिर चोली का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, फ्रेंड्स भी यहाँ से ही लेने का प्रेफर करते हैं, और हमें यहाँ का काम बहुत पसंद है।
5: कितने साल से यहाँ पे खरीदी करते हो?
4: 10 साल से यहाँ से।
5: और कैसा लगा यहाँ का हैंड वर्क वगैरह?
4: बहुत अच्छा होता है, हर साल न्यू कलेक्शन मिल जाता है। इस साल हैंड वर्क, कच्ची वर्क, पोजीशन प्रिंट है, हर साल न्यू कलेक्शन मिल जाता है। बंडी, पाखड़ी, छतरी, नाकड़ी सब मिल जाता है।
1: हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में बनी इन ड्रेसेस की डिमांड देश के दूसरे राज्यों में काफी है, लिहाजा नवरात्रि के नजदीक आते ही इस बार गुजरात से चनिया चोली, लहंगा, कुर्ता और पगड़ी की डिलीवरी शुरू हो गई है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आस्था के सफर पर, जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पहाड़ों पर पर्यटन को भी खूब पंख लग रहे हैं। नैनीताल में मौजूद बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम कैंची धाम पहुंच रहे हैं। बीते दिनों 3 दिन के वीकेंड की वजह से कैंची धाम परिसर से लेकर सड़क तक लोगों से खचाखच नजर आया, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
7: नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच बसे बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सड़क से लेकर मंदिर तक श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है, जिसे देखो वही कैंची धाम की ओर खींचा चला आ रहा है। आस्था के इस महाकाफिला का रुख उस संत के धाम की ओर है, जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है, तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार, कोई उन्हें नीब करौली बाबा कहता है, तो कोई नीम करौली बाबा, कोई महाराज जी कहता है, तो कोई हांडी वाले बाबा। नीम करौली बाबा की कर्मभूमि कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले भी उमड़ती थी, लेकिन जब से बाबा नीम करौली महाराज के जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने पर्दे पर दस्तक दी है, तब से न सिर्फ इस धाम में श्रद्धालुओं की दिलचस्पी बढ़ी है, बल्कि रिकॉर्ड संख्या में इस धाम के दर्शन करने लोग भी उमड़ पड़े हैं।
8: जो प्रचार प्रसार तो नहीं बोल सकते, ये इनकी कृपा दृष्टि है जो सब लोगों पे बिखर रही है। अगर देखने जाए तो बाबा को किसी भी प्रचार और प्रसार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाबा अपने आप में ही एक प्रचार और प्रसार है, तो उनके लिए किसी के आवागमन मतलब उनको अपने आप में ही है। एक बोलते हैं कि हनुमान जी का अंश, ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, वो अपने आप में एक अनुभूति है, जो यहाँ पे आते हैं वही इस चीज को समझ पाते हैं।
7: आलम यह है कि कैंची धाम में भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में बड़ी तादाद युवाओं की भी है। कोई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार कैंची धाम पहुंचकर बाबा की भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना चाहते हैं।
9: अब कुछ भी बोलो मत, जो बाबा का चमत्कार है वही देखो और आगे आने वाली पीढ़ियों भी देखो कि जो अपना सनातन धर्म के अंदर जो चल रहा है उसी बात पे गौर करो।
10: काफी टाइम पहले से थी, बट अब जाके बाबा ने मौका दिया है अपने दर्शन करने का, देने का। और हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा रहते हैं। और आस्था तो जैसे अभी मूवी आई है उसके बाद मैंने सुनने को मिला है कि उसके बाद बहुत ज्यादा आस्था बढ़ गई है।
7: सड़क पर भारी संख्या में कतार में लगी इन गाड़ियों की मौजूदगी को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आस्था किस कदर उमड़ रही है। खासकर वीकेंड पर तो यहाँ मानो जन समुद्र ही उमड़ पड़ा। कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या पहले करीब 8 लाख थी, जो फिल्म के प्रभाव के बाद 3 गुना बढ़कर 24 लाख तक पहुँच गई है। आम दिनों में रोजाना 4 से 5 हजार भक्त आते थे, अब 6 हजार के पार आने लगे हैं। वीकेंड यानी शनिवार रविवार को ये संख्या 15 हजार से 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुँच रही है। आलम यह है कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच जो सफर पहले 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाता था, भारी जाम की वजह से श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग रहा था। लोगों को जाम की तकलीफ से बचाने के लिए पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था।
11: नैनीताल और आसपास के गांवों में वाहन अधिक संख्या में पार्किंग नहीं है, तो आउटर एरियाज में जो पार्किंग स्थल हमारे डेजिग्नेटेड है वहाँ से सिग्नल के माध्यम से इन जगहों पे पर्यटकों को भेजा जा रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।
7: सोशल मीडिया की वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में कैंची धाम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों और जीवन दर्शन से जुड़ी कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई हनुमान अंश फिल्म ने इसमें और इजाफा कर दिया, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण। झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। कार्ल डिसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज। इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोली बील, पूर्व से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। क्या है शक्ति? हमारी सभ्यता में शक्ति देवी का प्रतिरूप है, संसार के सृजन का आधार है। हमारे देश में न केवल देवी भगवती को शक्ति रूप में पूजा जाता है, बल्कि देश और समाज की वो अद्भुत अदम्य महिलाएं जो अपने अपने कर्म क्षेत्रों में शक्ति रूपेण संस्थिता के मंत्र को चरितार्थ करती हैं, वो भी हमारे यहाँ सदा से आदरणीय रही हैं और उन्हें बेहद गर्व और उत्साह के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। अब से चार दिनों बाद देश में शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, लेकिन नवरात्र से पहले ही अब की बार जापान में भारत की शक्ति का उत्सव पूरी दुनिया ने देखा। ये दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, एक शक्ति उत्सव भारत में और दूसरा जापान में। देश में एक तरफ शहर शहर देवी माँ के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर शहर बेटियों का स्वैग चल रहा है। एक तरफ मूर्तियों और पंडालों का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ एशियन गेम्स में देश की विजय पताका लहरा कर लौटी बेटियों के सम्मान में रैलियां निकाली जा रही हैं, समारोह यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में इस बार एशियन गेम्स में भारत का अभियान शक्ति के नाम रहा। भारत की बेटियों ने एशियन गेम्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारत ने इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें से लड़कियों के इवेंट में 11 और लड़कों के इवेंट में 7 गोल्ड मेडल आए हैं, जबकि 3 गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में जीते गए। इससे पहले साल 2002 में बुसान में हुए एशियन गेम्स में भारत की लड़कियां आगे रही थी, तब भारत ने लड़कियों के इवेंट में 6 और लड़कों के इवेंट में 5 गोल्ड जीते थे। यानी साल 2002 के बुसान एशियाड के बाद ये पहली बार हुआ जब गोल्ड मेडल जीतने के मामले में भारत की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया। वैसे सिर्फ एशियन गेम्स ही क्यों, बल्कि हाल ही के सालों में विशेषकर 2024 से 2026 के बीच में भारत की महिला खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कई बड़ी चैंपियनशिप्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट्स में पूरी तरह डोमिनेट किया। तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग, एथलेटिक्स, कहीं भी तो कम नहीं भारत की बेटियां। बल्कि अब तो कहना पड़ेगा हमारी छोरियां छोरों से कम है के, बल्कि हमारी छोरियां छोरों से ज्यादा ही हैं हर बात में और हर जगह पर। एशियन गेम्स से बॉक्सिंग का गोल्ड जीतकर लौटी चैंपियन लवलीना बोरगोहेन से जब हमने यही सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
1: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप। यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में। तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया।
2: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है। पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है। जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है। हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था, तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है। और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
2: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ। ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है। 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस।
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट, एम इज LA 2028 सेम।
0: तो मेडल्स की चमक बिखरी है, देश को फेस्टिव सीजन से पहले सेलिब्रेट करने का बहाना मिल गया है। वाकई में एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम इंडिया ने अपने इस विजयी अभियान में 85 मेडल जीते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत ने कौन कौन से इवेंट्स में झंडे गाड़े हैं और क्यों इस मेडल टैली को देखकर 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए देश की उम्मीदों को पंख लग गए हैं।
3: ऊपर उठ रहा है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया है। भारत की ऐतिहासिक जीत।

0: देश के हवाई अड्डों से लेकर शहरों गांवों की गलियों तक आज उत्सव का माहौल है। ये चैंपियंस का स्वागत है, उन चैंपियंस का जिन्होंने अपने शानदार खेल से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जापान की धरती पर आयोजित 20वें एशियन गेम्स 2026 में भारत के एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने इस साल कुल 85 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सफर में टीम इंडिया ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। 20वें एशियन गेम्स के सफर में भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। सुनहरी कामयाबी की इस फेहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ एजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मोहोड़, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की टीम ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। यहाँ भारतीय तीरंदाजों ने 3 गोल्ड अपने नाम किए। आईची नागोया में न केवल भारत की तीरंदाजी टीम ने अपनी धाक जमाई, बल्कि क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरहोगेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। कुश्ती में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के अनुसार जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिया। शूटिंग में नीरू धांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वही कमान जीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात ये रही कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच डाला। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आईची नागोया के बाद अब भविष्य का खेल महाकुंभ लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 हमारा इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही कि भारत की ये चैंपियन एशिया के बाद दुनिया फतह करने के मिशन पर भी शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाकर देश का सर्वगर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का शहर शहर एयरपोर्ट्स पर भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाओं की बारिश के साथ और लहराते हुए तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारों के बीच में फैंस के दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, वेलकम होम चैंपियंस।

दिवाली में अभी वक्त है, लेकिन चंबा में दिवाली आ चुकी है। शहर की बेटी एशियन गेम्स में तिरंगा लहरा कर लौटी है, सो सारा शहर जश्न मना रहा है। चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आईजी नगोया में झंडे गाड़ कर सीमा वापस लौटी तो बैंड बाजे के साथ सीमा का स्वागत हुआ। आरती उतार कर बेटी का गृह प्रवेश करवाया गया। घर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, शहर भर का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। नाचने गाने जश्न मनाने का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सीमा के स्कूल में भी शानदार स्वागत समारोह हुआ। मंच पर सीमा को हिमाचली टोपी पहनाई गई, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कभी जिस स्कूल के प्ले ग्राउंड पर सीमा ने रनिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, आज वहां सीमा को उड़न परी कहकर सम्मानित किया जा रहा था। सीमा के लिए ये कभी न भुलाने वाले पल था।

0: कुछ ऐसे ही यादगार पलों का गवाह बना महाराष्ट्र का अमरावती शहर। जापान में हुए एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और अमरावती का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उनके शहर में जोरदार स्वागत हुआ। जापान की धरती से लौटे पदक वीरों के लिए अमरावती में विक्ट्री रैली हुई। बता दें कि अमरावती की स्टार तीरंदाज कुमकुम मोहोड़ ने रिकर्व आर्चरी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। जबकि यशदीप भोगे ने पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है।
1: अमरावती आके कितना अच्छा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा स्वागत किया है इसके लिए भी मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, यहाँ का DSO का, सर लोगों का, मैडम का, खासदार साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरावती में बाजी मारी है
2: जी जरूर, और अमरावती की सुवर्ण कप में सबसे ज्यादा मेडल लेके आई है तो अमरावती की बाजी जरूर मारेगी।
0: चैंपियंस के लिए निकली इस विजय रैली में मानो सारा शहर विजेताओं के स्वागत में उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश के बीच खिलाड़ी खुली जीप में आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ चल रहे थे अमरावती के सैकड़ों लोग। स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर उम्र और वर्ग के लोग बेहद खुशी और जोश के साथ इस रैली का हिस्सा बने।

0: विजेताओं की इस रैली में खिलाड़ियों के कोच, ट्रेनर्स, खेल विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। आम लोगों के साथ ही चैंपियंस के स्वागत के लिए जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। रैली के बाद मंच पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, सांसद अनिल बोंडे, विधायक सुलभा खोडके और भाजपा नेता संगीता शिंदे समेत कई गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का इस मौके पर सम्मान किया। मेडल जीतकर लौटे इन खिलाड़ियों के लिए ये दिन खास है। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराने के बाद अब नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर हैं।
1: मोहन ने जो अमरावती की शान बढ़ाई है, हम सभी अमरावती वासी बहुत खुश है और आने वाले ओलंपिक में 100% मेडल मिलाने के लिए जिला प्रशासन, क्रीड़ा विभाग, हम सब उसकी तैयारी के लिए उसको सहयोग देंगे। आज हमको अमरावती के लिए 4 मेडल प्राप्त हुए, उसके लिए बहुत बहुत खुशी जाहिर करते हैं।
0: एशियन गेम्स खत्म होने के साथ ही शहर शहर चैंपियंस के स्वागत का ये सिलसिला यूं ही चला। एशियन गेम्स में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। जापान में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह स्वदेश लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इनके स्वागत में लोगों की भीड़ जुट गई।

वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का भी जोरदार वेलकम हुआ। इसी कड़ी में वतन वापसी के बाद क्रिकेटर तिलक वर्मा का भी शानदार स्वागत किया गया।

चैंपियंस के स्वागत की तस्वीरें चेन्नई से भी आईं। यहां तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन खुद एशियन गेम्स चैंपियंस का स्वागत करने पहुंचे। स्कूली बच्चों और लोक कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।

इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार में मंत्री विघ्नेश एशियन गेम्स में जोरदार प्रदर्शन कर वापस लौटी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट विद्या राम राज से मिलने मीनाक्षीपुरम पहुंची।

0: अमरावती से धनंजय साबले और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हर रोज अलार्म से पहले जागना, यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती की उम्र में मैदान से दोस्ती कर लेना, कोच को ही सब कुछ मान लेना, शादी ब्याह त्योहार बर्थडे पार्टी सब कुछ भुलाकर कड़े डिसिप्लिन के साथ बरसों तक एक ही गोल पर फोकस्ड रहना, जी तोड़ मेहनत करना। एक चैंपियन एथलीट बनने की यात्रा तपस्या से कम नहीं, लेकिन इसी तपस्या इसी यात्रा को सफलतापूर्वक अगर आपने खत्म कर लिया तो फिर कहीं जाकर आता है वो दिन जब आप वापस लौटते हैं और एयरपोर्ट पर आपको लेने बस आपका परिवार नहीं बल्कि आपका सारा शहर आता है।

0: ये महज जश्न नहीं, कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजोकर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे, साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान, दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। इन लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देख कर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए एक गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028 बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही है उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ जे एन जी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: क्या आप लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण, झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डिसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी कर दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना जांचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ की हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल गजट नोटिफिकेशन की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद भी पैसे देने के समय लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण रोड पर तमाशा हो गया। क्या है वायरल वीडियो का दावे का सच, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: SBI सहित सभी सरकारी बैंकों में शनिवार को भी छुट्टी क्या पूरी हो गई है, 8 दिन अवकाश की डिमांड। दरअसल एक वायरल लेटर में केंद्र सरकार के हवाले से यह दावा किया गया है कि बैंकों में अब हर शनिवार को अवकाश रहेगा और सिर्फ 5 डे वर्किंग होगी। ये चौंकाने वाला दावा हमारे सामने भी आया, हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या निकलकर सामने आया देखते हैं।
5: बैंक यूनियंस काफी समय से हफ्ते में 5 दिन काम करने और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से इसके लिए कमेटी बनाने और दूसरी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिए जाने के बाद यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर के बीच होने वाली 3 दिन की हड़ताल टाल दी थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक गेजेट नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसे कई सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार के नए फैसले के तौर पर शेयर किया जा रहा था। एक सोशल मीडिया यूजर ने संयुक्त सचिव शालिनी पंडित के हस्ताक्षर वाले इस कथित राजपत्र को शेयर करते हुए लिखा, बैंक अब सिर्फ 5 दिन खुलेंगे, शनिवार को बैंकों की छुट्टी का प्रावधान। लोग इस पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
7: देखिए बैंक यूनियन ने हाल ही में 5 वर्किंग डे की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया। यह हड़ताल बैंक को शनिवार को बंद रखने

0: कॉन्सेप्ट लागू किया जाए। सरकार ने भी उनकी इस डिमांड पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में ये खबर सामने निकल कर आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोग इसे सच मानने लगे। हमने भी इसकी जांच शुरू की, लेकिन देखिए हमें ऐसी कोई जानकारी या आदेश की कॉपी देखने को नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। क्योंकि अगर ऐसे किसी भी आदेश को दिया गया होता तो एक प्रेस ब्रीफिंग या ट्वीट के जरिए इसके बारे में जरूर बताया गया होता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हमने खंगाला, लेकिन वहां पर भी 5 डे वर्किंग को लेकर कोई पोस्ट हमको देखने को नहीं मिला। तो देखिए, सरकार ने बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी होने का आदेश दिया होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती, आप खुद सोचिए। लेकिन ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हुई है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये उठता है कि देश के बड़े चैनल्स और अखबारों में ये खबर क्यों नहीं देखने को मिली। ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी शालिनी पंडित इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। वायरल गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम भी दिख रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर वित्त मंत्रालय ने यह आदेश दिया होता तो इस पर सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी शालिनी पंडित का नाम ही क्यों है, उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं दिख रहा है। 5 डे वर्किंग की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सभी पक्षों से बात करके ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे बैंक कर्मचारियों को सहूलत मिले और लोगों के काम पर भी असर ना हो। यानी अभी छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये उठता है कि कहीं एडिटेड गजट नोटिफिकेशन को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकल कर सामने आया। पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम जांच में जुटी। जांच के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। सर्च के दौरान हमें यह जानकारी मिली कि सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने भी वायरल हो रहे इस दस्तावेज की पड़ताल की है। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल किया जा रहा दस्तावेज फर्जी है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो। PIB फैक्ट चेक ने लोगों को ऐसे संदिग्ध कंटेंट से सावधान रहने और केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी संदिग्ध दावे को सत्यापित करने की अपील की है। पुष्टि के लिए हमने इस अधिसूचना को OpenAI के इमेज वेरिफिकेशन टूल पर भी चेक किया और पाया कि इसमें OpenAI का SynthID वाटरमार्क मौजूद है जिससे पुष्टि होती है कि इसे OpenAI के AI टूल्स की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा दस्तावेज फर्जी और AI जनरेटेड है। इसे OpenAI के AI टूल की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करते हैं वायरल हो रही दूसरी खबर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि राइट पूरे होने के बाद भी पैसे देने के समय ये लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। ये खबर क्या है, इसकी सच्चाई आगे आपको दिखाते हैं।
2: हेलो, पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही है, मैं कर दूंगी बाद में।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक राइडर और एक लड़की के बीच बहसबाजी हो रही है।
3: उसमें आपका नंबर आता है रैपिडो वाले में या QR, मैं उसमें कर दूंगी।
2: किसमें नंबर आता है यार?
3: अरे रैपिडो बुक किया है, उसमें आता है ना QR या नंबर, तो मैं कर दूंगी।
2: अरे अभी पेमेंट करके जाओ ना।
1: पहले ये सुनिए लड़की और बाइक राइडर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बीच सड़क पर उलझ गए।
2: तो आपने पेमेंट किया भी नहीं, आप ऐसे भाग रहे हो यार, हद है।
3: बट सर्वर ही नहीं चल रहा, मैं कैसे पेमेंट करूं?
2: पेमेंट करिए, पहले पेमेंट तो करो।
3: अरे जो बोल रही हूँ मैं।
1: दरअसल बाइक राइडर ने लड़की को तय जगह पर पहुँचाया, इसके बाद लड़की बिना पेमेंट किए वहां से जाने लगी। जिसके बाद बाइक राइडर ने लड़की को पेमेंट के लिए बोला तो लड़की तरह तरह के बहाना बनाने लगी।
2: अरे हाथे, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे कहाँ जाओगे बताओ, पेमेंट तो करो आप।
3: अरे नहीं,
2: रिपीडो फ्री में चलती है यार।
1: इसे शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की को बाइक राइडर ने शॉर्टकट लेकर फटाफट पहुंचा दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो लड़की आनाकानी करने लगी।
3: सर्वर चल जाएगा,
2: सर्वर कब, मेरे को क्या पता क्या नहीं चलना। आप करके तो देखो एक बार, ट्राई भी नहीं किया।
1: वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि बॉयफ्रेंड का दिया हुआ महंगा मोबाइल लेकर चलने वाली कुछ लड़कियां इस तरह के गरीब रैपिडो वालों को लूटने का काम करती।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद पैसे देने के समय ये लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। इसको लेकर एक नैरेटिव फैलाया जाने लगा। बिना सोचे समझे लोग इसमें कूद पड़े और रैपिड वालों को लूटने का आरोप लगाने लगे। हमारे सामने भी ये खबर निकलकर सामने आई। खबर की सच्चाई जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल की। वायरल वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हमने पहले वीडियो को देखा। इस दौरान हमें एक ऑटो नजर आया, इसके कलर पर हमारा ध्यान गया और इससे ये साफ हो गया कि ये दिल्ली का वीडियो है। इसके बाद वीडियो में एक खास चीज देखने को मिली। लड़की और रैपिडो वाले के बीच बहस हो रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई नहीं आता है। ये हमें हजम नहीं हुआ, क्योंकि अगर बीच सड़क पर इस तरह का मामला निकलकर सामने आता है तो वहां पर लोग जुट जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखिए, राइड खत्म होने के बाद लड़की पेमेंट नहीं देने के लिए बहानेबाजी करने लगी, रैपिडो वाले से भिड़ गई। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो रैपिडो वाले ने पुलिस को फोन करके वहां पर क्यों नहीं बुलाया। लड़की और रैपिडो वाले के बीच बड़े आराम से बहस हो रही है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई अपने हक का पैसा छोड़ता नहीं है, मेहनत के पैसे को लेने के लिए वो हर हथकंडा अपनाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नजर नहीं आया। एक तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक दोनों अपने रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं गुजर रहे हैं, सामने एक आइसक्रीम वाला भी नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर ये उठता है कि कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया। पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: हेलो,
0: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर एक खास नैरेटिव फैलाई जा रही थी। कुछ लोग सच झूठ जाने बगैर इस खबर में कूद गए और लड़की के व्यवहार पर सवाल खड़े करने लगे।
3: देख लिया मैंने करके।
2: अरे हद है यार, क्या बातें कर रहे हो आप।
3: अरे मुझे बोल रहे, भी कर दूंगी मैं।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर ये मिला। यहाँ इसे 27 सितम्बर को अपलोड किया गया था। जब हमने इस फेसबुक पेज के अकाउंट सेक्शन को खंगाला तो ये जानकारी सामने आई कि ये कंटेंट क्रिएटर का पेज है और यहाँ मनोरंजक वीडियो के साथ साथ ब्लॉग भी बनाया जाता है।
2: पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही मेरे से, पेमेंट नहीं हो रही, देख ले, कोई नहीं रही पेमेंट।
2: अब पागल उगल, पेमेंट तो बिना पेमेंट के जाओ, कैश दे दो।
3: अरे
2: अरे,
0: यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी वीडियो मिले जिनमें बाइक राइडर का पेमेंट को लेकर किसी न किसी लड़की से झगड़ा होता है। इनके तमाम वीडियो में वही बाइक नजर आती है जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है।
2: नो नो नो नो।
4: हेलो, एक्सक्यूज मी, ओ मैडम इधर आना।
3: क्या हुआ?
4: एक काम कर दोगे?
3: हाँ बोलो।
4: यार मेरे हाथ में ना चोट लगा हुआ है, तो ये ना पीछे एक बार पॉकेट से ना पैसा निकाल लें।
0: इसके अलावा भी ये नजर आया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की इस चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियो में भी दिखाई दे रही है।
4: और इधर आ जाओ यहाँ पे, इसमें से ना आप 500 रुपए निकाल लो।
0: इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: पेमेंट करूंगी तो आप तुम्हारे पास ही आएंगे?
2: मेरे पास आ जाएगा वो पेमेंट।
3: ओ गॉड।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला
1: ऐसे वीडियोज जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
7: इनकी इस मासूम अदा पर कौन न दिल हार जाए। मुस्कान देखिए जरा चेहरे पर, पारंपरिक लिबास में नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती, मुस्कुराती और साथ में अपने दोस्त को सिर पर बिठाकर खुश होती इस प्यारी बच्ची का वीडियो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। इन दिनों एक छोटी बच्ची और एक शख्स की बातचीत का ये अंदाज लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
8: तुम थे ही नहीं यहाँ पे।
7: बच्ची अपनी बालकनी से बाहर काम कर रहे एक शख्स से बात करती नजर आती है। वो शख्स एक ऊंची बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में रस्सी के सहारे काम कर रहा होता है।
8: याद आई थी, पर हमने याद करा था अंकल, ये कह रहे थे स्कूल गई है, तो तुमने कब आवाज दिया था मुझे।
7: दोनों के बीच होने वाली छोटी सी बातचीत इतनी प्यारी और अपनापन भरी है कि इसे देखने वाले लोग भी मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं। दो बड़े बॉल और दो नन्हे हाथ, बैलेंस बनाना है, दोनों हाथों को एक्टिव रखना है और सामने आई गेम को दूसरे हाथ को पास करना है। जरा सी चूक और आप गेम से आउट, इसलिए सबकी निगाहें एकदम निशाने पर। गेंद आते ही हाथ से दूसरी तरफ मोड़ दी जा रही है, कोई देरी नहीं, कोई चूक नहीं। संभव है ये मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बच्चों में एकाग्रता लाने, फोकस बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है। पर ये एक्सरसाइज है इतनी मजेदार कि यकीनन बच्चों को इसका इंतजार रहता होगा। जब क्लासरूम में संगीत बजने लगा तो अपने आप इन नन्हे बच्चों के पांव थिरकने लगे। बच्चों की मासूमियत, प्यारे एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे मूव्स देखकर यूजर्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्लासरूम में पढ़ाई के माहौल के बीच बच्चों की ये छोटी सी मस्ती देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए पूरा कमरा ही डांस फ्लोर में बदल गया हो। उनके डांस में किसी तरह की बनावट नजर नहीं आती और यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। लोकगीत हो या लोक नृत्य, एक कहानी कहते हैं जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में क्या किया जाए, इसे लेकर हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई घूमने निकलता है, कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता है, तो कोई अपने पुराने शौक को फिर से जीने लगता है। लेकिन नोएडा के कुछ बुजुर्गों ने अपनी रोज की सुबह की सैर को ही कुछ खास बना दिया। पार्क में टहलने निकले इन दोस्तों ने अचानक ऐसा सुर छेड़ा कि देखते ही देखते वहाँ का माहौल किसी छोटी सी संगीत महफिल जैसा हो गया।

0: कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत मांगने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं। एक नीली और सफेद रंग की बस सड़क पर चल रही है। पहली नजर में ये एक सामान्य बस लगती है, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे की ओर बढ़ता है असली ट्विस्ट सामने आता है। बस में आगे कोई सामान्य इंजन काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक लाल रंग के ट्रैक्टर से जोड़ा गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर बड़े मजे से बस को खींचते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा है और बस के पायदान पर खड़े यात्री आराम से सफर का आनंद ले रहे हैं। बंदर तो बंदर है, वो कहीं हो और अपनी उपस्थिति दर्ज न कराए ऐसा हो नहीं सकता। अब इसे ही देख लीजिए, भालू और कुत्ते की दोस्ती से इन्हें भला क्या परेशानी थी। देखा नहीं गया इनसे इतना प्यार, एकदम से टपक पड़े और फिर तो देख ही रहे हैं इनके कारनामे। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें दूर करने की, और जब जी भर गया तो निकल पड़े, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है करो, हम तो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं, बंदर कुत्ते को बचाने आया था या दोनों की केमिस्ट्री से जल रहा था, अब ये तो वही जाने। बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। नूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आस्था के सफर पर, जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पहाड़ों पर पर्यटन को भी खूब पंख लग रहे हैं। नैनीताल में मौजूद बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम कैंची धाम पहुंच रहे हैं। बीते दिनों 3 दिन के वीकेंड की वजह से कैंची धाम परिसर से लेकर सड़क तक लोगों से खचाखच नजर आया, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
2: नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच बसे बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सड़क से लेकर मंदिर तक श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है, जिसे देखो वही कैंची धाम की ओर खींचा चला आ रहा है। आस्था के इस महाकाफिला का रुख उस संत के धाम की ओर है, जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है, तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार, कोई उन्हें नीब करौली बाबा कहता है, तो कोई नीम करौली बाबा, कोई महाराज जी कहता है, तो कोई हांडी वाले बाबा। नीम करौली बाबा की कर्मभूमि कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले भी उमड़ती थी, लेकिन जब से बाबा नीम करौली महाराज के जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने पर्दे पर दस्तक दी है, तब से न सिर्फ इस धाम में श्रद्धालुओं की दिलचस्पी बढ़ी है, बल्कि रिकॉर्ड संख्या में इस धाम के दर्शन करने लोग भी उमड़ पड़े हैं।
3: जो प्रचार प्रसार तो नहीं बोल सकते, ये इनकी कृपा दृष्टि है जो सब लोगों पे बिखर रही है। अगर देखने जाए तो बाबा को किसी भी प्रचार और प्रसार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाबा अपने आप में एक प्रचार और प्रसार है, तो उनके लिए किसी के आवागमन मतलब उनको अपने आप में है। एक बोलते हैं कि हनुमान जी का अंश ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, वो अपने आप में एक अनुभूति है, जो यहाँ पे आते हैं वही इस चीज को समझ पाते हैं।
2: आलम यह है कि कैंची धाम में भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में बड़ी तादाद युवाओं की भी है। कोई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है, तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार कैंची धाम पहुंचकर बाबा की भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना चाहते हैं।
4: अब कुछ भी बोलो मत, जो बाबा का चमत्कार है वही देखो और आगे आने वाली पीढ़ियों भी देखो कि जो अपना सनातन धर्म के अंदर जो चल रहा है उसी बात पे गौर करो।
5: काफी टाइम पहले से थी, बट अब जाके बाबा ने मौका दिया है अपने दर्शन करने का देने का, और हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा रहते हैं। और आस्था तो जैसे अभी मूवी आई है उसके बाद मैंने सुनने को मिला है कि उसके बाद बहुत ज्यादा आस्था बढ़ गई है।
2: सड़क पर भारी संख्या में कतार में लगी इन गाड़ियों की मौजूदगी को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां आस्था किस कदर उमड़ रही है। खासकर वीकेंड पर तो यहाँ मानो जन समुद्र ही उमड़ पड़ा। कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या पहले करीब 8 लाख थी, जो फिल्म के प्रभाव के बाद 3 गुना बढ़कर 24 लाख तक पहुँच गई है। आम दिनों में रोजाना 4 से 5 हजार भक्त आते थे, अब 6 हजार के पार आने लगे हैं। वीकेंड यानी शनिवार रविवार को ये संख्या 15 हजार से 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुँच रही है। आलम यह है कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच जो सफर पहले 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाता था, भारी जाम की वजह से श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग रहा था। लोगों को जाम की तकलीफ से बचाने के लिए पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था।
6: नैनीताल और आसपास के गांवों में वाहन अधिक संख्या में पार्किंग नहीं है, तो आउटर एरियाज में जो पार्किंग स्थल हमारे डेजिग्नेटेड है वहाँ से सड़क के माध्यम से इन जगहों पे पर्यटकों को भेजा जा रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।
2: सोशल मीडिया की वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में कैंची धाम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों और जीवन दर्शन से जुड़ी कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई हनुमान अंश फिल्म ने इसमें और इजाफा कर दिया, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: क्या आप लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं? डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं? तनाव बढ़ा रहता है? कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: चमोली में माड़ा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण। झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। कार्ल डेसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज। इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। क्या है शक्ति? हमारी सभ्यता में शक्ति देवी का प्रतिरूप है, संसार के सृजन का आधार है। हमारे देश में न केवल देवी भगवती को शक्ति रूप में पूजा जाता है, बल्कि देश और समाज की वो अद्भुत अदम्य महिलाएं जो अपने अपने कर्म क्षेत्रों में शक्ति रूपेण संस्थिता के मंत्र को चरितार्थ करती हैं, वो भी हमारे यहाँ सदा से आदरणीय रही हैं और उन्हें बेहद गर्व और उत्साह के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। अब से चार दिनों बाद देश में शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, लेकिन नवरात्र से पहले ही अब की बार जापान में भारत की शक्ति का उत्सव पूरी दुनिया ने देखा। ये दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, एक शक्ति उत्सव भारत में और दूसरा जापान में। देश में एक तरफ शहर शहर देवी माँ के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर शहर बेटियों का स्वैग चल रहा है। एक तरफ मूर्तियों और पंडालों का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ एशियन गेम्स में देश की विजय पताका लहराकर लौटी बेटियों के सम्मान में रैलियां निकाली जा रही हैं, समारोह यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में इस बार एशियन गेम्स में भारत का अभियान शक्ति के नाम रहा। भारत की बेटियों ने एशियन गेम्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारत ने इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें से लड़कियों के इवेंट में 11 और लड़कों के इवेंट में 7 गोल्ड मेडल आए हैं, जबकि 3 गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में जीते गए। इससे पहले साल 2002 में बुसान में हुए एशियन गेम्स में भारत की लड़कियां आगे रही थी, तब भारत ने लड़कियों के इवेंट में 6 और लड़कों के इवेंट में 5 गोल्ड जीते थे। यानी साल 2002 के बुसान एशियाड के बाद ये पहली बार हुआ जब गोल्ड मेडल जीतने के मामले में भारत की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया। वैसे सिर्फ एशियन गेम्स ही क्यों, बल्कि हाल ही के सालों में विशेषकर 2024 से 2026 के बीच में भारत की महिला खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कई बड़ी चैंपियनशिप्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट्स में पूरी तरह डोमिनेट किया। तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग, एथलेटिक्स, कहीं भी तो कम नहीं भारत की बेटियां। बल्कि अब तो कहना पड़ेगा हमारी छोरियां छोरों से कम है के, बल्कि हमारी छोरियां छोरों से ज्यादा ही हैं हर बात में और हर जगह पर। एशियन गेम्स से बॉक्सिंग का गोल्ड जीतकर लौटी चैंपियन लवलीना बोरगोहेन से जब हमने यही सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
1: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप। यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में। तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया,
2: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है। पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है। जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है, हाँ गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था, तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर लिव इन द प्रेजेंट?
2: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ। ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है। 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस।
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट, एम इज LA 2028 सेम।
0: तो मेडल्स की चमक बिखरी है, देश को फेस्टिव सीजन से पहले सेलिब्रेट करने का बहाना मिल गया है। वाकई में एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम इंडिया ने अपने इस विजयी अभियान में 85 मेडल जीते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं भारत ने कौन कौन से इवेंट्स में झंडे गाड़े हैं और क्यों इस मेडल टैली को देखकर 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए देश की उम्मीदों को पंख लग गए हैं।
3: ऊपर उठ रहा है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया है। भारत की ऐतिहासिक जीत।

0: देश के हवाई अड्डों से लेकर शहरों गांवों की गलियों तक आज उत्सव का माहौल है। ये चैंपियंस का स्वागत है, उन चैंपियंस का जिन्होंने अपने शानदार खेल से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जापान की धरती पर आयोजित 20वें एशियन गेम्स 2026 में भारत के एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने इस साल कुल 85 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सफर में टीम इंडिया ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। 20वें एशियन गेम्स के सफर में भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। सुनहरी कामयाबी की इस फेहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ एजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मोहोर, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की टीम ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। यहां भारतीय तीरंदाजों ने 3 गोल्ड अपने नाम किए। आईची नागोया में न केवल भारत की तीरंदाजी टीम ने अपनी धाक जमाई, बल्कि क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरहोगेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। कुश्ती में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के अनुसार जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिया। शूटिंग में नीरू धांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वही कमान जीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात ये रही कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच डाला। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आईची नागोया के बाद अब भविष्य का खेल महाकुंभ लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 हमारा इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही कि भारत की ये चैंपियन एशिया के बाद दुनिया फतह करने के मिशन पर भी शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाकर देश का सर्वगर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का शहर शहर एयरपोर्ट्स पर भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाओं की बारिश के साथ और लहराते हुए तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारों के बीच में फैंस के दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, वेलकम होम चैंपियंस।

दिवाली में अभी वक्त है, लेकिन चंबा में दिवाली आ चुकी है। शहर की बेटी एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर लौटी है, सो सारा शहर जश्न मना रहा है। चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आईजी नगोया में झंडे गाड़ कर सीमा वापस लौटी तो बैंड बाजे के साथ सीमा का स्वागत हुआ। आरती उतार कर बेटी का गृह प्रवेश करवाया गया। घर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, शहर भर का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। नाचने गाने जश्न मनाने का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सीमा के स्कूल में भी शानदार स्वागत समारोह हुआ। मंच पर सीमा को हिमाचली टोपी पहनाई गई, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कभी जिस स्कूल के प्ले ग्राउंड पर सीमा ने रनिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, आज वहां सीमा को उड़न परी कहकर सम्मानित किया जा रहा था। सीमा के लिए ये कभी न भुलाने वाले पल था।

0: कुछ ऐसे ही यादगार पलों का गवाह बना महाराष्ट्र का अमरावती शहर। जापान में हुए एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और अमरावती का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उनके शहर में जोरदार स्वागत हुआ। जापान की धरती से लौटे पदक वीरों के लिए अमरावती में विक्ट्री रैली हुई। बता दें कि अमरावती की स्टार तीरंदाज कुमकुम मोहोड ने रिकर्व आर्चरी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। जबकि यशदीप भोगे ने पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है।
1: अमरावती आकर कितना अच्छा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा स्वागत किया है इसके लिए भी मैं बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, यहाँ का DSO का, सर लोगों का, मैडम का, खासदार साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरावती में बाजी मारी है
2: जी जरूर, और अमरावती की सुवर्ण कप में सबसे ज्यादा मेडल लेके आई है तो अमरावती की बाजी जरूर मारेगी।
0: चैंपियंस के लिए निकली इस विजय रैली में मानो सारा शहर विजेताओं के स्वागत में उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश के बीच खिलाड़ी खुली जीप में आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ चल रहे थे अमरावती के सैकड़ों लोग। स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर उम्र और वर्ग के लोग बेहद खुशी और जोश के साथ इस रैली का हिस्सा बने।

0: विजेताओं की इस रैली में खिलाड़ियों के कोच, ट्रेनर्स, खेल विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। आम लोगों के साथ ही चैंपियंस के स्वागत के लिए जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। रैली के बाद मंच पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, सांसद अनिल बोंडे, विधायक सुलभा खोडके और भाजपा नेता संगीता शिंदे समेत कई गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का इस मौके पर सम्मान किया। मेडल जीतकर लौटे इन खिलाड़ियों के लिए ये दिन खास है। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराने के बाद अब नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर हैं।
1: मोहन ने जो अमरावती की शान बढ़ाई है, हम सभी अमरावती वासी बहुत खुश है और आने वाले ओलंपिक में 100% मेडल मिलाने के लिए जिला प्रशासन, क्रीड़ा विभाग, हम सब उसकी तैयारी के लिए उसको सहयोग देंगे। आज हमको अमरावती के लिए 4 मेडल प्राप्त हुए, उसके लिए बहुत बहुत खुशी जाहिर करते हैं।
0: एशियन गेम्स खत्म होने के साथ ही शहर शहर चैंपियंस के स्वागत का ये सिलसिला यूं ही चला। एशियन गेम्स में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। जापान में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह स्वदेश लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इनके स्वागत में लोगों की भीड़ जुट गई।

वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का भी जोरदार वेलकम हुआ। इसी कड़ी में वतन वापसी के बाद क्रिकेटर तिलक वर्मा का भी शानदार स्वागत किया गया।

चैंपियंस के स्वागत की तस्वीरें चेन्नई से भी आई, जहां तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन खुद एशियन गेम्स चैंपियंस का स्वागत करने पहुंचे। स्कूली बच्चों और लोक कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।

इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार में मंत्री विग्नेश एशियन गेम्स में जोरदार प्रदर्शन कर वापस लौटी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट विद्या राम राज से मिलने मीनाक्षीपुरम पहुंची।

0: अमरावती से धनंजय साबले और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हर रोज अलार्म से पहले जागना, यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती की उम्र में मैदान से दोस्ती कर लेना, कोच को ही सब कुछ मान लेना, शादी ब्याह त्योहार बर्थडे पार्टी सब कुछ भुलाकर कड़े डिसिप्लिन के साथ बरसों तक एक ही गोल पर फोकस्ड रहना, जी तोड़ मेहनत करना। एक चैंपियन एथलीट बनने की यात्रा तपस्या से कम नहीं, लेकिन इसी तपस्या इसी यात्रा को सफलतापूर्वक अगर आपने खत्म कर लिया तो फिर कहीं जाकर आता है वो दिन जब आप वापस लौटते हैं और एयरपोर्ट पर आपको लेने बस आपका परिवार नहीं बल्कि आपका सारा शहर आता है।

0: ये महज जश्न नहीं, कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजो कर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। ये लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देखकर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए ये गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028, बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही है उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: क्या आप लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण। झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। कार्ल डिसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज। इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोली बील, पूर्त से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना जांचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ की हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल गजट नोटिफिकेशन की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद भी पैसे देने के समय लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण रोड पर तमाशा हो गया। क्या है वायरल वीडियो का दावे का सच, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: SBI सहित सभी सरकारी बैंकों में शनिवार को भी छुट्टी क्या पूरी हो गई है? 8 दिन अवकाश की डिमांड। दरअसल एक वायरल लेटर में केंद्र सरकार के हवाले से यह दावा किया गया है कि बैंकों में अब हर शनिवार को अवकाश रहेगा और सिर्फ 5 डे वर्किंग होगी। ये चौंकाने वाला दावा हमारे सामने भी आया, हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या निकलकर सामने आया देखते हैं।
2: बैंक यूनियंस काफी समय से हफ्ते में 5 दिन काम करने और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से इसके लिए कमेटी बनाने और दूसरी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिए जाने के बाद यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर के बीच होने वाली 3 दिन की हड़ताल टाल दी थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक गेजेट नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसे कई सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार के नए फैसले के तौर पर शेयर किया जा रहा था। एक सोशल मीडिया यूजर ने संयुक्त सचिव शालिनी पंडित के हस्ताक्षर वाले इस कथित राजपत्र को शेयर करते हुए लिखा, बैंक अब सिर्फ 5 दिन खुलेंगे, शनिवार को बैंकों की छुट्टी का प्रावधान। लोग इस पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: देखिए, बैंक यूनियन ने हाल ही में 5 वर्किंग डे की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया। यह हड़ताल बैंक को शनिवार को बंद रखने के लिए की गई थी। अब अचानक सोशल मीडिया पर यह खबर निकल कर आई है कि हर शनिवार को देश भर में बैंक बंद रहने वाले हैं। यह खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि अभी देश के सभी सरकारी बैंकों हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। बैंक कर्मचारियों के संगठनों की मांग है कि कॉरपोरेट्स की तर्ज पर बैंकों में 5 डे वर्किंग का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए। सरकार ने भी उनकी इस डिमांड पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में यह खबर सामने निकल कर आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोग इसे सच मानने लगे। हमने भी इसकी जांच शुरू की, लेकिन देखिए, हमें ऐसी कोई जानकारी या आदेश की कॉपी देखने को नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। क्योंकि अगर ऐसे किसी भी आदेश को दिया गया होता तो एक प्रेस ब्रीफिंग या ट्वीट के जरिए इसके बारे में जरूर बताया गया होता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हमने खंगाला, लेकिन वहां पर भी 5 डे वर्किंग को लेकर कोई पोस्ट हमको देखने को नहीं मिला। तो देखिए, सरकार ने बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी होने का आदेश दिया होता

0: पर ही वायरल हुई है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये उठता है कि देश के बड़े चैनल्स और अखबारों में ये खबर क्यों नहीं देखने को मिली। ओडिशा कैडर की आईएएस अधिकारी शालिनी पंडित इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। वायरल गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम भी दिख रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर वित्त मंत्रालय ने यह आदेश दिया होता तो इस पर सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी शालिनी पंडित का नाम ही क्यों है, उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं दिख रहा है। 5-day वर्किंग की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सभी पक्षों से बात करके ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे बैंक कर्मचारियों को सहूलत मिले और लोगों के काम पर भी असर ना हो। यानी अभी छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये उठता है कि कहीं एडिटेड गजट नोटिफिकेशन को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया। पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम जांच में जुटी। जांच के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें 5-day वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। सर्च के दौरान हमें जानकारी मिली कि सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने भी वायरल हो रहे इस दस्तावेज की पड़ताल की है। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल किया जा रहा दस्तावेज फर्जी है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो। PIB फैक्ट चेक ने लोगों को ऐसे संदिग्ध कंटेंट से सावधान रहने और केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी संदिग्ध दावे को सत्यापित करने की अपील की है। पुष्टि के लिए हमने इस अधिसूचना को OpenAI के इमेज वेरिफिकेशन टूल पर भी चेक किया और पाया कि इसमें OpenAI का SynthID वाटरमार्क मौजूद है जिससे पुष्टि होती है कि इसे OpenAI के AI टूल्स की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा दस्तावेज फर्जी और AI जनरेटेड है। इसे OpenAI के AI टूल की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करते हैं वायरल हो रही दूसरी खबर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि राइट पूरे होने के बाद भी पैसे देने के समय ये लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। ये खबर क्या है, इसकी सच्चाई आगे आपको दिखाते हैं।
2: हेलो, पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही है, मैं कर दूंगी बाद में।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक राइडर और एक लड़की के बीच बहसबाजी हो रही है।
3: उसमें आपका नंबर आता है रैपिडो वाले में या QR, मैं उसमें कर दूंगी।
2: किसमें नंबर आता है यार?
3: अरे रैपिडो बुक किया है, उसमें आता है ना QR या नंबर, तो मैं कर दूंगी।
2: अरे अभी पेमेंट करके जाओ ना।
1: पहले ये सुनिए लड़की और बाइक राइडर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बीच सड़क पर उलझ गए।
2: तो आपने पेमेंट किया भी नहीं, आप ऐसे भाग रहे हो यार, हद है।
3: बट सर्वर ही नहीं चल रहा, मैं कैसे पेमेंट करूं?
2: पेमेंट करिए पहले, पेमेंट तो करो।
3: अरे जो बोल रही हूँ मैं।
1: दरअसल बाइक राइडर ने लड़की को तय जगह पर पहुंचाया, इसके बाद लड़की बिना पेमेंट किए वहां से जाने लगी। जिसके बाद बाइक राइडर ने लड़की को पेमेंट के लिए बोला तो लड़की तरह तरह के बहाना बनाने लगी।
2: अरे हाथे, ओ मैं, ओ एक्सक्यूज मी, कहां जा रहे हो आप? ऐसे कहां जाओगे बताओ, पेमेंट तो करो आप।
3: अरे नहीं,
2: रैपिडो फ्री में चलती है।
1: इसे शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की को बाइक राइडर ने शॉर्टकट लेकर फटाफट पहुंचा दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो लड़की आनाकानी करने लगी।
3: जब मेरा सर्वर चल जाएगा कर दूंगी।
2: सर्वर कब, मेरे को क्या पता क्या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, आप करके तो देखो एक बार, ट्राई भी नहीं किया आप।
1: वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि बॉयफ्रेंड का दिया हुआ महंगा मोबाइल लेकर चलने वाली कुछ लड़कियां इस तरह के गरीब रैपिडो वालों को लूटने का काम करती हैं।
3: सर्वर चलेगा, नहीं चल रहा है ना, अभी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं बताओ।
2: तो एक बार चेक करो।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: देखिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद पैसे देने के समय ये लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। इसको लेकर एक नैरेटिव फैलाया जाने लगा, बिना सोचे समझे लोग इसमें कूद पड़े और रैपिडो वालों को लूटने का आरोप लगाने लगे। हमारे सामने भी ये खबर निकलकर सामने आई। खबर की सच्चाई जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल की। वायरल वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हमने पहले वीडियो को देखा, इस दौरान हमें एक ऑटो नजर आया, इसके कलर पर हमारा ध्यान गया और इससे ये साफ हो गया कि ये दिल्ली का वीडियो है।

0: इसके बाद वीडियो में एक खास चीज देखने को मिली, लड़की और रैपिडो वाले के बीच बहस हो रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई नहीं आता है, ये हमें हजम नहीं हुआ, क्योंकि अगर बीच सड़क पर इस तरह का मामला निकलकर सामने आता है तो वहां पर लोग जुट जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखिए, राइड खत्म होने के बाद लड़की पेमेंट नहीं देने के लिए बहानेबाजी करने लगी, रैपिडो वाले से भिड़ गई। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो रैपिडो वाले ने पुलिस को फोन करके वहां पर क्यों नहीं बुलाया। लड़की और रैपिडो वाले के बीच बड़े आराम से बहस हो रही है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई अपने हक का पैसा छोड़ता नहीं है, मेहनत के पैसे को लेने के लिए वो हर हथकंडा अपनाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नजर नहीं आया। एक तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक दोनों अपने रोल का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं गुजर रहे हैं, सामने एक आइसक्रीम वाला भी नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर ये उठता है कि कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: हेलो,
2: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर एक खास नैरेटिव फैलाई जा रही थी। कुछ लोग सच झूठ जाने बगैर इस खबर में कूद गए और लड़की के व्यवहार पर सवाल खड़े करने लगे।
3: देख लिया मैंने करके।
4: अरे हद है यार, क्या बातें कर रहे हो आप?
3: अरे जब बोल रहे भी कर दूंगी मैं।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर ये मिला, यहाँ इसे 27 सितम्बर को अपलोड किया गया था। जब हमने इस फेसबुक पेज के अकाउंट सेक्शन को खंगाला तो ये जानकारी सामने आई कि ये कंटेंट क्रिएटर का पेज है और यहाँ मनोरंजक वीडियो के साथ साथ ब्लॉग भी बनाया जाता है।
4: पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही मेरे से, पेमेंट नहीं हो रही, देख ले, कोई नहीं रही पेमेंट।
4: आप पागल उगल, पेमेंट तो बिना पेमेंट के जाओ, कैश दे दो।
2: यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी वीडियो मिले जिनमें बाइक राइडर का पेमेंट को लेकर किसी न किसी लड़की से झगड़ा होता है। इनके तमाम वीडियो में वही बाइक नजर आती है जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है।
5: नो नो नो नो।
6: हेलो, एक्सक्यूज मी, ओ मैडम इधर आना।
7: क्या हुआ?
6: एक काम कर दोगे?
7: हाँ बोलो।
6: यार मेरे हाथ में ना चोट लगा हुआ, तो ये ना पीछे एक बार पॉकेट से ना पैसा निकाल लें।
2: इसके अलावा भी ये नजर आया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की इस चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियो में भी दिखाई दे रही है।
6: और इधर आ जाओ यहाँ पे, इसमें से ना आप 500 रुपया निकाल लो।
2: इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: पेमेंट करूंगी तो आप तुम्हारे पास ही आएंगे?
6: मेरे पास आ जाएगा वो पेमेंट।
3: ओ गॉड।
0: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त उछला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
11: इनकी इस मासूम अदा पर कौन न दिल हार जाए। मुस्कान देखिए जरा चेहरे पर, पारंपरिक लिबास में नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती, मुस्कुराती और साथ में अपने दोस्त को सिर पर बिठाकर खुश होती इस प्यारी बच्ची का वीडियो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। इन दिनों एक छोटी बच्ची और एक शख्स की बातचीत का ये अंदाज लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
12: कल
13: तो
1: तुम थे ही नहीं यहाँ पे।
11: बच्ची अपनी बालकनी से बाहर काम कर रहे एक शख्स से बात करती नजर आती है। वो शख्स एक ऊंची बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में रस्सी के सहारे काम कर रहा होता है।
1: याद आई थी, पर हमने याद करा था अंकल, ये कह रहे थे स्कूल गई है, तो तुमने कब आवाज दिया था मुझे।
11: दोनों के बीच होने वाली छोटी सी बातचीत इतनी प्यारी और अपनापन भरी है कि इसे देखने वाले लोग भी मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं। दो बड़े बॉल और दो नन्हे हाथ, बैलेंस बनाना है, दोनों हाथों को एक्टिव रखना है और सामने आई गेंद को दूसरे हाथ को पास करना है। जरा सी चूक और आप गेम से आउट, इसलिए सबकी निगाहें एकदम निशाने पर। गेंद आते ही हाथ से दूसरी तरफ मोड़ दी जा रही है, कोई देरी नहीं, कोई चूक नहीं। संभव है ये मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बच्चों में एकाग्रता लाने, फोकस बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है। पर ये एक्सरसाइज है इतनी मजेदार कि यकीनन बच्चों को इसका इंतजार रहता होगा। जब क्लासरूम में संगीत बजने लगा तो अपने आप इन नन्हे बच्चों के पांव थिरकने लगे। बच्चों की मासूमियत, प्यारे एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे मूव्स देखकर यूजर्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्लासरूम में पढ़ाई के माहौल के बीच बच्चों की ये छोटी सी मस्ती देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए पूरा कमरा ही डांस फ्लोर में बदल गया हो। उनके डांस में किसी तरह की बनावट नजर नहीं आती और यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। लोकगीत हों या लोक नृत्य, एक कहानी कहते हैं जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, पर उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में क्या किया जाए, इसे लेकर हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई घूमने निकलता है, कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता है, तो कोई अपने पुराने शौक को फिर से जीने लगता है। लेकिन नोएडा के कुछ बुजुर्गों ने अपनी रोज की सुबह की सैर को ही कुछ खास बना दिया।

0: मजा।
1: पार्क में टहलने निकले इन दोस्तों ने अचानक ऐसा सुर छेड़ा कि देखते ही देखते वहाँ का माहौल किसी छोटी सी संगीत महफिल जैसा हो गया। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत मांगने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हो। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं। एक नीली और सफेद रंग की बस सड़क पर चल रही है। पहली नजर में ये एक सामान्य बस लगती है, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे की ओर बढ़ता है असली ट्विस्ट सामने आता है। बस में आगे कोई सामान्य इंजन काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक लाल रंग के ट्रैक्टर से जोड़ा गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर बड़े मजे से बस को खींचते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा है और बस के पायदान पर खड़े यात्री आराम से सफर का आनंद ले रहे हैं। बंदर तो बंदर है, वो कहीं हो और अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराए ऐसा हो नहीं सकता। अब इसे ही देख लीजिए, भालू और कुत्ते की दोस्ती से इन्हें भला क्या परेशानी थी। देखा नहीं गया इनसे इतना प्यार, एकदम से टपक पड़े और फिर तो देख ही रहे हैं इनके कारनामे। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें दूर करने की, और जब जी भर गया तो निकल पड़े, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो करना है करो, हम तो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं, बंदर कुत्ते को बचाने आया था या दोनों की केमिस्ट्री से जल रहा था। अब ये तुम वही जाने। बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। नूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आस्था के सफर पर, जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पहाड़ों पर पर्यटन को भी खूब पंख लग रहे हैं। नैनीताल में मौजूद बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम कैंची धाम पहुंच रहे हैं। बीते दिनों 3 दिन के वीकेंड की वजह से कैंची धाम परिसर से लेकर सड़क तक लोगों से खचाखच नजर आया, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
2: नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच बसे बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सड़क से लेकर मंदिर तक श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है, जिसे देखो वही कैंची धाम की ओर खींचा चला आ रहा है। आस्था के इस महाकाफिला का रुख उस संत के धाम की ओर है, जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है, तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार, कोई उन्हें नीब करौली बाबा कहता है, तो कोई नीम करौली बाबा, कोई महाराज जी कहता है, तो कोई हांडी वाले बाबा। नीम करौली बाबा की कर्मभूमि कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले भी उमड़ती थी, लेकिन जब से बाबा नीम करौली महाराज के जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने पर्दे पर दस्तक दी है, तब से न सिर्फ इस धाम में श्रद्धालुओं की दिलचस्पी बढ़ी है, बल्कि रिकॉर्ड संख्या में इस धाम के दर्शन करने लोग भी उमड़ पड़े हैं।
3: जो प्रचार प्रसार तो नहीं बोल सकते, ये इनकी कृपा दृष्टि है जो सब लोगों पे बिखर रही है। अगर देखने जाए तो बाबा को किसी भी प्रचार और प्रसार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाबा अपने आप में एक प्रचार और प्रसार है, तो उनके लिए किसी के आवागमन मतलब उनको अपने आप में है। एक बोलते हैं कि हनुमान जी का अंश ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, वो अपने आप में एक अनुभूति है, जो यहाँ पे आते वही इस चीज को समझ पाते हैं।
2: आलम यह है कि कैंची धाम में भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में बड़ी तादाद युवाओं की भी है। कोई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है, तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार कैंची धाम पहुंचकर बाबा की भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना चाहते हैं।
4: अब कुछ भी बोलो मत, जो बाबा का चमत्कार है वही देखो और आगे आने वाली पीढ़ियों भी देखो कि जो अपना सनातन धर्म के अंदर जो चल रहा है उसी बात पे गौर करो।
5: काफी टाइम पहले से थी, बट अब जाके बाबा ने मौका दिया है अपने दर्शन करने का देने का, और हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा रहते हैं। और आस्था तो जैसे अभी मूवी आई है उसके बाद मैंने सुनने को मिला है कि उसके बाद बहुत ज्यादा आस्था बढ़ गई है।
2: सड़क पर भारी संख्या में कतार में लगी इन गाड़ियों की मौजूदगी को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आस्था किस कदर उमड़ रही है। खासकर वीकेंड पर तो यहाँ मानो जन समुद्र ही उमड़ पड़ा। कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या पहले करीब 8 लाख थी, जो फिल्म के प्रभाव के बाद 3 गुना बढ़कर 24 लाख तक पहुँच गई है। आम दिनों में रोजाना 4 से 5 हजार भक्त आते थे, अब 6 हजार के पार आने लगे हैं। वीकेंड यानी शनिवार रविवार को ये संख्या 15 हजार से 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुँच रही है। आलम यह है कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच जो सफर पहले 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाता था, भारी जाम की वजह से श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग रहा था। लोगों को जाम की तकलीफ से बचाने के लिए पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था।
6: नैनीताल और आसपास के स्थानों में वाहन अत्यधिक संख्या में पार्किंग नहीं है, तो आउटर एरिया में जो पार्किंग स्थल हमारे डेजिग्नेटेड है वहाँ से सड़क के माध्यम से इन जगहों पे पर्यटकों को भेजा जा रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।
2: सोशल मीडिया की वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में कैंची धाम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों और जीवन दर्शन से जुड़ी कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई हनुमान अंश फिल्म ने इसमें और इजाफा कर दिया, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: क्या आप लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं? डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं? तनाव बढ़ा रहता है? कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण। झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डेसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज। इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोलीबील पोर्ट से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। क्या है शक्ति? हमारी सभ्यता में शक्ति देवी का प्रतिरूप है, संसार के सृजन का आधार है। हमारे देश में न केवल देवी भगवती को शक्ति रूप में पूजा जाता है, बल्कि देश और समाज की वो अद्भुत अदम्य महिलाएं जो अपने अपने कर्म क्षेत्रों में शक्ति रूपेण संस्थिता के मंत्र को चरितार्थ करती हैं, वो भी हमारे यहाँ सदा से आदरणीय रही हैं और उन्हें बेहद गर्व और उत्साह के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। अब से चार दिनों बाद देश में शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, लेकिन नवरात्र से पहले ही अब की बार जापान में भारत की शक्ति का उत्सव पूरी दुनिया ने देखा। ये दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, एक शक्ति उत्सव भारत में और दूसरा जापान में। देश में एक तरफ शहर शहर देवी मां के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर शहर बेटियों का स्वैग चल रहा है। एक तरफ मूर्तियों और पंडालों का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ एशियन गेम्स में देश की विजय पताका लहराकर लौटी बेटियों के सम्मान में रैलियां निकाली जा रही हैं, समारोह यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में इस बार एशियन गेम्स में भारत का अभियान शक्ति के नाम रहा। भारत की बेटियों ने एशियन गेम्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारत ने इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें से लड़कियों के इवेंट में 11 और लड़कों के इवेंट में 7 गोल्ड मेडल आए हैं, जबकि 3 गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में जीते गए। इससे पहले साल 2002 में बुसान में हुए एशियन गेम्स में भारत की लड़कियां आगे रही थी, तब भारत ने लड़कियों के इवेंट में 6 और लड़कों के इवेंट में 5 गोल्ड जीते थे। यानी साल 2002 के बुसान एशियाड के बाद यह पहली बार हुआ जब गोल्ड मेडल जीतने के मामले में भारत की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया। वैसे सिर्फ एशियन गेम्स ही क्यों, बल्कि हाल ही के सालों में विशेषकर 2024 से 2026 के बीच में भारत की महिला खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कई बड़ी चैंपियनशिप्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट्स में पूरी तरह डोमिनेट किया। तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग, एथलेटिक्स, कहीं भी तो कम नहीं भारत की बेटियां। बल्कि अब तो कहना पड़ेगा हमारी छोरियां छोरों से कम है के, बल्कि हमारी छोरियां छोरों से ज्यादा ही हैं हर बात में और हर जगह पर। एशियन गेम्स से बॉक्सिंग का गोल्ड जीतकर लौटी चैंपियन लवलीना बोरगोहेन से जब हमने यही सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
1: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया।
2: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है। पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है। जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है, हाँ गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था, तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
2: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ। ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है। 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस।
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट, एम इज LA 2028 सेम।
0: तो मेडल्स की चमक बिखरी है, देश को फेस्टिव सीजन से पहले सेलिब्रेट करने का बहाना मिल गया है। वाकई में एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम इंडिया ने अपने इस विजयी अभियान में 85 मेडल जीते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं भारत ने कौन कौन से इवेंट्स में झंडे गाड़े हैं और क्यों इस मेडल टैली को देखकर 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए देश की उम्मीदों को पंख लग गए हैं।
3: ऊपर उठ रहा है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया है। भारत की ऐतिहासिक जीत,

0: देश के हवाई अड्डों से लेकर शहरों गांवों की गलियों तक आज उत्सव का माहौल है। ये चैंपियंस का स्वागत है, उन चैंपियंस का जिन्होंने अपने शानदार खेल से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जापान की धरती पर आयोजित 20वें एशियन गेम्स 2026 में भारत के एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने इस साल कुल 85 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सफर में टीम इंडिया ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। 20वें एशियन गेम्स के सफर में भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। सुनहरी कामयाबी की इस फेहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ एजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मोहोड़, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की टीम ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। यहां भारतीय तीरंदाजों ने 3 गोल्ड अपने नाम किए। आईची नागोया में न केवल भारत की तीरंदाजी टीम ने अपनी धाक जमाई, बल्कि क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। कुश्ती में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के अनुसार जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिया। शूटिंग में नीरू धांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वही कमान जीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात ये रही कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच डाला। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आईची नागोया के बाद अब भविष्य का खेल महाकुंभ लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 हमारा इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही कि भारत की ये चैंपियन एशिया के बाद दुनिया फतह करने के मिशन पर भी शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाकर देश का सर्वगर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का शहर शहर एयरपोर्ट्स पर भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाओं की बारिश के साथ और लहराते हुए तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारों के बीच में फैंस के दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, वेलकम होम चैंपियंस।

0: दिवाली में अभी वक्त है, लेकिन चंबा में दिवाली आ चुकी है। शहर की बेटी एशियन गेम्स में तिरंगा लहरा कर लौटी है, सो सारा शहर जश्न मना रहा है। चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आईटी नगोया में झंडे गाड़ कर सीमा वापस लौटी तो बैंड बाजे के साथ सीमा का स्वागत हुआ। आरती उतार कर बेटी का गृह प्रवेश करवाया गया। घर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, शहर भर का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। नाचने गाने जश्न मनाने का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सीमा के स्कूल में भी शानदार स्वागत समारोह हुआ। मंच पर सीमा को हिमाचली टोपी पहनाई गई, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कभी जिस स्कूल के प्लेग्राउंड पर सीमा ने रनिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, आज वहां सीमा को उड़न परी कहकर सम्मानित किया जा रहा था। सीमा के लिए ये कभी न भुलाने वाले पल था। कुछ ऐसे ही यादगार पलों का गवाह बना महाराष्ट्र का अमरावती शहर। जापान में हुए एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और अमरावती का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उनके शहर में जोरदार स्वागत हुआ। जापान की धरती से लौटे पदक वीरों के लिए अमरावती में विक्ट्री रैली हुई। बता दें कि अमरावती की स्टार तीरंदाज कुमकुम मोहोड़ ने रिकर्व आर्चरी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। जबकि यशदीप भोगे ने पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है।
1: अमरावती आकर कितना अच्छा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा स्वागत किया है, इसके लिए भी मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, यहाँ का DSO का, सर लोगों का, मैडम का, खासदार साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरावती ने बाजी मारी है
2: जी, जरूर। और अमरावती की सुवर्ण गर्ल ने सबसे ज्यादा मेडल लेके आई है, तो अमरावती की बाजी जरूर मारेगी।
0: चैंपियंस के लिए निकली इस विजय रैली में मानो सारा शहर विजेताओं के स्वागत में उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश के बीच खिलाड़ी खुली जीप में आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ चल रहे थे अमरावती के सैकड़ों लोग। स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, हर उम्र और वर्ग के लोग बेहद खुशी और जोश के साथ इस रैली का हिस्सा बने।

0: विजेताओं की इस रैली में खिलाड़ियों के कोच, ट्रेनर्स, खेल विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। आम लोगों के साथ ही चैंपियंस के स्वागत के लिए जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। रैली के बाद मंच पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, सांसद अनिल बोंडे, विधायक सुलभा खोड़के और भाजपा नेता संगीता शिंदे समेत कई गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का इस मौके पर सम्मान किया। मेडल जीतकर लौटे इन खिलाड़ियों के लिए ये दिन खास है। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराने के बाद अब नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर हैं।
1: मोहन ने जो अमरावती की शान बढ़ाई है, हम सभी अमरावती वासी बहुत खुश है और आने वाले ओलंपिक में 100% मेडल मिलाने के लिए जिला प्रशासन, क्रीड़ा विभाग, हम सब उसकी तैयारी के लिए उसको सहयोग देंगे। आज हमको अमरावती के लिए 4 मेडल प्राप्त हुए, उसके लिए बहुत बहुत खुशी जाहिर करते हैं।
0: एशियन गेम्स खत्म होने के साथ ही शहर शहर चैंपियंस के स्वागत का ये सिलसिला यूं ही चला। एशियन गेम्स में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। जापान में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह स्वदेश लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इनके स्वागत में लोगों की भीड़ जुट गई।

वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का भी जोरदार वेलकम हुआ। इसी कड़ी में वतन वापसी के बाद क्रिकेटर तिलक वर्मा का भी शानदार स्वागत किया गया।

चैंपियंस के स्वागत की तस्वीरें चेन्नई से भी आई। यहाँ तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन खुद एशियन गेम्स चैंपियंस का स्वागत करने पहुँचे। स्कूली बच्चों और लोक कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।

इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार में मंत्री विघ्नेश एशियन गेम्स में जोरदार प्रदर्शन कर वापस लौटी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट विद्या राम राज से मिलने मीनाक्षीपुरम पहुंची।

0: अमरावती से धनंजय साबले और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हर रोज अलार्म से पहले जागना, यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती की उम्र में मैदान से दोस्ती कर लेना, कोच को ही सब कुछ मान लेना, शादी ब्याह त्योहार बर्थडे पार्टी सब कुछ भुलाकर कड़े डिसिप्लिन के साथ बरसों तक एक ही गोल पर फोकस्ड रहना, जी तोड़ मेहनत करना, एक चैंपियन एथलीट बनने की यात्रा तपस्या से कम नहीं। लेकिन इसी तपस्या इसी यात्रा को सफलतापूर्वक अगर आपने खत्म कर लिया तो फिर कहीं जाकर आता है वो दिन जब आप वापस लौटते हैं और एयरपोर्ट पर आपको लेने बस आपका परिवार नहीं बल्कि आपका सारा शहर आता है।

0: ये महज जश्न नहीं, कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजो कर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे, साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान, दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। इन लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देख कर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोल कर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए एक गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028 बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही है उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: आप लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण, झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डेसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोली बील, पूंछ से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना जांचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ की हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल गजट नोटिफिकेशन की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद भी पैसे देने के समय लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण रोड पर तमाशा हो गया। क्या है वायरल वीडियो का दावे का सच, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: SBI सहित सभी सरकारी बैंकों में शनिवार को भी छुट्टी क्या पूरी हो गई है? 8 दिन अवकाश की डिमांड। दरअसल एक वायरल लेटर में केंद्र सरकार के हवाले से यह दावा किया गया है कि बैंकों में अब हर शनिवार को अवकाश रहेगा और सिर्फ 5 डे वर्किंग होगी। ये चौंकाने वाला दावा हमारे सामने भी आया, हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या निकलकर सामने आया देखते हैं।
5: बैंक यूनियंस काफी समय से हफ्ते में 5 दिन काम करने और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से इसके लिए कमेटी बनाने और दूसरी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिए जाने के बाद यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर के बीच होने वाली 3 दिन की हड़ताल टाल दी थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक गेजेट नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसे कई सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार के नए फैसले के तौर पर शेयर किया जा रहा था। एक सोशल मीडिया यूजर ने संयुक्त सचिव शालिनी पंडित के हस्ताक्षर वाले इस कथित राजपत्र को शेयर करते हुए लिखा, बैंक अब सिर्फ 5 दिन खुलेंगे, शनिवार को बैंकों की छुट्टी का प्रावधान। लोग इस पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
4: देखिए, बैंक यूनियन ने हाल ही में 5 वर्किंग डे की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया। यह हड़ताल बैंक को शनिवार को बंद रखने के लिए की गई थी। अब अचानक सोशल मीडिया पर यह खबर निकल कर आई है कि हर शनिवार को देश भर में बैंक बंद रहने वाले हैं। यह खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि अभी देश के सभी सरकारी बैंकों हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। बैंक कर्मचारियों के संगठनों की मांग है कि कॉरपोरेट्स की तर्ज पर बैंकों में 5 डे वर्किंग का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए। सरकार ने भी उनकी इस डिमांड पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में ये खबर सामने निकल कर आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोग इसे सच मानने लगे। हमने भी इसकी जांच शुरू की, लेकिन देखिए, हमें ऐसी कोई जानकारी या आदेश की कॉपी देखने को नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। क्योंकि अगर ऐसे किसी भी आदेश को दिया गया होता तो एक प्रेस ब्रीफिंग या ट्वीट के जरिए इसके बारे में जरूर बताया गया होता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हमने खंगाला, लेकिन वहां पर भी 5 डे वर्किंग को लेकर कोई पोस्ट हमको देखने को नहीं मिला। तो देखिए, सरकार ने बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी होने का आदेश दिया होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती, आप खुद सोचिए। लेकिन ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हुई है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये उठता है कि देश के बड़े चैनल्स और अखबारों में ये खबर क्यों नहीं देखने को मिली? ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी शालिनी पंडित इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। वायरल गैजेट नोटिफिकेशन में उनका नाम भी दिख रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर वित्त मंत्रालय ने यह आदेश दिया होता तो इस पर सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी शालिनी पंडित का नाम ही क्यों है, उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं दिख रहा है?

0: मिले और लोगों के काम पर भी असर ना हो, यानी अभी छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये उठता है कि कहीं एडिटेड गजट नोटिफिकेशन को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम जांच में जुटी। जांच के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने भी वायरल हो रहे इस दस्तावेज की पड़ताल की है। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल किया जा रहा दस्तावेज फर्जी है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो। PIB फैक्ट चेक ने लोगों को ऐसे संदिग्ध कंटेंट से सावधान रहने और केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी संदिग्ध दावे को सत्यापित करने की अपील की है। पुष्टि के लिए हमने इस अधिसूचना को OpenAI के इमेज वेरिफिकेशन टूल पर भी चेक किया और पाया कि इसमें OpenAI का सिंथ आईडी वॉटरमार्क मौजूद है जिससे पुष्टि होती है कि इसे OpenAI के AI टूल्स की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा दस्तावेज फर्जी और AI जनरेटेड है। इसे OpenAI के AI टूल की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करते हैं वायरल हो रही दूसरी खबर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि राइट पूरे होने के बाद भी पैसे देने के समय यह लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। यह खबर क्या है, इसकी सच्चाई आगे आपको दिखाते हैं।
2: हेलो, पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही है, मैं कर दूंगी बाद में।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक राइडर और एक लड़की के बीच बहसबाजी हो रही है।
3: उसमें आपका नंबर आता है रैपिडो वाले में या QR, मैं उसमें कर दूंगी।
2: किसमें नंबर आता है यार?
3: अरे रैपिडो बुक किया है उसमें आता है ना QR या नंबर, तो मैं कर दूंगी।
2: अरे अभी पेमेंट करके जाओ ना।
1: पहले ये सुनिए लड़की और बाइक राइडर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बीच सड़क पर उलझ गए।
2: तो आपने पेमेंट किया भी नहीं, आप ऐसे भाग रहे हो यार, हद है।
3: अरे बट सर्वर ही नहीं चल रहा, मैं कैसे पेमेंट करूं?
2: पेमेंट करिए पहले, पेमेंट तो करो।
3: अरे जो बोल रही हूँ मैं।
1: दरअसल बाइक राइडर ने लड़की को तय जगह पर पहुंचाया, इसके बाद लड़की बिना पेमेंट किए वहां से जाने लगी। जिसके बाद बाइक राइडर ने लड़की को पेमेंट के लिए बोला तो लड़की तरह तरह के बहाना बनाने लगी।
2: अरे हाथे, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे कहाँ जाओगे बताओ, पेमेंट तो करो आप।
3: अरे नहीं,
2: रैपिडो फ्री में चलते यार।
1: इसे शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की को बाइक राइडर ने शॉर्टकट लेकर फटाफट पहुंचा दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो लड़की आनाकानी करने लगी।
2: सर्वर कब, मेरे को क्या पता क्या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, आप करके तो देखो एक बार, ट्राई भी नहीं किया आप।
1: वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि बॉयफ्रेंड का दिया हुआ महंगा मोबाइल लेकर चलने वाली कुछ लड़कियां इस तरह के गरीब रैपिडो वालों को लूटने का काम करती हैं।
3: सर्वर चलेगा, मैं नहीं चल रहा है ना, अभी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं बताओ।
2: तो एक बार चेक करो।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: देखिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद पैसे देने के समय यह लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। इसको लेकर एक नैरेटिव फैलाया जाने लगा, बिना सोचे समझे लोग इसमें कूद पड़े और रैपिडो वालों को लूटने का आरोप लगाने लगे। हमारे सामने भी यह खबर निकलकर सामने आई। खबर की सच्चाई जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल की। वायरल वीडियो कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हमने पहले वीडियो को देखा, इस दौरान हमें एक ऑटो नजर आया, इसके कलर पर हमारा ध्यान गया और इससे ये साफ हो गया कि ये दिल्ली का वीडियो है। इसके बाद वीडियो में एक खास चीज देखने को मिली, लड़की और रैपिडो वाले के बीच बहस हो रही है लेकिन इस दौरान वहां पर कोई नहीं आता है। ये हमें हजम नहीं हुआ क्योंकि अगर बीच सड़क पर इस तरह का मामला निकलकर सामने आता है तो वहां पर लोग जुट जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखिए, राइड खत्म होने के बाद लड़की पेमेंट नहीं देने के लिए बहानेबाजी करने लगी, रैपिडो वाले से भिड़ गई। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो रैपिडो वाले ने पुलिस को फोन करके वहां पर क्यों नहीं बुलाया। लड़की और रैपिडो वाले के बीच बड़े आराम से बहस हो रही है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई अपने हक

0: पैसा छोड़ता नहीं है, मेहनत के पैसे को लेने के लिए वो हर हथकंडा अपनाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नजर नहीं आया। एक तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक दोनों अपने रोल का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं गुजर रहे हैं, सामने एक आइसक्रीम वाला भी नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर ये उठता है कि कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकल कर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: हेलो,
2: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर एक खास नैरेटिव फैलाई जा रही थी। कुछ लोग सच झूठ जाने बगैर इस खबर में कूद गए और लड़की के व्यवहार पर सवाल खड़े करने लगे।
3: देख लिया मैंने करके।
1: अरे हद है यार, क्या बातें कर रहे हो आप?
3: अरे मुझे बोल रहे भी कर दूंगी मैं।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर ये मिला। यह इसे 27 सितंबर को अपलोड किया गया था। जब हमने इस फेसबुक पेज के अकाउंट सेक्शन को खंगाला तो ये जानकारी सामने आई कि ये कंटेंट क्रिएटर का पेज है और यहाँ मनोरंजक वीडियो के साथ साथ ब्लॉग भी बनाया जाता है।
1: पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही मेरे से, पेमेंट नहीं हो रही, देख ले कोई नहीं रही पेमेंट।
1: अब पागल उगल, पेमेंट तो बिना पेमेंट के जाओ, कैश दे दो।
3: अरे
1: अरे
2: यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी वीडियो मिले जिनमें बाइक राइडर का पेमेंट को लेकर किसी न किसी लड़की से झगड़ा होता है। इनके तमाम वीडियो में वही बाइक नजर आती है जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है।
4: नो नो नो नो।
1: हेलो, एक्सक्यूज मी, ओ मैडम इधर आना।
5: क्या हुआ?
1: एक काम कर दोगे?
5: हाँ बोलो।
1: यार मेरे हाथ में ना चोट लगा हुआ है, तो ये ना पीछे एक और पॉकेट से ना पैसा निकाल लें।
2: इसके अलावा भी ये नजर आया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की इस चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियो में भी दिखाई दे रही है।
1: और इधर आ जाओ यहाँ पे, इसमें से ना आप 500 रुपया निकाल लो।
2: इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: पेमेंट करूंगी तो आप तुम्हारे पास ही आएंगे?
1: मेरे पास आ जाएगा वो पेमेंट।
3: ओ गॉड।
0: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: वक्त उछला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
11: इनकी इस मासूम अदा पर कौन न दिल हार जाए। मुस्कान देखिए जरा चेहरे पर, पारंपरिक लिबास में नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती, मुस्कुराती और साथ में अपने दोस्त को सिर पर बिठाकर खुश होती इस प्यारी बच्ची का वीडियो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। इन दिनों एक छोटी बच्ची और एक शख्स की बातचीत का यह अंदाज लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
12: लो मैं अंदर कर लूंगा। कब बोला था?
13: बोलो।
12: कल तो तुम थे ही नहीं यहाँ पे।
11: बच्ची अपनी बालकनी से बाहर काम कर रहे एक शख्स से बात करती नजर आती है। वो शख्स एक ऊंची बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में रस्सी के सहारे काम कर रहा होता है।
12: याद आई थी, पर हमने याद करा था, अंकल कह रहे थे स्कूल गई है, तो तुमने कब आवाज दिया था मुझे?
11: दोनों के बीच होने वाली छोटी सी बातचीत इतनी प्यारी और अपनापन भरी है कि इसे देखने वाले लोग भी मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं।
12: अंकल,
11: दो बड़े बॉल और दो नन्हे हाथ, बैलेंस बनाना है, दोनों हाथों को एक्टिव रखना है और सामने आई गेंद को दूसरे हाथ को पास करना है। जरा सी चूक और आप गेम से आउट, इसलिए सबकी निगाहें एकदम निशाने पर।
14: जी
11: गेंद आते ही हाथ से दूसरी तरफ मोड़ दी जा रही है। कोई देरी नहीं, कोई चूक नहीं। संभव है ये मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बच्चों में एकाग्रता लाने, फोकस बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है। पर ये एक्सरसाइज है इतनी मजेदार कि यकीनन बच्चों को इसका इंतजार रहता होगा। जब क्लासरूम में संगीत बजने लगा तो अपने आप इन नन्हे बच्चों के पांव थिरकने लगे। बच्चों की मासूमियत, प्यारे एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे मूव्स देखकर यूजर्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्लासरूम में पढ़ाई के माहौल के बीच बच्चों की ये छोटी सी मस्ती देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए पूरा कमरा ही डांस फ्लोर में बदल गया हो। उनके डांस में किसी तरह की बनावट नजर नहीं आती और यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। लोकगीत हों या लोक नृत्य, एक कहानी कहते हैं जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, और उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में क्या किया जाए, इसे लेकर हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई घूमने निकलता है, कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता है, तो कोई अपने पुराने शौक को फिर से जीने लगता है। लेकिन नोएडा के कुछ बुजुर्गों ने अपनी रोज की सुबह की सैर को ही कुछ खास बना दिया।

0: पार्क में टहलने निकले इन दोस्तों ने अचानक ऐसा सुर छेड़ा कि देखते ही देखते वहाँ का माहौल किसी छोटी सी संगीत महफिल जैसा हो गया। कंधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत मांगने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हो। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता, तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं। एक नीली और सफेद रंग की बस सड़क पर चल रही है। पहली नजर में ये एक सामान्य बस लगती है, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे की ओर बढ़ता है असली ट्विस्ट सामने आता है। बस में आगे कोई सामान्य इंजन काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक लाल रंग के ट्रैक्टर से जोड़ा गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर बड़े मजे से बस को खींचते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा है और बस के पायदान पर खड़े यात्री आराम से सफर का आनंद ले रहे हैं। बंदर तो बंदर है, वो कहीं हो और अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराए ऐसा हो नहीं सकता। अब इसे ही देख लीजिए, भालू और कुत्ते की दोस्ती से इन्हें भला क्या परेशानी थी। देखा नहीं गया इनसे इतना प्यार, एकदम से टपक पड़े और फिर तो देख ही रहे हैं इनके कारनामे। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें दूर करने की, और जब जी भर गया तो निकल पड़े, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है करो, हम तो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं, बंदर कुत्ते को बचाने आया था या दोनों की केमिस्ट्री से जल रहा था, अब ये तो वही जाने। बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। नूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आस्था के सफर पर, जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पहाड़ों पर पर्यटन को भी खूब पंख लग रहे हैं। नैनीताल में मौजूद बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम कैंची धाम पहुंच रहे हैं। बीते दिनों 3 दिन के वीकेंड की वजह से कैंची धाम परिसर से लेकर सड़क तक लोगों से खचाखच नजर आया, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
4: नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच बसे बाबा नीब करौरी धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सड़क से लेकर मंदिर तक श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है, जिसे देखो वही कैंची धाम की ओर खींचा चला आ रहा है। आस्था के इस महाकाफिला का रुख उस संत के धाम की ओर है जिनके चमत्कार की कहानियों से पूरी दुनिया अभिभूत है। कोई उन्हें चमत्कारिक संत मानता है तो कोई उन्हें हनुमान जी का अवतार, कोई उन्हें नीब करौली बाबा कहता है तो कोई नीम करौली बाबा, कोई महाराज जी कहता है तो कोई हांडी वाले बाबा। नीम करौली बाबा की कर्मभूमि कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले भी उमड़ती थी, लेकिन जब से बाबा नीम करौली महाराज के जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने पर्दे पर दस्तक दी है, तब से न सिर्फ इस धाम में श्रद्धालुओं की दिलचस्पी बढ़ी है बल्कि रिकॉर्ड संख्या में इस धाम के दर्शन करने लोग भी उमड़ पड़े हैं।
5: जो प्रचार प्रसार तो नहीं बोल सकते, ये इनकी कृपा दृष्टि है जो सब लोगों पे बिखर रही है। अगर देखने जाए तो बाबा को किसी भी प्रचार और प्रसार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाबा अपने आप में ही एक प्रचार और प्रसार है, तो उनके लिए किसी के आवागमन मतलब उनको अपने आप में ही एक बोलते हैं कि हनुमान जी का अंश ऐसे ही नहीं बोला गया उनको, वो अपने आप में एक अनुभूति है, जो यहाँ पे आते वही इस चीज को समझ पाते हैं।
4: आलम यह है कि कैंची धाम में भक्तों की लंबी कतारें और चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में बड़ी तादाद युवाओं की भी है। कोई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार कैंची धाम पहुँच कर बाबा की भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना चाहते हैं।
6: अब कुछ भी बोलो मत, जो बाबा का चमत्कार है वही देखो और आगे आने वाली पीढ़ियों भी देखो कि जो अपना सनातन धर्म के अंदर जो चल रहा है उसी बात पे गौर करो।
7: काफी टाइम पहले से थी बट अब जाके बाबा ने मौका दिया है अपने दर्शन करने का देने का, और हम दिल्ली से आए नोएडा रहते हैं, और आस्था तो जैसे अभी मूवी आई है उसके बाद मैंने सुनने को मिला है कि उसके बाद बहुत ज्यादा आस्था बढ़ गई है।
4: सड़क पर भारी संख्या में कतार में लगी इन गाड़ियों की मौजूदगी को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आस्था किस कदर उमड़ रही है। खासकर वीकेंड पर तो यहाँ मानो जन समुद्र ही उमड़ पड़ा। कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या पहले करीब 8 लाख थी, जो फिल्म के प्रभाव के बाद 3 गुना बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है। आम दिनों में रोजाना 4 से 5 हजार भक्त आते थे, अब 6 हजार के पार आने लगे हैं। वीकेंड यानी शनिवार रविवार को ये संख्या 15 हजार से 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुंच रही है। आलम यह है कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच जो सफर पहले 3 से 5 घंटे में पूरा हो जाता था, भारी जाम की वजह से श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग रहा था। लोगों को जाम की तकलीफ से बचाने के लिए पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था।
8: नैनीताल और आसपास के स्थानों में वाहन अत्यधिक संख्या में पार्किंग नहीं है, तो आउटर एरिया में जो पार्किंग स्थल हमारे डेजिग्नेटेड है वहाँ से सड़क के माध्यम से इन जगहों पे पर्यटकों को भेजा जा रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।
4: सोशल मीडिया की वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में कैंची धाम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों और जीवन दर्शन से जुड़ी कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई हनुमान अंश फिल्म ने इसमें और इजाफा कर दिया, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: क्या आप लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं? डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं? तनाव बढ़ा रहता है? कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण। झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। कार्ल डिसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज। इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोली बील, पूंछ से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। क्या है शक्ति? हमारी सभ्यता में शक्ति देवी का प्रतिरूप है, संसार के सृजन का आधार है। हमारे देश में न केवल देवी भगवती को शक्ति रूप में पूजा जाता है, बल्कि देश और समाज की वो अद्भुत अदम्य महिलाएं जो अपने अपने कर्म क्षेत्रों में शक्ति रूपेण संस्थिता के मंत्र को चरितार्थ करती हैं, वो भी हमारे यहाँ सदा से आदरणीय रही हैं और उन्हें बेहद गर्व और उत्साह के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। अब से चार दिनों बाद देश में शक्ति उपासना का पर्व नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, लेकिन नवरात्र से पहले ही अब की बार जापान में भारत की शक्ति का उत्सव पूरी दुनिया ने देखा। ये दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, एक शक्ति उत्सव भारत में और दूसरा जापान में। देश में एक तरफ शहर शहर देवी माँ के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर शहर बेटियों का स्वैग चल रहा है। एक तरफ मूर्तियों और पंडालों का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ एशियन गेम्स में देश की विजय पताका लहरा कर लौटी बेटियों के सम्मान में रैलियां निकाली जा रही हैं, समारोह यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में इस बार एशियन गेम्स में भारत का अभियान शक्ति के नाम रहा। भारत की बेटियों ने एशियन गेम्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पुरुषों से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारत ने इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें से लड़कियों के इवेंट में 11 और लड़कों के इवेंट में 7 गोल्ड मेडल आए हैं, जबकि 3 गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में जीते गए। इससे पहले साल 2002 में बुसान में हुए एशियन गेम्स में भारत की लड़कियां आगे रही थी, तब भारत ने लड़कियों के इवेंट में 6 और लड़कों के इवेंट में 5 गोल्ड जीते थे। यानी साल 2002 के बुसान एशियाड के बाद ये पहली बार हुआ जब गोल्ड मेडल जीतने के मामले में भारत की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया। वैसे सिर्फ एशियन गेम्स ही क्यों, बल्कि हाल ही के सालों में विशेषकर 2024 से 2026 के बीच में भारत की महिला खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कई बड़ी चैंपियनशिप्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट्स में पूरी तरह डोमिनेट किया। तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग, एथलेटिक्स, कहीं भी तो कम नहीं भारत की बेटियां। बल्कि अब तो कहना पड़ेगा हमारी छोरियां छोरों से कम है के, बल्कि हमारी छोरियां छोरों से ज्यादा ही हैं हर बात में और हर जगह पर। एशियन गेम्स से बॉक्सिंग का गोल्ड जीतकर लौटी चैंपियन लवलीना बोरगोहेन से जब हमने यही सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
1: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया।
2: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है, पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है। जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है, हाँ गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था, तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
2: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ, ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है। 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस।
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट, एम इज LA 2028 सेम।
0: तो मेडल्स की चमक बिखरी है, देश को फेस्टिव सीजन से पहले सेलिब्रेट करने का बहाना मिल गया है। वाकई में एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम इंडिया ने अपने इस विजयी अभियान में 85 मेडल जीते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत ने कौन कौन से इवेंट्स में झंडे गाड़े हैं और क्यों इस मेडल टैली को देखकर 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए देश की उम्मीदों को पंख लग गए हैं।
3: ऊपर उठ रहा है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया है। भारत की ऐतिहासिक जीत।

0: देश के हवाई अड्डों से लेकर शहरों गांवों की गलियों तक आज उत्सव का माहौल है। ये चैंपियंस का स्वागत है, उन चैंपियंस का जिन्होंने अपने शानदार खेल से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जापान की धरती पर आयोजित 20वें एशियन गेम्स 2026 में भारत के एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने इस साल कुल 85 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सफर में टीम इंडिया ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। 20वें एशियन गेम्स के सफर में भारत ने कई स्वर्णिम कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। सुनहरी कामयाबी की इस फेहरिस्त में सबसे आगे रहे भारतीय तीरंदाज, जिन्होंने 5 गोल्ड पर निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 17 साल की कुमकुम मोहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ओ एजिन को रोमांचक शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। महिला रिकर्व इवेंट में भी कुमकुम मोहोर, कीर्ति शर्मा और अंकिता भगत की टीम ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। साथ ही कंपाउंड इवेंट्स में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। यहाँ भारतीय तीरंदाजों ने 3 गोल्ड अपने नाम किए। आईची नागोया में न केवल भारत की तीरंदाजी टीम ने अपनी धाक जमाई, बल्कि क्रिकेट और हॉकी के मैदान से भी फैंस को गोल्ड वाली गुड न्यूज मिली। महिला क्रिकेट के बाद मेंस क्रिकेट में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर और महिला हॉकी टीम ने चीन को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया और 44 साल का सूखा खत्म किया। बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड की हैट्रिक जमाई। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना बोरहोगेन, 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा और 80 किलोग्राम कैटेगरी में अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीता। कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय पहलवान चमके। कुश्ती में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम और सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड हासिल किया। कबड्डी में भी भारतीय टीम ने साख के अनुसार जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने भारत को गोल्ड दिया। शूटिंग में नीरू धांडा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, तो वही कमान जीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। खास बात ये रही कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारतीय एथलीट्स ने सुनहरी चमक बिखेरी। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं प्रणवी उर्स ने गोल्फ में गोल्ड जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रच डाला। क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, शूटिंग, रेसलिंग, गोल्फ, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कामयाबी की गोल्डन चमक से पूरे देश को झूमने का मौका दिया। उम्मीद यही कि इन खिलाड़ियों की सफलता देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आईची नागोया के बाद अब भविष्य का खेल महाकुंभ लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 हमारा इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही कि भारत की ये चैंपियन एशिया के बाद दुनिया फतह करने के मिशन पर भी शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जापान की धरती पर तिरंगा लहराने के बाद भारत के चैंपियंस अब वतन लौट आए हैं। एशियन गेम्स में पदकों की झड़ी लगाकर देश का सर्वगर्व से ऊंचा करने वाले हमारे चैंपियंस का शहर शहर एयरपोर्ट्स पर भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाओं की बारिश के साथ और लहराते हुए तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारों के बीच में फैंस के दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, वेलकम होम चैंपियंस।

दिवाली में अभी वक्त है, लेकिन चंबा में दिवाली आ चुकी है। शहर की बेटी एशियन गेम्स में तिरंगा लहरा कर लौटी है, सो सारा शहर जश्न मना रहा है। चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आईटी नगोया में झंडे गाड़ कर सीमा वापस लौटी तो बैंड बाजे के साथ सीमा का स्वागत हुआ। आरती उतार कर बेटी का गृह प्रवेश करवाया गया। घर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, शहर भर का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। नाचने गाने जश्न मनाने का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सीमा के स्कूल में भी शानदार स्वागत समारोह हुआ। मंच पर सीमा को हिमाचली टोपी पहनाई गई, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कभी जिस स्कूल के प्ले ग्राउंड पर सीमा ने रनिंग प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, आज वहां सीमा को उड़न परी कहकर सम्मानित किया जा रहा था। सीमा के लिए ये कभी न भुलाने वाले पल था।

0: कुछ ऐसे ही यादगार पलों का गवाह बना महाराष्ट्र का अमरावती शहर। जापान में हुए एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और अमरावती का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उनके शहर में जोरदार स्वागत हुआ। जापान की धरती से लौटे पदक वीरों के लिए अमरावती में विक्ट्री रैली हुई। बता दें कि अमरावती की स्टार तीरंदाज कुमकुम मोहोड़ ने रिकर्व आर्चरी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। जबकि यशदीप भोगे ने पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है।
1: अमरावती आके कितना अच्छा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा स्वागत किया है इसके लिए भी मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, यहाँ का DSO का, सर लोगों का, मैडम का, खासदार साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरावती में बाजी मारी है
2: जी जरूर, और अमरावती की सुवर्ण कप में सबसे ज्यादा मेडल लेके आई है तो अमरावती की बाजी जरूर मारेगी।
0: चैंपियंस के लिए निकली इस विजय रैली में मानो सारा शहर विजेताओं के स्वागत में उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश के बीच खिलाड़ी खुली जीप में आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ चल रहे थे अमरावती के सैकड़ों लोग। स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर उम्र और वर्ग के लोग बेहद खुशी और जोश के साथ इस रैली का हिस्सा बने।

0: विजेताओं की इस रैली में खिलाड़ियों के कोच, ट्रेनर्स, खेल विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। आम लोगों के साथ ही चैंपियंस के स्वागत के लिए जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। रैली के बाद मंच पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, सांसद अनिल बोंडे, विधायक सुलभा खोड़के और भाजपा नेता संगीता शिंदे समेत कई गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का इस मौके पर सम्मान किया। मेडल जीतकर लौटे इन खिलाड़ियों के लिए ये दिन खास है। एशियाई खेलों में तिरंगा लहराने के बाद अब नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर हैं।
1: मोहन ने जो अमरावती की शान बढ़ाई है, हम सभी अमरावती वासी बहुत खुश है और आने वाले ओलंपिक में 100% मेडल मिलाने के लिए जिला प्रशासन, क्रीड़ा विभाग, हम सब उसकी तैयारी के लिए उसको सहयोग देंगे। आज हमको अमरावती के लिए 4 मेडल प्राप्त हुए, उसके लिए बहुत बहुत खुशी जाहिर करते हैं।
0: एशियन गेम्स खत्म होने के साथ ही शहर शहर चैंपियंस के स्वागत का ये सिलसिला यूं ही चला। एशियन गेम्स में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटे क्रिकेटर्स का भी स्वागत किया गया। जापान में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब क्रिकेटर संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह स्वदेश लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इनके स्वागत में लोगों की भीड़ जुट गई।

वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे का भी जोरदार वेलकम हुआ। इसी कड़ी में वतन वापसी के बाद क्रिकेटर तिलक वर्मा का भी शानदार स्वागत किया गया।

चैंपियंस के स्वागत की तस्वीरें चेन्नई से भी आईं। यहां तमिलनाडु के खेल मंत्री आधव अर्जुन खुद एशियन गेम्स चैंपियंस का स्वागत करने पहुंचे। स्कूली बच्चों और लोक कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।

इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार में मंत्री विघ्नेश एशियन गेम्स में जोरदार प्रदर्शन कर वापस लौटी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट विद्या राम राज से मिलने मीनाक्षीपुरम पहुंची।

0: अमरावती से धनंजय साबले और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हर रोज अलार्म से पहले जागना, यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती की उम्र में मैदान से दोस्ती कर लेना, कोच को ही सब कुछ मान लेना, शादी ब्याह त्योहार बर्थडे पार्टी सब कुछ भुलाकर कड़े डिसिप्लिन के साथ बरसों तक एक ही गोल पर फोकस्ड रहना, जी तोड़ मेहनत करना। एक चैंपियन एथलीट बनने की यात्रा तपस्या से कम नहीं, लेकिन इसी तपस्या इसी यात्रा को सफलतापूर्वक अगर आपने खत्म कर लिया तो फिर कहीं जाकर आता है वो दिन जब आप वापस लौटते हैं और एयरपोर्ट पर आपको लेने बस आपका परिवार नहीं बल्कि आपका सारा शहर आता है।

0: ये महज जश्न नहीं, कामयाबी का वो उत्सव है जिसे भारतीय महिला हॉकी की स्टार्स हमेशा यादों में सजोकर रखेंगी। जैसे ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे, साथ ही खिलाड़ियों निकी प्रधान, दीपिका सोरेन के साथ पहुंची, ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ इन चैंपियंस का लोगों ने स्वागत किया। हॉकी स्टिक्स लेकर फैंस ने जमकर डांस किया, साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी हर ओर बिखरे दिखे। एशियन गेम्स में फाइनल में चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया, लिहाजा इन चैंपियंस का जोरदार स्वागत तो बनता ही है। सोने पे सुहागा ये कि महिला हॉकी टीम ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इसी सुनहरी कामयाबी को ओलंपिक में भी दोहराने का इरादा है।
1: काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर उस टूर्नामेंट के बाद फिर यही रहता है कि हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी एक साइड से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर, जो टाइम मिला हम उसमें ओलंपिक का तैयारी करेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहे, अभी जैसे हम लोग बैक टू बैक वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला, उसके बाद नेशन कप खेले, वर्ल्ड कप खेले और अभी एशियन गेम खेले, और बैक टू बैक हमारी टीम काफी अच्छा इम्प्रूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में हम भी पोडियम फिनिश करें।
0: जाहिर है ये स्वागत अभिनंदन का पल इन खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, इनके परिवार वालों के लिए भी यादगार लम्हा बनकर आया है।
2: बिल्कुल बड़ी जीत है, 44 साल बाद आई है, जीत के तो बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इतना लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इतना प्लेयर लोग आए हैं, इतना हॉकी के जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्या बोलेंगे दर्शकगण, सभी को अच्छा लग रहा है देख के। इन लोग को इतना अच्छा से स्वागत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। फैंस का ये जोश और उत्साह देख कर हॉकी स्टार्स भी काफी खुश नजर आईं।
3: डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत साल की मेहनत है और जाने से पहले हमारा यही टारगेट था कि हमें एलए के लिए क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जड़कर लौटे चैंपियंस का भी फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया। गोल्डन गर्ल लवलीना और परवीन का स्वागत करने के लिए यहां बड़ी संख्या में फैंस जुटे। लवलीना बोरगोहिन एशियन गेम्स में अपना मेडल का रंग बदलकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है आगे भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा।
4: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहां गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: दिल्ली एयरपोर्ट पर भी स्क्वैश टीम का जोरदार स्वागत हुआ। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज ने कहा कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर वो काफी खुश हैं। इन खिलाड़ियों के चेहरों पर कामयाबी की खुशी साफ नजर आई। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुमकुम मोहोड़ के घर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई।

0: 17 साल की कुमकुम मोहोड ने तीरंदाजी में कामयाबी का इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड जीता। जाहिर है पूरे परिवार के लिए एक गर्व का पल है और कुमकुम का परिवार इस वक्त खुशियों से सराबोर है।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है एशियन गेम में और अपने लिए 3 मेडल उसने सिक्योर कर लिए।
2: आगे ओलंपिक 2028 बस वही उसका सपना है, वहां तक पहुंचना ही है उसको।
0: जापान में धूम मचाकर एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे खिलाड़ियों के स्वागत अभिनंदन का दौर अभी लंबा चलेगा। इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर फैंस भी भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगे चुनौती बड़ी है। एशियन गेम्स में चमके सितारे अब नई ऊर्जा नई प्रेरणा के साथ ओलंपिक की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: लगातार मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, डाइजेशन की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तनाव बढ़ा रहता है, कौन सी हैं चंद्रमा की समस्याएं और क्या है इनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: चमोली में माणा पास की पहाड़ियों पर कुदरत का श्वेत श्रृंगार, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 6 से 11 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। देश भर में शारदीय नवरात्र की जोरदार तैयारियां, शक्ति साधना के लिए मां दुर्गे की भव्य प्रतिमाओं का हो रहा है निर्माण, झांसी से लेकर अमरावती पर मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेडिकल क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, कार्ल डेसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल होंगे संयुक्त रूप से सम्मानित। रोशनी के जरिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के इलाज में पाई सफलता। सर्विकल कैंसर की भारतीय वैक्सीन सर्वेवैक को WHO ने दी प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी। कैंसर फैलाने वाले HPV वायरस के 4 स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दुनिया भर में होगी उपलब्ध। असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ पहला कार्गो जहाज, इनलैंड वाटरवे के जरिए शुरू हुई आवाजाही, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोली बील पूछ से दिखाई हरी झंडी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटे हजारों फैंस, फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना जांचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ की हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल गजट नोटिफिकेशन की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद भी पैसे देने के समय लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण रोड पर तमाशा हो गया। क्या है वायरल वीडियो का दावे का सच आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: SBI सहित सभी सरकारी बैंकों में शनिवार को भी छुट्टी क्या पूरी हो गई है, 8 दिन अवकाश की डिमांड। दरअसल एक वायरल लेटर में केंद्र सरकार के हवाले से यह दावा किया गया है कि बैंकों में अब हर शनिवार को अवकाश रहेगा और सिर्फ 5 डे वर्किंग होगी। ये चौंकाने वाला दावा हमारे सामने भी आया, हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या निकलकर सामने आया देखते हैं।
5: बैंक यूनियंस काफी समय से हफ्ते में 5 दिन काम करने और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से इसके लिए कमेटी बनाने और दूसरी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिए जाने के बाद यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर के बीच होने वाली 3 दिन की हड़ताल टाल दी थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक गेजेट नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक समेत देश के सभी सरकारी बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसे कई सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार के नए फैसले के तौर पर शेयर किया जा रहा था। एक सोशल मीडिया यूजर ने संयुक्त सचिव शालिनी पंडित के हस्ताक्षर वाले इस कथित राजपत्र को शेयर करते हुए लिखा, बैंक अब सिर्फ 5 दिन खुलेंगे, शनिवार को बैंकों की छुट्टी का प्रावधान। लोग इस पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
4: देखिए, बैंक यूनियन ने हाल ही में 5 वर्किंग डे की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के बाद स्थगित कर दिया गया। यह हड़ताल बैंक को शनिवार को बंद रखने के लिए की गई थी। अब अचानक सोशल मीडिया पर यह खबर निकल कर आई है कि हर शनिवार को देश भर में बैंक बंद रहने वाले हैं। यह खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि अभी देश के सभी सरकारी बैंकों हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। बैंक कर्मचारियों के संगठनों की मांग है कि कॉरपोरेट्स की तर्ज पर बैंकों में 5 डे वर्किंग का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए। सरकार ने भी उनकी इस डिमांड पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में यह खबर सामने निकल कर आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोग इसे सच मानने लगे। हमने भी इसकी जांच शुरू की, लेकिन देखिए, हमें ऐसी कोई जानकारी या आदेश की कॉपी देखने को नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। क्योंकि अगर ऐसे किसी भी आदेश को दिया गया होता तो एक प्रेस ब्रीफिंग या ट्वीट के जरिए इसके बारे में जरूर बताया गया होता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हमने खंगाला, लेकिन वहां पर भी 5 डे वर्किंग को लेकर कोई पोस्ट हमको देखने को नहीं मिला। तो देखिए, सरकार ने बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी होने का आदेश दिया होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती, आप खुद सोचिए। लेकिन ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हुई है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये उठता है कि देश के बड़े चैनल्स और अखबारों में ये खबर क्यों नहीं देखने को मिली। ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी शालिनी पंडित इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। वायरल गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम भी दिख रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर वित्त मंत्रालय ने यह आदेश दिया होता तो इस पर सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी शालिनी पंडित का नाम ही क्यों है, उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं दिख रहा है। 5 डे वर्किंग की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सभी पक्षों से बात करके ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे बैंक कर्मचारियों को सहूलत मिले और लोगों के काम पर भी असर ना हो। यानी अभी छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये उठता है कि कहीं एडिटेड गजट नोटिफिकेशन को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम जांच में जुटी। जांच के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें 5 डे वर्किंग की मांग को मंजूरी मिलने की बात कही गई हो। सर्च के दौरान हमें यह जानकारी मिली कि सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने भी वायरल हो रहे इस दस्तावेज की पड़ताल की है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि वायरल किया जा रहा दस्तावेज फर्जी है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा

0: सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो। पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों को ऐसे संदिग्ध कंटेंट से सावधान रहने और केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी संदिग्ध दावे को सत्यापित करने की अपील की है। पुष्टि के लिए हमने इस अधिसूचना को OpenAI के इमेज वेरिफिकेशन टूल पर भी चेक किया और पाया कि इसमें OpenAI का SynthID वाटरमार्क मौजूद है, जिससे पुष्टि होती है कि इसे OpenAI के AI टूल्स की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा दस्तावेज फर्जी और AI जनरेटेड है। इसे OpenAI के AI टूल की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करते हैं वायरल हो रही दूसरी खबर की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि राइट पूरे होने के बाद भी पैसे देने के समय यह लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। यह खबर क्या है, इसकी सच्चाई आगे आपको दिखाते हैं।
2: हेलो, पेमेंट तो कर दो।
3: पेमेंट नहीं हो रही है, मैं कर दूंगी बाद में।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक राइडर और एक लड़की के बीच बहसबाजी हो रही है।
3: उसमें आपका नंबर आता है रैपिडो वाले में या QR, मैं उसमें कर दूंगी।
2: किसमें नंबर आता है यार?
3: अरे रैपिडो बुक किया है, उसमें आता है ना QR या नंबर, तो मैं कर दूंगी।
2: अरे अभी पेमेंट करके जाओ ना।
0: पहले ये सुनिए, लड़की और बाइक राइडर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बीच सड़क पर उलझ गए?
2: तो आपने पेमेंट किया भी नहीं, आप ऐसे भाग रहे हो यार, हद है।
3: बट सर्वर ही नहीं चल रहा, मैं कैसे पेमेंट?
2: पेमेंट करिए, पहले पेमेंट तो करो।
3: अरे जो बोल रही हूँ मैं।
0: दरअसल बाइक राइडर ने लड़की को तय जगह पर पहुंचाया, इसके बाद लड़की बिना पेमेंट किए वहां से जाने लगी। जिसके बाद बाइक राइडर ने लड़की को पेमेंट के लिए बोला तो लड़की तरह तरह के बहाना बनाने लगी।
2: अरे हाथे, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे कहाँ जाओगे बताओ, पेमेंट तो करो आप।
3: अरे नहीं,
2: रिपीडो फ्री में चलती है।
0: इसे शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की को बाइक राइडर ने शॉर्टकट लेकर फटाफट पहुंचा दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो लड़की आनाकानी करने लगी।
2: सर्वर कब, मेरे को क्या पता क्या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, आप करके तो देखो एक बार, ट्राई भी नहीं किया।
0: वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि बॉयफ्रेंड का दिया हुआ महंगा मोबाइल लेकर चलने वाली कुछ लड़कियां इस तरह के गरीब रैपिडो वालों को लूटने का काम करती हैं।
3: सर्वर चलेगा, नहीं चल रहा है ना, अभी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं बताओ,
2: तो एक बार चेक करो।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि राइड पूरी होने के बाद पैसे देने के समय यह लड़की बहानेबाजी करने लगी और बाइक राइड का पैसा नहीं दिया। इसको लेकर एक नैरेटिव फैलाया जाने लगा, बिना सोचे समझे लोग इसमें कूद पड़े और रैपिड वालों को लूटने का आरोप लगाने लगे। हमारे सामने भी यह खबर निकलकर सामने आई। खबर की सच्चाई जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल की। वायरल वीडियो कब और कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में हमने पहले वीडियो को देखा, इस दौरान हमें एक ऑटो नजर आया, इसके कलर पर हमारा ध्यान गया और इससे यह साफ हो गया कि यह दिल्ली का वीडियो है। इसके बाद वीडियो में एक खास चीज देखने को मिली, लड़की और रैपिडो वाले के बीच बहस हो रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई नहीं आता है। ये हमें हजम नहीं हुआ, क्योंकि अगर बीच सड़क पर इस तरह का मामला निकलकर सामने आता है तो वहां पर लोग जुट जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो देखिए, राइड खत्म होने के बाद लड़की पेमेंट नहीं देने के लिए बहानेबाजी करने लगी, रैपिडो वाले से भिड़ गई। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो रैपिडो वाले ने पुलिस को फोन करके वहां पर क्यों नहीं बुलाया? लड़की और रैपिडो वाले के बीच बड़े आराम से बहस हो रही है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई अपने हक का पैसा छोड़ता नहीं है, मेहनत के पैसे को लेने के लिए वो हर हथकंडा अपनाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नजर नहीं आया। एक तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक दोनों अपने रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं गुजर रहे हैं, सामने एक आइसक्रीम वाला भी नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर ये उठता है कि कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो को वायरल तो नहीं किया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर एक खास नैरेटिव फैलाई जा रही थी। कुछ लोग सच झूठ जाने बगैर इस खबर में कूद गए और लड़की के व्यवहार पर सवाल खड़े करने लगे।
3: देख लिया मैंने करके,

0: हद है यार, क्या बातें कर रहे हो आप?
1: अरे मुझे बोल रहे, भी कर दूंगी मैं।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर ये मिला, यहाँ इसे 27 सितंबर को अपलोड किया गया था। जब हमने इस फेसबुक पेज के अकाउंट सेक्शन को खंगाला तो ये जानकारी सामने आई कि ये कंटेंट क्रिएटर का पेज है और यहाँ मनोरंजक वीडियो के साथ साथ ब्लॉग भी बनाया जाता है।
3: पेमेंट तो कर दो।
1: पेमेंट नहीं हो रही मेरे से, पेमेंट नहीं हो रही, देख ले, कोई नहीं रही पेमेंट।
3: अब पागल उगल, पेमेंट तो बिना पेमेंट के जाओ, कैश दे दो। अरे अरे,
2: यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी वीडियो मिले जिनमें बाइक राइडर का पेमेंट को लेकर किसी न किसी लड़की से झगड़ा होता है। इनके तमाम वीडियो में वही बाइक नजर आती है जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रही है।
4: नो नो नो नो।
5: हेलो एक्सक्यूज मी, ओ मैडम इधर आना।
1: क्या हुआ?
5: एक काम कर दोगे?
1: हाँ बोलो।
5: यार मेरे हाथ में ना चोट लगा हुआ है, तो ये ना पीछे एक बार पॉकेट से ना पैसा निकाल लें।
2: इसके अलावा भी ये नजर आया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की इस चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियो में भी दिखाई दे रही है।
5: और इधर आ जाओ यहाँ पे, इसमें से ना आप 500 रुपया निकाल लो।
2: इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: पेमेंट करूंगी तो आप तुम्हारे पास ही आएंगे?
3: मेरे पास आ जाएगा वो पेमेंट।
1: ओ गॉड।
6: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: वक्त उछला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
9: इनकी इस मासूम अदा पर कौन न दिल हार जाए। मुस्कान देखिए जरा चेहरे पर, पारंपरिक लिबास में नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती, मुस्कुराती और साथ में अपने दोस्त को सिर पर बिठाकर खुश होती इस प्यारी बच्ची का वीडियो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। इन दिनों एक छोटी बच्ची और एक शख्स की बातचीत का ये अंदाज लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
10: लो मैं अंदर कर लूंगा। बोला था
11: बोलो,
10: कल तो तुम थे ही नहीं यहाँ पे।
9: बच्ची अपनी बालकनी से बाहर काम कर रहे एक शख्स से बात करती नजर आती है। वो शख्स एक ऊंची बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में रस्सी के सहारे काम कर रहा होता है।
10: याद आई थी, पर हमने याद करा था अंकल, ये कह रहे थे स्कूल गई है, तो तुमने कब आवाज दिया था मुझे।
9: दोनों के बीच होने वाली छोटी सी बातचीत इतनी प्यारी और अपनापन भरी है कि इसे देखने वाले लोग भी मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं।
10: अंकल सॉरी।
9: दो बड़े बॉल और दो नन्हे हाथ, बैलेंस बनाना है, दोनों हाथों को एक्टिव रखना है और सामने आई गेंद को दूसरे हाथ को पास करना है। जरा सी चूक और आप गेम से आउट, इसलिए सबकी निगाहें एकदम निशाने पर। गेंद आते ही हाथ से दूसरी तरफ मोड़ दी जा रही है, कोई देरी नहीं, कोई चूक नहीं। संभव है ये मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बच्चों में एकाग्रता लाने, फोकस बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है। पर ये एक्सरसाइज है इतनी मजेदार कि यकीनन बच्चों को इसका इंतजार रहता होगा। जब क्लासरूम में संगीत बजने लगा तो अपने आप इन नन्हे बच्चों के पांव थिरकने लगे। बच्चों की मासूमियत, प्यारे एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे मूव्स देखकर यूजर्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्लासरूम में पढ़ाई के माहौल के बीच बच्चों की ये छोटी सी मस्ती देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए पूरा कमरा ही डांस फ्लोर में बदल गया हो। उनके डांस में किसी तरह की बनावट नजर नहीं आती और यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लोक परंपराएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। लोकगीत हो या लोक नृत्य, एक कहानी कहते हैं जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती सिखाती आ रही है। उनमें से कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ जुड़ जाती हैं, और उसमें जो सुकून है, जो अपनापन है, वो जिंदा रह जाता है। नन्हे बच्चों की ये कोशिश भी अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अभ्यास है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो इनकी अदाएं हैं, जिस पर लोग दिल हार रहे हैं।

रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में क्या किया जाए, इसे लेकर हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई घूमने निकलता है, कोई दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता है, तो कोई अपने पुराने शौक को फिर से जीने लगता है। लेकिन नोएडा के कुछ बुजुर्गों ने अपनी रोज की सुबह की सैर को ही कुछ खास बना दिया।

0: मजा।
1: पार्क में टहलने निकले इन दोस्तों ने अचानक ऐसा सुर छेड़ा कि देखते ही देखते वहाँ का माहौल किसी छोटी सी संगीत महफिल जैसा हो गया। कांधे पर अपने बच्चे को बिठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस पिता का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का दिल छू रहा है। इस शख्स के पांव नहीं है, फिर भी मन्नत मांगने चला आया है, क्योंकि सवाल उसकी औलाद का है। और इस बच्चे को देखिए, पिता के कंधे पर बैठकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। पिता का त्याग ऐसा ही होता है, नजर नहीं आता। तभी तो कहते हैं माँ बाप का होना ही काफी है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं। एक नीली और सफेद रंग की बस सड़क पर चल रही है। पहली नजर में ये एक सामान्य बस लगती है, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे की ओर बढ़ता है असली ट्विस्ट सामने आता है। बस में आगे कोई सामान्य इंजन काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक लाल रंग के ट्रैक्टर से जोड़ा गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर बड़े मजे से बस को खींचते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा है और बस के पायदान पर खड़े यात्री आराम से सफर का आनंद ले रहे हैं। बंदर तो बंदर है, वो कहीं हो और अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराए ऐसा हो नहीं सकता। अब इसे ही देख लीजिए, भालू और कुत्ते की दोस्ती से इन्हें भला क्या परेशानी थी। देखा नहीं गया इनसे इतना प्यार, एकदम से टपक पड़े और फिर तो देख ही रहे हैं इनके कारनामे। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें दूर करने की, और जब जी भर गया तो निकल पड़े, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है करो, हम तो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं, बंदर कुत्ते को बचाने आया था या दोनों की केमिस्ट्री से जल रहा था, अब ये तो वही जाने। बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। नूडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कोपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कोपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।